इनसे कहो मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूं जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है, वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो ईमान लाने वालों के मुताल्लिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत न ले जा सकते थे। क्योंकि इन्होंने उससे हिदायत न पाई इसलिए अब ये जरूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है, हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है और ये किताब उसकी तस्दीक करने वाली जबान अरबी में आई है ताकि जालिमों को मुतनब्बिह कर दे और नेक रविश इख्तियार करने वालों को बशारत दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है फिर उस पर जम गए, उनके लिए न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमें

हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर ही उसको जना और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, यहां तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और ताबे फरमान यानी मुस्लिम बंदों में से हूं। इस तरह के लोगों से हम उनके बेहतरीन आमाल को कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता रहा है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। मां और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर आजाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिनों और इंसानों के जो टोले इसी खुमाश के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके आमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। इन पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, उनकी पादाश में आ

0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی

प्लानिंग यहाँ लग्जरी नहीं जरूरत बन जाती है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने पैसे को अपनी लाइफ के गोल्स के साथ जोड़ दें, जैसे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, आपके बच्चे की एजुकेशन का प्लान क्या है, आप रिटायरमेंट के बाद कैसे और कहाँ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और अगर कल को कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो आप कितने तैयार हैं। यहाँ प्लानिंग का असल सवाल ये होता है कि क्या मैं सिर्फ आज के लिए कमा रहा हूँ या कल के लिए भी तैयार हूँ मैं कि नहीं। देखिए भाई कतर के कॉन्टेक्स्ट में ना ये अलाइनमेंट और भी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ जॉब के फ्यूचर अनसर्टन होते हैं बल्कि रहने का स्टेटस भी अनसर्टन होता है। इसलिए जो लोग सिर्फ करंट लाइफस्टाइल पर फोकस करते हैं वो अक्सर बाद में पैनिक और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। साथियों फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी पूरी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को देखकर एक क्लियर पिक्चर बनाती है। इनकम, खर्चे, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज और फ्यूचर गोल्स सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं जैसे सुई से धागा। और क्या आप अपॉर्चुनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हैं? ये भी एक सवाल है। अच्छा मजे की बात ये है आप ये प्लान खुद भी बना सकते हैं या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के साथ जो कि कतर के सिस्टम को समझता हो और जो उन रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके जो आम नजर से छुपे रहते हैं, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथियों जब हम यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं ना तो यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं होती बल्कि ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी होती है। जरा सोचकर देखें ना कितना रिलेटेड है। एक प्रोफेशनल कपल जो कि कतर में रह रहा है, दोनों अच्छी कमाई कर रहे हैं, बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल कंफर्टेबल है, वीकेंड ब्रंचेस हैं, वेकेशंस हैं और अपग्रेड्स नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। बाहर से सब कुछ स्टेबल लग रहा है ना, सुनने में बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अगर अंदर झांक कर देखा जाए तो ना कोई इमरजेंसी फंड है, ना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और ना ही ये क्लैरिटी है कि भाई रिटायरमेंट के बाद कहाँ सेटल होना है। अब इमेजिन कीजिए कि अचानक खुदा ना खास्ता अचानक किसी वजह से एक इनकम बंद हो जाती है, क्या होगा? सोच सकते हैं? सोचिए ना, स्कूल फीस फिर भी देनी है, रेंट फिर भी देना है, डेली एक्सपेंसेस फिर भी चलने हैं, और ऊपर से अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल कॉस्ट आ जाए तो प्रेशर और भी बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है और बहुत नॉर्मल बात है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होना तो इस सिचुएशन में बिना प्लानिंग के पैनिक बहुत आसानी से सेट हो जाता है, डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं और लोग अक्सर गलत वक्त पर गलत चॉइसेस कर लेते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग पहले से होना, इमरजेंसी फंड्स मौजूद हों, इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रक्चर्ड हों और फ्यूचर का एक क्लियर रोड मैप हो तो वही सिचुएशन मैनेजेबल भी बन जाती है। साथियों फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ये पावर देती है कि आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर सकें, समझ सकें कि कहाँ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके लिए सही हैं और मार्केट के अप एंड डाउन के बावजूद अपने आप पर कॉन्फिडेंस बरकरार रख सकें। ये सिर्फ फैमिलीज के लिए नहीं है साथियों बल्कि सिंगल्स के लिए भी है, यंग प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए भी है इक्विवेलेंटली जो रिटायरमेंट के करीब हैं, क्योंकि हर स्टेज पर आपके गोल्स और चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की चीज है ना, ये कोई वन टाइम काम नहीं होता। जैसे जैसे आपकी लाइफ इवॉल्व होती है आपकी प्लानिंग भी इवॉल्व होती है। देखिए कतर में इस प्लान का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा कैश फ्लो प्लानिंग होता है, यानी के मंथली बेसिस पर आपका पैसा कैसे आता है और कैसे जाता है। यहाँ एक्सपेंसेस बहुत क्वाइटली बढ़ते जाते हैं, रेंट हर कुछ साल में इंक्रीज होता जाता है, स्कूल फीस हर साल ऊपर चली जाती है।

0: कैश फ्लो प्लानिंग वो होती है जो आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि मैं असल में हर महीने कितना सेव कर सकता हूँ या कितना सेव कर रहा हूँ और मेरा कितना खर्चा नेसेसिटी है और कितना सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल। चले यूं कह लें कि मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी 5,000 से बढ़ती है लेकिन आपका लाइफस्टाइल 4,000 रियाल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको क्या लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं? लेकिन असल में आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है साथियों। लेकिन कैश फ्लो प्लानिंग आपको एक चॉइस देती है कि आप इंटेंशनल डिसीजंस लें, एक्सीडेंटल स्पेंडिंग से बचे और अपनी इनकम को सिर्फ आज के कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि कल की सिक्योरिटी के लिए भी यूज करें। कतर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए ना, तो कतर के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इमोशनल रिएक्शन से निकाल कर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ ले जाती है ये चीज। जब आपको पता हो कि आपके इमरजेंसी फंड्स कितने महीने कवर कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स का लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है और आपका एग्जिट प्लान क्या है, यानी कतर छोड़ने के बाद का लाइफ प्लान क्या है, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, चाहे मार्केट वोलेटाइल हो, चाहे जॉब सिचुएशन चेंज हो या चाहे पर्सनल लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाए। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब रिच ओवरनाइट होना नहीं होता बल्कि अपनी लाइफ को फाइनेंशियली अलाइन बनाना होता है ताकि आप सिर्फ अच्छी कमाई ना करें बल्कि उसी कमाई से स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके। साथियों कतर जैसी जगह पर जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं लेकिन परमानेंस का यकीन कम, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ये एश्योर करने में मदद देती है कि आप हर फेज के लिए तैयार हैं, चाहे वो ग्रोथ का फेज हो या ट्रांजैक्शन का, और आप अपनी जिंदगी को सिर्फ रिएक्ट करके नहीं बल्कि प्लान करके जी सकते हैं। तो भाई इसी इंफॉर्मेशन के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद इस बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 पर मनी नेविगेटर विद सफा।
1: साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर।
0: वेलकम बैक साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर मनी नेविगेटर। और साथियों आज हम बात कर रहे हैं कतर के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। देखिए भाई कतर के कॉन्टेक्स्ट में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की जाए ना, तो हमारा अगला और बहुत अहम पहलू डेट मैनेजमेंट का होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट कार्ड लेना आसान है लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल। देखिए क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स और कार लोन्स यहाँ बहुत कॉमन है और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब तक मंथली इंस्टॉलमेंट्स मैनेज हो रही हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेल्थ को खामोशी से खा जाते हैं। ना आपको फौरन महसूस होता है और ना ही आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भाई देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ये सिखाती है कि कौन से डेट पहले खत्म करने होते हैं, कैसे इंटरेस्ट बर्डन को कम करना है और कैसे डेट पेमेंट को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के साथ बैलेंस करना है, ताकि आप सिर्फ कर्जों के चक्कर में फंसकर अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। देखिए साथ ही समझने की बात यह है कि इसका मकसद ये नहीं कि आप कभी लोन ही ना लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि डेट आपकी जिंदगी को सपोर्ट जरूर करे लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं करे। इसके बाद जो सबसे बुनियादी और लाइफ डिफाइनिंग सवाल आता है वो एक और सवाल कि भाई रिटायरमेंट प्लान। देखें कतर में रहकर ये सोचना कि आखिरकार रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, क्या आप अपने होम कंट्री वापस जाना चाहते हैं, किसी और मुल्क में सेटल होना चाहते हैं या शायद अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ फैसिलिटीज को देखकर कोई नया ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इन सवालों के साथ और भी सवाल जुड़े होते हैं, जैसे कि आपको किस करेंसी में इनकम चाहिए होगी, आप किस लेवल का लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहेंगे और क्या आप सिर्फ बेसिक जरूरियात तक

0: ही महदूद रहना चाहते हैं या अपनी मेहनत का फल और सुकून जिंदगी की सूरत में एंजॉय करना चाहते हैं। साथियों, कतर में यूनिवर्सल स्टेट पेंशन सिस्टम मौजूद नहीं है जो हर किसी को ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट के बाद इनकम दे दे। इसलिए यहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब होता है अपनी रिटायरमेंट इनकम खुद बनाना, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग के जरिए वक्त से पहले प्लान करके और अपने फ्यूचर को चांस पर छोड़ने के बजाय उसे स्ट्रेटजी के साथ डिजाइन करना। देखिए भाई, अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है ना, वो आपको सिर्फ नंबर्स का प्लान नहीं देती बल्कि ये सुकून देती है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहना चाहें, आपका फ्यूचर फाइनेंशियली फंडेड है। इसी प्लानिंग का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के दौरान काम रहना सिखाती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का असल काम होता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस, आपका टाइम होराइजन और आपके फाइनेंशियल गोल्स तीनों को एक दूसरे के साथ मैच करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको 2 साल बाद हाउस डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए तो उन पैसों को एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होती साथियों, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी आपके प्लान को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन एक हकीकत बात ये भी है कि जो पैसा आप रिटायरमेंट के लिए 20 साल बाद चाहते हैं ना, वो टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स बर्दाश्त कर सकता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा उठा सकता है। देखिए, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है, ट्रेंड्स के पीछे भागने से रोकता है और इमोशनल डिसीजंस लेने के बजाय डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। सीधी सी बात है भाई, देखिए मार्केट जब नीचे जाती है ना, तो प्लान आपको याद दिलाता है कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया था, और जब मार्केट ऊपर हो जाए तो प्लान आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। इस तरह आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं। साथियों, कतर में जो लोग रहते हैं ना, उनके घरों में एक और बहुत बड़ी रियलिटी छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल स्कूल्स और बाहर की यूनिवर्सिटीज की फीस अक्सर बहुत ज्यादा होती है। पेरेंट्स अक्सर आज के खर्चों में इतने बिजी हो जाते हैं कि फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट का अंदाजा ही नहीं लगा पाते, और जब वो कॉस्ट सामने आती है तो या तो इमरजेंसी सेविंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देखिए, एजुकेशन प्लानिंग आपको ये मदद देती है कि आप फ्यूचर के अंदाजे से कॉस्ट कैलकुलेट करें, जल्दी सेविंग्स शुरू करें और इस बर्डन को वक्त के साथ स्प्रेड करें ताकि आखिरी वक्त में प्रेशर ना बने। जब प्लानिंग होती है ना साथियों, तो एजुकेशन एक्सपेंसेस सिर्फ एक और गोल बन जाते हैं जो मैनेज हो सकते हैं। बिना प्लानिंग के वो सिर्फ स्ट्रेस होते हैं, गिल्ट होता है और फाइनेंशियल इम्बैलेंस का सबब बन जाते हैं। इसी तरह कतर जैसे मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में स्टेट प्लानिंग भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के एसेट मल्टीपल कंट्रीज में होते हैं, कुछ यहाँ, कुछ होम कंट्री में और कुछ शायद किसी और जगह पर भी। स्टेट प्लानिंग का मकसद सिर्फ बड़ी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता बल्कि ये एश्योर करना होता है कि आपकी विशेज क्लियर और डॉक्यूमेंटेड हों, गार्डियनशिप के डिसीजंस वाजे हों और आपकी फैमिली मेंबर्स लीगल और फाइनेंशियल तौर पर प्रोटेक्टेड हों। ये प्लानिंग साइज ऑफ वेल्थ से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार होती है, क्योंकि जब चीजें क्रॉस बॉर्डर होती हैं तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आपके अपने लोग ही अनसर्टेनिटी और डिले का शिकार हो सकते हैं। साथियों, स्टेट प्लानिंग आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आपने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का भी ख्याल रखा हुआ है। और आखिर में आता है इंश्योरेंस प्लानिंग, जो असल में आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान का प्रोटेक्टिव शील्ड होता है। कतर में हेल्थ इंश्योरेंस एसेंशियल है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं होता। देखिए मैं, इंश्योरेंस प्लानिंग का मतलब ही यही होता है कि आप इस बात का इत्मीनान करें कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आपकी सेविंग्स को ड्रेन ना कर दे, आपके डिपेंडेंस फाइनेंशियली वल्नरेबल ना हो जाए और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स किसी अचानक मुसीबत की वजह से ड्रेन ना हो जाए। साथियों, लाइफ, हेल्थ, डिसेबिलिटी और दूसरे रिलेवेंट कवर्स आपके प्लान को उस वक्त प्रोटेक्ट करते हैं जब जिंदगी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। देखिए, इंश्योरेंस का काम ये नहीं होता कि वो आपको रातों रात अमीर बनाए, बल्कि ये होता है कि आप जो कुछ मेहनत से बिल्ड कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करें, ताकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी सालों की प्लानिंग को एक झटके में खत्म ना कर दे। तो साथियों, जब हम इन तमाम एलिमेंट्स को कतर के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ कर देखते हैं ना, तो डेट मैनेजमेंट जो आपको कर्जों के ट्रैप से बचाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग जो आपके फ्यूचर को सेल्फ फंडेड बनाती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो आपको मार्केट साइकल्स के दौरान काम रखती है, एजुकेशन प्लानिंग जो बच्चों के ख्वाब को फाइनेंशियल बर्डन बनने से रोकती है, रियल एस्टेट प्लानिंग जो क्रॉस बॉर्डर क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, और इंश्योरेंस प्लानिंग जो पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। तो भाई समझ आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर फेज का साथी है। साथियों, कतर जैसी जगह पर जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन परमानेंस और सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर लिमिटेड है। देखिए भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ आपको सर्वाइव नहीं कराती, बल्कि थ्राइव करने का रास्ता दिखाती है। ये आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ रिएक्ट करके नहीं जी रहे, बल्कि सोच समझ कर डिजाइन कर रहे हैं, ताकि आज का कंफर्ट, कल की स्टेबिलिटी और फ्यूचर का कॉन्फिडेंस एक ही फाइनेंशियल रोड मैप पर अलाइन हो जाए। तो साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर और भी मजीद डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर।
0: वेलकम बैक साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107। तो भाई, कतर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम मनी मूव्स की बात करते हैं, तो असल में हम उन प्रैक्टिकल डिसीजंस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो आपको सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और सबसे पहले और बुनियादी कदम होता है एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाना, जो कम अज कम कतर के लिविंग एक्सपेंसेस के 6 महीने कवर कर सकता हो, क्योंकि यहाँ रेंट, स्कूल फीस, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज और डेली लाइफ के खर्चे इतने हाई हो सकते हैं कि 3 महीने का बफर अक्सर काफी नहीं होता। और जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि जॉब चेंज, कॉन्ट्रैक्ट डिले, मेडिकल इश्यूज या फैमिली इमरजेंसीज, तो वही इमरजेंसी फंड आपको पैनिक से बचाता है और आपको टाइम देता है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप कामली डिसाइड कर सकें। इसके बाद दूसरा एसेंशियल मनी मूव ये है कि रिटायरमेंट को खुद से प्लान किया जाए, ना कि ये अज्यूम कर लिया जाए कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखें भाई, रियलिटी ये है कि कतर में यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम नहीं है, और ज्यादातर एक्सपेक्ट्स के लिए रिटायरमेंट का मतलब होता है अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करना। इसीलिए जितना जल्दी आप इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, उतना ज्यादा फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड आपके फ्यूचर के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा अहम कदम ये है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म जरूरियात और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखें। यहाँ जो पैसा आपको अगले 1-2 साल में चाहिए, जैसे हाउस डिपॉजिट, कार रिप्लेसमेंट, फैमिली कमिटमेंट्स, उसे ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डालने के बजाय सेफ और एक्सेसिबल जगह पर रखें। जबकि जो पैसा आपका 10, 15 या 20 साल बाद का गोल है ना, जैसे रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, उसे पेशेंस के साथ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स में काम पर लगाएं। चौथा मनी मूव ये है कि स्कूल फीस और एजुकेशन गोल्स को लास्ट मिनट पर छोड़ने के बजाय बहुत पहले से रिव्यू और प्लान किया जाए, क्योंकि कतर में इंटरनेशनल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के खर्चे हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और अगर प्लानिंग ना हो तो ये एक्सपेंसेस आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और रिटायरमेंट गोल्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। जबकि अर्ली प्लानिंग के साथ यही कॉस्ट्स मैनेजेबल बन जाती हैं। और भाई, पांचवा कदम ये है कि मेहरबानी करके आप अपने फाइनेंशियल प्लान को हर साल या जब भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रिव्यू करें, क्योंकि कतर जैसे डायनामिक जॉब मार्केट में लाइफ कंडीशंस तेजी से बदल सकती हैं, और जो प्लान आज रेलिवेंट है वो कल आउटडेटेड हो सकता है। इसीलिए रेगुलर रिव्यू आपको अलाइन रखता है और आपको ये एश्योरेंस देता है कि आप अपनी इनकम एक्सपेंसेस सेविंग्स और गोल्स के दरमियान बैलेंस मेंटेन रखे हुए हैं। साथियों इन मनी मूव्स के साथ साथ कुछ क्विक टिप्स ऐसे हो सकते हैं जो कतर की रियलिटी को समझने में ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। जैसे सबसे पहला टिप ये है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्लान करें, परमानेंस के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं और कोई भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसीलिए अपने फाइनेंसेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करें कि अगर कल आपको मूव करना भी पड़ जाता है या जॉब चेंज करना पड़ जाए तो आप फाइनेंशियली स्टक ना हो। भाई दूसरा टिप ये है कि इमरजेंसी फंड को कतर के एक्चुअल कॉस्ट के मुताबिक डिजाइन करें ना। सिर्फ 3 मंथ्स का फॉर्मूला यहाँ काफी नहीं होता साथियों, बल्कि आपको अपने रेंट, स्कूल फीसेस, यूटिलिटीज और लिविंग एक्सपेंसेस को रियलिस्टिकली देखकर कम से कम 6 महीने का बफर बनाना चाहिए ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन आपकी जिंदगी को एकदम से अनस्टेबल ना कर दे। तीसरा टिप ये याद रखना है कि भाई सैलरी इंक्रीज वेल्थ नहीं होती जब तक आपकी सेविंग्स भी उसके साथ ना बढ़ें। राइज मिलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फॉरेन लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं और सेविंग्स का रेशो वही रहता है तो आप प्रैक्टिकली वहीं के वहीं खड़े हैं। इसीलिए स्मार्ट मूव यही होती है कि पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लॉक इन करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता से लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें ना भाई। देखिए भाई चौथा टिप ये है कि अपनी लोकल लाइफ और लॉन्ग टर्म लाइफ के पैसे को अलग अलग रखें। जो पैसा आपको कतर में रहकर अभी चाहिए वो अलग कैटेगरी है और जो पैसा आपकी जिंदगी के अगले फेज यानी कतर के बाद के लिए आपको जरूरी है वो बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी के मुताबिक होना चाहिए। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना तो अक्सर ना आज की जिंदगी प्रॉपरली मैनेज हो पाती है और ना ही कल का फ्यूचर सिक्योर रहता है। और इसी के साथ पांचवा टिप ये है कि स्कूल फीसेस को फिक्स्ड एक्सपेंसेस समझकर बहुत पहले प्लान कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल की फीसेस लगभग हर साल बढ़ती हैं और जैसे जैसे बच्चे हायर ग्रेड्स में जाते हैं कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अगर आप परमानेंटली अर्ली एजुकेशन प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो ये बर्डन वक्त के साथ साथ स्प्रेड हो जाता है और आप पर एक ही वक्त में प्रेशर नहीं आता, आप दिमागी सुकून में रहते हैं। और भाई इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि ये जो छठी टिप है ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये तो वो टिप है जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करती हूँ और वो ये है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने के लिए मेहरबानी करके कंपैरिजन से दूर रहें। देखिए कतर में अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, कतर में अक्सर लोग कुलीग्स के कार्स, होम, वेकेशंस और शॉपिंग हैबिट्स को देखकर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा लेते हैं, लेकिन हर किसी की फाइनेंशियल रियलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉन्ग टर्म गोल्स मुख्तलिफ होते हैं साथियों। इसीलिए बेहतरीन बेंचमार्क दूसरों की जिंदगी नहीं बल्कि अपने आप की जिंदगी प्लान करना और उसे जीना होता है। तो भाई इसी के साथ सातवां टिप ये है कि इंश्योरेंस को ऑप्शनल ना समझें, क्योंकि एक्सपेक्ट लाइफ में मेडिकल इश्यूज, जॉब डिस्ट्रप्शंस या एक्सीडेंट्स सालों की सेविंग्स को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। इसीलिए प्रोटेक्शन को हमेशा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से पहले रखें, क्योंकि जब बेस सिक्योर होती है ना तभी आप कॉन्फिडेंटली आगे बिल्ड कर सकते हैं। और भाई आठवां टिप ये है कि डे वन से अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करें, चाहे आप कतर से कितना ही क्यों ना प्यार करते हो, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि अगले 2, 5 या 10 साल बाद यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। क्योंकि भाई जो लोग ये सवाल पहले दिन से ही सोचकर ट्रांजैक्शंस करते हैं वो पैनिक की बजाय प्रिपेयरनेस के साथ मूव करते हैं। और इसी के साथ साथियों नवी टिप ये है कि बॉर्डर्स के पार अपने पैसों को

कंफ्यूजन, इनएफिशिएंसी और स्ट्रेस पैदा करते हैं, जबकि सिंपलिसिटी आपको बेहतर कंट्रोल और पीस ऑफ माइंड देती है। और आखिरी टिप ये है कि जब भी लाइफ चेंज हो, नई जॉब, बच्चे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अपना फाइनेंशियल प्लान बाद में देखने वाला सीन नहीं करें। बाद में देख लेंगे का अप्रोच अक्सर कॉस्टली साबित होता है साथियों, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है और अगला प्लान अपडेट ना हो तो आप अपनी न्यू रियलिटी के लिए अपडेटेड नहीं होते। इन तमाम मनी मूव्स और क्विक टिप्स का नतीजा ये होता है कि कतर में फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ के पीछे भागने का नाम नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस का दूसरा नाम है, यानी कि प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, प्रिपेयर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज, प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी, क्योंकि यहाँ जिंदगी बहुत फास्ट है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ अनसर्टेनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। और जो लोग अपनी फाइनेंसेस को सिर्फ आज के कंफर्ट तक महदूद रखते हैं ना, वो कल के लिए खुद को वल्नरेबल बना लेते हैं। याद रखें कि कतर में फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है या पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देना है। जब आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं, डेट को कंट्रोल करते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपने एग्जिट प्लान पर सोचते हैं, तो आप सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए, इनकम आती रहती है, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है ना, ये प्लानिंग से बनती है। याद रखें, प्रिपेयर्डनेस ही असल वेल्थ है, चेंज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और अनसर्टेनिटी के लिए। भाई, मनी नेविगेटर के साथ अपने पैसों को समझिए, प्लान कीजिए और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कीजिए। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर मनी नेविगेटर। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहि व अलहम्दुलिल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बहुत ही एक अहम कुरानी उसूल पर। ये दरअसल जिंदगी को सिमत मुतय्यन करने वाला उसूल हम इसे कह सकते हैं। फिक्र के हवाले से कहें, तहजीब के हवाले से कहें, तमाम तर पहलू में ये हमें एक बहुत ही अहम सिमत अता करता है और वो है कुरान की अक्वामियत। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक्वम। बेशक ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज़्यादा सीधा, दुरुस्त और मजबूत।

0: से सड़क पर गाड़ियां गुजर जाती हैं। रुकें, देखें, सोचें, सबक निकालें। कुरान ने पिछली कौमों के वाक़ियात इति है जो वाक़ियात को वाक़ियात के अंदर गौर व खौज करता है, उसे अपने जहन में उतारने की कोशिश करता है। तो सामने कराम, यह है कुरान की अक़वामियत का पहला मफहूम। अब दूसरे मफहूम की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो ये कि कुरान के अलावा जो कुछ हमारे सामने आए उसे भी कुरान की मीज़ान पर परखा जाए। यहाँ एक अहम बात वाज़ह रहनी चाहिए कि कुरान की बालादस्ती का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के तमाम इंसानी उलूम, तजुर्बात और फिक्री काविशों को उठाकर रद्द कर दें। नहीं, इंसानियत ने तिब, इंजीनियरिंग, नफ्सियात, समाजियात, मईशत और दूसरे मैदानों में जो मुफीद इल्म पैदा किया उससे फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। असल फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस इल्म के सामने अपनी फिक्री मीज़ान नहीं रख देंगे बल्कि उसे अपनी कुरानी मीज़ान के सामने रखेंगे। गोया कुरान दूसरों की नफी नहीं करता, उन पर हाकिम और निगरान बनता है। और इसीलिए कुरान की अक़वामियत या अक़वामियत की जामे तारीफ यूं की जा सकती है कि कुरान फिक्र और तसव्वुरात की तश्कील में हमारा अव्वलीन और बाला तरीन माखज़ हो। गौर कीजिए, अव्वलीन और बाला तरीन माखज़ हमने कहा है क्योंकि इंसानी तजुर्बे से इस्तेफादा अपनी जगह मौजूद है मगर आखिरी मीज़ान कुरान के हाथ में रहेगी। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के बारे में फरमाया, वो मुहैमिनन अलैहि, यानी कुरान मुहैमिन है, निगरान, मीज़ान और बाला दस्त मेयार। बस जो फिक्र बाहर से आए, हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि कितनी मशहूर है, किस बड़े मुफक्किर ने पेश किया है, दुनिया की कितनी जामियात उसे पढ़ाती हैं। हमारा एक सवाल और होगा कि कुरान की मीज़ान पर कहाँ खड़ी है। अब इसकी एक नहायत सादा मिसाल ले लीजिए। आपने मशहूर ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि इल्म ताकत है, नॉलेज इज़ पावर। तो फ्रांसिस बेकन से मंसूब यह जुमला इतना आम हो चुका है कि बाज़ मुस्लिम तालीमी इदारों और जामियात में भी उसे एक मुसल्लमा उसूल की तरह दोहराया जाता है। अब कुरान की अक़वामियत हमें बताती है कि किसी खूबसूरत नारे से मुतासर होने से पहले उसे कुरान के सामने रखो। तो सवाल कीजिए, क्या कुरान भी इल्म को बुनियादी तौर पर ताकत के उनवान से देखता है? कुरान ने तो एक और जाविया भी हमारे सामने रखा है कि इल्म सिर्फ ताकत नहीं, इल्म जिम्मेदारी भी है। अल्लाह फरमाता है, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا। जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो, कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में बासपुरुस होगी। सामने किराम, क्या खूबसूरत तब्दीली है। दुनिया शायद कहे कि इल्म हासिल करो ताकि ताकतवर बनो, कुरान याद दिलाता है कि इल्म हासिल करो मगर याद रखो कि जितना जानते हो उतना ही तुम पर जवाबदेही का बोझ भी बढ़ता जाता है। यानी इल्म तुम्हारे हाथ में सिर्फ इख्तियार नहीं रखता, तुम्हारे कंधों पर अमानत भी रखता है। यही कुरान हमारी फिक्र की इस्लाह करता है। फिर हम हर मकबूल इस्तेलाह को आंखें बंद करके कबूल नहीं करते। हम पूछते हैं कि तरक्की क्या है, डेवलपमेंट किसको कहें, कामयाबी का मेयार क्या है, खुशहाली किस नाम किसका नाम है, आज़ादी कहाँ तक आज़ादी है। इन अल्फाज की तारीफ भी सिर्फ ज़माने से मुस्तार नहीं ली जाएगी, यानी ज़माना जैसे उसे डिफाइन करता है हम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, उन्हें भी कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। और यही अक़वामियत के वो दो सुतून हैं कि फ़िक्र का आगाज़ कुरान से हो और फ़िक्र की वापसी भी कुरान की तरफ। अगर ये दोनों ना हों तो इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, हमारे मुसहफ़ में लिखी हुई अजीम आयत तो रहेगी लेकिन उसका अक़वम रास्ता, सबसे दुरुस्त और बाला तरीन रास्ता हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में नजर नहीं आएगा। चूंकि तब्दीली सिर्फ किताब के मौजूद के होने से नहीं आती, तब्दीली तब आती है जब किताब जहन के सोचने का अंदाज बदल दे। समझ के हम यहाँ एक और गलत फहमी दूर करना जरूरी है कि अक़वामियत कुरान किसी एक शख्स का मंसूबा नहीं, किसी तंजीम का नारा नहीं, किसी जमात या मुक्तब फिक्र की मिल्कियत नहीं, ये खुद कुरान का मंसूबा है। कुरान ऐलान करता है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। और इसी उसूल की एक और सूरत हमें इस फरमान में मिलती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। यानी अपना नजरिया, अपनी पसंद, अपने ज़माने का दबाव या किसी मुफक्किर की फिक्र, किसी चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे मत रखो। और जब इख्तलाफ पैदा हो जाए तो कुरान क्या कहता है, इन तनाज़अतुम फी शैइन फुरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इख्तलाफ हो तो मामला अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।

0: FM 107. Time check.
1: Ne böyle kubatarun ne se kya ho jayega? Kya ho jayega aur unhe? Hai? अभी मैंने व्हाट्सएप को कितनी बार कह रखा है नहीं मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप कितना आसान नंबर है 666-221-07 क्या बड़ी बात है। मैसेज नहीं कर रहा था तो मैं थोड़ा सा गुस्सा आ गया मेरे को हाइपर हो जाता हूँ। मैसेज करना पड़ता बेटे ऐसे नहीं होता है। मैसेज करो आप भी मैसेज करो नहीं तो मऊ आ जाएगा मऊ।

0: जी ऐसा है कि 6:00 जो है वो 2 मिनट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और भाई साहब मैं नू कह रहा था कि अगर आप आ जाएंगे व्हाट्सएप पे तो बहुत बढ़िया, 666-2107 नंबर है, आपकी मजा आएगी। मेरे तो इसमें कोई वो है नहीं, फायदा आपका है ज्यादा। तो आप भाई 666-2107 पर। और एक मैसेज है मोहसिन भाई का, मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम, प्रेजेंट लगा दी रोल नंबर 2। और तबस्सुम बहन ने मुझे मैसेज किया है और एक बहुत प्यारी आवाज़ सुनाई अपनी बिटिया की, और उन्होंने कहा भी है मुझसे कि आप हैंडसम लग रहे हैं। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। और एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं जी बढ़िया, शानदार, एकदम शानदार। और मैं एक चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, और मैं अभी कुछ देर में डिस्कशन करूँगा, बड़ा बड़ा ज़रूरी है आपसे डिस्कस करना। प्लस आज की जो कहानी है ये कहानी आपको याद रहेगी। कुछ कहानी ऐसी होती है ना कि हार मज़ा आया, मसाला बढ़िया था, एकदम चटपटा था, मज़ा आ गया, हो गया। पर कुछ ऐसी होती है जो अटक जाती है भेजे में, तो आज वाली अटक जाएगी भेजे में। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो तैयार रहिए। 666-2107 नंबर है। 6:03, मैं दुहा वाला कबीर, सुबह की शुरुआत सुबह के अधिकार से, उसके बाद मुलाकात होगी। आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, गुड मॉर्निंग। जानी मानी हस्ती को आसिफ केगीसी का सलाम। ओफ। और मैसेज आया है सुभाष भाई का, अस्सलाम वालेकुम, सुभाष खैर, हाउ आर यू ब्रदर? मैं एकदम ठीक हूँ सुभाष भाई, आप बताइए कैसे हैं? तो मैं एकदम बढ़िया सुभाष भाई, आप बताओ, भले चंगे हो, सब चंगा, ठीक है। तो मिलते हैं 10 मिनट 33 सेकंड के बाद तला भाई की आवाज़ में सुबह के अधिकार, और फिर होगी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात। जाना है आपने है नहीं, स्टे का ट्यून्ड।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

0: तौफिक भाई यार, तौफिक भाई यार, यो फनी यार, लिटरली भाई मजा दिला देता है उसे। मतलब ऐसे जब लोग पकड़े जाते हैं ना, चोरी पकड़े जाते हैं, तो मजा आता है मुझे। हाँ तो मैं तो यहाँ पे एक्टिंग भी नहीं कर सकता, ना तो मैं सरोर भाई बन सकता, ना मैं नाजिया बन सकता, पर उनकी तरफ से आपको वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए आप, जैसे भी हाल में रहिए आप, खुश रहने चाहिए बस। गुड मॉर्निंग तमाम बच्चों को जो भी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और तमाम माँ बाप को जो अभी जाने वाले हैं या छोड़ने निकल चुके हैं, बस आंख मूंद के एक आंख खुली हुई है, दूसरी आंख सो रही है ड्राइविंग, तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी आपको लाल बत्ती दिखे लंबी वाली, वहाँ पे मैसेज कर देना 666-22-107 पे। अब ज़रा मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। देखो आज का जो सवाल है, ये बहुत लोगों के अलग अलग क्या कहते हैं उसे, बिहेवियरल पैटर्न्स को बाहर निकालेगा, कैसा बिहेव करते हैं उस पर डिपेंड है। मैं बताता हूँ, अभी सवाल बताता हूँ, मैं एक दो मैसेज और पढ़ दूँ। गुड मॉर्निंग कबीर अंकल फ्रॉम धनीन एंड रद्वा, दोनों को, धनीन को और रद्वा को, दोनों को बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग एरिंग मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम शारिक भाई, कैसे मेरा भाई। तो अब मेरा सवाल सुनिए अरे। सो माय क्वेश्चन इज, जब आपको लगता है कि आप बहस हार रहे हैं, होता ना कि मरता वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप किसी से, अब जो है आप आर्ग्यूमेंट हार रहे हैं, बहस आप हार गए, आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप बहस में हार रहे हैं, तो आप करते क्या हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको लगा यार ये तो यार बात मेरे हाथ से निकल गई, अब तो मैं आर्ग्यूमेंट हार चुका हूं। देखो दो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हाँ मैंने मान लिया भाई मैं गलत हूं, एक होता है ना गलत हूं मानू मानूंगा नहीं मैं मानूंगा नहीं भाई मैं, या मानूंगी नहीं। तो जब आपको लगता है कि आप बहस हारने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू डो, या वॉट कम्स टू योर माइंड। आपका भेजा आपसे क्या कहता है भाई, कि भाई ऐसा बाबू हार तो रहे करें क्या इस सिचुएशन में, क्या कर रहा है आपने को, तो ये आप बताइएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें ईमानदार लोग आ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। प्लीज़ कोई ज्ञान देने वाला ना आए, ज्ञान नहीं चाहिए पब्लिक को, पब्लिक को चाहिए सिर्फ मजा, ठीक है। सुमल बनी कह रही है इज द फर्स्ट चाइल्ड इज फॉर एक्सपेरिमेंट, आई एम सॉरी निकल लेती हूँ। सुमुल बहन, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक यस, कॉन्ट्रोवर्शियल यस, क्या कह सकते हैं। और कह रही है आई से सॉरी एंड निकल लेती हूँ, तो सुमुल बहन जो सॉरी कहती हैं और निकल जाती है, आई डोंट थिंक सो बहन, आप सॉरी कह के निकल जाती होंगे, आई डोंट थिंक सो। मुझे लग रहा है मुझसे झूठ बोलेंगे टीचर साहिबा, बिकॉज अगर आपसे कोई बहस करे तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ इन माई ओन हेड कि आपने कहा सॉरी और अब निकल गई ना, आप तो अपनी बात को साबित करवा के मानेंगी। एक मैसेज है गुड मॉर्निंग, और ये हमें मैसेज किया है हम सब बहन, कैसी है बहन आप, सब बढ़िया चल रहा है। और एक मैसेज है, अच्छा फिट बढ़िया, ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू अलीना, अलीना की तरफ से मतलब अलीना को बहुत सारा प्यार, एंड वालेकुम सलाम बच्चे, हाउ आवर थिंग्स, क्या चल रहा है, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम,
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: देखिए जस साहब, मुझे तो एकदम झूठ लग रही है बात जो आपने मुझे लिखी कि आप सॉरी क्या
1: ना, मैं
0: देखिए मैं ये मान नहीं सकता कि आप जो हैं आर्ग्यूमेंट में जब आप हार रही होती हैं तो आप सॉरी कहकर निकल जाती हैं, सॉरी ये मैं नहीं मान पाऊँ।
1: तो और अगर लगता है कि मैं हार रही हूँ तो आई से सॉरी और निकल जाए, क्योंकि बहस करने से बेहतर है कि अपनी इज्जत को बचा लो।
0: क्या बात है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है चाहे गलत हो आप मनवा के मानती होंगी कि नहीं मैं जब कह रही हूँ कि
1: सामने क्या दिखाना चाहती हूँ, एक मतलब क्या इमेज बना दी है आपने मेरी। आप
0: नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ,
1: मिला अगर मैं सही हूँ तो मैं उसको बिल्कुल डेड एंड तक ले जाके छोड़ती हूँ कि भाई दीज आर द प्रूफ एंड बस।
0: नहीं चलिए, वो तो देखिए सही होने में तो चलो आदमी लड़ भी ले, कोई टेंशन नहीं है। सवाल तो मेरे ये, जब आप हार रहे होते हैं तो क्या करते हैं आर्गुमेंट में, तो आप कह रहे हैं कि आप सॉरी कह के निकल जाती है।
1: बहस नहीं करनी चाहिए।
0: अच्छा
1: नहीं, और सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि सामने वाला कैसा है।
0: सामने वाले को छोड़ दो, सामने वाले को छोड़ दो, तो मैं कर जा रहा, तो आप क्या करेंगे।
1: आपके पास अगर जीतने के चांसेस है तो आप जीत लो, और अगर आपको लगता है कि सामने वाला आर्ग्यू आपसे ज्यादा कर सकता है,
0: आप तो निकल लो। सर यार मुझे आज सुबह आपकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है टीचर साहिबा, ना जाने क्यों।
1: क्या मतलब है मेरी बातों पे भरोसा,
0: मैं ऐसा अंदर से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि आप सॉरी कह के चली जाएगी, ये बड़ा क्या फिक्शनल कैरेक्टर लग रहा है मुझे।

0: सोमुल भाई असली आईडी से आइए प्लीज।
1: सॉरी, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती है कहने में।
0: अच्छा,
1: आई अपोलोजाइज, आई से सॉरी, होता है।
0: सुमुल भाई, आज पता कैसा लग रहा है, आज पता कैसा लग रहा है कि आपकी किसी ने फेक आईडी बना के मुझे कॉल करी है। सुमुल भाई असली आईडी से आओ, मजा नहीं आ रहा।
1: नहीं भाई, मैं नहीं हारती, मैं झूठ को भी सच में कर
0: ये,
1: देती
0: हूँ। अब
1: काले कौए को, हाँ। मैं काले कौए को ना कबूतर बना के उड़ा देती हूँ।
0: वेरी नाइस, देखा ये है, अब आ रही है बात, अब होगी पढ़ाई स्कूल के अंदर। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए ये यही यही हमें तलाश थी, अब लग रहा है कि सुमुल बहन असली आईडी से आई है। वेरी गुड।
1: आपके सामने, हाँ, अगर आपके सामने एक कोई डॉग है और अगर लोग, आप उसको साबित करो चीता है ये भाई, उसके ऊपर प्रिंट्स बना दो, चीता प्रिंट, कुत्ते को चीता बना दो, क्या कर सकते हैं?
0: बनाइए, आप कुछ भी कर सकती हैं। आप टीचर हैं, मैं तो कहूंगा आप उसे गिलहरी मान लीजिए, आप उसे कुत्ता भी क्यों मानिए, उसे गिलहरी बोलिए, गिलहरी है।
1: अगर इस बंदे को मैं अपनी हकीकत बताऊं, वो ये यकीन नहीं करता।
0: नहीं नहीं, आप बिल्कुल, जो आप अभी जो रंग अभी निकला है ना अचानक से लास्ट में क्लाइमेक्स की तरफ, तो पिक्चर हिट हो गई, उसे मजा आया। ये सॉरी कह के निकल जाती है, इज नॉट योर टाइप, मजा नहीं आया मेरे को। या
1: मतलब क्या पब्लिक भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है?
0: पब्लिक सोचे ना सोचे, मेरे को मजा नहीं आया, उसमें मसाला नहीं था बहन। वो एक होता नहीं कि 5 नंबर का सवाल था और टीचर ने कहा व्हाट इज दिस चिंटू, 5 मिनट नंबर के सवाल में तुमने क्या बोल दिया। तो अब मजा आया, वेरी गुड, अब पता लगा। हाँ अब मजा आया, अच्छा जवाब था, वेरी नाइस। और आप कुत्ते को चीता मत बनाइए, उसे गिलहरी बनाइए, तब और भी ज्यादा कह रहे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आउटस्टैंडिंग ओवेशन। तो आज टीचर जी टिफिन में क्या है, आज खा के निकलती हैं आप, या व्हाट इज इन योर टिफिन राइट नाउ?
1: यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि लंच का भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आज कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ, इट्स जस्ट वन एप्पल एंड दैट्स इट।
0: मुझे लगा जब आपने बोला ना कि यार टिफिन में टाइम मिलता, मुझे लगा आज ही कहने वाली है, आज मैं ये लेके जा रही हूँ। अरे भैया ये तो जबरदस्ती की डाइटिंग है फिर, ये कोई बात ही, आप तो ले जा सकती हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन कुक।
1: पता है डाइटिंग खुद हो जाती है, हम करना नहीं चाहते।
0: ओके ओके,
1: और मुझे मेरा जो मैं सवाल था ना आपसे, प्लीज कभी उसको भी डिस्कस करिएगा।
0: डन,
1: आई हैव अ लॉट, मतलब मेरे
0: बट इज देयर अ सिविलाइज्ड वे टू डिस्कस इट, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा हमारी टीचर कैसी हूँ,
1: मतलब मुझे छोटे बच्चे इतने पसंद नहीं थे, ठीक है, जब वो एक 8 साल 10 साल पे पहुंचता तो ठीक है, दे आर अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अब यार पता नहीं अल्लाह ताला को मुझसे कौन सा बदला लेना था जो मुझे टीचर बना दिया। आई डोंट लव किड्स, आई हैव एंड आई एम अ टीचर, कैन यू इमेजिन?
0: I can imagine thousands of things, जिसमें से ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। But yeah, I am pretty sure क्या नहीं सही है, your acceptance is good for your own self, मुझे ऐसा लगता है, and it is working fine for you.
1: नहीं मुझसे बदला लिया गया, किस चीज का लिया है वो मुझे,
0: कोई तो बदला ले आपसे, कोई तो बदला ले, कहीं तो जीत हो। हाँ तो वो ठीक है, वो होगी प्यार की जीत, आप पे ही बनी होगी पिक्चर। बट ऑल द बेस्ट फॉर द डे, और कुछ लंच पे टिफिन में ले जाया करें, आप खुद बयां कर रही हैं कि ये होता है वो होता है, टाइम नहीं मिलता, तो आपको खाना पीना ले जाना चाहिए भाई। आई एम प्रीटी श्योर यू कैन,
1: दो बार लंच छूट कर गई और उसको एज इट इज वापस ले आऊं, तो इससे बेहतर है कि नहीं लेके जाऊं।
0: ये कैसी बात हुई यार, ये तो आर्गुमेंट, देखा अब मुझे रंग पता लग रहे हैं, आर्गुमेंट हार रही है तो जबरदस्ती मना रही है कि मैं ही सही हूँ,
1: ठीक है, मतलब कुछ भी।
0: मैं तो ट्रिगर कर रहा था, ये सुबह सुबह मेरा काम है ना। इसी बात के तो पैसे है, ठीक है, डन हो गया बहन, पर मैं सोचता हूँ टॉपिक के बारे में।
1: अच्छा
0: जी, भूला नहीं हूँ मैं, 3-4 दिन पहले की बात।
1: समोसे वाली बात, आप चाय लेकर आए, नहीं सॉरी आप समोसे लाए, मैं तो चाय ले आती बाल्टी भर के।
0: अच्छा तो ये करना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम, करेंगे ठीक है, ओके डन हो गया।
1: हाँ गेट टुगेदर कर लें एक आप,
0: ठीक है, डन लगता है, स्कूल यूनिफॉर्म में मिलता हूँ मेरे बाप से, टाइट भी लगा, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई मेरा सवाल ये था कि अगर आप आर्ग्यूमेंट

0: हारने लगते हैं, आप बहस में हारने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है आपसे करने के लिए, मान लें हार ना माने? तो आप सब लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही है, हार मान लेते हैं, वो आपके सामने भी हार मान, नहीं नहीं वो हार नहीं मानी, इट वॉज काइंड ऑफ सॉरी यू आर राइट, अच्छा आपके लिए रहता है, sorry you're right, a very difficult state to be in I guess, but yeah I get it. Call our way, yeah, assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Oh my god, Mr. Nadeem at 6:26 a.m. this is too early bruh.
1: kya hal hai, dusra kaam se nikla raha tha to isliye jaldi
0: aa. Acha okay, well वैसे ये सवाल जो है नदीम भाई, आप आपके ऊपर जस्ता नहीं है यार, आप बड़ी बड़ी स्वीट सी आवाज है यार, आप कहाँ बहस करते होंगे, बहस होती है आपकी?
1: अरे आपने देखा कहाँ है,
0: अरे क्या बात है यार,
1: भाग जाते हैं जब हम बहस करते हैं.
0: पर नदीम भाई देखो, जब आप आपको लगता है आप बहस हारने लगते हैं, तब आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू?
1: फिर वो एक इमोशनल एंड हो जाता है उसका, कि भाई ठीक है तुम ही सही हो.
0: अच्छा आप सच में मान लेते हैं?
1: मैं हमेशा गलत ही होता हूँ, तुम ही सही हो, ऐसा वाला
0: सीन. अच्छा वो कर देते हैं, हाँ भैया तुम ही सही हो, हाँ ये
1: तुम मेरे को बहस नहीं करनी, तुम ठीक तुम बोल रहे हो ना, ठीक है तुम ही सही हो, मेरे को बहस ही नहीं करनी है.
0: यार बहुत जिद्दी किस्म के बच्चे रहे होंगे. ये तो बड़ा थिएटर करके अपनी बात मनाने वाला तरीका हो गया. मतलब सामने वाले कंफ्यूज हो जाए कि भाई मैं जीता हूँ इस बहस में कि नहीं. क्या बात है यार, बड़े खतरनाक हैं आप अंदर से, ये मुझे लग रहा है वो अंदर कोई चिप दूसरी लगी हुई है. शाबाश. वैसे आई थिंक अभी तो आजकल तो मैंने देखा नहीं गया, लगता भी नहीं मुझे आपकी बहस होती होगी, आई थिंक ये पास्ट की बात है.
1: मतलब अपना देखो गेमर का जो रेज वेट होता है वो तो है ही, तो उस पे टीममेट्स को तो
0: वो तो चलता
1: है, कभी हो जाता है, वो तो चलता है अपना.
0: देखो गेमिंग वाले ही समझ सकते हैं, एक बॉस से अगर आप 10 बार पिट जाते हैं तो आपको गुस्सा तो आता है.
1: गेम का रिप्ले होता है, ठीक है, रिप्ले डाउनलोड होता है, रिप्ले डाउनलोड होके जो मैच हमने आधा घंटा खेली है उस पे एक घंटा डिस्कशन होता है कि देख यहाँ पे तू गलत है.
0: अपनी ही दुनिया है ये, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड भाई, ये जो रिप्ले करते हैं ना ये गेमर सारे के सारे बैठ के रिसर्च एंड एनालिसिस वाली फीलिंग आती है.
1: मैं वहां मरा तो मरा कैसे, देख हाँ. तेरे बाजू में है, तूने कवर कर ही दिया.
0: हाँ आई सीन दिस हैपनिंग, ये मैंने भी दिखा है. ये यूजुअली बहुत सारे गेम्स में लोग करते हैं, और इसलिए पर इससे पता क्या है, सबर भी आ जाता है इंसान में कि ठीक है यार जब हाँ. इनकी बहस झेल ली ऑफिस तो झेल ही लूंगा.
1: मैं बता रहा हूँ लैंका गेम्स जो होते हैं ना हाँ. उसमें समझ लो पिछले 10 गेम माइनस में चले गए.
0: यार ऑनलाइन खेलना पड़ेगा आपके साथ,
1: अलग अलग लोगों के साथ खेल रहा है तो फिर इरिटेट हो जाता. अब देखो रिप्ले में बताऊंगा साला तू खेल नहीं वाला.
0: जब ये रिप्ले होगा तब मैं गलती गिनाऊंगा. अच्छा सबूत के साथ नहीं पढ़ते हैं आप, बेसिकली सबूत चाहिए होते हैं आपको. वेरी नाइस. तो मैं समझ गया आप बहस हार रहे हो तो आप हार नहीं मानते, यू जस्ट गिव इट अ क्लिफ हैंगर.
1: क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कभी भाई कि एक चीज की आवाज आई है ठीक है
0: हाँ.
1: अब मैं तो बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ तो हाँ. मैं एक गेम में नया हूँ उसकी आवाज मेरे को पता नहीं है, मैं एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल
0: हाँ.
1: वो बोलेगा भाई आवाज तो तुमको भी आई. अरे भाई मेरे को वो आवाज पता ही नहीं है वो क्या चीज की है, तो बताओगे तो तू सीधा
0: तुम्हारी गलती है. मैं समझ गया कि आपका सीन क्या है, बहुत आप एक सिक्के के दो पहलू ना भी हो तो आप दूसरा पहलू क्रिएट कर देते.
1: बातें क्रिएट करके उसको बताना है कि देख मैं तो ठीक है मेरे को तो आता ही नहीं है लेकिन तू तो एक्सपीरियंस है ना, तेरी गलती है.
0: वेरी गुड डोरेमोन, वेरी गुड. बहुत चालू चीज है तुम नदीम, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू मेरा भाई. एंड काम हो गया सुबह सुबह जिसके लिए निकले थे?
1: भाई को लेने गया था एयरपोर्ट से, उनको छोड़ के भी आया हूँ, बाकी इसके तो एग्जाम चल रहे, तो आज छुट्टी है, अब कल पेपर है.
0: ओके चिल मेरा भाई. नहीं पता शिप वाली में और भी सुनाना चाहता हूँ, बट वही है कि देखते हैं अभी कोई बढ़िया मसालेदार मिलनी चाहिए, लेके आऊंगा मैं इस बारे में.
1: वो बढ़िया थी, अच्छी.
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत प्यार आपको, और सुनिएगा अभी. ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज. और नदीम भाई के बाद कुछ मैसेजेस हैं, तो मैं कह रहा था कि जब बहस में आप हारने लगते हैं तो क्या करते हैं, बस तो मैंने मुझे मैसेज किया है, वो कह रही है हस्बैंड के साथ तो कभी नहीं मानती, हार तो मैं मान ही नहीं सकती, और दूसरों के साथ तो डायरेक्टली सरेंडर. ओके चलो भैया तुम जीते. वेरी गुड. पर कभी कभार उनको जीतने दिया करें बहन, मतलब भाई साहब को क्या, मतलब एक बार तो बेचारा जीत जाए, खुशी दे दो. एक मैसेज है

0: वीर भाई लेडीज कभी गलत हो ही नहीं सकती, मुजाहिद भाई ने तो सीधा हाथ खड़े कर लिया, हाँ जी सरेंडर है मैडम। एक मैसेज है, माई चिल्ड्रन अहमद एंड फायजा आर गोइंग टू स्कूल, प्लीज विश देम, कबीर भाई। तो अभी अगर फायजा और अहमद सुन रहे हैं मुझे, दोनों को बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, विशिंग देम ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं है ना, मेरे को बता देना। शहजादा सलीम कह रहे हैं, क्या है बैल के आगे बीन बजाने से बेहतर है करने का, आप मेरा सवाल ही नहीं समझे शहजादा सलीम, आप मेरा सवाल ही नहीं समझे बेटे, मेरा सवाल नहीं समझे आप। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, आई इन्वॉल्व द प्रीवियस आर्गुमेंट वेयर आई वन एंड ट्राई टू कंटिन्यू विद द ओल्ड वन। अरे भाई साहब, सैयद ख्वाजा साहब ने मैसेज किया, सैयद ख्वाजा साहब ने बड़ी कमाल की बात करी है, कह रहे हैं देखो अगर मैं बहस में हारने लगता हूँ तो मैं पिछली बार जब किसी बहस में जीता था तो वो वाली बात को आगे लेके आता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। भाई आई लव्ड इट, क्या जवाब दिया है भाई ने। ये सही तरीका, आई थिंक ये जो आपका तरीका है, दिस इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ क्या कहते हैं उसको, जैसे पिक्चर का सीक्वल होता है ना, ये सीक्वल है। आप कोई बोले ये वाली पिक्चर तो बुरी है, बोले नहीं भाई ये इस पिक्चर का सीक्वल है यार, कैसी बातें कर रहे हो, पिक्चर देखी है तुमने पिछली वाली, क्या पिक्चर थी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आर्गुमेंट खत्म करने का सबसे आसान तरीका, हाँ भाई तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, ओके ओके, हाँ भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम ही सही हो भाई। और कह रहे हैं ये कंटिन्यूसली कहते रहना है जब तक सामने वाला चुप ना हो जाए। सुभाष भाई, आई समहाउ फील कि ये बहुत बेस्ट तरीका है, स्पेशली इफ यू आर लूजिंग द आर्ग्यूमेंट। हाँ भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो अभी आए हैं। हाँ बिल्कुल, आप ही तो हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, नहीं, ये रिपीट करते रहना आप, दिस इज लाइक यू कीप ऑन रिपीटिंग, आई थिंक चार पैराग्राफ के बाद सामने वाला हाथ जोड़ के चला जाएगा। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट हार भी गए स्टिल ये आपकी लाइफ लाइन हो सकती है, तबस्सुम बहन कह रही दिस इज अ गुड ट्रिक। कौन सी वाली ट्रिक बहन, अभी वाली या फिर वो पिछला वाला आर्गुमेंट लाके जीतने वाली? सुमोल बन के कह रही है, कभी टुमारो इज माय सन्स बर्थडे तमीम एंड ही इज टर्निंग वन टुमारो, आई विल गिव यू होमवर्क, काइंडली विश हिम इन अ प्रोफेशनल वे। इन अ प्रोफेशनल वे टाई वाई लगा के आ जाऊं मैं सुमोल बहन? विश करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे बहन, कैसे बात करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कबीर भाई? लेडीज तो कभी हार मान नहीं सकती, क्या घर वाले ही घर वाले भी नहीं कभी क्या नहीं सकती लेडीज, क्या लेडीज के घर वाले भी कभी हार नहीं मानते। मुदस्सिर भाई जो है खाए हुए हैं। कह रहे लेडीज तो वैसे भी हार नहीं मानती, अरे वो छोड़िए उनके घर वाले भी नहीं हार मानते। मुदस्सिर भाई बहुत ज्यादा, मुदस्सिर भाई मैं आपको जो है ना मेरे बस चले में आपको पहाड़ पे जाने का टिकट दूं, आप अकेले वहां पे एक छोटा सा कैबिन में रहें भाई, बहुत ज़रूरी है ये। मुझे लग रहा है भाई को बहुत सताया गया है इस दुनिया में। एक मैसेज है, देयर इज़ अ स्पीशीज इन द वर्ल्ड दैट विंस आर्ग्यूमेंट्स बाय क्राइंग व्हेन दे लूज, आई फॉल साइलेंट एंड पुट एन एंड टू द आर्ग्यूमेंट। ये तो अलग आपने सवाल का मेरा इंटरप्रिटेशन ले लिया, बात वो नहीं है, बात वो दूसरी इसकी हो नहीं रही। मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ आज, सवाल ये नहीं कि कौन नहीं हारता, मेरा सवाल नहीं समझे आप, सवाल यह है कि जब आप आर्ग्यूमेंट हारने लगते हैं तो आप क्या करते हैं। देखिए कुछ लोग तो सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ यार ठीक है मैं गलत था, ये बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो हार मानूंगा ही नहीं। और फिर एक भाई ने जैसे बताया, साफ सीधी बात है, बोलने लग जाओ लगातार, हाँ भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हाँ हम तो आज ही आए भाई, हमें थोड़ी बताया तुम्हें बताया भाई। एंड दिस वर्क्स, मैंने करके भी दिखाया। एक मैसेज है, नदीमा का कह रहे हैं, वैसे कबीर भाई सुनो भाई तारीफ हो रही है, सारे रुक जाओ, क्या कह रहे हैं नदीमा, वैसे कबीर भाई आजकल इतने हैंडसम लग रहे हैं, सर अभी अकेले फोटो नहीं लेने दे रही है। ए बॉय, ये मेरे लिए लेट्स गो। यार नदी भाई, यार शर्मा गया यार नदी भाई, आज ब्लश करवा दिया भाई ने, भाई कह रहे आजकल हैंडसम लग रहे हैं भाई, कल मैंने स्टोरी डाली भाई एकदम जाट बॉयज वाली। और भाई ने तारीफ कर दिया यार, थैंक यू सो मच, देखा लड़के आपस में ऐसे तारीफ कर देते हैं कभी कभी अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच भाई, कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर आज। एक मैसेज है, चुप करके साइड पे हो जाते हैं, मोहसिन भाई कह रहे हैं अगर मैं आर्ग्यूमेंट हारने लगता हूँ तो मैं बिल्कुल चुप होकर साइड में बैठ जाता हूँ, विच इज़
1: very rare.

यार भाई मोहसिन भाई ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, आप बड़े यार बड़े सीधे टाइप के आदमी हो यार, ऐसा तो मैं कर नहीं पाऊंगा कभी। एक मैसेज है, हाँ भाई इसमें तो हम भी हार मान लेते हैं, अगर गलती होती है तो हमसे तो गलती मान लेते हैं, अब मान लेते हैं मुदस्सिर भाई। अच्छा ओके, मुदस्सिर भाई कह रहे देखो आर्ग्यूमेंट में अगर मैं हार रहा हूँ मुझे लगता है मेरी गलती है तो मैं मान लूंगा। वेरी नाइस, कितने शरीफ शरीफ क्यूटी पटूटी लोग हैं सुबह सुबह माशाल्लाह। एक दो ये हैं जो बहुत तेज

वेरी गुड आइडिया, ये अपनाने वाला आइडिया आई थिंक, ये तो अच्छा आइडिया अब अहमद भाई, आई विल ट्राई टू यूज इट। ये नुस्खा अगर काम कर गया तो बढ़िया है, ये मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। मुझे लगता है इसमें आदमी पकड़ा जाता है, ये चोरी पकड़ी जाती है, इसके लिए थोड़ा थिएटर ज़्यादा करना पड़ेगा ना, बिकॉज हैव वो ठीक है। अब अहमद भाई आज मैं ट्राई करता हूँ ये, पर मुझे उसके लिए किसी से बहस करनी पड़ेगी, आज कोई पकड़ना पड़ेगा बहस करने के लिए। ठीक है, आई विल ट्राई टू यूज़ दिस टुडे। एक मैसेज आया है, जब मुझे पता है कि मैं हारने लगी हूँ सो आई क्राई। ये इसरा बहन है हमारी, उन्होंने मैसेज किया है। बहन ये तो आपने सीधा शॉटगन निकाली और लोड कर दी। हाँ भाई क्या कह रहे थे? क्या बात है, सीधा अगर हारने लगती हैं तो कह रही हैं मैं तो रो जाती हूँ। बात ही ख़त्म कर दी बहन ने, बात ही, मतलब ये कोई कॉमा वॉमा नहीं है भाई, ये फुल स्टॉप भी नहीं है, ये वैसा है कि पेज ही ख़त्म हो गए लिखते लिखते, आप क्या करोगे? समझ गया बहन में, बट ये आपको नहीं लगता बहुत ही हम कहते हैं ना हिंदी में बहुत घातक तरीका है, ये सीधा लास्ट वेपन निकाल लिया है आपने, इससे थोड़ा कम नहीं हो सकता मतलब? इसके अलावा थोड़ा लाइटर वर्जन सामने वाले को थोड़ा एक चांस देने का, या सीधा यही आर्ग्यूमेंट हारने पे, ये मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा, क्वाइट क्यूरियस टू नो। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, क्या हाल है? मुझे लगता है घर पे जो जो मुश्किलात आपको आती है आप उस पर सवाल बना के लाते हो सुबह सुबह, ताकि अगली दफ़ा कायदे से बच। भाई मैं बहुत तेज़ हूँ, ये सारे सवालों की मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सैयद अली हैदर शाह साहब, जानते नहीं भाई मुझे आप, आपका भाई बातों में हुसैन बोल्ट है भाई, क्या समझ रहे हो? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, पहले तो मैं आर्ग्यूमेंट पढ़ने की कोशिश नहीं करता, कह रहा पहली बात तो बहस करने की कोशिश करता नहीं, और पढ़ भी गया तो हार मान लेता हूँ ये सोच के कि अगर उसका कौवा सफ़ेद है तो रहने देते हैं। बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया था, लव्ड इट भाई, लव्ड इट। ये हनीफ भाई फ्रॉम कानपुर, एकदम प्रॉपर भाई ने यूपी वाला टिपिकल कानपुर वाला रिप्लाई किया भाई, आई लव्ड इट। ये वाइब चाहिए थी मुझे, ये वाइब मिसिंग थी भाई यूपी वाली। कह रहे भाई मैं अगर आर्ग्यूमेंट हारता हूँ तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा कौवा काले नहीं सफ़ेद होगा, बिल्कुल है भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं आज तक काला कौवा। सफ़ेद ही देखा है भाई, आप सही कह रहे हैं। अनिल भाई यार लव यू भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, मज़ा आ गया। और इसरा बहन कह रही है कि गर्ल्स बेस्ट वेपन, थोड़ा सा रोध हो, लोग देख के चुप हो जाते हैं। बहन ये सीधा आपने लास्ट वेपन निकाल लिया, बहन कह रही है देखो सबसे बढ़िया वेपन है, थोड़ा सा सिसकियां भर दो, बस बहस ख़त्म। अब बोल। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कबीर भाई का, क्या बम्बई वाला दादर का भाई, हाई लिखते तारीफ और खुदा की जिसने जहाँ बनाए। अरे यार मेरा भाई यार कहाँ जा, चलो पढ़ दे, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया काला, बनाकर तुझको गोरा मुझे बनाया। मैं यार मेरे पास कुछ अपने सर में मारने के लिए है नहीं मेरा भाई, मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो फंस गया हूँ। आपसे आर्ग्यूमेंट डाल गया भाई मैं आपका, मैं समझ गया भाई, भाई कल कौवा जो है वो सफ़ेदी है भाई। आई एम सॉरी। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, खैरियत से? आर्ग्यूमेंट हारने पे रोना लेडीज़ का इंटरनेशनल लॉ है भाई, एंड आई कम्प्लीटली गेट इट ख्वाजा साहब, आप भी सताए हुए हैं। एक मैसेज आया, भाई अगर कोई कहीं सिग्नल पे ब्लू लाइट भी होती है तो बिल्कुल सही बात है, आर्ग्यूमेंट का सीधा है भाई, हम तो अभी पैदा हुए हैं, बस बिल्कुल अभी ये सुबह के 5 बजे और किलकारी उठी। लेकिन वकासा जब आप हारने लगते हैं तो क्या करते हैं आप आर्ग्यूमेंट पे, लाइक डू यू इंडल्ज इन वर्बल वायलेंस या फिर नहीं? ये मैसेज क्या है मुझे, अस्सलाम वालेकुम बब्बर जी, मेरा भाई बहुत सारा प्यार जासिम भाई को, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। एक मैसेज, अस्सलाम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको डेली संदा पर मैसेज नहीं करता परवेज भाई, ये तो बहुत गलत बात है भाई, आप पे तो मुखालफा लगना चाहिए, मतलब भाई 250 रियाल भर देना टाइम से, डिस्काउंट है नहीं, 10 रियाल का डिस्काउंट है, टाइम भी भर दिया सब। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं अगर मैं बहस हारने लगता हूँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, अगर मैं बहस में हारने लगता हूँ तो मैं सीधा मुंह फेर के चला जाता हूँ, जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। ये बहुत ढीठ लगते हैं इन लोगों से, इतनी

0: छूटती है ना मुझे, इतनी चिड़ छूटती है। ये वही लोग है भाई। भाई आपकी पता है आपकी बातों ने मुझे ना चिढ़ा दिया, जबकि आपने कुछ कहा नहीं है ऐसा मुझसे, ना हमारी बहस हुई, मतलब अंदर से चिढ़ गया मैं। बहुत बढ़िया भाई, भाई इनके लिए तो भाई बनता है। यार बहुत डेंजर आदमी यार ये हमसा भाई का मैसेज है, कह रहे जब बहस में हार रहा होता ना वहां से मुंह फेर के चले जाता हूँ, पीछे वाला बोलता रहे, इतनी चिड़ छूटती है आपको ऐसे जाता है। हमसा भाई आप बहुत अच्छे हो भाई। एक कॉल आ रही है उनको। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जी भाई आपका नाम?
2: हेलो।
0: अरे अरे हाउ आर यू, क्या चल रहा है भाई?
2: अच्छा
0: तो जरा पब्लिक
2: तो अभी क्या है?
0: क्या क्या क्या
2: अभी क्या है? मैं बोलूंगा।
0: तुम बोलोगे? अच्छा ये बताओ आर्ग्यूमेंट में कभी तुम्हारी किसी से बहस होती है कभी स्कूल में? आर्ग्यूमेंट होता है किसी से आपस में दोस्ती में?
2: होता है आर्ग्यूमेंट।
0: तो अगर इफ यू आर लूजिंग द आर्ग्यूमेंट तब क्या करते हो? अगर तुम हारने लगते हो बहस करते
2: बहस नहीं करते लेकिन जब तक घुटता रहता जब तक घर नहीं जाता मैंने।
0: अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: उसका दिल अंदर से बोलता है ये कहीं क्या देख रहा है, जब से ब्रेक हुआ जब से देख रहा है भाई ये क्या हो रहा है।
0: क्या बात है, हो रहा है मेरे भाई का, मेरे छोटे भाई का हो रहा है भाई, क्या बात है क्या बात है, बहुत सही। तो घूरने लगते हो तुम सीधा आर्ग्यूमेंट हारने पे? घूरने लगते हो तुम, स्टेयर दे देते हो उसको सीधा, घूरते हो बैठ के? वेरी गुड यार, तो ये काम कर जाती है चीज।
2: उसके बाद जब स्कूल आ जाता तो आके सॉरी मांगता मुझे।
0: क्या बात है यार, तालियां। तो वो आके सॉरी बोल देता है? वेरी गुड, ये मैं ट्राई करूंगा, मुझे पता नहीं अभी काम करेगा नहीं करेगा, पर ये अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
2: बच्चा नहीं, मैं
0: बच्चा नहीं,
2: दिल का सच्चा भी हूँ।
0: यार तुम्हारे लिए और उठर भाई। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो बच्चे दिल के सच्चे, एक बात बताओ क्या आज स्कूल में क्या खास होने वाला है, कुछ है आज खास है?
2: आज खेलने का दिन है,
0: आज खेलने का दिन है,
2: मंडे और थर्सडे खेलने का दिन रहता हम लोग का।
0: क्या बात है, आज तो पढ़ाई से छुट्टी मिल गई, शानदार। तो क्या खेलोगे आज जाके?
2: पूरा लेसन नहीं, एक लेसन खाली।
0: एक लेसन है आज, पढ़ाई का मूड भी नहीं है ना तुम्हारा, सच बताना आज पढ़ने का मूड नहीं है ना?
2: नहीं
0: ठीक
2: है।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छे हैं। तुम्हारा भी आज खेलने का दिन है?
2: हाँ, सेम क्लास में।
0: अरे माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है। सो आज एंजॉय योर डे, अच्छे से खेलो, और रिजल्ट कब आ रहे हैं तुम दोनों के जरा बताओ?
2: 8 तारीख
0: को। रिजल्ट के लिए, रिजल्ट वाले दिन देखो, रिजल्ट जब आए तो मुझे बताना जरूर, मैं कॉल करूंगा उस दिन। ठीक है डन, चलो ऑल द बेस्ट फॉर द डे, बहुत सारा प्यार दोनों को, थैंक यू
2: थैंक यू,
0: ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो ये दोनों बच्चे मेरे शो के वाइल्ड एंट्री है इनकी, और ये दोनों बहुत बढ़िया है भाई। पता है मुझे ये दोनों बच्चे शो में मिले भी इसलिए क्योंकि इनकी मेरी वाइब मैच होती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जैसे मेरा बचपन का सीन है ना वैसे इसका है। बढ़िया है ये, एकदम अलग ही वाइब है इसकी। एक कॉल आ रही, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत से
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप बताएं क्या हाल है भाई? ये एकदम कर रहे जवाब दिए, बोला मैं सिर्फ बच्चा नहीं हूँ, मन का सच्चा भी हूँ।
3: तो घूरना भाई, बच्चे का घूरना तो सबसे अलग है।
0: ये कितना अच्छा रिप्लाई दिया, हाँ कह रहा मैं आर्ग्यूमेंट हार जाऊंगा तो घूर दूंगा, मैं स्कूल के बाद खुद आके सॉरी बोलेगा भाई, टोरा है भाई का। ये तो बहुत सही है,
3: मतलब कि खामोश रह के दीदी इतनी हाइप बना देता है ना कि दूसरा सामने वाला डर जाता है कि भाई जाके सॉरी बोल दो।
0: ये

0: खामोशी मेरा जवाब है, उस टाइप का सीन था ये इनके साथ। पर जैसे भाई आप क्या करते हैं अगर आर्गुमेंट हारने लगते हैं, आप बहस में हारने लगते हैं तो क्या करते हैं आप?
1: भाई अपना भी वही सीन हैगा, जब देख लिया गया हाँ यहाँ पे कोई चांस नहीं है ना जीतने का, वहां से निकल लेते हैं चुपचाप।
0: अच्छा तो मतलब आप वहीं से निकल जाते हैं? यार बहुत चिड़ छूटती है मुझे ऐसे लोगों से, बात नहीं करते निकल जाते
1: हैं। कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आर्गुमेंट जितना आगे बढ़ाओगे वो बढ़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा। और जब हारने लगा ना बस चुपचाप निकल लो भाई, साहब दूसरे वाले को भी जो है ना वो सोचता रहेगा गया तो गया क्यों।
0: पता क्या है वो जो ना, अगर अगर बहस में हारने के बाद आप अगर वॉकआउट कर जाते हो ना तो बहस जीतने वाले को मजा नहीं आता, वो जीत का मजा चला जाता।
1: वही चीज तो रहती है ना, उससे जो है ना अंदर से जो है ना परेशानी होने लगती है।
0: हाँ, मैं समझ रहा हूँ।
1: हाँ। जीता भी नहीं और ये गया क्यों?
0: हाँ ये गया कैसे यार, मेरे को फील क्यों नहीं आ रही जीतने की, ये क्या है ये?
1: यार मैं तो भाई मैं तो जो है ना अगर अपनी बीवी के साथ में ना आर्गुमेंट होने लगता है ना,
0: हाँ।
1: देखता रहूंगा बोलती रहेगी, मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं फोन काट दूंगा। अब फोन करती रहेगी, फोन क्यों नहीं उठा रहा
0: भाई,
1: करेगी फोन क्यों नहीं उठा रहा, फोन उठाओ पहले तो।
0: ये रिस्क लेते हैं आप, अभी भी लेते हैं आप ये रिस्क?
1: अरे बिल्कुल भाई साहब,
0: यार आपको तो सलाम है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है भाई। ये बाकी लोग सुन रहे हैं जयस भाई क्या कर रहे हैं, कर पाएंगे आप ये तो? आप भाई ये तो टास्क होना चाहिए खतरों के खिलाड़ी में, ये कर कैसे रहे हैं आप, इतनी हिम्मत
1: है? मैं फोन भी नहीं करता हूँ ना, वो मैसेज करती रहेंगी भाई साहब का फोन उठा लो चुपचाप जल्दी से, मैंने कहा ना अभी नहीं काम में हूँ बाद में बात करेंगे।
0: यार मैंने मौत के कुएं में गाड़ी चलती हुई देखी है आज मैंने, मतलब ये कुछ और ही है ये बातों की, कैसे किया आपने
1: भाई? सीरियसली बताऊं ना, धमकी मिलेगा कि तुम आओ तो जरा वापस, तब पता चलेगा।
0: यार सलूट है भाई, यार आग से खेल रहे हैं आप, क्या बात है यार। आज आपके लिए पता क्या हो गया, आज आपके लिए इज्जत और डर आपके लिए दोनों एक साथ लग रहा है मुझे, समझ रहे हैं आप?
1: मुझे भी लगता है
0: सही है। तो ऑल द बेस्ट भाई, जब आप जाएंगे देश वापस तो वहां से जरूर कॉल कीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ आपकी कांपती आवाज कैसी साउंड करती है, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है जयस भाई,
1: देखो क्या होता है, अल्लाह
0: मालिक है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप हरकतें कर रहे हैं बहुत कुछ की उम्मीद है मुझे, देखते हैं क्या सार निकल के आता है।
1: और ज्यादा गुस्सा दिला देता हूँ ना इस चीज पे आने के बाद, मैंने जब मैं फोन कट कर देता हूँ ना, कहता हूँ बाद में बात करूंगा, तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है।
0: किसे, उन्हें आपको?
1: नहीं मुझे क्यों आएगा, मुझे तो भाई साहब तो थोड़ी बहुत जरा चेहरे से स्माइल आ जाती है उधर गुस्सा।
0: तो भाई आप तेल देसी घी सब आग में डाल क्यों रहे हैं, मतलब मजा आता है आपको, ये किक मिलती है अलग से कुछ? भैया यार मुझे नहीं लगता था कि अभी भी लोग सर्कस में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या बात है यार, आग के बीच में से कूद रहे हैं आप, देखा आपने कूदते, वेरी गुड यार। जयस भाई
1: जब लड़ाई होने के बाद में ना कबीर भाई जब शाम वाम को फोन करता हूँ ना
0: जी,
1: थोड़ी देर खामोश रहेंगे, बाद में जो ना इधर उधर की बातें करके दो चार जोक मार के मामला नॉर्मल हो जाता है, मगर डर जो है ना वो डर अंदर बना रहता है भाई सर।
0: आपकी इस ट्रिक के नीचे लिखा हुआ चाहिए डोंट ट्राई दिस एट होम भाई, जितनी भी लोग सुन रहे डू नॉट ट्राई दिस एट होम, अपना अपना रिस्क है भाई। जयस भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बताया हमें, अब मुझे आपके लिए बहुत फिक्र रहेगी, डेली कॉल करना, जब कॉल नहीं आएगी तो मुझे टेंशन होगी आपके लिए, ठीक है?
1: नहीं और बताऊंगा मैं बाद में ना, दोपहर को शो के बाद में तुम्हें बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो।
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल, बताते रहना भाई, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी, कॉल करते रहियो।
1: यार क्या है ना, डर किस लिए लगता है ना वो मुझे बताऊंगा, आपको किस लिए डर लगता है
0: प्लीज बताना भाई, मुझे तो ऑलरेडी डर लग रहा है।
1: क्या कह रहे थे? कह रहा है भाई साहब ये पूछ लेना क्यों भाई साहब थोड़ा थोड़ा करके दिल खा रहे हो, एक बार में क्यों नहीं खा लेते?
0: थोड़ा थोड़ा करके दिल खा रहे हो ये क्या, नहीं जी छोड़े, ये आदमी इंटरप्रिटेशन नहीं देता है एकदम, ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिना सबटाइटल के कोरियन पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या बात है?
1: भाई बोले यार परेशान कर रखा है, थोड़ा थोड़ा करके दिल खा रहा है, अरे एक बार में क्यों नहीं खा लेते?
0: मैं बताता
1: हूं, खाएंगे टेंशन मतलब अभी पहले थोड़ा थोड़ा करके खाने,
0: आज आज इसका जवाब आ रहा है, आज इसका जवाब मिलेगा, डन मिलेगा, पक्का मिलेगा
1: जवाब, बताना जरूर।
0: डन डन मेरा भाई, ख्याल रखिये।
1: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जयस भाई के बाद कुछ मैसेजेस हैं, क्योंकि मैं ये बात दोहरा दूं एक बार ही, मैं कह रहा था जब आप बहस में हारने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? भाई तो रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़े बड़े। वकास भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा दोस्तों, तो दो तीन दिन बातें और

0: चमाटे और बाकी सबके लिए सीधा आप ठीक है बस भाई ठीक है हम हाँ नहीं हमें अगर नहीं है आप बहुत समझदार चल रहे हैं। एक कॉल आ रही, ये कहाँ से आ रही है भाई कॉल, एक सेकंड रुको कॉल उठा लें। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर।
0: जी सर क्या नाम है आपका?
1: मैं जुल्फिकार बोल रहा हूँ बहरीन से सर।
0: अरे क्या बात है सीधा बहरीन से कॉल आ रही है हमें, यार कितने बड़े लोग हैं हम माशाल्लाह। जी बताइए बहरीन में क्या हाल है मौसम के?
1: बस बस बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही है बस कतर के सेम ही रहता है थोड़ा 19-20।
0: अच्छा ठीक है बताइए जुल्फिकार क्या कहना चाहते हैं सब, जुल्फी बोलेंगे हम आपको प्यार से बताइए।
1: ये टॉपिक था आपका आर्ग्यूमेंट वाला जो।
0: हाँ मैं ये कह रहा था जब आप बहस में हारने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, आप भाग जाते हैं या आप अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं या फिर चुप हो जाते हैं, व्हाट डू यू डू?
1: मैं तो आर्ग्यूमेंट करते करते जब हारने लगता हूँ तो मैं तो निकल जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ के बारे में बताता हूँ आपको।
0: बताइए बताइए।
1: तो मेरी वाइफ जो है जब हारने लगती है तो हाँ मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, बस मैं खाना बनाऊँ ये करूँ वो करूँ बस गिनाने लगती है जो है।
0: तो फिर आप क्या करते हैं?
1: तो भी समझ जाओ भैया जो है मुश्किल होने वाला है, तो निकल लो उधर से जो है।
0: ये सब इतना आग से खेल क्यों रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, सीधा हार मान लिया करो भाई क्यों?
1: ये जो है बस ये वाइफ लोगों का यही है ज्यादा करके मैंने देखा है, बस हाँ हम मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे खाना बनाऊ तुम्हारे बच्चों को देखूँ और ये करूँ।
0: ये पिक्चर वाला डायलॉग होता है ना वो आप पे फिट बैठता है, मौत से डर नहीं लगता क्या तेरे को?
1: जी जी जी
0: सर कमाल कर दिया। बट थैंक यू सो मच कि आपने बहरीन से कॉल करी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अभी कैच हो जाता मतलब पूरी क्लियर सुनाई देता है वहाँ पे बहरीन की तरफ?
1: हाँ हाँ सर, मतलब कुछ एरियो में जो है मतलब नहीं आती है सिग्नल बराबर।
0: ओके
1: नहीं तो ज्यादा करके सही रहता है।
0: अच्छा ओके, नहीं पर थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी दूर से कॉल आई है, बहुत सारा प्यार आपको और ऐसे सुनते रहिएगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच, ओके टेक केयर,
1: ओके जी अल्लाह
0: हाफिज। भाई देख रहे हैं आपका भाई जो है फुल इंटरनेशनल हुआ पड़ा है, क्या कह रहे हैं इतने पैसे का क्या कीजिएगा। एक कॉल और आ रही है, रुको भाई कॉल उठा लेते। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम कबीर आमिर भाई। अरे एकदम ठीक हो आप, बताइए क्या हाल है?
2: मैं बस गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने बता अपनी बगैर बात देखी
0: है। आज मुझे लग रहा है विमलेश भाई बहस हारे हैं क्या? विमलेश भाई क्या करते हो बहस में हारते हो तो?
2: देखो डिपेंड करता है कि आप बहस किससे कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़।
0: ओके डिपेंड करता है, तो फिर दो सिनारियोज ले लेते हैं, एक है जनरल जनता से बहस जो कोई भी हो सकता है और एक जो है भाभी से बहस, दोनों का सिनारियो आपको दे दिया मैंने।
2: देखो जनरल जनता में जो है दो एक बी बी जो लेटर है ना बी बी है ना
0: हाँ।
2: एक है बॉस और एक बीवी
0: हाँ।
2: इन दिनों जो जितने जल्दी जो है पीछे हट जाओ अपने बेहतरी होगी कि आप निकल लो।
0: अच्छा
2: ठीक है ना, यही मतलब। और ये कब सीखा मैंने, जब जिंदगी की वाट लगी ना
0: हाँ।
2: लगा यार बहस करने से ना
0: हाँ।
2: एंड द डे वाट जो है आज कल परसों या लॉन्ग मतलब लंबे समय तक लग जाए आपकी वाट, इससे अच्छा कि चुप रहे लोग कुछ जगहों पर,
0: सही मौके पे सही मौके पे चुप रहना बेहतर है। ओके
2: हाँ बिल्कुल। और ये मुझे लगता है ना अगर आप ये आर्ट सीख गए ना दुनिया में
0: हाँ।
2: ठीक है कि चुप रहना कैसे कैसे चुप रहना इग्नोर। और मैं अब पहले ऐसे नहीं करता था, मुझे लगता था मेरा ईगो सामने आता है, नहीं मुझे तो जीतना है, मैं सब कुछ जानता हूँ दुनिया का, मैं इसको हरा सकता हूँ, ऐसे दिमाग में होता था ठीक है और बॉस के सामने भी ये होता नहीं नहीं मुझे पता है मैं तो बता के मानूंगा। फिर अब मैं कैलकुलेट दिमाग में ना वो एक कैलकुलेशन करने लगता हूँ क्या ऐसा बोलने से मेरा फायदा होगा या मुझे कुछ समझ आएगा, कुछ लर्निंग होगी क्या मेरे जिंदगी की। तो अगर चौथा पॉइंट आता कि मेरी वॉट लगने वाली है तो फिर मैं दो कदम पीछे हट जाता, हाँ मैं नहीं मन में कहता हाँ मैं ही गलत हूँ, हाँ ठीक है ओके थैंक यू।
0: तो
2: ये वाला कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ।
0: ये आपने एक तो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ा है आई थिंक, मुझे आज लगता है जो लोग सोच रहे होंगे यार बात तो सही कह रहा है ये बंदा, मुझे चुप हो जाना चाहिए।
2: बिल्कुल भाई हाँ। और आप उस मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिसनर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि मतलब आप उस मौके का इंतजार मत करो जब आपकी बहस की वजह से ना आपकी जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाए, ना ना ना ना ना ना ना ये गलती नहीं करने का,
0: वेट नहीं करने का
2: हाँ, मतलब कुछ सीखने के लिए ना मतलब वॉट नहीं लगवाना जिंदगी का, अभी सीख जाओ ठीक है ना, बस यही दिमाग में रखो कि बहस से अपना कुछ फायदा हो रहा है, नया सीखने को मिल रहा है या अपनी जिंदगी की वॉट लगने वाले। तीसरा पॉइंट आया भाग जाओ, हाँ जी मैं गलत हूँ।
0: और भागने से याद आया आपके लिए मैसेज आया माज भाई।

0: क्या वो कह रहे हैं विमलेश को सलाम नमस्ते और विमलेश से कहो दावत पेंडिंग है। विमलेश भाई क्या बोलना है इनको?
1: बिल्कुल कह दो भाई, हम दावत के लिए रेडी है, बढ़िया मौसम का इंतजार कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, तो पूरी एकदम ग्रुप वाली पार्टी की जाएगी।
0: तो माज भाई आपको मना कर रहे हैं, कह रहे हैं दावत तो मिलेगी नहीं माज, पर हटो। ठीक है, मैंने आपका मैसेज दे दिया। हाँ
1: बिल्कुल, और एक बात और कह देता हूँ
0: प्लीज,
1: और अगर जैसा ऐसा कहीं हो रहा है कि नहीं आपको, मतलब आपको लग रहा है जैसे मैं करता हूँ,
0: हाँ,
1: कि नहीं मुझे पता है कोई चीज परफेक्टली, वो बॉस और बीवी को छोड़ के,
0: हाँ,
1: मुझे पता है कि वो पता है मैं जीत सकता हूँ, तब मैं बहस से पीछे नहीं हटता हूँ।
0: अच्छा, मतलब
1: मैं चढ़ता हूँ।
0: क्या बात है, ऐसा होता है 10 में से कितनी बार 10 में से कितनी मरतबा ऐसा होता होगा? एक बार
1: बॉस और बीवी के सामने तो आप वो हो, ना आप नहीं जीत सकते, और अगर आप, आपको लग रहा है कि आप जीत गए, आप धोखे में जी रहे हो।
0: ये गफलत भी अच्छी है।
1: हाँ, तो बॉस कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है।
0: सताए हुए हैं, सताए हुए, समझ गया मैं, समझ गया।
1: नहीं नहीं, ये सब बात भी कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ने का, लिसनर का ना मेरा ना तुम्हारा, सारी सुधा लोगों को क्यों वो कहना, तुम थे रो भाई एकदम बब्बर थे एकदम दावड़, तो
0: हिम्मत नहीं हारनी है, मकसद नहीं भूलना है विमलेश, ठीक है?
1: वही वाला है ना कि क्या बोलते हैं, डायलॉग करेंगे, मर्द को दर्द नहीं होता है, बता नहीं रहे।
0: वेरी गुड, शाबाश विमलेश भाई, ऑल द बेस्ट टू यू मेरे भाई। हाँ,
1: और अच्छा है कि तुम हो अभी आरजे, मतलब अगर कोई लेडीज होती तो लोग नहीं कॉल नहीं करते, इस बात को नहीं बताते।
0: हाँ, जब भी दर्द बाहर, अभी दर्द बाहर निकला ना इसलिए।
1: हाँ,
0: मुझे पता है ना। ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए विमलेश भाई, सी यू मैन, सी यू। और विमलेश भाई के बाद मैं सबसे पहले मैसेज लूंगा, क्योंकि मैसेज बहुत सारे इकट्ठे हो गए। नहीं, एक मैसेज आया, मैं जब आर्ग्यूमेंट आने लगता हूँ तो बोलता हूँ चल भाई तो ही सही है भाई, और कह रहे हैं सरकैज, आई मेक श्योर कि सरकैजम लगे भाई, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, जब आप भैंस आने लगें तो आपको ना ऐसे दिखाना है, परवेज भाई कह रहे हैं कि लगे सामने वाले को कि यार ये सरकैजम में बोल रहा है कि सही बोल रहा है। परवेज भाई बहुत तेज़ है यार, मैं तो शरीफ समझ रहा था आपको। एक मैसेज आया, माय डायलॉग व्हेन लूजिंग इन आर्ग्यूमेंट, जो समझना है समझो, आई अग्री विद यू, ये बचपने वाला वो नहीं होता, वो ये कासिम भाई कह रहे हैं, जो कहता है ना वही होता है, ठीक है, जॉन सा है ना वो उनसा ही है। बढ़िया भाई बढ़िया, मैं समझ गया, ये बचपने वाला ही है, जो कहता है ना वही होता है, ठीक है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आर्ग्यूमेंट हारने लगी तो आर्ग्यूमेंट दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाओ, पर हार मत मानो, दूसरा तंग होकर चुप हो जाएगा, ये आतिफ भाई का नुस्खा है, पर भाई डिजर्विंग, वेल डिजर्विंग भाई। आतिफ भाई कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट अगर हारने लगो ना तो सीधा आर्ग्यूमेंट को रीस्टार्ट कर दो, जैसे है ना वो कंप्यूटर के साथ हो ना, नहीं चल रहा तो आपने बीच में पीछे से थपथपाया और रीस्टार्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी की तरह है ये भी सिस्टम। टीवी का रिमोट नहीं चल रहा, पटक दिया रीस्टार्ट हो गया, तो ये वो वाला सीन बता रहे हैं आतिफ भाई। बहुत आगे की सोचते हैं, बस सही सोच रहे हैं। जब भी मैंने कहा ना वेल डिजर्विंग हूटर, इशादुल्ला यूसुफ जही साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं जब हारने लगता हूँ तो चुपके से बड़बड़ाता हूँ, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि क्या बोल रहा है, तेज बोलना, जवाब दे दो, फिर मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। इससे पता क्या होता है, जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आई कैन रिलेट टू इट, इससे क्या होता है सामने वाले की नज़र में ना एक ऑरा बनता है, भाई क्या क्या पड़ रहा है कोने में, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, अरे क्या बात है। बहुत आगे की चीज़ है भाई, सुबह सुबह पब्लिक बहुत डेंजर हो रही है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे होते हैं बच्चे, खतरनाक होते हैं बच्चे, क्या है, अरे प्यारा बच्चा था बहन, अफसा बहन, वो तो बहुत प्यारा था, लेकिन आपने डीपी बहुत बड़े लगाई है बहन, कंप्लीटली एग्री। एक मैसेज है ताहिर भाई का, लिखते हैं डिपेंड्स हु द अदर पर्सन इज, बेगम के सामने तो आप दिन कहें दिन है, रात कहें रात है, आप दिन को रात कहें तो भी ठीक है, बाकियों से क्यों हारें हम भला, सही बात है, कहीं कहीं तो जीते ताहिर भाई, कहीं तो जीते। एक मैसेज है, मेरी वाइफ आर्ग्यूमेंट हारने के बाद रोती रहती है। ये बड़ा कैजुअली कह गया, अरे रोती रहती है हार के आर्ग्यूमेंट, अपना बताओ हैं, भाभी के बारे में दादी अपना बताओ। एक मैसेज है, जब ही जो अभी कह रहे थे कि बच्चों को तुम्हारा है? दिल कर रहा है आज खेलने का, तो वर्ड तुम की जगह आप यूज किया करो, क्यों बच्चों से ही अरे यार जाओ यार लेक्चर देना शुरू कर देते हैं पहले। भाई रहन दो यासिर भाई, अल्लाह हाफिज। एक मैसेज है भाई जैस भाई जिंदाबाद, तला भाई फ्रॉम लखौर। आर्ग्यूमेंट तो बेगम से ही होता है, खूब रीजनिंग होती है बट आखिर में सॉरी बोलना पड़ता है, तो सॉरी कहने की आदत हो चुकी है। एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई विनेशियर, इफ़ आई थिंक इफ़ आई एम लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट आई विल रादर चेंज द टॉपिक वाइजली और विल अप्रिशिएट। क्या बात है, ये भी अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू ब्रो। घड़ी में हो गए 7:02 और आप भी 7:02 ऑन दैट नोट।

0: FM 107. Time check.
1: सात दो वाली लाइन तुम्हारी हो चुकी है क्योंकि आप साथ साथ दे भी रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 7:00 ऑलमोस्ट 4 मिनट बाद क्लॉक में दोहा वाला कबीर एफएम 107 में। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं दोहरा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब आप आर्ग्यूमेंट हारने लगते हैं, जब आपको लगता है भाई ये तो क्या हो गया, आप क्या करें, आप किसी से बहस कर रहे हैं और आपकी हार हो रही है और आपका दिल तो कह रहा है यार बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में करते क्या है, क्या आप हार मान लेते हैं या फिर क्या करते हैं। ये एक मैसेज आया है सैयद ख्वाजा साहब का, लिखते हैं देयर इज नो लूजिंग इन द आर्ग्यूमेंट। कह रहे हैं नहीं हार वार नहीं होती भाई, वी टेक अ टाइम ब्रेक। कहते हैं मैं ब्रेक लेता हूँ टू टाइम्स एंड कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डे। वेरी गुड। ये ख्वाजा साहब ये पता है मेमोरी धुंधली करने वाली बात है कि सामने वाले को याद ही कम रहेगा तो कहाँ से बहस करेगा। ये बहुत सही भाई। और ये हमारी मोना बहन है, ये कहती है माई रिस्पॉन्स इज फुल सरकैज़म में कहना लाओ जी लाओ कहाँ इनका मेडल में। ये भाई हमारी मोना के लिए क्या बात है बहना, वेरी नाइस। और आगे लिखती हैं मास के लिए तो सिर्फ इतना कह देती हूँ अगला खाना आपका मैंने ही बनाना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस। यार ये बाप रे मास भाई, क्या बहन मैं डर गया मास भाई। कह रही जब आर्ग्यूमेंट होता तो मैं ही कह देती हूँ मास से, मास डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस। और फिर मास की अंतरात्मा जो है वो बहुत सारे सवालों जवाब में खो जाती है। मैं डर गया यार ये सोच के, बड़ा ही कॉमन डेंजर सेंटेंस है ये, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस। मास भाई ये सुन के गाड़ी नहीं चला पा रहे होंगे। मेमोरीज फ्लैश हो रही है सामने। क्या हुआ मास? कुछ नहीं, वो अचानक से वो मोड़ नहीं नजर आ रहा। एक मैसेज है इरफान भाई का, इरफान अली साहब ने मैसेज किया है, असलाम कबीर भाई फॉर ऑल शादीशुदा हजरात लिसनर्स। भाई मैं तो क्या कभी नहीं भिड़ता बीवी और बॉस से, दोनों बहस करना कोई फायदा नहीं है। आई फॉलो टू रूल्स, बीवी बॉस इज ऑलवेज राइट, फॉलो रूल नंबर 2, हथियार डाल देने चाहिए इज्जत से। इरफान भाई ने तो बहुत जल्दी हथियार डाल दिया भाई। एक मैसेज आया है कबीर भाई आपके शो में अभी कुछ लम्हे पहले खातून ने जो कहा वो भाई बिल्कुल सच है, जब मैं हारने लगती हूँ तो रो लेती हूँ, सामने वाला अपने आप सॉरी बोल देता है। बात सुनकर मुझे लगा अरे ये तो हमारी क्या है सीक्रेट स्ट्रेटजी। अच्छा वैसे हम भी किसी बहस में आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर लेते हैं। अरे वकील साहब असली आईडी से आइए। लेकिन हार मानना हमें कहाँ आता है, लेकिन जब अपनी अपनी वाली से बहस हो जाए और उन्हें लगे कि अब बात उनके हाथ से निकल रही है तो अचानक से आंखों में आंसू ले आती हैं। बस फिर क्या, हमारा सारा ज्ञान सारे तर्क सारे सबूत वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। अरे वकील साहब रो दिया भाई मैं ये पढ़ के। आगे लिखते हैं दिल कहता है यार छोड़ो भी, चलो मेरी गलती है, अच्छा ठीक है, अच्छा सॉरी, अरे बस रोना बंद कर दो। और लिखते और मजे की बात तो ये है कि बहस में कौन जीता ये पता ही नहीं है। वैलिड पॉइंट भाई, वैलिड पॉइंट। और लिखते हैं कभी कभी मोहब्बत में जीतने के लिए सिर्फ तर्क नहीं, सिर्फ 2 आंसू ही काफी हैं। और ट्रॉफी और मेरी तरफ से आज की इस बहस की विजेता वही खातून है, क्योंकि उन्होंने बहस नहीं जीती, सीधा सामने वाले से सॉरी ही करवा लिया। मुबारक हो मैडम, ये मैसेज किया है सैयद रुस्तम साहब ने। क्या बात है, सीधा रासलफान कदर से रुस्तम बेटी, आपने इतना सच भी नहीं बोलना था। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, मैं आर्ग्यूमेंट में इंसानों को देखता हूँ कि कैसा है, अगर थोड़ा सा जाहिल टाइप का है तो मैं किसी भी हाल में ठीक हूँ, अगर सीधा है तो सॉरी बोल के निकल जाओ। ओके फेयर इनफ, बड़ा ही फॉर्मल जवाब है, लेकिन आई एग्री। याया साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, यस विमलेश भाई एक्सपीरियंस से ज्ञान दिया है एकदम 100% सच, वैसे हर मर्द के अंदर एक हिडन क्या है खतरों का खिलाड़ी होता है, कुछ लोग उसे जिंदा रख पाते हैं। एक मैसेज है एक मर्द ही मर्द का दर्द समझ सकता है। माधु डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस, माज डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस और नॉट, अभी डराने का तरीका भी लिया हो सकता है। एक वजह अस्सलाम वालेकुम, आपने जो टॉपिक चालू किया है भोले भाले लोगों को चढ़ा के कलेश करवाना है घर में, ये बिल आपके ऊपर फटेगा घर जाके। मैं तो बिग बॉस वाली जनता हूँ ही, मुझे तो बहुत मजे आते हैं भाई। मुझे तो बहुत मजे आते हैं भाई, ये रीस्टार्ट वाला ऑप्शन वाइफ पे नहीं चलता। ये मैसेज क्या मुझे उसामा भाई ने, उसामा भाई कह रहा है ये रिस्टार्ट आर्ग्यूमेंट ये काम नहीं करता, उल्टा खतरा है. यू नो इफ यू आर्ग्यूइंग विद योर पार्टनर है ना, और इन जनरल विद द फीमेल, अगर आप सोच रहे हैं ना कि आर्ग्यूमेंट को मैं रिस्टार्ट कर लूंगा कल वापस से इस पर लड़ेंगे, तो भाई साहब सबूत आपके खिलाफ निकलेंगे ज्यादा जो है भी नहीं. तो रिस्टार्ट नहीं करने का. जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और माज डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस? एक वैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कबीर भाई, गुड मॉर्निंग. मैं तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता भाई, मैं खामोशी साइड पर हो जाता हूँ. अरे रे ये भोले भाले लोग यार शो में आते हैं, बड़ा प्यारा आता है इन पे. हारिस भाई, भाई अब इधर बैठिए, साथ इधर बैठिए हारिस भाई, चाय ले आओ. एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, किसी से भी आर्ग्यूमेंट करना वाला बड़ा नहीं होता इंसान की हकीकत पर. आयशाज मामा, वो ठीक है आयशा की मामा, लेकिन आप बहुत सीरियस चली गई, ऐसे थोड़ा मज़ेदार रिप्लाई दीजिए ना, फील नहीं आई इसमें हमको, थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा अभी इसमें मसाले की कमी है, समझ नहीं आप. एक मैसेज, माज भाई को क्यों घर से निकलवाना चाहते हो आप? एक मैसेज है इरफान साहब का, के बी आर 500 mg भाई, मेरा भाई बहुत सारा प्यार. और एक सेकंड क्या कह रहे हैं, एक तो ये व्हाट्सएप जो है मेरे साथ आज पता नहीं क्यों खेला कर रहा है इतना. हाँ कह रहे, पहली बात मैं आर्ग्यूमेंट्स हारता नहीं, उस वक्त तक आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ जब तक वो कह ना दे कि तुमसे आर्ग्यूमेंट्स करना फिजूल है इरफान. इन केस कभी ऐसा लगे कि आई एम लूजिंग, देन आई से प्लीज कंटिन्यू, आई हैव टू गो टू द वॉशरूम, और आई से आई हैव बेटर थिंग्स टू डू यार. ये पता है जो ऐठना है ना ये आपका इरफान भाई, ये ऐठन 2 मिनट में निकल जाएगी. कह रहे यार आई हैव बेटर थिंग्स टू डू यार, तुमसे बहस करूंगा क्या बैठ के? और इरफान भाई अगर सामने वाला पलट के बोल दे, इरफान सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारी गाड़ी का नंबर बहुत गंदा है यार. और वहां से निकल जाए इरफान भाई तो. अरे इरफान भाई आज आज आ रहे इरफान भाई ऐसे खूंखार हुआ है ना, ये कबीर का ऑफिस कहाँ है इसका? मोहसिन भाई कह रहे हैं, अरे माज भाई को क्यों, इनका तो पढ़ दिया मैंने. मोना लिखते हैं, टू ऑल माई सिस्टर्स आउट देयर, इफ यू आर लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट सिंपली ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर विद ह्यूज स्माइल ऑन योर फेस एंड फोर्स देम टू ड्रिंक इट, सामने वाले की रूह कांप जाती. बहन ये इतने खतरनाक तरीके हो रहे हैं घर में. मेरी जान सूख गई है. अभी माज भाई को ये कहने के बाद, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस माज, उसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका बताया. तो हमारी बहन है मोना, वो कहती है कि अगर, और ये बाकी बहनों को उन्होंने मैसेज किया है, इसमें टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है टू ऑल माई सिस्टर्स. आगे लिखती हैं कि अगर तुम बहस हार रही हो तो एक ग्लास पानी लेकर आओ, सामने बैठो और इनको बोलो पियो और चेहरे पे स्माइल रखो. कह रही है सामने वाले की ना ऐसी ऐसी रूह कांप जाएगी, इसको थरथराते हुए सामने बैठ के कांपते हुए देखो, बोल बहस कर. बहुत बढ़िया बहन. एक मैसेज है खादर अब्दुल्लाह भाई का, वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, मैं कभी जीतता नहीं हूं, फिशिंग के लिए चले जाया करो भाई, इट्स वेरी यू कैन काम योर माइंड यू नो. एक मैसेज है, राउंड चलते रहे, अच्छा ये वीडियो गेम वाले राउंड चलते रहे, मैं समझ सकता हूँ, नाम नहीं ले सकता हिदायत भाई. और मैसेज है ये आसिफ वालम साहब का, हमको हारना अच्छा लगता है क्योंकि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं. एक तो भाई हमारे पास आशिकों की टोली भी अच्छी खासी है माशाल्लाह, क्या ही कहने. मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा एक गाना चलाना पड़ेगा मुझे. मजा तो आ रहा है मुझे. और हाँ माज, Do you want to continue this? Why? Do you want to continue this month? No, tell me, yaar. Pani piyo. Assalamualaikum. Banta hai ki public.

0: Wake up.
1: भाई भर भर के मैसेज है, पहले मैसेज खत्म करेंगे, दो तीन कॉल कर लिए आसिफ भाई को और हमारी तला भाई को, तो मैं जरा कॉल ब्लॉक लगा दूं वरना लोग जो है फिर मुझे बाद में सुनाते हैं। ओके, तो बड़ा कमाल का मैसेज है, ये जाफर मेहदी साहब लिखते हैं। जाफर भाई कहते हैं, ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट मैं अगले को बोलता हूँ, दो आई नो ही इज रॉन्ग, बट मैं जब तक उसको बोलने देता हूँ, जब तक वो अपने गलत को सही करने की लास्ट तक कोशिश करता हो, फिर बोलता हूँ तुम जीत गए हम हारे। अरे क्या बिल्कुल फोका देने वाला काम करते हैं जावर भाई। ये वो होता ना हीटर, देखा उसका एलिमेंट जब खराब हो जाता है, जबरदस्ती लोग उसे चलाते रहते हैं बिल्कुल आखिरी दम तक, जब तक उसे फक फक फक कैसी आग ना उठने लगे। यार बड़े खतरनाक हो जाफर भाई। और जाफर भाई की ने अगला मैसेज किया है, माज डू यू रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस। तो मैं कह रहा था कि अगर आप आर्ग्यूमेंट हारने लगते हैं तो आप एग्जैक्टली करते क्या है, ये है। तो मैं एक दो मैसेज पढ़ता हूँ जल्दी से प्लीज। हाँ, सऊदी अरब से मैसेज आया, वालेकुम सलाम मेरे भाई अली। एक मैसेज है, माज की आवाज़ आज बंद है, बिल्कुल आज गायब कर देंगे। नहीं, एक मैसेज है, भाई बीवी से जीत गया तो लगता है कि अपनी सब कुछ जवाए रहते हैं और बीवी गुस्सा है तो साइड से निकल जाता हूँ, जैसे मौत को छू के वापस चले जाते हैं। बस एक ही बंदे से बहस नहीं की जा सकती, वो है बिग बी बापू। बापू से बहस करनी भी नहीं चाहिए भाई। हाँ, एक मैसेज है, भाई एक बड़ी से एक्सप्लोजन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं दो बूंद आंसू। मेरा भाई रोमांटिक हो रहा कतई। हनीफ भाई फ्रॉम कानपुर। और फराज भाई कह रहे हैं, माज भाई क्या आज बोलती बंद है। हाँ बिल्कुल। एक मैसेज है, कमालुद्दीन शेख साहब का लिखते हैं, असलाम कबीर भाई, दो आंसू की कीमत वो क्या जाने, कुआरे हैं बेचारे। और तो आपने मतलब डायरेक्ट तंज कसा है। याया भाई कह रहे हैं, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू अ वाइफ फ्रॉम हस्बैंड, अकॉर्डिंग टू हर I, मतलब हस्बैंड, am wrong. So if I say that you are right, then is it that I am wrong? Ask it in the end of the argument with wife. दिमाग ओवरलोड हो जाएगा लॉजिक से। याया भाई ये जो आप रिस्की काम सिखा रहे हैं पब्लिक को, किसी को कुछ हो गया तो कमाल के नुस्खे दे रहे हैं लोग, इतने डेंजर डेंजर। एक मैसेज है, भाई जो सॉरी बोलते हैं वो बच जाते हैं, बट जो सॉरी नहीं बोलते वो ड्रम में जाते। फैसल भाई, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, यू डिजर्व इट। तबसु मैं लिखती है, कबीर भाई मैं ये भी करती हूँ हस्बैंड के साथ। हाँ हाँ, तुम ही अच्छे हो। हाँ नहीं, तुम ही अच्छे हो, तुम सही हो हमेशा, तुम ही तो सही बोलते हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। लिखती है, थैंक यू मोना सिस्टर, आई विल ट्राई। ये देख रहे हैं आप ये हमारी बहनें आपस में ही पार्टी बना रही हैं कि आर्ग्यूमेंट और अपना स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्या खतरनाक पार्टी चल रही है भाई, सोचा ही नहीं था मैंने। तला भाई कभी भी कॉल करता हूँ, आसिफ भाई आपको भी। हमजा भाई कह रहे हैं, सलाम कभी भाई, आर्ग्यूमेंट वो तो सेम लेवल पर होता है जब पता है कि हार आपको ही है, तो फिर कैसा आर्ग्यूमेंट भाई। ये लॉजिक तो है, लॉजिक तो है। आज का टॉपिक क्या है, मुमताज अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम, टॉपिक ये है कि भाई जब आप आर्ग्यूमेंट में हारने लगते हैं, बहस में हारने लगते हैं, तो क्या करते हैं आप। एक मैसेज है, अगर वाइफ से आर्ग्यूमेंट में मेरा फेवरेट डायलॉग है, ठीक है तुम सही हो, ये हार नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, ये चुपके से हॉर्न बजाऊंगा इस बात में। इश्तियाक उस्मानी भाई इतना खुल के नहीं बताने का, ये हमारे लिए बहुत काम कम करती। अरसलान भट्ट साहब ने मैसेज किया, भाई क्या कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, भाई बीवी जब भी एक्सट्रीम गुस्से में हो और आपके जीतने के दूर दूर तक कोई चांस ना हो, देन रिप्लाई विद सम रोमांटिक मेमोरी और से यू लुक क्यूट वाइल क्राइंग, और ऐड कर दो उसमें कि मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा, इनफैक्ट आई एम लविंग दिस पार्ट। अब जैसे ही वाइफ थोड़ी सी सॉफ्ट रिएक्ट करें, देन गिव योर विनिंग पंच। सी मैंने कल तुम्हें मॉर्निंग में जगाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था ना, कॉज यू वर टायर्ड, देखो मेरी अप्रोच देखो तुम ये मेरी वाली स्ट्रेटेजी है, बट आई हैव टू गिव इट टू यू। अरसलान भाई यार, हाय भाई भाई हाथ मिलाइए, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वाली स्ट्रेटेजी है अरसलान भाई, मैं कहना नहीं जा रहा था लेकिन आपने ये बात बाहर निकाल दी भाई, पब्लिक कर दी। एक मैसेज भाई, वाइफ से कई आर्ग्यूमेंट हारे हुए हैं, चाय पीने का मन करता है तो बोलना पड़ता है कि तुम सही हो, चाय बना दो प्लीज ये अनीस भाई, अनीस भाई एक चाय के लिए आपने मतलब जमीन बेच दिया अपना कह रहे एक चाय के लिए करना पड़ता है, सॉरी बोल दूंगा कोई बात नहीं। एक मैसेज है कि लिखते हैं, मेरी वाइफ आर्ग्यूमेंट हारने के बाद रोती रहती है, आपको बता दो क्या, अच्छा आपका तो बता दो क्या करते हो। ये जो अरसलान भट्ट साहब ने कहा, ये करता हूँ भाई मैं थोड़ा ना मोमेंटम गिरने देता हूँ,

0: कि लेट हर बी साइलेंट, उसके बाद मैं धनिया बोऊंगा, धीरे धीरे लेक्चर दूंगा मैं। देखा मैं सही कह रहा था, देख। और आपको चेहरे पे स्माइल रखनी है, इफ यू स्माइलिंग इनफ और यू आर गिविंग अ लेक्चर, वो सुनने में सामने वाला कंफ्यूज होता है, यार ये मुझे सुना रहा है कि बात तो सही है इसकी। और शब्बीर भाई लिखते हैं, वी आर क्या लिखे, वाटर डजंट वर्क, सॉरी इज द ओनली मेडिसिन। ओके, we are called mad, this is life, problem is if women get silent there is more dangerous. Okay, mass please continue, mass continue, please we want to listen to you. Mass bhai chale gaye. Mujahid bhai kehte hain good morning Kabir bhai, bhai simple hai apna, aisa argument mein padta hi nahi jo haar jaun, padhna to padta hai bete sabko. Ek message hai khale ki voice mein kuch bole hain, ye dekho wo sun ke bahut maza aata hai. Main to argument last tak sunta hu, last mein bol deta hu maine kya, main manta hi nahi क्योंकि हमारी मर्जी। कह रहे खाल भाई, मेरी खाला का आपने सुना नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस बार मैं छुट्टी पे अगर गया ना तो मैं अपनी खाला की वॉइस आपको सुनाऊंगा, मैं रिकॉर्ड करके लेके आऊँगा, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यार कबीर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है अपनी खाला की। तो मेरी खाला जैसी बेबी खाला है, तो उनकी आदत है, वो जब बहस करती है ना उनकी एक अलग सी टोन आती है, वो उनसे बहस करें, हाँ भैया हम ही गलत है भैया, ही नहीं सब कुछ पता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं भैया। और उनसे बोले, अरे अरे खाला ये चीज़ ऐसे, हाँ भैया तुम ही जानते हो, बाहर रहते हो ना, हमें थोड़ी पता। तो ये देख, एक उनका रिदम है बात करने का, शी टॉक्स इन अ रिदम। वो रिदम जो है बड़ा कमाल का है, समझ रहे, वो हर किसी के पास नहीं है। सो इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद समबडी, देयर हैज टू बी अ रिदम, रिदम होनी चाहिए उसमें, हाँ भैया हमें थोड़ी पता। ये स्पीड ब्रेकर्स आर दीज आर द की, समझिए आप मेरी बात को। वैसे इरफान अली भाई कहते हैं, इन माय वाइफ केस आई एम सो लकी, शी डजंट आर्ग्यू बिकॉज शी नोज कोई फायदा ही नहीं है। तो बहुत डीट है आप तो, बस मैं मुंह भुला के क्या, बस मुंह भुला के बैठ जाती है, एंड आई हेट दिस। बट यू नो वॉट आई हेट इरफान भाई, आपकी गाड़ी का नंबर। ये मुझे पक्का ढूंढेंगे इरफान भाई, ये छोड़ेंगे नहीं मुझे, पक्की बात है। एक बार मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, आर्ग्यूमेंट्स में क्या, अगली पार्टी को फेक जीत की खुशी दे देनी चाहिए, वो खुशी में जीत रहा है और इस बार कहेगा फिर मैं सही थी ना। मलिक वकास साहब भी सही कह रहे हैं, कह रहे भाई क्या कह रहे हैं भाई, वास्ते ना हुए याद दिला दिए, क्या क्या क्या याद दिला दिए। मैसेज कबीर भाई, मैं तो लास्ट स्टेज पर जब एक बॉल पर 6 रन चाहिए होते हैं तब पागलपन की एक्टिंग करता हूँ। कह रहे मुझे लास्ट बॉल पे एक छक्का चाहिए होता ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल चीखना चिल्लाने लगता हूँ, मैं स्टील के बर्तन फेंकता हूँ, वो भी सोचती है पागल हो गया भैया, आदमी पागल हो गया, ये तो इसके नाम में आमिर शहजाद है, सन की है ये। मत क्या करो यार आमिर भाई, दिस इज नॉट अ गुड साइन मेरे भाई, मैं डर गया तुम्हारी बात सुन के यार। प्रिंस भाई कह रहे हैं, क्या है टॉपिक, टॉपिक ये था प्रिंस भाई कि जब आप बहस हारने लगते हैं, सो व्हाट डू यू डू जब आप हारने लगते हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम अहमद साहब, कैसे हैं। एक भाई कह रहे हैं, सलाम कबीर भाई, मैं तो सारे आर्ग्यूमेंट हार जाता हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता सेकंड डे तक। आदिल भाई कह रहे हैं, तब तक कहानी खत्म हो जाती है भाई, एकदम समय में पीछे चल रहे हैं। सुदीप तो सर कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया बहस चल रही है, पानी पिला देने का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से आर्ग्यूमेंट खुद हारने से सामने वाले को जीत की खुशी होती है और दोस्ती बढ़ जाती है। सर आप कितने प्यारे हैं यार, क्या कितने प्यारे हैं यार, सो स्वीट यार, मैं दो कॉल ले लेता हूँ, मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें कर जाती हैं। मैं सबसे पहले तो ज़रा कॉल कर लूँ ये तला भाई को, भाई तला भाई के नंबर की तरह ही, तला भाई का नंबर की तरह ही मई तुमको खोल करी गई। तो आप रिदम समझ गए ना, आज मैंने आपको रिदम सिखाई है, एंड आई थिंक आपको वो अच्छा। तला भाई आपकी कॉल लगी नहीं मेरे भाई, मैंने जस्ट अभी ट्राई किया पर आपका कॉल गो थ्रू ही नहीं हो रहा है, गैर मौजूद अभी आ जाएगा, मुझे सुनाई दे जाएगा इफ़ यू डोंट पिक अप। करो करो, मैं कर रहा हूँ, लगेगी कॉल। हाँ अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, क्या कोई है भाई साहब, किवाड़ खोलो।
1: जब
0: से हम बाहर खड़े यार, ये रेडी लेके आप ऑर्डर कर देते हैं चीजों को यार, अब दरवाजे नहीं खुले यार, क्या बात है तला भाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
1: अपन दरवाजा खोल के रखते हैं, एस्केप रूट पहले भाई,
0: एस्केप रूट पहले बुलाओ अपनी बेबी खाला को, अभी धनिया बोल देंगे जिंदगी में आपके बेबी खाला को बुलाओ अभी। बस वेरी गुड,
1: देख रहे हो, देख रहे हो कोई अल्फाज ही नहीं, सॉरी सॉरी बस।
0: तो आप क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई, आप ये बताइए तला भाई, whenever you're losing।
1: यार मैं तो मासूम आदमी, बहस तो मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी जिंदगी में, बहस तो मुझे पता ही नहीं होती है।
0: अच्छा
1: तो और जो शेरा है कर रहे हैं ना ये लोग, जो बीवी तो बहस करके हम ये बोल देते हैं वो बोल देते हैं, ये इनके अंदरून अंदर के हाल, ये यही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं।
0: हाँ, वो मुझे पता है, ये इन्होंने प्लेटफॉर्म समझ रखा है कि यहाँ पे मैं जरा दिखाऊं मैं कितना बड़ा, मतलब मेरे अंदर वो है।
1: तुम अपने आने वाले वक्त से करो, तुम्हारी व्याप्ति का निशाना बनोगे तुम
0: भाई। आई एम अंडर वो होता ना ट्रेनिंग, तो अभी मेरा क्या है एक पीरियड होता है ट्रेनिंग का।
1: भाई हेलो, क्या ये जो बहन ने ग्रुप बना लिया ना मेरी बहनों करके,
0: हाँ
1: ये तुम्हारे लिए बोया गया बीच। ये तनावर दरक बन जाए
0: तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा, मैं आपको भी बोलना चाहूंगा जो मास्क बोला, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस तला, डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू दिस?
1: नहीं भाई साहब, फिर आप सब डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर तुम और तुम सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे हाँ या ना, तुम्हें बिठा दिया है शीशों के ऊपर, इधर खाली इधर आग।
0: यार आप मुझे डराने के लिए कॉल करी आपने तला भाई, व्हाट इज दिस यार?
1: तुम्हें देखो मैं आगा करने की कॉल करी है, मैंने कहा यार भाई हमारा, हमारी बिरादरी कैसा है।
0: मैं एक एक एक, एक बुरा जोक मारने दो, आगा तो सलमा है ना।
1: ये जो तुम कर देते हो ना ये वाली बातें, यकीन करो मुझे यकीन आ रहा तुम मुझसे प्यार करती हो।
0: अच्छा था, देखो 10 बजे 7 नंबर तो बनते हैं।
1: अबे माइनस सेवन अपने
0: बस मन में आया, पता मेरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही दिमाग में फंस गया था, मैंने कहा बोलूंगा ना बोलूं, ये बुरा सा जोक तो है, अच्छा लग रहा है। देखो अच्छा तो लगा तुमको भी, तला मान नहीं रहे हो मेरे भाई
1: है ना। अच्छा यार तुम बीवी थोड़ी तुम्हारी मानूंगा, पागल
0: हो गए। वेरी गुड, अब आए ना, अभी स्लेवरी वाला अंदर से निकल रहा है।
1: भाई अपन तो देखो भाई सीधी सी बात है, अपन तो बहस करते नहीं है भाई, अपन यार मैं सीरियस नहीं हो सकता, मसला ये है ना।
0: हाँ।
1: मेरी हंसी मुझको गुस्सा आता, मेरी हंसी निकल जाती है।
0: हाँ।
1: ये बकवास है। अच्छा वो टॉपिक तो क्या भाड़ में, मेरी हंसी पे चलता है भाई, फिर आर्ग्यूमेंट हमारा चलता है हंसी पे।
0: अच्छा तो तुम हंसे क्यों?
1: हाँ तुम हंसे क्यों
0: यार?
1: मेरी ऐसी निकल गई तुम्हें देख के, मैं कार्टून हूँ, मैं ये हूँ। मैंने कहा देखो यार अब तुम खुद से बोल रही हो, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा
0: यार, ये तो बड़ा
1: खुद से कह रही हो,
0: ये आप ज्यादा रिस्क भी नहीं खेल रहे अभी तो बड़ा।
1: यार मैं दरवाजे में खड़ा होकर बात करता हूँ सब,
0: ये तो बॉर्डर पे खड़े होकर भंगड़ा पाने वाली बात है। अच्छा अच्छा
1: मैं दरवाजे पे खड़े होकर बात करता हूँ, जहाँ कोई चप्पल अपन दरवाजे से निकल।
0: मैं तो कहूंगा कि आप टीन की चादर ओढ़ के लड़ा करें, इसमें ज्यादा फायदा है, जिस हिसाब से आपका सीन चल रहा है।
1: मैं मुझसे मुतासिर होकर अपना सूट बनाया, क्या बात कर रहे हो?
0: इस बात पे तो भाई बात है
1: थोड़ी लोहे की चक्की जा रही है।
0: ये आपके लिए इरफान भाई कह रहे हैं, विल यू स्टॉप लाफिंग तला?
1: डू
0: यू वांट टू कंटिन्यू? अरे अरे अरे अरे तला भाई क्या यार, वेरी गुड पॉइंट तला, वेरी गुड पॉइंट मेरे भाई, पॉइंट टू बी टेकन। अरे तला भाई थैंक यू सो मच।
1: बाहर वालों से तो ये होता है कि अगर हार रहे होते ना तो ये कर लेते हैं, चल भाई तू जीत जा, तू जीतू बड़े बाप की वाला, तू जीत जा।
0: बाहर जीत बाहर एक्चुअली मन नहीं करता ना, बाहर मन नहीं करता, कौन टाइम लगा,
1: बाजीगर अपन बाजीगर है। तो अपन जो है ना हार के जीतने वाले हैं, अपन जो है ना हार भी रहे हैं, तो आखिरी पंच लाइन ऐसी मार दो सामने लगे यार मैं जीता हारा, समझ छोड़ दो।
0: क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर के आखिर में हुआ क्या
1: है? यार क्या हुआ ये, मैं जीत तो रहा था, आखिरी बॉल पे क्या हो रहा है?
0: थर्ड अंपायर करके भाग जाओ, थर्ड अंपायर करके भाग जाओ,
1: बिगड़ी गवर्नमेंट।
0: वेरी गुड वेरी गुड, आई एम विद यू तला भाई, आई एम विद यू, थैंक यू सो मच भाई।
1: भाई हम ब्रदर विद फ्रॉम अदर मदर वाली बात है हमारी।
0: हाँ।
1: तुम्हारी असल में भाई साहब जितने भी लोग हैं ना, मैं बोलता मैं हूँ शब्द इसके होते हैं।
0: अच्छा
1: बोल मैं रहा हूँ,
0: हाँ
1: बोल मैं रहा हूँ, एक शब्द इसके कभी
0: ठीक है भाई, आप बड़े बाप के औलाद है भाई, आप सही है भाई, आप सही है भाई, मैं भी इस तरह का फोन करता हूँ, आप सही है भाई,
1: आप बड़े पप्पा के,
0: आप बड़े पप्पा के, अरे बाप रे, चलो भाई बहुत शुक्रिया भाई, गाने सुनना भाई आज के, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और आज की लास्ट कॉल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और ये है हमारे, ये तो ऐसा लग रहा है वो सीरियल को याद आता पुराने हीरो का, ये है हम, कौन सा था ये, आई डोंट नो, आई एम सिंगिंग द जिंगल रॉन्ग बट आई नो कुछ तो है मेरी ही इज़ अ प्योर कराची का, ये मैसेज आया है तला भाई के लिए, तला भाई का नंबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, आप दोनों की जमे की भी शमाल रोड पर एक्सीडेंट है, मिसीला इंटरचेंज के नीचे, ये अहमद भाई ने मैसेज किया है, अहमद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, और मैंने नंबर तो सही मिला है, इशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक और मैसेज है, प्रिंस भाई कहते हैं भाई पहले तो आर्ग्यूमेंट मैं करता नहीं, और अगर आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश भी करा है तो एक ही बात पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त दोबारा ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, वेट फॉर द टाइम, कॉज आई डोंट हैव भाई, कॉज आई डोंट हैव वेस्ट टाइम, ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट्स एंड, भाई बहुत ही कोल्ड इंसान है आप तलब भाई, ओ प्रिंस भाई बहुत कोल्ड चीज़ है ये, क्या तुम्हें क्या लगा ये चीज़ वापस नहीं होगी, मेरा टाइम भी आएगा, समझ में आई, हाँ मौसम आया झूम के ये आपको आप ये टी शर्ट बनवा लीजिए प्रिंस भाई, मौसम आया झूम के नौशाद तो भाई कहते कबीर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत सारा प्यार और दुआ है, और कह रहे हैं कि जब सामने वाली, जब सामने वाइफ होती है तो मैं कह देता हूँ कि तुम राइट हो, तुमने लास्ट टाइम भी सही कहा था, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, फिर कबीर भाई वो खुश हो जाती है और हम दोनों बाकी का दिन अच्छे से गुजारते पर दिल में क्या है नौशाद भाई, बहुत तेज हो रहे हो, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ये आज के टॉपिक प्रिंस भाई से पूछ रहे हो, उनको उनका तो सिंपल होगा, जब भी आर्ग्यूमेंट होता है लास्ट में कह रहे नोटों की बारिश ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे मामला फंस जाता है इरफान भाई, फंस जाता है। एक मैसेज है मुमताज भाई, कबीर भाई वाइफ से बहस कभी नहीं हारता हूँ, हैं क्या पढ़ा मैंने, वाइफ से बहस कभी नहीं हारता हूँ, इनको तो नेता बनाओ भाई, क्या कह रहे हैं, मैंने रूम में एक क्या रखा है, कैसे बहस में हारने लगता हूँ तो कूड़ा उठा लेता हूँ, उसके बाद मेरी क्या, ये कूड़ा लिखा है, कूड़ा लिखा है, क्या लिखा है, मैं समझा नहीं मेरा भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है, अगर खाला आपकी सब सुनते हैं बहुत वो तो है नहीं सुनती वो, जिसने जितना बड़ा शेर बनने की कोशिश कर रहे हो उतने ही बड़े, हाँ ये मौका है बन लीजिए मेरे शो में, इसके बाद नहीं आएगा। नदीम भाई कह रहे हैं मज़ा नहीं आया प्रिंस भाई, मुझे तो लगा कि कुछ बढ़िया आएगा, प्रिंस भाई आपसे मसाले की उम्मीद है सबको। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम मौलाना कारी साहब, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है अरबाज भाई, सब बढ़िया। फरहत भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से भाई, आज तो मज़ा ही आ गया भाई, हर क्या हार मान लेना में क्या बुराई हो सकती है, अगर जीत गए तो परेशानी हो सकती है 100%, फिर तो कोई उम्मीद भी मत रखो खुशी की, ठीक है। और मैसेज किया है जमाल भाई ने, उनका मैसेज पढ़ते हैं, खाला की एक्टिंग प्लीज़ फिर से, अभी मैं गाने से पहले करता हूं। जमाल भाई कह रहे हैं भाई लोग बीवी से जीतने का भरम रखते हैं क्या नहीं नहीं नॉर्मल भी जमाल भाई, वहाँ तो कोई भरम नहीं, वहाँ तो यकीन है कि नहीं जीत सकते। और कोई मैसेज तो नहीं रह गया भाई, फुल सरेंडर करना होता है, आपका हार मानने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, फैसल भाई कह रहे हैं। शब्बीर हंस रहे हैं, तबस्सुमैन कह रही हैं लेक्चरिंग इज़ एवरी मैंस टूल, ये देखो वैसे हम पठान है भाई, एक नज़र देख लें तो वाइफ का आर्ग्यूमेंट ख़त्म, हाँ जहाँ से भाई हमारे यहाँ ही चौड़े हो जाओ रेडियो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या बोल सकते हैं। और का मैसेज है प्रे फॉर माय प्रिंसेस भाई, ये मुझे मैसेज किया है इकरम भाई ने, उनकी बेटी आयशा शी इज़ नॉट वेल सो प्रे फॉर हर, भाई कैसा है फीवर अभी, आपने अपडेट नहीं दी, लेटेस्ट अपडेट तो दीजिए हमें कम से कम। कह रहा है भाई ठंडी आ रही है, चाय पकौड़ा दे दो। कलीम भाई आप दूसरी दुनिया में जी रहे हो, मतलब एकदम अलग ही गैलेक्सी चल रही है भाई की। एक मैं डोंट वरी ब्रदर्स आई विल कॉल आफ्टर द स्टोरी, प्रिंस भाई आने वाले कम बैक के लिए। एक चीज़ और, जब कोई आर्ग्यूमेंट हार जाता है व्हेन ही और शी से सॉरी आई से डोंट से सॉरी इम्प्रूव योर सेल्फ, अरे वेरी कोल्ड इरफान भाई, वेरी कोल्ड यार, दैट वॉज वेरी कोल्ड बट स्टिल इरफान भाई मैं आपकी गाड़ी का नंबर बहुत बुरा है भाई ओके तो अब जरा खाना

लाल मैच भर दू मोहम्मद अरफात भाई कहते हैं बाय एनी चांस अगर मैं आर्ग्यूमेंट जीत जाऊं अपनी वाइफ से तो मैं सोचने लगता हूं ये क्या हुआ ये कैसे हुआ पर ही होता है पार्टनर समटाइम्स यू नो दे गिव यू अ सरप्राइज कि भाई तू जीत का मजा चख ले थोड़ा सा जवान में लिखते हैं जीत दिल में जीतने की आरजू भी कभी गुस्ताखी नहीं करती है भाई सच में मेरा भाई इसको भी इतनी खूबसूरती से आपने बता दिया भाई कमाल है भाई आप और एक भाई के लास्ट में से अरबाज भाई अल्लाह का शुक्र है सर कि हमारी शादी नहीं हुई हमारी बीवी से डर लगता है भाई लगेगा थर थर कांपोगे यही मेरी दुआ है बाकी है क्या वैसे मैं जानकर हार जाता हूँ खामखा चिक चिक नहीं चाहिए ये जैन भाई फुली ट्रेंड आदमी फुली ट्रेंड अच्छा मैं अब कहानी की तरफ बढ़ा तो आज की जो स्टोरी है इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी बहुत टाइम बाद इस जॉनर को टच किया मैंने एंड यू विल डेफिनेटली लव इट एक और मैसेज है हमारे पास ये फरा बहन है हमारी उन्होंने मैसेज किया फरा बहन वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो लिखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव सच अ वंडरफुल हस्बैंड वेन एवर आई एम आउट ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स विदाउट complaining or getting upset. He simply says, okay, I'll do it. He never scolds me or makes me feel guilty. I truly appreciate his love, understanding and support. Alhamdulillah, Allah has blessed me with a very kind and caring husband. Mera salaam hai unko, but still, bhen, argument to aap hi jeette honge. RJ Kabir ne to khala Kabir achhi hai. Aye, maza aaya tumko hai? Feel bura aaya, bahut badhiya bete. Acha, to main kahani shuru karta hoon. जैसे मैंने कहा कि आज की स्टोरी इज समथिंग दैट आई हैव नॉट टच्ड अपॉन बहुत टाइम से पर आज ये कहानी मैंने कहा कि सुनाते हैं सो 666-22-107 नंबर है 666-22-107 एंड जो जो जुड़ रहे हैं मुझसे मैसेज कर दीजिएगा इफ यू

listening to me live right now. So, disclaimer, इस गाने के मकसद किसी के जज्बात को पहुंचाना नहीं है, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड आई होप यू एंजॉय इट. लेट्स बिगिन. ऑलराइट, आज का जो किस्सा है ना, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कोई एक हो तो बताऊं. तो आज का किस्सा शुरू करने के लिए मैं आपको एक बड़ी खास जगह ले चलता हूं सबसे पहले. ओके, सो साल 1983 और ये जगह थी बीच फॉरेस्ट विक्टोरिया. ये बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है. और इस टाउन में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका ऐसा है कि उनके लिए दिन और रात एक बराबर है. इन अ वे के वो कभी भी निकले बाहर, उतनी ही भीड़ मिलेगी, उतने ही लोग मिलेंगे जितने की सुबह मिलेंगे, शाम मिलेंगे, दोपहर मिलेंगे. तो इट्स ऑल इक्वल. अब इस जगह पे अतरंगी लोग भी रहते हैं, कमाल के लोग हैं, तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ एडवेंचर के लिए. तो ऐसे में एक चीज अनाउंस हुई वहां पे कि भैया एक बहुत खतरनाक रन होने वाला है, एक मैराथन है, मतलब बेसिकली रेस ही है, जो कि इनॉग्रल रेस है सिडनी से लेकर मेलबर्न तक. तो ये अल्ट्रा मैराथन है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो है दूर दूर से आने वाले हैं. अब ये साल था 1983 और मैं आपको बताऊं 1983 ऐसा मैराथन के बारे में किसी ने सुना नहीं था. इट वॉज वेरी रेयर. अभी तो लोग जानते हैं भाई, हाँ मैराथन, ट्रायलथॉन, बहुत सारी चीजें, पर ये उस जमाने का सबसे डेंजर मैराथन ये रेस थी. कितने किलोमीटर की जानते हैं? 875 किलोमीटर, 875 किलोमीटर, और 7 दिन का मामला है ये मैराथन है. मतलब फिर भी कोई नंबर वन नंबर टू तो आएगा. और अब आप कहेंगे कैसे पूरी होगी? ये जो रखी गई थी, ये पूरी ये मैराथन, ये रखी गई थी ऑन फुट लिटरली. तो आपको भागते हुए जाना है, इसमें बीच में गाड़ी वाड़ी नहीं पकड़े हैं कि लिफ्ट मांग लूंगा और निकल जाऊंगा, नहीं, इट्स ऑल ऑन फुट. अब कौन पार्टिसिपेट करे, हलवा थोड़ी इसमें पार्टिसिपेट करना. दुनिया के हार्ड कोर रनर्स इसमें भर भर के पार्टिसिपेशन दिखा रहे थे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा. कुछ लोगों ने तो अपने ईगो पे ले लिया था कि भाई मैं ही कर सकता हूं, ये किसी की बस का थोड़ी है, हटो पीछे. सबके सब तैयार थे और ये लोग पैसे वाले भी थे, इनके पास सारे गेयर, सारे गैजेट्स भी थे, ट्रेनिंग के लिए भी थे, सब तैयार थे. लेकिन इन सबके बीच में एक बंदा था जो बिल्कुल अलग था. ये सारे नौजवान लोग इन देयर मिड 30s, लेट 20s, और ऐसे में इस मैराथन के बारे में सुनकर एक आदमी अपने घर पे बात कर रहा था. ये आदमी पता कौन था? ये आदमी किसान था. आलू जो थे इसके खेत से निकलते थे बाहर, और इस बंदे का ईगो हर्ट हो गया. उम्र जानते कितनी? 61 साल, 61 ईयर ओल्ड. इनका नाम था क्लिफ यंग, मतलब नाम में यंग है बंदे के, पर वैसे 61. अब इनको लोगों ने बताया, अरे नौजवान लोग आ रहे हैं दूर दराज से यहां पे रेस करने के लिए, 875 किलोमीटर सिडनी से मेलबर्न जाना है, क्या बात है यार. अब इनकी सिंपल जिंदगी, सिंपल फैमिली, बेचारे खेतों से यारी, जानवरों का ख्याल रखना, भेड़ों के पीछे भागते रहना. तो उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए इजी पीजी यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं भी भाग लूंगा. तो लोग हंसने लगे घर वाले, उम्र देखिए अपनी 61, 61 साल गया. तो बोले क्या हो गया भाई, मैं भी तो फील्ड में जाता हूं, मैं भी तो भागता हूं भेड़ों के पीछे, ये क्या चीज है, कोई बड़ी बात थोड़ी है. और पड़ोसी तो थे, वो बड़े मजे लेते थे. पड़ोसी देखते थे क्लिफ यंग को, 61 ईयर ओल्ड, उन्हें भागते हुए देखते थे भेड़ों के पीछे. जब भी वो भेड़ों के पीछे खेतों में भागते थे तो पड़ोसी आते थे और अपने वालों को बुलाते, इधर आओ, इधर उधर खिड़की आओ, खिड़की आओ, वो देखो फिर से भाग रहा है, वो देखो भेड़ के पीछे भाग रहा है. कैसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा मजेदार था ये टॉपिक उनके लिए. वो भेड़ के पीछे जब भागता था ना क्लिफ यंग, इवन एट द एज ऑफ 61, वो बड़े छोटे छोटे कदमों से भागते थे, बड़ा तेज तेज तेज तेज भीड़ के पीछे, और भागते रहते थे, भागते रहते थे, भागते रहते थे. और लोग इसे देख के कहते थे, तुम भागोगे मैराथन में? कुछ भी भाई, भेड़ के पीछे भागना और 875 किलोमीटर भागना बहुत फर्क है. अब क्लिफ की जो फैमिली थी वो बेचारे घोड़े अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, काफी सालों से गरीबी चल रही थी, हालांकि सुकून था.
हर रोज लंबा लंबा रास्ता ऑन फुट कदमों से चल चल के नापना पड़ता था, बड़े बड़े डिस्टेंसेस। क्या करें, आराम ही नहीं है, बिना आराम लिए जाना भी है, काम खत्म भी करना है। तो क्लिफ ये सोचते थे कि यार ये 875 किलोमीटर कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं तो वैसे ही चलता रहता हूं पूरे दिन, ये क्या ही कर लेंगे मेरे, बस भेड़ की जगह ये मान लूंगा कि भेड़ को मैं भाग रहा हूं, मतलब भेड़ जो है सिडनी से मेलबर्न भाग रही, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं, मैं भी यही मान लेता हूं, हो जाएगी रेस। अब एक पड़ोसी तो छा, जब वो सुन रहा था कि 61-year-old क्लिफ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उसने समझाने की कोशिश करी कि भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा अभी, बाकी सबको देखो नौजवान है यार, तुम ठीक है, अपनी उम्र का ख्याल रखो, दिल विल रुक गया तुम्हारा, क्या करोगे तुम। पर ये लोगों के बताने से क्लिफ यंग का जो ईगो था वो हर्ट हो रहा था और उनकी जिद बढ़ती चली जा रही थी। अब धीरे धीरे पूरे टाउन में ये गॉसिप फैल गई थी और लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मगर क्लिफ तैयारी कर रहे थे। वो सिडनी पहुंचे, रजिस्टर करो मुझे रेस के लिए। अब लोग हंसने लगे, हैं अंकल रेस करने के लिए आप आए? तो उन्होंने देखा सब एकदम सीरियस वाले रनर्स आसपास, एकदम एथलेटिक बॉडी, लेम शेम, सारे महंगे महंगे गियर लेके खड़े हुए, ट्रेनिंग करके आए हुए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रेसेस करी है सबने। और फिर एक तरफ खड़े थे हमारे क्लिफ यंग और वो देख रहे थे ये सबको, अरे भाई ये तो बड़े डेंजर रेसर है, कोई बड़े खास कुछ मिला के पानी में पी रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट फैंसी फैंसी सप्लीमेंट खा रहा है, बड़े डेडिकेटेड क्रूज के साथ आए लोग, लोग एकदम ट्रीटमेंट वाले परफेक्ट एकदम जूते वूते पहन के आए। और फिर क्लिफ ने खुद को देखा, क्लिफ के पास तो ये सब कुछ भी नहीं था। इन सब रनर्स के बीच में क्लिफ जो थे वो लग रहे थे जैसे किसी और गोले से ही आदमी आया हो, किसी और प्लैनेट से आया हो। उनकी टीम में उनके एक भाई थे सिड, जो उन्हें रस्ते पर कहते हुए थे कि भाई मत करो मत करो, लगातार मना कर रहे थे। बाकी उनके दोस्त से एक दो जो हंसने के लिए आए थे, वो साथ देने के लिए नहीं आए थे। और घर से लेकर क्या लेके आए थे क्लिफ, घर से लेकर आए थे वो एक सब्जी, आलू की सब्जी लेके आए थे वो घर से, अपने बढ़िया खेतों से निकाल के आलू शानदार, पानी लेके आए थे और लेके आए थे चाय। अब आप सोचिए, आप कहीं भी मैराथन, अब कतर में कहीं मैराथन होता है, उनके बीच में कहीं पहुंच जाइएगा और सब्जी पूड़ी खाना शुरू कर देना और चाय लेके बैठ जाना, लोग हंसेंगे आप पे कि ये देखो ये भागेंगे, तो बिल्कुल वही हालत है। और अगर मैं गियर की बात करूं कि क्या क्या पहनने के लिए था, तो क्लिफ जो थे उनके पास एक पैंट थी जो पहन के आए थे फटी हुई, वेंटिलेशन के लिए। जब उन लोगों ने पूछा भाई ये फटी पैंट क्यों, अरे वेंटिलेशन के लिए भाई। नीचे खराब से पुराने स्नीकर्स उन्होंने पहने हुए थे। और एक रनर जो था उसने बोला भी कि भाई आप मजाक करें ना सर, आप मैस्कॉट हो मुझे लग रहा है, आपको ना बीच में ये हंसी मजाक के लिए बुलाया होगा, सच सच बताओ मुझे। मैं क्लिफ ने इग्नोर किया और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके खड़े हो गए। अब रेस शुरू होने वाली है 870 किलोमीटर सिडनी से मेलबर्न। अब रनर्स जो है स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल रनर्स जो हैं बड़े शानदार तरीके से। इसमें एक बंदा था जो रिकॉर्ड नाम का, जो भाई साहब एक प्रोफेशनल रनर थे। और इत्तफाकन क्या हुआ कि रेसिंग लाइन पर ये क्लिफ यंग के बिल्कुल साइड में खड़े थे। अब इन्होंने देखा कि यार ये बुजुर्ग आदमी मेरे साइड में खड़े, इनसे बात तो करें। तो मुड़े जो, उन्होंने बोला क्लिफ आपका नाम क्लिफ है ना, राइट ओके, क्या करोगे अगर आप जीत गए तो, इतनी बड़ी रकम है, क्या करोगे प्राइज मनी का। तो 61-year-old क्लिफ जो थे वो बोले है प्राइज मनी, तो बोले हाँ हाँ $10,000 है ना इनाम। अब क्लिफ जो थे वो बोले है मजाक कर रहे हैं ना, 10,000 मिल रहे हैं यहां पे जीतने पे, मुझे नहीं पता था, तो ये तो बहुत सारे आलू ले लूंगा मैं इससे, मुझे तो बहुत फायदा है, बड़ी सादगी के साथ, बिकॉज ही डिडंट नो के ये रकम भी मिल रही है यहां पे जीतने के लिए। वो तो अपने ईगो के चक्कर में आए थे, उन्हें नहीं पता कि कुछ इनाम भी मिल रहा है। जो ने खैर हंस के उनसे हाथ मिलाया, बोले हम में से जो भी जीता ना डील करते हैं, आधे आधे कर लेंगे $10,000 में, ठीक है, मैं जीता तो आपको $5,000, आप जीते तो $5,000 मेरे, ठीक है डन है, मे द बेस्ट मैन विन। और क्लिफ ने कहा ठीक है डन है डील। अब क्लिफ जो थे वो तैयार हुए,
गानों पर की गई, रेस हुई शुरू, प्रोफेशनल रनर्स भाग रहे, उन्होंने भागना शुरू किया, क्लिफ पीछे पीछे छोटे छोटे कदमों के साथ भाग रहे, उनके लटकते ढीले से हाथ, और भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, लग ही नहीं रहा था कि क्लिफ भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये कर क्या रहे हैं, होता ना छोटे छोटे कदमों से भागना, बिल्कुल वैसे कर रहे थे वो। तो क्लिफ जो थे वो बहुत पीछे चल रहे थे, बाकी सबके सब रनर्स जैसी गोली शूट हुई गोली की तरह आगे हो गए। शाम तक तो लोग पहुंच चुके थे मिटागोंग, एक नाम एक टाउन का नाम है, वो क्रॉस कर चुके थे, और क्लिफ यंग सबसे पीछे चल रहे हैं। कितना दूर थे पता है क्लिफ यंग उस टाइम पे? 130 किलोमीटर दूर थे लोगों से, 130 किलोमीटर दूर, इतना दूर वो हो चुके थे रेस में, यानी कई घंटों का सफर उन्हें तय करना है अभी। और लोग जो पहुंचे थे वहां पर रेस को देखने के लिए, वो तो हंसने के लिए पहुंचे थे क्लिफ पे कि एक बुजुर्ग आदमी भी दौड़ रहा है इसमें, जरा उसको भी देखते हैं। पर हैरानी लोगों को ये थी कि आदमी भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को ये था कि बुजुर्ग आदमी है, अभी हड्डियां जवाब दे जाएंगी, कहीं ना कहीं गिर जाएगा, पर ये तो भागे ही जा रहा है। अब क्या हुआ कि रात हो गई तो एक बड़ी कमाल की चीज हुई, लोग एग्जॉस्ट हो गए, जो रनर्स थे उनको भी आराम करना है ना, तो मेटागोंग जो टाउन है वहां पे वो रुके थोड़ा सा आराम करने के लिए, चेक पॉइंट्स पे सबके सब आराम से रेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अगले दिन की तैयारी के लिए, मसल्स वगैरह खींच रहे हैं अपने, थक चुके हैं। दूसरी तरफ क्लिफ यंग जो थे उन्हें बीच में बस भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा चलो सूप वूप पी लेते, तो उन्होंने सूप पिया मस्त एकदम। उन्हें पता ये चला कि बाकी सारे जो आगे रनर्स हैं वो तो अपना सामान पैक करके सो गए, अब वो बड़े कंफ्यूज हो गए। अब आप इस आदमी की सादगी को समझिएगा, वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रात में सोने को मिलेगा, उन्हें ये पता ही नहीं है कि 18 घंटे भागना है, यही सिस्टम है अल्ट्रा मैराथन का, और बाकी 6 घंटे की नींद पूरी करनी है, ये उनके माइंड को पता ही नहीं, वो तो ये मान के चल रहे हैं लगातार भागना है 870 किलोमीटर और वो यही सोच के चल रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया चलो फिर एक काम करता हूं मैं भी सो जाता हूं, तो उन्होंने 5 घंटे के हिसाब से सोचा मैं भी अलार्म लगा लेता हूं उठ जाऊंगा। अब बेचारे ने अलार्म लगाया 5:30 बजे का सुबह का कि उठूंगा और फिर भागूंगा, और क्लिफ आराम से सो गए। अलार्म बजा क्लिफ उठे और फिर भागने लगे, जोर आंखें मलते हुए भाग रहे हैं, जोर भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। और क्लिफ जो थे जब उन्होंने भागना शुरू किया तो उन्हें यह पता था कुछ देर में अभी सूरज उग जाएगा, पर वो भागते रहे, सूरज उग ही नहीं रहा, भागते जा रहे, सूरज उग ही नहीं रहा, कह रहे ये क्या बात हो गई। फिर उन्होंने रुक के देखा तो बड़ी कमाल की चीज हुई, उन्होंने बेचारों ने, क्योंकि उनको दिखता ठीक से नहीं था, आंखें थोड़ी कमजोर हो गई थी उम्र की वजह से, उन्होंने अलार्म 5:30 बजे की जगह सुबह के रात के 2:30 बजे का अलार्म लगा लिया था गलती से, बड़ी ऑनेस्ट मिस्टेक। और बेचारे जब उठे तो उन्हें लगा सुबह के 5:30 हो रहे होंगे, और बेचारों ने ना घड़ी देखी ना कुछ, भागना शुरू कर दिया और भागते रहे। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आया अरे रे रे ये मैंने क्या किया, पर भागते रहे। अब उन्होंने सोचा अब नींद तो खुली गई है, अब क्यों रुकूं मैं, अब तो भागूंगा मैं। सामने जैसे भेड़ भाग रही है उसे पकड़ना है, वैसे ये बिना रुके चलते चले जा रहे थे। बाकी सब सो रहे थे अभी, क्योंकि सबको 6 घंटे की नींद चाहिए, और क्लिफ भाग रहे थे। फिर बाकी सब जो थे एक र्यूमर भी फैला रहे थे, एक अफवाह फैला रहे थे, लोग कह रहे थे भाई ये जो है ना वो बुजुर्ग फार्मर किसान वो सबसे आगे, और ये खबर फैलती चली गई। बाकी जो रनर्स थे जो धीरे धीरे इनकी आंखें खुल रही थी, वो कह रहे थे अरे मजाक कर रहे हैं, रूमर है, ऐसी अफवाह है, ऐसे थोड़ी होता है, वो बुजुर्ग आते इतना थोड़ी भाग लेगा, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। फिर कुछ देर बाद सूरज चढ़ा, किलोमीटर्स गिने जा रहे थे, हिसाब किताब हो रहा था, बाकी सब सो रहे थे, क्लिफ आगे जा चुके थे। मीडिया को पता लगा और मीडिया तो मतलब दीवाने हो गए, वो सबके सब देखने पहुंचे भाई कौन है, और क्लिफ यंग की रिपोर्टिंग पूरी जगह होने लगी। 61 साल का एक हीरो भागता देखिए आज उन्हें टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह उनकी बातें चल रही है और सबके सब तैयार हैं। भागते भागते रिपोर्टर ने पूछा क्लिफ टेल अस ये आपकी जो पैंट है ये फटी हुई क्यों है? क्लिफ ने बोला
एयर कंडीशन और भागे जा रहे और बाकी जो सब थे वो बेचारे जोर लगा रहे थे क्योंकि जिनकी आंखें खुली थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 61 साल का एक बंदा, एक किसान इतना आगे निकल चुका है। उन्हें तो ये लगा था कभी ना कभी तो ये बुजुर्ग आदमी है, एक टाइम आएगा इसकी हड्डियां जवाब दे देंगी, गिर गिरा जाएगा कहीं पे, एग्जॉस्ट तो हो गई, लेकिन हो ही नहीं रहा। ये तो अगला दिन आ गया, लोकल्स भी पहुंच गए। अब ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, जिसको इंटरेस्ट भी नहीं था वो भी आ रहा था। एक ऐसे शख्स को देखने के लिए लोग पहुंच रहे थे जिसको खुद ही की लिमिट पता नहीं है, बस भागे जा रहा है। रात तक, दूसरी रात भी भागते रहे जोश और खरोश के साथ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें शोहरत मिल रही है, मीडिया में नाम मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भागने से मतलब है। उन्हें सब बड़े एक्साइटेड थे, लोग अब सपोर्ट करने लगे थे उन्हें। एक लेडी रिपोर्टर ने अचानक से भाग के उनसे पूछने शुरू किया, हेलो मिस्टर यंग, और भाग रहे हैं, वही भाग रहे हैं, रुक नहीं रहे, आप एंड तक पहुंच जाएंगे क्या? तो क्लिफ यंग बोले, यस ऑफ कोर्स, मैं मैडम पहुंच जाऊंगा, पक्की बात है, मैं यही मान रहा हूं कि आगे मेरे भेड़ है और मैं बस उसे पकड़ लूंगा, हे। और वो रिपोर्टर भी साइड हो गए, कन्फ्यूज हो गए कि यार ये कैसा आदमी है, अलग ही है ये, और वो आगे बढ़ते चले गए। मगर कुछ देर के बाद हुआ ये कि सच में बॉडी तो बॉडी होती है ना, चाहे वो किसी नौजवान की हो या किसी की भी हो, और वो बॉडी पे दिखने लगा थकावट, वो लिमिट अभी क्रॉस हो रही थी, वो एक पत्थर से टकरा के ट्रिप भी हुए, उन्हें बहुत गंदी चोट लगी, खरोंच आ गई, उठे क्लिफ और उन्हें अंदाजा हुआ शायद उनका शोल्डर जो है डिसलोकेट हो गया है। मगर फिर भी वो कंटिन्यू उन्होंने रखा, रुके नहीं, वो रेस्ट नहीं, हल्का सा बस रेस्ट किया और थोड़ी सी नींद ली, और बाकी सब बड़े खुश थे, रेसर जो पीछे थे उन्हें लगा अरे बाप रे सो गए ना वो, चलो अच्छी बात है, बाप रे बाप, चलो फाइनली अभी उम्र का असर दिख रहा है, ये आदमी बस होता रहे, अभी उठे ना जब तक हम ना जीत जाए। अब जो बंदा था ना साथ में, जो जिसने कहा था कि अगर मैं जीता तो आधे आधे कर लेंगे इनाम का पैसा, वो तो प्रोफेशनल है, वो पीछे था, वो उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ, और वो भागना शुरू कर रहा था, वो भी टेंशन में आ गया कि यार जिस बुजुर्ग को मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था वो वहां तक पहुंच गया। बोले रिपोर्टर ने पूछा, जो आप क्या कहना चाहेंगे क्लिफ यंग के बारे में? तो बोले वो तो मेरे साइड में थे, वो आदमी दुनिया को धोखा दे रहा है, वो तो लिटरली घोड़े की तरह भाग रहा है, वो मुझे लगा ये बेचारा है तो, और सब मुंह देख रहे थे कि एक प्रोफेशनल रनर जो है वो इतना बेचारा साउंड कर रहा है। और फिर जो ने एक बात बोली, बोले बहुत जोर लगा चुके वो थक जाएंगे बेचारे, उनका ख्याल रखिए, ये सब चीजों में ट्रेनिंग लगती है। दूसरी तरफ क्लिफ यंग जो थे उन्होंने सुना कि जो है वो आ रहा है उनके पीछे पीछे, वही उनका साथी जिसके साथ उन्हें प्राइज मनी शेयर करना है। क्लिफ की बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी, सच में वो थक रहे थे, उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी थी अपनी बॉडी की, जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, गम्स दर्द कर रहे थे। एक पॉइंट पे आके पता क्लिफ ने क्या किया, उनके दांत असली नहीं थे तो उन्होंने दांतों को निकाल के फेंक दिया है सड़क पे, बोले मुझे नहीं चाहिए, वो जो दांत आपस में टकराते हैं कट कट कट कट कट कट तो वो दिक्कत हो रही है मुझे, तो उन्होंने नकली दांत ही निकाल दिए अपने, बोले ये नहीं चाहिए मुझे। अब वो जानते थे कि लोग अभी करीब आ रहे हैं पीछे से भागते हुए और वो हारने वाले हैं। फिर क्लिफ ने आगे की तरफ देखा और उन्होंने कहा ये तो कुछ फिनिश लाइन जैसी लग रही है, क्या फिनिश लाइन आ गई है? और उन्हें अंदाजे नहीं वो कब से भाग रहे हैं। ही पुश्ड हिमसेल्फ और जोर ला के भाग रहे थे, जबकि हड्डियां जवाब दे चुके हैं। हमने देखा काफी, अगर आप चलेंगे तो आपको महसूस नहीं होता कि पैर कुछ कई जगह सुन पड़ जाते हैं, वो वाला हाल हो रहा था। लोग तालियां बजा रहे हैं, क्लिफ ये क्लिफ गो एंड वो ने लग रहा है पीछे से जो भी आ रहा है वो जिसके साइड वो खड़े हुए थे रेसिंग लाइन पे, वो बड़े टेंशन में आ गए, लेकिन भागते रहे एंड ही डिड इट, फाइनली ही एक्चुअली वन, वो जीत गए। लोगों के लिए क्लिफ यंग की जीत ऐसी थी कि जैसे क्लिफ नहीं जीते हैं हम जीते हैं, ह्यूज विन। उन्होंने पीछे देखा भी नहीं, पर जब मुड़ के देखा तो कोई पीछे नहीं आ रहा था, उनका दिमाग इतना ज्यादा थक चुका था कि ही स्टार्टेड हलूसिनेटिंग फिनिश लाइन के पास कि कोई ना कोई तो पीछे है। तो क्लिफ यंग ने और जोर लगाया भागने का, और जानते हैं क्लिफ यंग ने तो ये रेस खत्म करी, वो जीत गए। सेकंड आने वाला कितना दूर था इनसे,
जिनको लोग बुजुर्ग कह रहे थे। सेकंड आने वाला बंदा था जॉर्ज पेरदोन नाम का। ये आदमी 10 घंटे पीछे था, 10 घंटे बाद आया वो। उसके बाद जो बंदा था जिगी वो थर्ड आया, और फिर जो का नंबर आया जो साथ में था क्लिफ यंग के, शुरुआत जिसने करी थी। क्लिफ यंग ने जीत हासिल करी जानते हैं कितने टाइम में? 5 दिन 15 घंटे 4 मिनट। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 दिन से हराया उन्होंने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को, तोड़ा 2 दिन से तोड़ा ये, अनथिंकेबल। उन्होंने सबको हरा दिया जो अपने आप को मास्टर समझ रहे थे, सबको हरा दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हाँ भाई वो $10,000 क्या हुए जो शेयर करने थे? ये भी सुन लीजिए, $10,000 जो है जीतने के बाद क्लिफ यंग को मिले, और उन्होंने उस कैश का वही किया जो सिर्फ और सिर्फ क्लिफ यंग जैसा बंदा ही कर सकता है। उन्होंने जो चेक मिला था उसे कैश आउट कराया, और उसके बाद हर एक भागने वाले को कैश देना शुरू किया, बांट दिया सब कुछ। $2,000 सबके हिस्से में आए, और जब जो पहुंचा जो ने बोला भाई हमारा वादा था कि आधा आधा होगा, ये क्या बात हुई? तो क्लिफ ने बोला हाँ मुझे याद है, सॉरी मैंने ज्यादा उड़ा दिए, मेरे पास $3,000 बचे तू रख ले। और वो जो बचे कुछ $3,000 थे वो भी जो को उन्होंने दे दिए। ही गेव अवे एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें पहली बात तो पता ही नहीं था कि प्राइज मनी मिल भी रहा है। वो तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने निकले थे कि दुनिया कह रही है तुम तो बुजुर्गों को कुछ कर नहीं सकते, तो लोगों को गलत साबित करने के लिए ही डिड इट, नॉट फॉर द प्राइज मनी। और कहानियां खत्म नहीं होती, उनके जो भागने का तरीका था ना 1983 में जिस तरीके से वो भागे और फेमस हुए, तो उनकी टेक्निक भी फेमस हुई, और टेक्निक का नाम है यंग शफल, उनके लास्ट नेम पे, क्योंकि क्लिफ यंग उनका नाम है। यंग शफल के नाम से शफलिंग टेक्निक अल्ट्रा मैराथन में अब फेमस है, दुनिया भर में ये फॉलो किया जाता है, दुनिया भर में माइंड यू। लूज शफल उनके भागने का तरीका, और ये बहुत शानदार टेक्निक है भाई, तो रनिंग में मदद मिलती है, मैराथन में, रेसिंग में। बट क्लिफ यंग, क्लिफ यंग मैं फैन हो गया इस बंदे का भाई, लिटरली पढ़ने के बाद मैं फैन बॉय हो गया। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एज यू आर, यू डोंट नो, आपके अगर दिमाग को लिमिट नहीं पता ना, अगर दिमाग में मीटर नहीं लगा हुआ ना कि यहां तक ही जा सकता हूं मैं, तो आपका माइंड कहीं तक भी ले जाएगा आपको। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं ना, इफ योर माइंड इज लिमिटेड टू समथिंग, देन यू विल स्टॉप एट इट, या उससे कम में। जैसे हम जब बार्गेनिंग करने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई कम से कम जो है 200 तो बोलो, तब जाके तो वो रेट का जो हम लिमिट देते हैं ना, वैसे ही क्लिफ यंग ने कोई दिमाग को लिमिट ही नहीं दी। उन्होंने कहा मैं तो जीत के आऊंगा, बात खत्म हो गई। और क्लिफ यंग ने ये करके दिखाया। अब ये स्टोरी आपके वाले, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। आई होप यू लाइक्ड इट, बिकॉज आई पर्सनली लव द स्टोरी, एंड बताइएगा आपको कैसी लगी प्लीज। 666-22-107 पर स्टे ट्यून्ड।

0: लिटरली दिल से जो फैन होता वाला। एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाल साहब, क्या हाल है?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
0: वबरकातुहु। जी साहब, क्या हाल है बताइए।
1: अरे यार भाई, आपने हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें बता दी है कि वो लोग जो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपनी सोच के दायरे को सिमेंट कर रखे हैं, उसमें हाँ। बिखराव आ जाए।
0: बिल्कुल भाई, बिल्कुल आना भी चाहिए, बिखराव ये बड़ा जरूरी है।
1: यार भाई, कसम से ये स्टोरी सुनने के बाद है ना, आमिर उस्मानी का 4 लाइन का शेर याद आया मुझे।
0: जी इरशाद।
1: उन्होंने कभी अपना कलम उठाते हुए लिखा था कि जलाल आतिश बरको से हाथ पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब भाई, एकदम फिट किया है आपने, एकदम फिट।
1: राम में है तेरे सिराम जलजलों का राजे ने, हर एक पे एक इंकलाब पैदा कर।
0: क्या बात है, क्या बात है जमाल साहब, बहुत खूब बहुत खूब, मजा आ गया, एकदम फिट फिट फिट टू शेर था ये।
1: मुजफ्फरपुर के एक शायर है महशर आफरीदी, वो कहते हैं कि मैं जो अपनी जवानी के सुना दूं किससे।
0: हाँ, ये तो पता है।
1: ये जो लौड़े हैं मेरे पांव दबाने लग जाए।
0: पर ये तो सोचिए, तो जवानी का किस्सा भी नहीं है उनका। ये तो बाद का किस्सा है इनका, जब इतनी तबाही मचा रखी है तो ये मैं
1: हाँ। ये तो कतई बवाल बुड्ढा, झंडा भी गाड़ा तो कैसा। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग चले उसका पैर दबाने।
0: वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं बताऊँ, मैं इस जब मैं पढ़ रहा था ना जमाल भाई, मैं इतना इम्प्रेस हो गया था ना, मैं कहा यार ये बंदा अगर इस एरा में होता ना, मैं इसको फॉलो भी करता, मैं खुद इसका पेज बनाता, मैं फैन हो गया क्लिफियन का। मतलब मेरे माइंड को एक अलग सी चीज अनलॉक हुई जो मुझे भी नहीं पता थी।
1: सच में इस स्टोरी में कई एक चीजें हैं ना जो बहुत उभर के एकदम निखर के आती हैं, बिल्कुल आया तरीके से। बिलखसूस ये है कि इंसान अगर किसी भी चीज पर हिम्मत ना हारे और एक अपना अज्म जो इरादा होता है उसके अंदर अगर पुख्तगी रख के कोई कदम आगे बढ़ाए, तो उसको वक्त या हालात या यूं कह लीजिए कि थोड़ा बहुत सेहत उन चीजों से हरा नहीं सकती है।
0: हाँ बिल्कुल, और बता रहा हूँ ये जो है ना इनका मैंने इंटरव्यू भी देखा, मैं इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा था, उसमें उन्होंने कहा कि इनकी बेपरवाही जो थी ना उसकी वजह से जीते हैं ये बेपरवाह थे, ही डिडंट केयर कि क्या है क्या नहीं है, इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कितना कर पाऊंगा, फर्क ही नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपने लिए दौड़े।
1: मुझे लगता है इस स्टोरी में उस बंदे के दिमाग में खाली एक ही चीज था, नहीं मैं कर सकता हूँ।
0: हाँ बस मुझे करके दिखाना है,
1: अगर मैं कर सकता हूँ तो उसने किया भी, प्रूफ भी करके दिखा दिया।
0: तो वाली चीज है, तो बस उम्मीद है कि सबको अच्छी लगे कहानी, क्योंकि मेरी मेरी पर्सनल
1: सबक है भाई कि आप अगर सोच रहे हो, तजज्जुब में पड़े हो, कहीं आपको तशवीश है किसी चीज में, कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, इन सब चीजों से जब परे हटकर सिर्फ ये होगा कि नहीं मैं कर लूंगा,
0: तो वो हो जाता है। एग्जैक्टली, तो मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट लगी भाई ये कहानी, मुझे बड़ा मजा आया, एंड आई होप सबको अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच जवाल भाई,
1: बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत
0: थैंक यू भाई, थैंक यू, बड़ी बात है,
1: जबरदस्त भाई,
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत प्यार दिल से मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो आप भी अपना ख्याल रखिए एंड देखते हैं अगले लोग क्या बोलते हैं। पर जमाल भाई बहुत खूब शेर सुनाए आपने इस पे, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट भाई, थैंक यू भाई।
1: नहीं वो हकीकत में रियल में भाई कि वो सच में अगर इंसान है ना, उसमें मुसम्मम कर ले, पुख्ता इरादा अगर कर ले ना, तो होता यह है कि हवा के दोष पे भी दिए जलते हैं अगर इरादा पुख्ता।
0: क्या बात है, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जमाल भाई कॉल करने के लिए मेरे भाई, बहुत प्यार आपको।
1: ओके भाई, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया
0: जज़ाकअल्लाह भाई,
1: स्टोरी सुनाने के लिए। जरा सा भी कान इधर उधर, आप ना झपकी ना कुछ हुआ, बस बड़े एकदम गौर से सुनते चले आए।
0: बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच।
1: अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी दिन मुझे मौका मिल जाए तो मैं आपकी खिदमत कर दूँ।
0: अरे नहीं नहीं भाई, अरे नहीं नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
1: अरे मेरे भाई बहुत साथ दे रहे हैं, आप मेरा सच बता रहा हूँ, मैं यही वो रास्ता होता है ना जहाँ मेरी आंखें झपकती थी और हर रोज झपकती थी, हर रोज मेरी इस ट्रैक से उस ट्रैक में गाड़ी चली जाती थी यार, ऐसा भी होता था।
0: भाई संभल के रहे, और आप क्लिफ यंग है भाई, आप भी क्लिफ यंग से सीखिए कुछ, आज की कहानी इसलिए थी, कोई लिमिट नहीं भाई,
1: वही बात था ना कि इंस्पायरिंग वाली, बहुत जबरदस्त,
0: थैंक यू भाई,
1: सीखने वाली चीज है,
0: रियल में, ओके
1: बहुत शुक्रिया।

ये मैं सही बता रहा हूँ, ये हम मिलेनियल्स जो है ये इस गाने से कितने कितनी यादें ट्रिगर हो जाती है आपको पता है आपको, जिसकी हद नहीं। खैर मेरी साइनस वाली आवाज़ आपको कैसी लग रही है, मज़ा? नीजल में भी आपका भाई ना, जैसे हिमेश भाई ने आग लगा रखी है ना, तो आपका भाई भी आग लगाया है। वैसे है भाई जेंजिस को क्या मालूम जेजी भी किस बला का नाम था भाई, 2004 की एल्बम है ये रोमियो, क्या एल्बम थी भाई। खैर एनीवे दिस इज माय इंट्रो, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ।

0: wake up.
1: अरबाज भाई ने मुझे मैसेज करके हैरान कर दिया भाई, कह रहे हैं 2004 में एल्बम आई थी, 2005 में तो मैं पैदा हुआ हूँ। भाई यार अरबाज भाई कल से सर बोला करें आप, नहीं सर तो बोलती हैं आप, सर मत बोला करें, बड़े भैया बोला करें आप, ठीक है? और मैं अगर डांट दूं आपको सुनना पड़ेगा आपको, समझे अरबाज? हाँ अब ज्यादा मेरे से वो फ्री होने की जरूरत नहीं है, बड़ा भाई हूं मैं। वाइपर लेके आना, सुन नहीं रहा है ये, बताऊं अभी मैं? कह रहे आज आपने फ्रेंच नहीं बोली, बोलो।

भाई मन तो कर रहा है मेरा। जिशान भाई ने बड़ा कमाल का मैसेज किया। जिशान शरीफ भाई कहते हैं कि देखो कहानी में जैसे क्लिफ यंग ये मान के चल रहा था, भाग रहा था कि उसके सामने भीड़ है, तो भीड़ के पीछे पीछे भाग रहा है, तो उसने इस खत्म कर दी। कह रहा है मैं अगर भागता तो ये मान के भागता कि बेगम जो है पीछे भाग रही है, मैंने कुछ गलती कर दी है। भाई दो दिन पहले हो जाती रेस खत्म, दो दिन पहले। कह रहे नया रिकॉर्ड बना है जिशान शरीफ ने, और जिशान शरीफ यूं ही नहीं रही, फिर वो फिनिश लाइन में क्रॉस कर दी। कह रहा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे नहीं मैं 800 किलोमीटर और दौड़ूंगा। रेस अभी बाकी है। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्लिफ भाई की हॉर्स पावर तो बता दो, क्या प्लग इन हाइब्रिड थे? जुबैर भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। नियाज भाई वालेकुम सलाम, लेकिन कुछ तो हॉर्स पावर थी भाई इसकी, ये जुबैर भाई नॉर्मल तो नहीं था क्लिफ भाई। जिशान भाई पता करो कहाँ, क्या पाकिस्तान इंडिया पहुंच गए हो? तो नया रिकॉर्ड आया है सामने, जिशान भाई ने जो है क्रॉस कर दिए 3-4 बॉर्डर्स। जिशान भाई फिर से निकल गए और आगे पहुंच गए क्या, नेपाल? जिशान भाई गुड वन यार। एक मैसेज है, कौन सा पेट्रोल डाला था, 95, 90, 91 या 98? कहानी देखो मजा आ जाएंगे। एक वैसे आप तो हमारे मोहतरम हैं सर, आप हमें कुछ भी बोले हम शांति से सुनेंगे। मैं तो आपको सबसे पहले ही सर, नहीं वो सर मत बोला करो अरबाज भाई, भाई बोलो यार अरबाज भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुमसे हंसी मजाक नहीं करूंगा क्या मेरी जान? ऐसी बात कर दी आपने, बड़े भाई तुम करेंगे बस हंसी मजाक, और कौन करेगा? एक वैसे वालेकुम सलाम बड़े भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाए कैसे? मोहम्मद नईमुद्दीन साहब का मैसेज है, एंड देन एक आया मेरे पास मैसेज भागते हुए, अशफाक भाई अभी भी दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़े होंगे। हाँ हाँ ऐसे नहीं, आप देखिएगा कि क्लिफ यंग कैसे दौड़ा, एंड यू विल गेट द आइडिया, बिकॉज क्लिफ यंग का जो दौड़ना है बड़ा कमाल का है। यू हैव टू सी इट टू अंडरस्टैंड इट। 875 किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं? यहाँ पे गर्मी में रोड क्रॉस करने के लिए कैब कर लेते हैं लोग, वो बंदा 870 किलोमीटर भागा है भाई। कौन से मेंटल स्टेट हो गया आप सोचिए। और जिशान भाई ने एक और अच्छा जो बात कही, उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई ये बताता है आपको कि आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना आपके हाथ में ही है, एंड इट इज़ ऑल योर मेंटल स्टेट बाय द वे। आपके दिमाग को अगर आपने बता दिया कि ये तो हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा, वो रोक नहीं सकता भाई बिल्कुल इसे। बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से। एक मैसेज आया मुबीन साहब का, मुबीन साहब वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे हैं आप? टिक टिक ढोड़ा टिक टिक ढोड़ो। अब मैं ज़रा खबरें ही बता दूँ बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाकी कहानी आपको कैसे लगी आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा 666-22107 पर, आई वुड लव टू नो। ओके सबसे पहली खबर जो है वो है कियादा से, जो कि कदर फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव है यूथ एंगेजमेंट के लिए और लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले बात करी थी। ये बेसिकली अभी एक्सपेंड हो रहा है और इन्वॉल्व करेगा यंग लोगों के साथ साथ और भी लोगों को, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड। और ये एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें अनाउंसमेंट की गई है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स, जो एग्जाम्स होते हैं प्रैक्टिस पेपर्स उन्हें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अगर यूज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तैयारी लगेगी नहीं कि तैयारी हुई, इट विल बी अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। एंड इस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है और एक्चुअल वीकनेस को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका डिस्कशन जो हुआ है ये, इसमें नंबर ऑफ एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है जो एकेडमिक फील्ड से भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहे और पेरेंट्स भी रहे। आई थिंक प्रैक्टिस पेपर में तो AI नहीं होना चाहिए यार, मतलब इतनी समझ तो मेरे में भी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने सिक्योर कर लिया भाई 10 साल का रीअक्रेडिटेड, ये बड़ा वर्ड डिफिकल्ट है, लेट मी ट्राई, टेक टू एक्शन, रीअक्रेडिटेशन, क्या बात है कबीर साहब। ये अक्रेडिटेशन तो मिला है इन्हें, ये इनके फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए मिला है, फाउंडेशन प्रोग्राम एंड टेक्नीशियन सर्टिफिकेट फाउंडेशन प्रोग्राम, और ये जो इन्हें मिला है सर्टिफिकेशन अक्रेडिटेशन, ये मिला है फ्रॉम द कमीशन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज अक्रेडिटेशन। हाँ ये वर्ड लिया हो 10 बार। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज करती है, एक एजेंसी है जो इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करती है। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, अक्रेडिटेशन। ये फास्ट नहीं बोल पाता मतलब क्या, जो भी है। हाँ भाई कह रहे बड़े भाई क्या कहानी सुनाई, क्या आदमी था है ना इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, भाई कब भाग रहे हो फिर? कम से कम 40 किलोमीटर तो भागो, 800 तो कह भी नहीं रहा मैं।

एक मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है? एक सेकंड, किधर है? अच्छा, उसका रिप्लाई अभी करते हैं, अब रुक जाइए। एक मैसेज मुमीन भाई का, मुमीन भाई क्या करें, कबीर जी गुड मॉर्निंग कतर में और आपको तमाम लिसनर्स को गुड मॉर्निंग मेरा भाई, कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल लो है? इसी बात पे गाना चल लो है? रुक जाओ, गाना चलेगा भाई। कौन गाना है? गल सुन, मेरी भी गल सुन, 828 बोहिमिया, नहीं बोहिमिया नहीं है इसमें।

मैंने कहा गुड मॉर्निंग आज हाँ जी, क्या हाल है आपकी? अगर आप सुबह नहीं आए ना तो आपने बहुत सारी गॉसिप मिस करी है। सुबह हमने जो मजे किए भाई, पता मुझे अभी क्या फीलिंग आ रही है, जैसे वो एक दोस्त होता है ना जो बिल्कुल आखिरी में ज्वाइन करता है, उससे पहले सारे बाकी दोस्त मजे ले चुके होते हैं, वही वाला सीन है आज। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना और आपने सुबह मिस किया कि क्या हुआ है मिस कर दिया आपने, बहुत मजे आए भाई आज, कतई मजे खींचे हमने, पर अभी मजे आएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। कहानी जिन्होंने सुनी जरूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। आई एम प्रीटी श्योर आप भी फैन हो गए होंगे क्लिफ भाई के। भाई मैं तो हो लिया, मैं ये हूं।

0: Wake up. Hey, do hawala mein kabir. Yehi kahunga. Subah subah.
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, 8:32। मैं दुहा वाला कबीर। एक भाई कह रहे हैं कि सरोवर भाई के लिए कुछ पैगाम जी पैगाम है आज, उनको बोलिएगा कि वो भागें। ठीक है, उनसे बोलिए कि सरोवर भाई आप कब भागना शुरू कर रहे हैं और आपको 900 किलोमीटर रिकॉर्ड तोड़ना है क्लिफ यंग का। उनसे तोड़वाइए रिकॉर्ड, भागवाइए उनको। सरोवर भाई को बोलो आप अलवकरा से अलखोर भागें, ज्यादा नहीं, 870 की कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अलवकरा से अलखोर तो भागें। हम भी तो कह सकें कोई देसी आदमी जैसे रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ऑल द बेस्ट टू हिम, मेरी तरफ से उन्हें विश कर दीजिएगा। और ये मैसेज है सादिक भाई कह रहे हैं मुझे कहानी रिकॉर्ड नहीं गॉसिप और रिकॉर्डिंग भेज दिया करो, सारी रिकॉर्डिंग चाहिए। सादिक भाई ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो रही हो तुम, भेज दोगे भाई आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। कहानी भेज पाऊंगा मैं, बाकी सब तो नहीं भेज पाऊंगा भाई, क्योंकि क्या है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइव है ना भाई, तो उसके लिए तो आपको हाजिर रहना पड़ेगा, हाजिर रहेंगे तब बात बनेगी, वरना बात नहीं हो पाती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो 666-22-107 इज द नंबर। एंड क्या है मैसेज मेरे पास, अच्छा बाकी मैसेज बाद में पढ़ता हूँ मैं। एनीवे, तो आज कुछ इंटरनेशनली दिन मार्क्ड किए गए उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। आज वर्ल्ड रेबीज डे, बेसिकली ये जो दिन है ये इंटरनेशनली इसको अवेयरनेस के लिए रखा गया है, ताकि लोग समझ पाए कि ये जो वायरल डिजीज़ है किस तरह से फैलती है, किस तरह से इसके इसकी फैटेलिटी के जो सिम्टम्स हैं उनसे बचा जा सकता है और बताया जा सकता है कि ये जो डिजीज़ है ये दोनों तरीके से फैल सकती है, ये जानवरों को भी इफ़ेक्ट करती है, सिर्फ इंसानों के लिए ऊपर नहीं है। तो वेटरनरी और ह्यूमन मेडिकल प्रोफेशंस दे वर्क टुगेदर आज के दिन और इस चीज़ को फैलाते हैं ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके। स्पेशली ये जो इंटरनेशनली मार्क दिन है ये अफ्रीका और एशियन कंट्रीज की तरफ ज़्यादा इसको अवेयरनेस लिए रखा गया, बट पॉइंट टू बी टेकन, ये इंपॉर्टेंट डे है तो इसका मैं कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज है गुड नेबर डे, अगर आपका पड़ोसी बहुत बढ़िया भाई तब तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको अपना पड़ोसी पता ही नहीं कौन है तो मेरे पास कुछ नहीं आपके लिए करेंगे। पड़ोसी तो पता होना चाहिए यार, अगर आप नए नए शिफ्ट हुए तो बात दूसरी है, पर अगर आप नए शिफ्ट नहीं हुए तो ये तो पता होना चाहिए कि पड़ोसी है कौन, भले ही आपसे झगड़ता हो कुछ भी हो पता होना चाहिए। तो आज गुड नेबर डे है, गुड नेबर डे मैं तो सेलिब्रेट कर सकता हूँ, हमारे नेबर बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नेक है माशाल्लाह, और खाना वाना टाइम से भिजवाते रहते हैं, हम उन्हें भिजवाते रहते हैं, तो मैं पूरा इजिप्ट एक्सप्लोर कर लेता हूँ अपने पड़ोसियों की वजह से। इसके अलावा आज है फैमिली डे, जिन लोगों ने आज छुट्टी ली है एंजॉय योर फैमिली डे, जिनकी छुट्टी नहीं है वीकेंड में मना लेना, ये डेटा की तरह कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आज है आज एक और दिन है, पता है वो क्या दिन है, आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन डे, मतलब आज आप कोई भी आए सवाल पूछ लो बिना सर पैर वाला, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं मैं पूछ लेता था, लेट मी जस्ट स्टार्ट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बताओ भाई किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आज है आज का स्टूपिड क्वेश्चन डे, तो मैंने कहा मैं ही क्यों ना शुरुआत कर लूं, है ना, वैसे ही मेरे 2-3 हेटर तो घूम ही रहे होंगे अभी, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, ए देखा कह रहा था ना मैं हाँ, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मेरा सवाल है, जवाब जो दे देगा देखते हैं। एक आज एक और मैसेज है, सॉरी एक और दिन है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट डे इसलिए भी है क्योंकि ये हर साल 28 सितंबर को आता भी है, और इसलिए भी आता है रिमाइंड करने के लिए कि जो ग्लोबल कमिटमेंट है वो ये है कि सब लोगों का राइट है इन्फॉर्मेशन का, मगर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अंधे भटेओ की तरह घूमें इंटरनेट पे, बी वेरी केयरफुल किसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जहाँ से आप ले रहे हैं वो ज़्यादा हो चुका है अभी, सो यू डोंट इवन नो कि मुझे कहाँ से क्या सुनने को मिल रहा है, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, यू जस्ट गो ऑन विद इट, ऐसा नहीं करो। ठीक है, एक मैसेज आया है, क्या लगे कभी आपके हेटर्स, अरे मेरे हेटर्स भर भर के कितनों से लड़ाई करी है मैंने, यूसुफ भाई आपको क्या पता मैं तो ये मानता हूँ कामयाबी के लिए जो है वो ज़रूरी है एक दो हेटर होना यूसुफ भाई। अच्छा प्रिंस भाई कह रहे हैं मैंने क्योंकि सवाल पूछा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो प्रिंस भाई कह रहे हैं मोर ही ने देखा, अरे मेरा भाई प्रिंस भाई एक नंबर भाई, पर आपको कैसे पता कि मोरनी ने देखा, ये एक और हैदर भाई ने भी यही बोला है, तो आप दोनों मतलब मोरनी को देख रहे थे एक मैसेज है मोर को फॉक्स ने देखा होगा नाचते हुए, अच्छा अशफाक भाई, कहीं उस फॉक्स का नाम अशफाक तो नहीं था? बातें तो एक अरबाज भाई कह रहे जंगल में मोर राजा किसने देखा? सरवर भाई ने देखा। आज उन्हीं से पूछ रहे ना, आज सरवर भाई से 1:30 बजे पूछना, सरवर भाई एक बात बताओ, आपने मोर को नाचते हुए क्यों देखा? ये आज आज यही करेंगे, हम आज यही करेंगे। 1:30 बजे आप उनसे पूछेगा, सरवर भाई आपने जंगल में मोर को नाचते हुए क्यों देखा? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको मोर को नाचते हुए देखने की? ये सवाल ये पूछेगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक मैसेज है, मोर नाचा ही नहीं भाई, ये लो

0: मोर को देखते हुए सोच रहे थे भाई इसका स्वाद तो होगा इसकी बनाएगी बर्गर पेटीज सुन नहीं भाई, मैंने सरोवर भाई को देखा मोर को देखते हुए नाचते हुए। तो आज जो है सरोवर भाई से ये पूछना, ये बताओ सरोवर भाई आपने मोर को नाचते हुए क्यों देखा भाई, क्या जरूरत पड़ गई थी 666-22107 ये नंबर है एंड प्लीज बताइएगा। ओह क्या पब्लिक है भाई, सुबह मजा आ जाता है 666-22107 पर डू लेट मी नो। बाकी थे एक सेकंड भाई किधर गया, एक सेकंड मुझे गाना ही नहीं मिल रहा है। एनीवे एक मिनट सरवर भाई, देख लेता ना तो मोर रहता ना मोर नहीं रहते नहीं पर आपको ये जो है करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ये सरवर भाई को बोलना ही पड़ेगा कि सरवर भाई बात बताओ आपने मोर को जंगल में नाचते हुए क्यों देखा, वाई वर यू इंट्रूड, क्या कहते हैं, इंट्रूडिंग देयर प्राइवेसी, वेरी बैड हैबिट। प्रिंस भाई कॉल पर है, अस्सलाम वालेकुम प्रिंस भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
0: व्हाट इज दिस प्रिंस भाई, मतलब क्या हो रहा है ये,
1: हां बस बची लगते की गए
0: ये भी मैं नहीं जानना चाहता, इतनी डिटेल मुझे जाना नहीं है भाई, ठीक है मैं इतने से खुश हूँ तो प्रिंस भाई आप बताइए कैसे लगी आपको कहानी, इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी
1: भाई, कहानी तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। क्लिफ यंग के फैन हो गए आप भी
1: भाई? ये कहानी सुनने के बाद में पिछली वाली कहानी याद आई मुझे बहुत दिन पहले की, जो बंदे ने लोशन वगैरह लगा लिया था, पता नहीं जो जिसकी डेथ हो गई थी।
0: यस यस यस यस यस,
1: खुशी की बात यह है कि आजकल अपने लोगों को मारना छोड़ दिए
0: है ना, बहुत जल्दी बहुत जल्दी अपनी पे आएंगे, बहुत जल्दी प्रिंस भाई
1: जरूर
0: आएंगे अपनी पे भी आएंगे भाई। और बताइए दिन कैसे जा रहा है आपका प्रिंस भाई, अभी शुरू हो गया दिन आपका या अभी थोड़ा टाइम है?
1: अर्ली मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक
0: शुरू हो जाता है मतलब, तो अभी यार आपका मीटर मतलब अभी चालू है, वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगा हो सकता थोड़ा टाइम लगता हो, 7:30 बजे 8 बजे नाश्ता वाश्ता करने के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए आई वॉज क्यूरियस टू नो, बट एनी वे बढ़िया है, दिन बढ़िया जाए आपका प्रिंस
1: भाई। हाँ ड्यूटी में किसी कसम की कोई कोताही नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी इज ब्यूटी भाई, मैं आपके साथ हूँ,
1: इसीलिए भाई ऑन टाइम पहुंचना जरूरी होता है,
0: बिल्कुल
1: बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है,
0: बिल्कुल जरूरी होता है भाई, मैं आपके साथ।
1: जहां तक आपके सुबह के सवाल का मसला था भाई, मेरे पास आंसर बहुत सारे हैं, बस ऑन एयर
0: बस फिल्टर फिल्टर करके दिया
1: बस, तो नहीं
0: मैं समझता हूँ भाई, मैं समझता हूँ, मुझे बता ना
1: नाम का भी औरा होता है कुछ
0: और क्या, मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ, मेरे एक ही तो काम है, आवाज और मैसेज समझ लेता हूँ।
1: कॉमन सी चीज बताऊँ
0: जी,
1: पहले तो मैंने अपनी गाड़ी का नंबर भेजा है आपको,
0: हाँ मैंने देख लिया भाई।
1: सेकेंड थिंग आर्ग्यूमेंट, मुझे लगता है कि something like argument is exist, I don't think so, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई argument exist करती है, even in my house it's a very peaceful place, मैं जब भी काम से वगैरह सब चीजों सब सब everything जो बाहर की finish करता हूँ सबसे पहले घर भागने की कोशिश करता हूँ।
0: अच्छा तो आपसे मतलब कोई बहस करता ही नहीं ना घर में ना बाहर?
1: नहीं
0: अलग ही चीज़,
1: बिल्कुल भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की भी तो भाई वक्त हर चीज पे भारी है, मुझ पे भी
0: फिर ठीक है, मतलब अरे आदमी डार्क साइड पे जा रहा है। ओके ओके,
1: वैसे तो कोई अब तक तो ऐसा कोई मौका आया नहीं है, कहते
0: नहीं इंशाल्लाह आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं
1: इंशाल्लाह, तो इस बारे में बोलने के लिए है तो बहुत कुछ,
0: नहीं नहीं जाने देते हैं, जाने देते हैं,
1: सॉरी हो जाएगी,
0: कोई बात नहीं, हवा का रुख कहीं और है, कोई बात नहीं, ठीक है प्रिंस भाई।
1: देखो भाई बहस उन लोगों से की जाती है,
0: हाँ
1: या तो बिल्कुल एकदम लो,
0: हाँ
1: या तो बिल्कुल एकदम हाई,

0: ये बंदे आपस में टकराते हैं।
1: बात तो सही है, ये इसमें मिडिल ग्राउंड नहीं है, आई गेट इट, सही कह रहे हैं।
0: नहीं नहीं नहीं बंदा लो और हाई आपस में टकराते हैं अक्सर, जैसे तलाबाज, इवन रोड क्रॉस करने वाले, इवन समवन व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द इन टू द मार्केट, ऐसे देख के बिल्कुल ऐसे एकदम इन्हीं का मुल्क है ये तो, ऐसे ही चलते हैं इनका ही। और वो लोग लिटरली बोलते हैं, लिटरली बोलते हैं, कई बार सुना है मैंने, हाथी चलता है तो कुत्ते तो भोंकते ही हैं, फिर क्यों टेंशन ले रहा है।
1: नहीं आई गेट योर पॉइंट, बिकॉज ये जो आपने हाई ग्राउंड और लो ग्राउंड का बताया वो बहुत बढ़िया बताया भाई, आई एम विद यू ऑन दिस, थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, लेकिन आपने टाइम दिया भाई इसके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आई फील आपने बात अपनी टक दी, अब लोगों को मसाला मिल गया है, तो आई एम रियली हैप्पी कि आपने मसाला फाइनली दे दिया।
0: ठीक जरूरी है भाई, जरूरी है। मेरे भाइयों ने इतनी उम्मीद कर रखी है,
1: बिल्कुल,
0: बहनों ने गैंग बना लिए है, तो भाइयों को उम्मीद तो होगी ना,
1: बनता है। नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ प्रिंस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया भाई।
0: जी भाई बढ़िया, लेकिन वल्लाह स्टोरी माशाल्लाह,
1: थैंक यू,
0: स्ट्रगल फॉर, अब कैसे बोलूं मैं आपको, कि बहुत ही बढ़िया,
1: थैंक यू सो मच,
0: और सबको याद आ गई होगी स्टोरी के खरगोश, और
1: डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया प्रिंस भाई, इसलिए बहुत प्यार, बहुत प्यार आप सभी को।
0: मुझे तो सुनने के बाद मैं ऐसा लगा कि इस बंदे को देखने के बाद ही स्टोरी रिलीज हुई है क्या।
1: नहीं आप देखिएगा जरूर, यू विल लव द स्टोरी, आप फिगर
0: आउट कीजिए। जरूर देखूंगा,
1: जरूर देखूंगा,
0: जरूर जरूर देखूंगा भाई। Thanks for your time.
1: No problem, bhai.
0: Have a great day to all of you, all the listeners, and good take care of yourself. Because you
1: are fucking up. Necessary.
0: Thank you, bhai.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. तो भाई प्रिंस भाई ने अपनी बात कह दी है और मसाला दे दिया है। नदीम भाई कह रहे हैं, मैं बताता हूँ प्रिंस भाई, आप मुझसे आर्गुमेंट करो, मैं हार नहीं मानूंगा, आप मुझे नोडो गड्डी फेंक के मारना। नहीं आप मेरे मुंह पे जो है 500 की ऐसी गड्डी लीजिए, फेंक के मारिए। नहीं आपका बनता है यार, मैं कैसे आपसे बहस कर सकता हूँ, आप नोडो की गड्डी मुझे फेंक के मारिए प्लीज प्लीज। फिलहाल तो धाकड़ चलेगा भाई, धाकड़ बढ़िया करके प्रीतम दागा संगीत और मारा भाई रफ्तार, तुमने तो भेरा भाई बढ़िया करके, मौसम बढ़ा देंगे इस गाने से, 8:45 हो रहे हैं घड़ी में, और लटगाड़ के यो गाना सारी छोरियां के वास्ते, मारी छोरी छोरों से कम है कि धाकड़ दंगल से।

0: शो।
1: हाँ जी भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया चल रहा होगा भाई। सवेरे सवेरे जो आए हैं, मैं बता रहा हूँ, वी हैड सो मच फन मैन। क्या मजा किया आज हमने।

0: आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप
1: तो
0: हवाला में कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: आज ऑलमोस्ट 50 होने वाले हैं टाइम फॉर मी टू ऑलमोस्ट साइन ऑफ लेकिन कुछ मैसेजेस मैं पढ़ के ही रहूंगा तो कह रहे हैं कबीर भाई प्रिंस भाई का खाना क्या लिखा है क्या खाते क्या ऐसा कुछ लिखा है प्रिंस भाई ने जो मैसेज किया प्रिंस भाई ऑरा है भाई ऑरा फार्मिंग भाई पूरी चालू है आपके ऑरा फार्मिंग नथिंग भाई थैंक यू प्यारी समझ गई बैक पैक कर लो छुट्टी होने वाली भाई कसम से आज बता रहा हूँ आपने जो नाश्ते का जिक्र कर दिया था ना मोहसिन भाई सवेरे सवेरे मेरी भूख डबल ट्रिपल हो गई है आपके कहने से मैं आपको बताऊँ आप जिम्मेदार है बता रहा हूँ अरसीम साहब ने कहा है अच्छा है और हरबाज भाई ने बहुत सॉलिड पिक्चर बनाई है सो रिमेंबर आज हमें सरोवर भाई से पूछना है कि जंगल में मोर नाच रहा था तो आप क्यों देखने गए दैट इज माई प्रॉब्लम एक मैसेज है नदीम भाई लिखते हैं प्रिंस भाई इज अ जेम ऑफ अ लिसनर माहौल बदल देते हैं माहौल तो बना देते हैं उसमें कोई शक नहीं है प्रिंस भाई ने एकदम फॉर्मूला लेके आते हैं कि ये लो स्वाद अनुसार ये थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डालो एक मैसेज है आज का तेल का ऑमलेट बनाऊंगा अरे भाई ऐसी कमाल की एडिटिंग चल रही है ना भाई मार्केट में ये सही है मैं आपके साथ हूँ अरबाज भाई आई एम विद यू ऑन दिस सो यही पूछ लीजिएगा उनसे सरवर भाई से 1:30 बजे जंगल में मोर नचा तो आपने क्यों देखा वाई वर यू देयर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar यहाँ पे जरूर आएगा बिकॉज यहाँ पे मोर नहीं नाच रहा हम दिख जाएंगे आपको बहुत सारी लाइव वीडियोस एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन के साथ जो जरूरी आपके काम आएगी एंड एक और मैसेज आ गया जाने से पहले सरोवर क्या नंबर है भाई प्रिंस भाई की गाड़ी वो नहीं बता सकता मैं नो नॉट अलाउड आप समझ जाइए भारी है सब कुछ मामला तो अस्सलाम वालेकुम ये लास्ट में पुलिस आती है मकसूद भाई वापस हो जाओ भाई शो खत्म हो गया तो मैं मिलता हूँ आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सवेरे 6 बजे बट फॉर नाउ इजाज़त लेने का वक्त आ गया है 9 बजे न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद ज़रूरी हैं मां सलाम

0: तक पहुंच गई, जो हफ्ता बा हफ्ता 21.5% और साल बा साल 3.7% इजाफा है। इस दौरान 133 ट्रांजेक्शंस मुकम्मल हुई, जो हफ्ता बा हफ्ता 5% और साल बा साल 9.5% कम रही। तंजानिया के वजीर आजम डॉक्टर मोगलू निशेम्बा ने कहा है कि उनके मुल्क और रियासत कतर के दरमियान मजबूत ताबुन के ताल्लुकात मौजूद हैं। उन्होंने खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के ताबुन और सरमायाकारी के मैदानों में इन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया है। और कदर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 23.64 पॉइंट्स या 0.25% के साथ 9,454.04 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 13,055 ट्रांजेक्शंस के नतीजों में 9 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 36 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 6 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में कतर के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुताज बाशम ने एशियन गेम्स के मेंस हाई जंप फाइनल से दस्तबरदार होने का फैसला किया है और कतर एथलेटिक्स फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक की है। जापान में जारी 20th एशियन गेम्स में कतर के बासिम मोहम्मद ने 400 मीटर हर्डल्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बासिम ने सेमीफाइनल रेस 49.55 सेकेंड्स में जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। कतर के मारूफ स्प्रिंटर अब्दुलरहमान सांबा इंजरी की वजह से एशियन गेम्स के 400 मीटर हर्डल्स इवेंट से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब अबूबकर अब्दुल्ला और हातिम हमीद ने एथलेटिक्स के 800 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन गेम्स में कतर की बीच वॉलीबॉल टीम कतर वन, जिसमें अहमद तिजान और शरीफ यूनुस शामिल हैं, राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। कतर वन ने ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल करते हुए फाइनल ग्रुप स्टेज मैच में ओमान को 2-0 से शिकस्त दी। इंडिया और पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। दोनों टीमों के क्वार्टर फाइनल मैचेस आज बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक अगर नॉकआउट मैचेस बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाए, टॉप सीडेड टीम को अगले राउंड में जगह मिलती है। और 3 मैचों की ओडीआई क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी सबसे तेज तरीन सेंचुरीज में से एक स्कोर करते हुए इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ थिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में 8 विकेट से शानदार फतेह दिलवाने में मदद की। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जितना ही, आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस With Ismail Khan.
3: साहिब सुमो अमित ने कल जमहूरी कांगो के सदर के नाम सूबे कावांगो के शहर कैनिच में तैयार हादसे के मुतासरीन पर ताजियती पैगाम भेजा है। वजीर महलत ने कल निजी शोबे में कतरी शहरियों की मुलाजमत से मुतलिक कौमी मनसूबे के आगाज के लिए मुनक्किद किए जाने वाले मुशावरती इजलासों के सिलसिले के पहले इजलास की सदारत की। रियासत कतर ने मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की मुसलसल दरअंदाजी की शदीद मुजम्मत की है। और वजारत तालीम आला तालीम ने निजी तालीम में शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए नए जाब्ता जाति इकदाम का ऐलान किया है। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तितम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन सारा और न्यू स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा, यूसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। तमीन प्रोग्राम आज की दुआ में आज हम एक जामे और अजीम दुआ सुनाने जा रहे हैं। ये दुआ हर मुसलमान के लिए उम्मीद, सहारा और अल्लाह की रहमत का वसी दरवाजा है। वैसे आपने यह हदीस सुनी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ ले तो उसके लिए वो काफी हो जाएंगे। मुहद्दिसीन इकराम ने इसका मतलब ये बताया कि यह आयत कारी के लिए रात की इबादत के कायम मकाम हो जाएगी या फिर हर शर और नुकसान से हिफाजत के लिए काफी होगी। तो सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये दुआ सिखाई,

और ये हमारे परवरदिगार हम पर इस तरह का बोझ न डालिए जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था, और ये हमारे परवरदिगार हम पर ऐसा बोझ न डालिए जिसे उठाने की हमें ताकत न हो, और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाइए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी व नासिर हैं, इसलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। तो सामिन, इस दुआ या इस आयत के शान नुज़ूल के हवाले से ये बात काफ़ी अहम है कि इस्लाम आसानी का दीन है, दिल के बात पर पकड़ाव या मुआखजा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ हमें इस तरह की तलकीन की है कि ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था, यानी वो बोझ न डाल जिसकी हम में ताकत नहीं। और हाँ, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो हम ऐसे हालात में भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। अपनी ख़ताओं, कमज़ोरियों और मुश्किलात के साथ हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि वही कारसाज़ और मददगार हैं। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ें।

डेब्यू 2010 में किया। ओडीआई में उनका डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने नवंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। शुरू से ही एक बॉलर नहीं थे अश्विन, वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर थे। राइट हैंड बैटिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग के साथ अश्विन ने इंडिया को बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन का रिकॉर्ड उनकी ग्रेटनेस को समझने के लिए काफी है। उन्होंने इंडिया के लिए 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज तकरीबन 24 रन्स पर विकेट रहा है, जबकि उनके नाम 37 5 विकेट हॉल्स और 8 10 विकेट मैच हॉल्स भी हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 7 विकेट्स फॉर 59 रन्स है। लेकिन अश्विन की कहानी सिर्फ विकेट्स तक महदूद नहीं है दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3503 रन्स बनाए, जिनमें 6 सेंचुरीज और 14 फिफ्टीज शामिल हैं। आईसीसी के मुताबिक अश्विन टेस्ट हिस्ट्री में वो यूनिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेट्स और 6 सेंचुरीज दोनों अचीव किए। देखिए, कपिल देव का जमाना कुछ और था। कपिल देव वॉज द यूनिक ऑलराउंडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और कपिल देव के बाद यू नो फास्ट बॉलर बैटिंग भी कर रहा हो और यू नो सब कुछ कर रहा हो, तो ये ऑलराउंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिर्फ फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर्स के ही यू नो चंद लोगों में हमें दिखता था। लेकिन स्पिन बॉलर और वो भी ऑफ स्पिनर, बैटिंग भी कर रहा हो और सेंचुरीज भी यू नो स्कोरिंग एक फॉर इंडिया और फॉर हिज टीम, वो बहुत रेयर हमें देखने को मिला। और रविचंद्रन अश्विन जब ये यू नो इंडियन क्रिकेट टीम में जब ये इन्होंने एंट्री मारी थी और उस टाइम ये लग रहा था कि ये सिर्फ बॉलर ही हैं, लेकिन आगे जाकर जिस तरह की पारी यू नो इम्पोर्टेंट इनिंग्स उन्होंने खेली, तो उससे साफ साफ ये साबित हुआ कि इस खिलाड़ी के अंदर में बैटिंग का भी टैलेंट मौजूद था। नो अनिल कुंबले, एक ज़माना पहले अनिल कुंबले वॉज अ लीडिंग स्पिन बॉलर ऑफ इंडिया, तो अनिल कुंबले के नाम पर भी एक सेंचुरी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं थी। रविचंद्रन अश्विन लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर, वहाँ पर भी वो बैट करके इंडिया को कई ऐसे मुश्किलात यू नो मौके पर ही हेल्प्ड इंडिया टू विन गेम्स और यू नो टू डिफेंड इंडिया अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। और यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आपने सुना होगा कि 500 से ज़्यादा विकेट्स और 6 सेंचुरीज, ये यूनिक रिकॉर्ड है फॉर एनी क्रिकेटर। अश्विन ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। 116 ओडीआईज में उनके नाम 156 विकेट्स हैं, जबकि बैटिंग में उन्होंने 707 रन स्कोर किए। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन ने 65 मैचेस में 72 विकेट्स हासिल किए और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 4 विकेट्स फॉर द 8 रन्स, जस्ट 8 रन्स। उनकी बॉलिंग का सबसे खास एस्पेक्ट था उनका वेरिएशन, ऑफ स्पिन के साथ कैरम बॉल दूसरा और फ्लाइट में तब्दीली ने बैट्समैन के लिए उनको रीड करना मुश्किल बनाया। अश्विन सिर्फ कंडीशंस का अगर मैं बात करूं कि इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि बैट्समैन के टेक्निक और सिचुएशन को समझकर अपनी बॉलिंग में चेंजेस लाते थे। इंटेलिजेंट बॉलर, जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, यह कि आप सिर्फ तिरकी गेंद जो है आप डालते जा रहे हैं, जिस स्पिन ट्रैक नहीं हो वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन स्पिन ट्रैक के बावजूद नॉन स्पिन ट्रैक में भी अश्विन को बहुत सा ऐसे, मैं कहूँगा कि उनको जो सक्सेस है has come from those kind of wickets जहाँ पे ball turn ही नहीं कर, and वहाँ पर अश्विन was lethal. That's because कि अश्विन intelligent bowler रहा है। 2016 में अश्विन के करियर का एक खास साल रहा है और उन्होंने ICC Men's Cricketer of the Year और ICC Men's Test Cricketer of the Year दोनों अवार्ड जीते। उनके कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस में 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर टेस्ट शामिल है, जहां अश्विन ने मैच में 13 विकेट्स हासिल किए दोस्तों। सन 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट्स और सेंचुरी दोनों स्कोर किए और इंडिया की विक्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका इंटरनेशनल करियर 287 मैचेस और 765 विकेट्स के साथ खत्म हुआ। सन 2026 में अश्विन ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेशनल क्रिकेट का एक नया चैप्टर शुरू किया।
वो मेजर लीग क्रिकेट में

फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ शामिल हुए और एम्बल सीक में खेलने वाले पहले इंडियन कैप्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। रविचंद्रन अश्विन का करियर हमें बताता है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, रिसर्च, प्रिपरेशन, इंटेलिजेंस और सिचुएशन को समझने की सलाहियत भी एक खिलाड़ी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। 537 टेस्ट विकेट्स, 156 ओडीआई विकेट्स, 72 टी20 विकेट्स और टोटल 765 इंटरनेशनल विकेट्स। ये नंबर्स अश्विन के 14 साल के इंटरनेशनल करियर की कहानी खुद बयां करते हैं। तो दोस्तों, ये था रविचंद्रन अश्विन, इंडिया का स्पिन विजर्ड, जादूगर, ब्रिलियंट ऑलराउंडर और मॉडर्न क्रिकेट के सबसे इंटेलिजेंट स्पिनर्स में से एक। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. देखिए वेबसाइट से मैं आपको बताता रहूंगा और आपको मैं खबरें भी देता रहूंगा. हो सकता है बीच बीच में कुछ अलग आपको चीट कोड्स भी दे दूं टू रन ऑन डिफरेंट AIs. फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी बहुत कुछ करता है, इसके ऊपर बहुत सारे कोड्स काम करते हैं. बट आई विल लेट यू नो बाद में. फिलहाल जो है आपकी भी सजेशन बड़ी जरूरी है. जुबानी स्लिप हो गई वेबसाइट्स पे तो आइएगा, लेकिन हमारे जो मेन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी रहिए. FM107 कतर, FM107 कतर. तो शुरू करते हैं आज की कुछ वेबसाइट से. बड़ी काम की भाई आज की वेबसाइट, कुछ मजेदार है टाइम पास के लिए और मजेदार होने के साथ साथ कुछ काम की भी है. सबसे पहले मजेदार वेबसाइट से शुरू करते हैं. टाइप करना है आपको Windows 93.net. होगा क्या कि आपके सामने एक बहुत ही प्राचीन युग की विंडो लोड होगी और उसके बाद आपको जो डेस्कटॉप पे नजर आएगा आप नॉस्टैल्जिया में, यादों में खो जाएंगे. मजा आ जाएगा आपको, स्पेशली 90s और 80s से पैदा हुए बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा भाई, कोता ही एकदम. तो उसमें क्या है कि आपके सामने बहुत सारे गेम्स नजर आएंगे आपको, जो रेट्रो गेम्स हैं आप जो है उन्हें लोड कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आपको नजर आएंगी जो बैक इन द डे बहुत चलती थी, बहुत ज्यादा फेमस थी. यू विल लव इट. इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक डाइव एंड मुझे पर्सनली बहुत मजा आया. तो अगर आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं Windows 93.net. कोई स्पेशल साइन अप वाइन अप कुछ नहीं है, कोई अलग से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. इट्स जस्ट दैट यू ओपन द वेबसाइट एंड इट इज देयर. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. क्योंकि मेरे खुद की हिस्ट्री में बहुत बड़े नंबर आते थे भाई, बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं. कोई सब्जेक्ट बढ़िया हो ना हो बट आई लव हिस्ट्री. और एक एक बहुत कमाल की वेबसाइट है, ये है www.cronus.org. मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, CHRONAS, cronus.org. ये वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं और आपको एक आपको वर्ल्ड मैप नजर आएगा. वो वर्ल्ड मैप एयर के हिसाब से देख सकते हैं कैसे बदला, क्या हुआ, पूरी की पूरी हिस्ट्री इतने इंटरैक्टिव वे में सामने आएगी ना, आपको मजा आ जाएंगे. बस क्या हो, सो इफ यू हैव किड्स एट होम जो हिस्ट्री को थोड़ा ऑफ कोर्स बोरिंग लगती है लोगों ने, अंडरस्टैंड इससे समझाएंगे ना आपको, इससे समझाएंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको खुद बड़ा मजा आएगा भाई. बैठे बैठे मैं देखता रहता हूँ उसको टाइम पास के लिए और मेरी हिस्ट्री ना सिर्फ रवा होती है, मुझे और अच्छा लगता है कि क्या बढ़िया चीज बनाई यार, किसी ने सोचा होगा. ये आइडिया अपने आप में बहुत कमाल का है. सो cronus.org ये दूसरी वेबसाइट है. अब तीसरी की तरफ बढ़ते हैं जो कतर में बहुत काम आई. तीसरी वेबसाइट का नाम है simulator.electude.com. एक सेकंड मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. सिम्युलेटर पता है आपको, सिम्युलेटर लिख लीजिएगा उसके बाद डॉट लगा के इलेक्ट्यूड, ELECTUDE. ठीक है, तो simulator.electude.com. इस पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने गाड़ी आ जाएगी और उस गाड़ी को आप बाकायदा कैसे सही करते हैं सीख सकते हैं. ये वेबसाइट आपको सब सिखाएगी, जंप स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन सा वायर कहाँ लगता है, स्पार्क प्लग कहाँ होता है, बैटरी कहाँ होती है, कहाँ कौन सा पार्ट होता है, ये इंजन की बेल्ट क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है और जो जो डायग्नोसिस होता है इंजन का वो कैसे होता है, आप खुद कर सकते हैं उसे एंड यू कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ. मैं सच बता रहा हूँ, आधी चीजें जो मुझे नहीं पता थी भाई, मैं बिल्कुल इसमें अंगूठा छाप मामला है मेरा गाड़ी को ठीक करने के समझने के मामले में. बट दिस वेबसाइट एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अच्छा ये भाई हाँ ऐसे करते हैं. सो यू माइट गेट अ वेरी वेरी गुड आइडिया और बहुत हेल्पफुल लगी मुझे एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के काम आने वाली. यू नेवर नो भाई कब जरूरत पड़ जाए इस चीजों की, तो मैं तो ये बता के रखता हूँ. ठीक है, अब फोर्थ वेबसाइट आज की, आखिरी वेबसाइट का नाम है लर्न और उसके बाद जो है लर्न के बाद आपको हाइफन लगाना है, डैश लगाना है, anything.xyz. ये बहुत ही आलसी आदमी ने वेबसाइट बनाई होगी पर काम की बनाई है. लर्न यानी सीखने वाला, लर्न और हाइफन anything.xyz. इस वेबसाइट का जैसा नाम है वैसे इसका काम है, आप कुछ भी सीख सकते. बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, एंडलेस. इतनी भर भर के स्किल्स है ना इस पे सीखने के लिए और जो स्किल्स आपकी मौजूदा है उनको आप अपस्किल कर सकते हैं. सो ट्राई ऑल दीज वेबसाइट्स एंड लेट मी नो कौन सी आपके काम आई. या किस वेबसाइट से आपके बोर्डम को खिल गया, लेट मी नो. 666-22107 ये शो में बता देना. और दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, बेहद बेहद जरूरी है. मस्सलाम.
1: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107.
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको इत्तला करता हूं कि कैसे इन स्कैम से आप बच सकते हैं. वेल, आज का है स्कैम जो वो है सेकेंड हैंड ओवर पेमेंट स्कैम. इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि स्कैमर्स आपकी अपनी चीज बेचते वक्त ही आपको झूठे पेमेंट्स के लालच में या जाल में फंसाकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं. दोस्तों ये है ओवर पेमेंट ऑन योर सेकेंड हैंड आइटम. कैसे काम करता है इस पर अगर हम बात करें तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोई यूज्ड चीज जैसे कि मोबाइल, फर्नीचर या लैपटॉप बेचने की पोस्ट डालते हैं तो स्कैमर्स फेक बायर्स बनकर आपसे कांटेक्ट करते हैं. वो आइटम खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे यू नो कल वेकेशन पे आना है, आज मुझे ये चाहिए, या फिर मेरे जो ऑफिस में काम है वो इसी यू नो लैपटॉप से निकलेगा, मेरा अपना काम भी ऐसे ही इसी लैपटॉप से होता है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए. ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपको जल्दी जल्दी बताएंगे. वो आपको एक डिजिटल चेक या मोबाइल पेमेंट भेजते हैं जो आपकी मांगी गई कीमत से थोड़ा सा ज्यादा की होती है. इसके बाद वो बहाना बनाते हैं कि गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें तुरंत वापस कर दें. कुछ दिनों बाद बैंक को पता चलता है कि उनका जो ओरिजिनल चेक या पेमेंट है वो फेक था, या जो चेक है वो फेक था. बैंक वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट से काट लेता है जिससे आपका अपना भेजा हुआ रियल पैसा भी चला जाता है और आप एम्प्टी हैंडेड रह जाते हैं. वेल, इस तरह के स्कैम को लेकर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी इस स्कैम के बारे में बात करी गई है कि किसी सामान को खरीदना है और बायर जो है वो आपको पेमेंट करता है, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है कि अरे वो 30,000 की बजाय 40,000 पेमेंट हो गया है, वो कहता है वो 10,000 जो है वो वापस कर दे, फिर आप 10,000 वापस भी कर देते हैं. वैसे ये नए जमाने के नए लड़कों के साथ नहीं होता है लेकिन पुराने जमाने के लोगों के साथ अक्सर हो जाता है कि उनके पास जो मैसेज आता है वो बजाय बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है, जो अपडेट है वो चेक करें, मैसेज पर जो मैसेज डायरेक्ट मोबाइल पर आता है उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद वो बाकी के जो 10,000 है वो पेमेंट वापस उस बायर को जो दिखाता है कि मुझे चाहिए सामान उसको दे देते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट दे भी देते हैं फिर जो आपसे प्रोडक्ट लिया है वो सामने खड़ा होता है, वो आप प्रोडक्ट भी उसे दे देते हैं और वो नदारद हो जाता है. अब फिर जब आपको पता चलता है कि पेमेंट तो आया ही नहीं, आप उसे कांटेक्ट करते हैं, आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपका जो सामान था वो भी जा चुका है, आपने 10,000 रुपए जो दिए थे वो भी जा चुका है, तो यानी कि आपका डबल ट्रिपल नुकसान हुआ है. आप वापस उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे में हमेशा उसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए. मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड की डिटेल्स भी रखें कि यू नो आप किसको आइटम बेच रहे हैं. इवन अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं, आप लैपटॉप बेच रहे हैं, वो किस तरह का शख्स है इसके बारे में भी आपको डिटेल्स होनी चाहिए. इसलिए जरूरी है कि उनका शिनाख्त जरूर करें, उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर या फिर कोई आईडी अगर उनकी है तो वो भी जरूर रखें कि हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़े कि उन्होंने मोबाइल से अगर कुछ गलत काम कर दिया हो तो आपको पता हो कि भाई ये मोबाइल तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आपको पता है कि भाई नहीं वो फला बंदे ने मुझसे खरीदा था और क्यू आईडी जो है या फिर आईडी जो है मेरे पास उनकी है और ये देखिए ये आईडी है. तो ऐसे में आप बच सकते हैं. अलग तरह के स्कैम भी होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपके साथ पैसों का स्कैम हुआ हो सकता है आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट को लेकर स्कैम हुआ हो सकता है आपका मोबाइल जो बंदा लेकर गया है वो कोई और शख्स हो, चोरी वगैरह के लिए इस्तेमाल करे, किसी और क्राइम के लिए इस्तेमाल करे, इस तरह से भी आपके साथ स्कैम होता है. तो उन सब तरीकों से बचने के लिए जरूरी है कि आईडी वगैरह भी उसकी साथ में रखें. लेकिन इन स्कैम से बचने का कुछ तरीका है जो काफी लंबे वक्त से मैं आपको बता रहा हूं. एक्स्ट्रा अमाउंट वापस ना करें. अगर आपको डायरेक्ट मैसेज आया है या फिर इवन आपके मोबाइल पे सच में पैसे आ गए हैं तो आप तब तक ट्रांसफर ना करें जब तक बैंक आपको ना बता दे कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए. बैंक के क्लियरेंस का वेट करें ओवर पेमेंट रिजेक्शन रूल, अगर कोई बायर ट्रांजेक्शन से पहले या बाद में ओवर पेमेंट का बहाना बनाए तो डील को फौरन कैंसिल कर दें, ये 100% स्कैम की निशानी है। सेफ पेमेंट मेथड का यूज करना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, और उम्मीद है कि आज के स्कैम के बारे में भी आपको काफी कुछ पता चला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको इत्तला करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: स्मार्ट मनी।
4: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम कम है इसीलिए सेविंग्स नहीं हो पाते, लेकिन कई मर्तबा असल मसला इनकम नहीं होता, असल मसला होता है आपके हिडन एक्सपेंसेस जो धीरे धीरे हमारी अर्निंग्स को ड्रेन कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे खर्चे छोटे लगते हैं लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि इतने मामूली लगते हैं कि हमारी और आपकी तवज्जो इन पर जाती ही नहीं, लेकिन महीने के आखिर में ये एक्सपेंसेस आपके बजट को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी सेविंग्स को हिला के रख देते हैं। आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हिडन एक्सपेंसेस की, जो आपके इनकम को चुपके चुपके धीरे धीरे कम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा की हमारी जो आदतें हैं उनको लेकर। रोज ऑफिस जाते वक्त कॉफी लेना या छोटे मोटे स्नैक्स खरीदना बड़ी आम बात है ना। एक कॉफी कितना, 15 या 20 रिया, और रोज अगर ली जाए तो महीने के आखिर में ये अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। अगर आप रोज 20 भी नहीं, चलो 15 रियाल की कॉफी लेते हैं तो महीने में लगभग 450 रियाल खर्च हो जाते हैं, जो हमें आइडिया भी नहीं होता। इसी तरह कितने ऐसे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस हैं जो हमने ले रखे हैं। कुछ लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फिटनेस ऐप, म्यूजिक सर्विसेज और ना जाने कितने ऑनलाइन मेंबरशिप्स ले लेते हैं। मसला नहीं है लेना, मसला तब है जब हमें उन्हें यूज करना ही नहीं आता या हम उन्हें यूज ही नहीं करते, मगर बस ऑटोमेटिकली महीने से हमारे पैसे डिडक्ट होते रहते हैं। आप एक फिटनेस ऐप डाउनलोड की थी आपने और सोचा था कि मैं इसे यूज करूंगा, अब हर महीने फ्री चार्ज आप बस यूं ही यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन हर महीने फी चार्ज कर रही है, जबकि वो ऐप आपके इस्तेमाल में ही नहीं है। तो इस तरह से ये पैसे आपके यूं ही जाया हो रहे हैं। वहीं कई बार हम और आप जो हैं सोशल मीडिया पर एड, ऑनलाइन डील्स देखते हैं और हमें लगता है कि अरे अरे हम भी खरीद लें, देखो सब खरीद रहे हैं, देखो सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और हमारा नुकसान ना हो जाए कहीं। और शायद ये हमारी आदत हमें इम्पल्सिव बाइंग की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ डिस्काउंट देखकर एक गैजेट खरीद लेना जो बाद में ड्रॉअर में सिंपली यूं ही पड़ा रहे, डिस्काउंट के बावजूद ये आपके अननेसेसरी एक्सपेंस है। यूं ही हम वेस्ट कर रहे हैं, एसी चला के छोड़ चुके हैं कमरे में, ये सारे हिडन एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। खाली रूम में एसी चलता रहे ये ना सिर्फ पैसे का वेस्टेज है, एनर्जी का भी वेस्ट है और मंथली बिल हमारा बढ़ता है जिससे हमारा बजट भी बिगड़ सकता है। वहीं कई बार छोटी छोटी हमारी डिजिटल परचेजेस, मोबाइल गेम्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, स्टिकर्स हैं, इन ऐप परचेजेस छोटी लगती हैं लेकिन जब ये फ्रीक्वेंटली की जाए तो अमाउंट काफी बढ़ जाता है। यानी हर हफ्ते सिर्फ 10 रियाल की परचेज भी साल भर में हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स बन सकती है। अब मसला है कि इन्हें कंट्रोल कैसा किया जाए। देखिए हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट और एक्सपेंसेस रिव्यू करें, बजट बनाएं और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करें, अनयूज सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें, ऑनलाइन शॉपिंग से पहले डू आई रियली नीड दिस ये सवाल पूछिए, सेविंग्स को लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए, कैश या स्पेंडिंग्स जो है उन्हें लिमिट करें। हिडन एक्सपेंसेस बिल्कुल पानी के उस लीक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे पूरा टैंक खाली कर देते हैं। अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बड़ी परचेजेस की वजह से नहीं बल्कि छोटी और यूजलेस परचेजेस या खर्चों की वजह से पैदा होती हैं। जब हम उन हिडन एक्सपेंसेस को पहचान लेते हैं और उन पर कंट्रोल करते हैं तो ना सिर्फ सेविंग्स बढ़ती हैं बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड भी हासिल होता है। याद रखिए अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज करता है। तो क्या आप कर पाते हैं? इसी सवाल के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो संतरे एफएम 107.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: लेकिन लेकिन आज का सवाल भी इसी से रिलेटेड है.
1: अच्छा,
0: हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जरा बताओ, कैन यू फॉरगिव समबडी विदाउट लेटिंग देम बैक इन योर लाइफ. क्या आप लोगों को माफ कर सकते हैं लेकिन उनकी एक बाउंड्री सेट कर दो कि अब बाबू मेरी लाइफ में ना ना.
1: यार ये तो मतलब पक्का मैं तो कर सकती हूँ. मैं मतलब माफ तो मैंने सबको किया हुआ है, एक्स वाई जेड इधर उधर.
0: मैं अब ये हुनर सीख गई हूँ, मुझे लाइफ के इतने साल लगे.
1: अच्छा, लोग क्या समझते हैं ना सफा, लोग समझते हैं कि किसी को माफ करने का मतलब ये होता है कि फिर उसके साथ ना कंधे से कंधा मिला के बैठ जाओ और फिर उसके साथ बिल्कुल
0: ये मुझसे ना होगा,
1: झूले झूल रहे हैं उनके साथ और ये सब कुछ. मतलब ये वाला सीन होता ही
0: मुझे मुनाफकत लगती है.
1: एग्जैक्टली,
0: जब आपको पता है वो क्या, एक मैंने बात सुनी थी कि मोमिन जो है वो
1: एक सुराख से दो मर्तबा नहीं टसवाता खुद को.
0: हाँ, एक सांप से.
1: सांप से, हाँ, हाँ, या इस तरह का कुछ है.
0: तो वो वाली बात मुझे याद आ जाती है कि जब आपको लोगों के असली रंग पता चल जाए ना. अच्छा, मैंने एक और बड़ी मजे की बात मुझे याद आई कि जो फॉरगिवनेस का मामला होता है ना, ये दूसरों के लिए नहीं होता, ये अपने लिए होता है. वो जो हम कह रहे थे ना इनर पीस कल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो ऐसे आती है कि आप दूसरों के लिए नहीं करते चीजें, आप पहले अपने लिए करते हो. जब माफी की बारी आती है ना तो आप दूसरों को, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो लोगों को माफ नहीं करते और माफ करने के बावजूद भी ना कब्र तक घसीट कर लेकर जाते हैं, हमने तो इसे माफ कर दिया लेकिन उनके मामला कब्र तक घसीटे हुए जाएंगे.
1: पहले मेरे साथ ऐसा था, मैं माफ नहीं करती थी. मैं कहती थी जब तक बदला नहीं लूंगी,
0: दुश्मनियां चल रही हैं भाई.
1: तो भाई सीन था, जब तक बदला नहीं लूंगी ना, जब तक
0: नहीं,
1: तो बस
0: हाथ कभी नहीं थी.
1: अच्छा, मेरे अंदर था कि बस लेना तो है, बदला तो लेना है. लेकिन यार जब से ये वाली चीज आई है ना कि यार खली बिल्ली जाने दो, तो हाँ. उसके बाद से ना बड़ा मतलब एक सुकून. कल अच्छा घर पे भी मैंने जाके बात की तो सब लोगों ने वही वाली बात की. हाँ नहीं, मतलब जब सक्सेस चाहिए तो फिर सुकून तो गवाना पड़ता है. मैंने कहा यार क्यों सब लोग ये बात कह रहे हैं, मतलब मेरा कोई एक अलग ही फंडा चल रहा है क्या दुनिया में, लोग दूसरे बिल्कुल अलग तरीके से बात करें. फिर मैंने अपनी बात एक्सप्लेन की तो उन्होंने कहा हाँ सही है, फिर ठीक है.
0: अच्छा, मजे की बात ये दूसरी टाइप पता है कौन सी होती है, मेरी तरह दूसरी टाइप वो होती है जो शुरू से इसी माइंड सेट के होते हैं कि भाई जिससे बनी नहीं रही, जिससे आपको पता है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है, उसको जानना, उसकी खैर खबर लो, बस माफ कर दो अपने लिए. क्योंकि जब आप माफ कर देते हो ना किसी को तो वो आपके दिल और दिमाग से गुम हो जाता है.
1: कि मैंने अभी
0: रंजिश ही नहीं रहती
1: तो नहीं कहूंगी, लेकिन हो गए, मतलब इस बात को भी कुछ 7-8 साल हो गए.
0: मैं शुरू से
1: पहले मैं ऐसी नहीं थी यार. इससे पहले तो मैंने तो बदला लेना है, मतलब अगले ने मुझे एक वो कहते हैं ना पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देना.
0: सब कहते हैं ये बावली है क्या, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा नहीं वाकई में नहीं पड़ता मुझे, लेट इट गो.
1: लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे मुझे रियलाइज होता है कि बहुत मीठा बनने की भी जरूरत नहीं है. जहाँ पे आप थोड़ा सा जरा ज्यादा मीठा बन जाओ ना,
0: वो लिमिटेशन अपनी रखनी चाहिए.
1: तो वो
0: कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं,
1: कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपको ना मतलब ये दिखाना चाहिए कि यार हम जवाब दे नहीं रहे लेकिन दे सकते हैं.
0: हाँ,
1: ये बताना जरूरी
0: होता है. इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट.
1: हैं हमारे साथ,
0: हाँ,
1: बहुत वेट ना करना पड़े उनको. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. नो प्रॉब्लम. मुश्किल नहीं है. हम जितने भी बात करोगे, एक दिन तो आपने दो तीन गाने बैक टू बैक चला दिया, फिर बाद में बोला हेलो हेलो, फिर मैं बोला अगर मैंने फोन उठा लिया तो पक्की मार पड़ेगी आज, चाहे रेडियो के तरफ से और लिस्नर भी बोलेंगे भैया ये कौन बंदा है यार, अभी तक इतना देर तक बात करके फिर गाने चलवाया दो दो तीन तीन तक.
1: कहाँ की बात हो रही है, हमने तो चलाया नहीं, हमने तो कल चलाया था 2.5 मिनट का एक गाना बस.
2: कल का बात नहीं है, बहुत ये
1: शायद है. मतलब रईस भाई इन लोगों में शुमार होते हैं, दिल में रखते हैं बात, माफ नहीं करते किसी को. इतने दिन पुरानी बात लेके बैठे हुए हैं आप.
0: रंजिश
2: माफ भैया माफ, हमको इतना आप लोगों से ये है ना लगाव है कि
1: लगाव
2: सुनते रहते हैं. बात ये है, माफ अगर आदमी नहीं करेगा तो फिर बोलेगा यार छोड़ो जाने तो, कौन इतना अपना टाइम और दूसरे तरफ अपना टाइम स्पेंड कर लो. माफ करना भाई ये फिक्री चीज है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठाने लग जाते हैं कि अगर सामने वाले के उसको कमजोर और तरह तरह का मतलब. तो माफ करने का भी एक ये होता है कि उस बंदे से जो बंदा आपके साथ में ज्यादा इस तरीके से कि आपको गलत मैसेज दे, गलत जवाब दे, तो उससे थोड़ा सा किनारा कशी कर लो. भाई बोल तो माफ तो करो बेहतर है, लेकिन उससे फिर साथ में थोड़ा सा उस हिसाब से रखो जिस हिसाब लायक है वो बंदा. अगर आप उसको वो कुछ भी आपको जलील करे लोगों के बीच में और आप फिर भी उस साथ में ये करोगे तो वो आपका समझ लो कि वो कमजोरी का वो मजाक उड़ाता है, फिर आप मजाक बन जाएंगे. इतना ज्यादा मतलब बंदे को देखो कि हाँ होता है कभी कभी भाई मिस्टेक आदमी के उसकी जुबान से कोई बात निकल गया, वो आदमी मुखलिस है तो उसके उसका बिहेवियर से पता चल जाता है.

0: बंदा किस टाइप का है, बंदे को देख के हमें ये करना चाहिए, फिर दोबारा ताल्लुक जोड़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो आपसे रिश्ते वाले होते हैं तो उनसे तो हम बिल्कुल एकदम कटा ताल्लुक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल
1: उनके लिए एक ही तरीकेकार होता है कि चुप करके साइड पर हो जाओ।
0: हाँ, पता ताल्लुक और उनको फिर जवाब देंगे तो फिर अपनी भी बेइज्जती होती है उसके साथ,
1: एनर्जी वेस्ट होती है ना, क्योंकि जब आपको पता है भैंस के आगे क्या बीन बजानी।
0: हाँ, तो आदमी बंदे को देख के उस हिसाब से, अब मैं सेम मेरा महवेश की जैसा कि मैं भी पहले इस बात को बहुत ज्यादा जज्बात में आके और मैं उसको जवाब के कैसे इसने मुझसे बढ़ चढ़ के इतना ये किया, तो इससे मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ये करता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो बंदे के अंदर उस टाइप का सेंस ही नहीं है जिस तरीके से आप समझाना चाहते, तो फिर भैंस के आगे बेन बजाने वाला काम है। फिर आप अगर उसको उस हिसाब से समझाने लग जाओगे फायदा नहीं है, उसके माइंड में नहीं बैठता। कोई कोई बंदे होते हैं कि आप अगर पॉजिटिव तरीके से समझाते हो ना, बिल्कुल वो नेगेटिव तरीके से ही उसके अंदर
1: उनकी आदत होती है, उनका डीएनए में उनको भी प्रॉब्लम होता है।
0: हाँ, तो उनका सोचने का जो ये होता है नजरिया होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है, आपसे एकदम अलग होता है, तो आप उस हिसाब से उसको ये करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप समझ जाओ उसके बिहेवियर को, तो थोड़ा सा किनारा कशी कर लेना वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से।
1: ना चीखम चिल्ली, ना झगड़ा, ना मार कुटाई, कुछ नहीं भाई। ऐसे लोगों से ना साइड पे जाना चाहिए, साइड इन द सेंस सबसे। मैंने एक क्या, मेरी अपनी बहन जो है ना वो साइकेट्रिस्ट है, तो वो मुझसे कहती है सफा जो ऐसे लोग होते हैं ना वो चलते ही क्या, ऐसे लोग ना अक्सर औकात नार्सिसिस्ट भी होते हैं बहुत, उनको ना मजा आता है दूसरों को तंग करने में, तो ऐसे लोगों को जवाब देने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप खामोशी इख्तियार कर लो।
2: ऐसा ही
1: आप इनसे मतलब बिल्कुल बात नहीं करो आप इनसे, इनका साइलेंट ट्रीटमेंट ही अलग होता है।
0: बिल्कुल, वो बंदा अगर है तो उस लाइफ, तो उसको रियलाइज होगा कि वो बंदा यार मेरे से क्यों किनारा कर लिया, मेरे अंदर
2: नहीं होता, नहीं होता
1: ऐसे लोगों को रियलाइज।
0: कहने का मतलब क्या था कि वो बंदा अगर आपके साथ में अच्छा करने की कोशिश बाहर आएगा तो आपसे फिर ताल्लुक करेगा, मतलब कटा ताल्लुक, लेकिन अगर वो बंदा अपने उससे तो फिर उससे दूर ही रहना बहुत बेहतर है। और आपके आप हर एक को अपनी मर्जी से मानो और उसको सुधारने को, तो आपका जिंदगी दरहम बराम हो जाएगा, फिर आपको सुकून नहीं,
1: आप जो ना हमेशा साइक्लोन में ही फंसे रहेंगे ऐसे लोगों के साथ। और अक्सर
0: मैं खुद फंसा रहता था, लेकिन मैं जब से मैंने थोड़ा खामोशी अख्तियार करना शुरू कर दिया कि जान भैया वो खुद धक्के खाएंगे तो उनको अकल आएगा, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उनके पीछे पड़ के और अपनी मर्जी से कि यार मैंने इस तरीके से चलाने की कोशिश करोगे तो फिर वो रिश्ते में समझ लो कि वो तमाशा बन जाता है, वो मजा नहीं है। वो दूर के रहते हैं ना तो उनसे थोड़ा निपट लोगे, लेकिन
1: जो पास वाले जो है ना, ये सारी टॉक्सिसिटी आती ही पास वालों से। अब मैं आपको क्या क्या नाम लेकर बताऊं रिश्तों के, मैं मसले में पड़ जाऊंगी फिर। नाम ना लेंगे हम, टारगेट नहीं करेंगे, सब पता सबको है।
0: तो ये चीजें बहुत अहम है कि बंदे को कुछ हिसाब से उसको उसका तजर्बा हो जाता है कि भाई किस लायक है बंदा, किस उसका है, तो उतने तक उससे रखे, उससे थोड़ा सा किनारा कर लो, आपके उसमें सुकून आ जाएगा जिंदगी में।
1: और आप बिल्कुल
0: ज्यादा उसको समझाने के चक्कर में लग जाओगे तो फिर आपका लाइफ समझ लो कि मुसीबत में पड़ जाएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा।
1: ये वो वाली मखलूक है जिनके बारे में
0: वो बातें वो कुछ लोग आपके तरफ से करेंगे तो चार बातें उसके तरफ से, इसी में आप और हमेशा परेशान रहोगे। सब लोग सब आपके हिसाब से नहीं, उसकी भी तरफदारी करने वाले मिल जाएंगे। अरे यार
2: इसका मतलब है कि बात को तमाशा मत बनाओ, मतलब बात को ऐसे करो भाई हुई नहीं है।
0: चल भाई ठीक है, तू अपने जगह पे सही है, मुझे मैं गलत हूँ तो मुझे अपने हाल पे छोड़ दे बस।
1: वो वाला गाना याद आ रहा है मुझे, हाँ मैं गलत मेरी बात है।
2: रईस भाई थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी,
0: बिल्कुल
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रईस जी, तो रईस भाई ये कह रहे हैं, अच्छा मैं मुझे ऐसा लगने लगा है सफा कि मैं ना थोड़ी थोड़ी सी ना वो होती जा रही हूँ डुअल फेस, क्यों? मतलब पहले ना क्या होता था, पहले मुझे सब लोग बोलते थे कि इनका तो भाई अजीब मामला है, क्या बात बुरी लगती है पता ही नहीं चलता. मतलब मैं तो ऐसी हो जाती थी ना मैं कि मुझे कोई बुरी लग गई बस अब मैंने ना माफ करना है ना फिर मैंने पलट के देखना है उसकी तरफ, ये वाला मामला होता था. लेकिन अब मैंने ये रियलाइज किया कि एक तो माफ कर दो और उसको शो भी ना होने दो कि मुझे बुरी लगी.
1: हाँ, ये
2: मैं इस तरह की ड्यूल फेस हो
1: नहीं, ये ड्यूल फेस नहीं होता, इसे कहते हैं सोसाइटी में रहना. अब ये तो कोई जंगली जपाटों वाली बातें नहीं है ना कि आप बिल्कुल WWE का रिंग बना लो और अगले को पछाड़ते फिरो उसके अंदर. हर दफा जब आप उसकी शक्ल देखो आपका दिल करे इसको एक चपेट मार दो. ऐसा तो होने से
2: पहले तो मैं बिल्कुल सामने ही नहीं करती थी, ओ भाई मतलब है ही नहीं को लेना देना.
1: सी बात
2: लेकिन अब मैं करती हूँ भी हूँ और उसको पता भी नहीं चलता कि मुझे बुरी लगी थी कोई बात, मैं माफ भी कर देती हूँ.
1: जो वॉयलेंस करता है ना वो एंड अप जेल में होता है, तो हम जेल से अपने आप को बचा रहे हैं.
2: बिल्कुल. अच्छा जी, कोई है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात.
2: जी कौन बात कर रहे हैं?
3: मोहम्मद आजम.
2: मोहम्मद आजम
3: कैसे हैं?
2: क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह.
3: कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह करम
3: है. मेरी तरफ से दोनों को सलाम और FM 107 की टीम को सलाम.
2: थैंक यू सो मच. अच्छा, मुझे जब भी आपकी कॉल आती है तो मुझे याद आता है कि एक हमारे कॉलर होते हैं सलाहुद्दीन, वो नहीं आ रहे बहुत अरसे से. अच्छा, इस आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, मुझे आपकी कॉल पे वो क्यों याद आते हैं. बेसिकली सलाउद्दीन साहब ने जब कॉल की थी तो मैंने कहा था कि ये तो मेरे खालू का नाम है और इत्तफाक है कि आजम भी मेरे खालू का नाम है. इसलिए मुझे ये क्या हो रहा है याद आ जाते
3: हैं. सही सही जी. और
2: क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक.
3: अभी ज्वाइन किया है असल में मैंने आप लोगों को.
2: जी जी.
3: तो टॉपिक का तो पता नहीं.
2: अच्छा, टॉपिक का पता नहीं है. टॉपिक
1: भाई, टॉपिक ये हमारे पास चल रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों को माफ़ भी किया जा सकता है लेकिन उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में आप स्पेस नहीं देते, फिर कैसा हो सकता है?
3: हाँ हाँ, माफ़ करना चाहिए जी. हमें तो दर्स यही दिया गया है कि भी अगर कोई गलतियां करता है तो उसे माफ़ कर दो.
1: सही. और वापस से उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए कि नहीं?
3: हाँ हाँ, देनी चाहिए.
2: देनी चाहिए, देनी चाहिए.
3: अगर नहीं देंगे तो वो कैसे सीखेंगे?
1: नहीं भाई, मेरी तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है ऐसे लोगों के साथ जो वैसे ही आपको उनकी शक्ल देखकर वैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए.
3: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखो, आप सल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं, आप सल्लम की जो तालीमात हैं वो यही हैं कि भी आप दूसरों को माफ करो.
1: माफ तो आपने कर, जाहिर बात है वो आपने कब्र में भी हिसाब देना क्या किसी के लिए बुग़्ज़ रखोगे आप और क्या उससे जो ना बदले लेते फिरोगे. माफ तो करना एक बिल्कुल मैं कहती हूँ मैंडेटरी बात है और ये गिफ्ट
3: उन्हें
1: है.
3: अपने साथ लगाओ.
1: सही,
3: उन्हें अपने साथ भी लगाओ. जब वो साथ लगेंगे तो कुछ समझेंगे ना, और उन्हें बातें भी समझाओ साथ ही साथ. ये नहीं कि भी बस उन्हें कहो ना कुछ, उन्हें ये भी समझाओ कि भाई ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये आपकी बात गलत है, उसमें छोटा है बड़ा है जो भी है.
1: भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर आपने सिर्फ ये इख्तलाफ कर लिया ना कि आपकी सोच गलत जा रही है तो वो तो मामला ऐसा हो जाएगा कि बकरा ईद पे आपको कुर्बानी दे रहे होंगे आपकी. कुछ लोगों का मामला ये हो जाता है, इतने इतने ऑफेंड हो जाते हैं और उनको बड़े प्यार से बड़े कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ बड़े करीबी रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको आप बड़े प्यार से ना मैं कहूँगी इख्तलाफ नहीं लेकिन आप उनको ये बात समझाते हो कि देखिए फॉर एग्जांपल एक बात है कहा सबसे जो नाजुक रिश्ता है ना वो कहा जाता है कि सास बहू का होता है सबसे नाजुक रिश्ता होता है. ठीक है, उसके अंदर नोक झोंक भी होती है और वो इतना पास का रिश्ता, इतना खूबसूरत रिश्ता है जिसको लोगों ने अब बड़ा विलनाइज कर दिया है. सासें ऐसी भी हैं जो बड़े तहम्मुल से रहती हैं और घर सेट चलता है लेकिन कुछ लोगों का ना इख्तलाफ इतना ज़्यादा होता है कि अगर बहू ने कुछ बोल दिया कि नहीं भाई खाना खाने में आज ये बना लें या फलानी चीज़ आज ऐसे कर लें या सास ने कुछ बोल दिया बहू को तो वो बहुत संगीन मैटर बन जाता है भाई. वो तो घर में एक बवाल मच जाता है.
3: बिल्कुल, ये चीज़ें 90 से पहले पहले की थी. आप जो 90 के बाद की हैं वो बहू कहेगी वही सास मानेगी. अगर बहू कहेगी आज ये बनेगा तो सास भी कहेगी ठीक है आज
2: ये अब हो गया है. अब ये क्या रहे
3: हैं
2: ये कहाँ हो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है ये?
0: 90 से जो पहले की थी ना, जो भी हुई है वो मेरे साथ में थी, वो सासों का कहना मानती थी, लेकिन अभी नहीं।
2: अच्छा
0: हाँ जी, अभी तो
1: कौन सी जोन, कौन सी डायमेंशन में रह रहे हैं आप, मुझे जरा बताइएगा या हम कहीं गुम हो गए हैं?
0: इसी तरह यहाँ पे गुम है
1: अभी मुझे 90s के, मैं वापस से आती हूँ 90s के बाद वाले सेशन में।
0: आप जो है, आप बहुएं जो कहती हैं जी, सासें कहती हैं ठीक है बेटे,
2: आप ये तो नहीं कह रहे कि 90s से पहले की जो पैदाइश थी खवातीन की, वो वाली जो खवातीन है वो ऐसा करती हैं?
0: नहीं नहीं, 90 से पहले की पैदाइश
1: नहीं, नहीं वो कह रहे हैं अभी अभी जो सासें चल रही हैं, अभी जो कहाँ चल रही हैं
2: भाई, ये कहाँ चल रही हैं?
1: मैंने कहा ना माविश, मैं और तुम गलत जोन में चल रहे हैं।
0: हमारी जो फैमिली
2: है, नहीं आपकी फैमिली का ये नायाब वाकिया है, इसको इसको आप हर किसी के ऊपर लागू ना करें, ये आपकी फैमिली का बहुत ही नायाब वाकिया चल रहा है।
0: लेकिन अभी जो है ना जी, आई हैं बहुएं, आई हैं माशाल्लाह पांच भाइयों, तो जैसे वो कहती हैं अम्मी आज ये बना लें, अम्मी आज ये बना लें, तो वो कहते हैं ठीक है वैसे आपका जो दिल था आप वो बना लो।
2: अच्छा।
0: इसलिए
2: सही सही सही, तो आपके घर पे चल रहा
0: है, माननी चाहिए सासों की भी, माननी चाहिए बहुओं की भी, लेकिन जो सासों की माननी वाली थी वो 90 से पहले पहले की है।
2: अच्छा,
0: अभी भी आपने जो फैमिली
1: इनकी इस बात ने मुझे स्पीचलेस कर दिया है।
2: मुझे भी,
1: मैं कभी स्पीचलेस नहीं होती, मुझे इस बात ने सोचने पे मजबूर कर दिया है।
2: घूम और चुप।
1: मैं मतलब यानी कि मैं किसी और ही डायमेंशन में जी रही हूँ, मैं अभी तक 90 से पहले वाले जोन में जी रही हूँ। मैं तो फिर अल्लाह में की गाय निकली।
0: नहीं, हम तो आप कह सकते हैं या भैंस कह सकते हैं, आप जो मर्जी कहो।
1: नहीं नहीं, भैंस नहीं,
2: भैंस क्या के पी। सही हो गया।
1: चलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला,
2: आजम भाई ऐसा इंशाल्लाह ताला हर घर में होने लगे इंशाल्लाह ताला, और मुझे लगता है होगा होगा, अब कुछ सालों के बाद इंशाल्लाह ऐसा होगा, तो अब काफी हद तक फर्क आ रहा है।
1: मामी जब मैं और तुम सास बनेंगे ना तब ये होगा।
2: एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रही थी। चले जी आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू जी,
0: थैंक यू, थैंक यू
2: इंशाल्लाह, आमीन आमीन इंशाल्लाह ताला, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो हमारे साथ थे आजम भाई और इनका, इन्होंने एक मतलब अचंभे बना दिया, मैं सोच में पड़ गई हम।
1: मैं कह रही हूँ माविश, हम दूसरी डायमेंशन में चल रहे हैं, आजम भाई किसी और डायमेंशन में रह रहे हैं, आजम भाई डायमेंशन में चलते हैं भाई। सुनकर इतना अच्छा लगा था ना, एक्सपीरियंस करें कितना अच्छा लगेगा।
2: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम तौफीक कहते हैं अलवकरा से, और काफी सारे दुआएं भी दी हैं इन्होंने। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम दोनों को, गुड मॉर्निंग, मुझसे जब तक बर्दाश्त हो सकता है तब तक आई विल मूव ऑन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, लेकिन जब बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो जाए देन आई हैव टू रिप्लाई,
1: तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
2: समीरा अजीज हैं ये, ओके ओके कहती हैं समीरा, जबरदस्त। और इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग बाबा जी और सफा जी, कैसे हैं आप दोनों, वेलकम टू यू मैटर और हैप्पी मंडे मॉर्निंग। सही है, हम माफ कर देना चाहिए और दोबारा उसके उसी तरफ से लाइफ में रह सकते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं। और हाँ, ये अप्लाई सभी पे नहीं हो सकता, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें माफ करने के बाद भी लाइफ में बनाया रखना पड़ता है,
1: बनाए रखने पड़ता है।
2: हाँ, ओके।
1: हाँ, मैंने वही कहा ना, कुछ रिश्ते जो करीबी होते हैं ना।
2: हेलो, बोलिए।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग अजय भाई, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड, हाउ आर यू बोथ?
1: ऑल गुड। अजय भाई बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट this scenario?
2: माफ कर देना।
4: What scenario?
1: See, the thing over here which we are talking about is that can you forgive somebody without letting them back into your life?
4: Well, it depends on the scenario what they create.
2: Scenario or person?
4: Yeah, scenario of the person.
2: Mm-hmm.
4: What against mm-hmm. me, it depends on I give, forgive.
1: For example, it's easy for you to forgive.
4: It depends on the situation, because if something happened during my job or some other marriage, definitely I will not forgive.
2: Hmm.
4: तो सर घर में है तो मेरा बच्चा और वाइफ तो कर रहा है, तो उसको जो करने का, क्योंकि पहले मैं बोलेगा उसको नहीं करना चाहिए, बोलेगा तो उसको थोड़ा सीखने का. तो इट्स डिपेंड प्लेस आल्सो. तो काम का बारे में किसी को फॉरगिव नहीं करता हूँ.
1: काम के बारे में प्रोफेशनल. ओ, मुझे कौन अमीन भाई याद आ गए हमारे. बहुत प्रोफेशनल हूँ.
4: नहीं आप आप फॉरगिव करेगा तो दोबारा वो प्रॉब्लम रिपीट होने का.
1: हाँ, ये एक और बात है. ये आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि जब अगर आप किसी को इग्नोर कर दो या छोड़ दो ना, फॉरगिव कर दो, देन पीपल कीप ऑन रिपीटिंग दैट थिंग. और कुछ लोग तो मजाक में भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ कुलीग्स ही ऐसे होते हैं कि जिनको मजाक उड़ाने का ना दूसरों का बड़ा शौक होता है. फॉर एग्जांपल दे हैव अ हैबिट ऑफ
4: सेम लास्ट वीक बेटी ने एक ग्लास तोड़ दिया था. वो पानी पी रहा था, वो रखने का टाइम वो तोड़ दिया था. मैं बोला बेटी को ऐसे नहीं करने का, क्योंकि ये अच्छा नहीं है. दिया था फिर दोबारा रिपीट करने के टाइम मैं पनिश भी की. अगर मैं दोबारा भी फॉरगिव करेगा तो वो दोबारा रिपीट करता है.
1: तो वो लिमिटेशंस और
4: द सेकंड टाइम आई गिव पनिशमेंट. नाउ द थर्ड टाइम शी वोंट रिपीट इट अगेन. ये मेरा घर का बात है. बट in my professional way I'm working on one company, the same person also working. If something happened, something asset was damaged or something happened, I should not forget, just raise the warning letter.
2: Sakht wale boss.
4: So ye professional alag hai, aapka personal thing alag hai. Depends on the scenario, aapka forgive chalega.
1: Sahi.
2: Sahi ho gaya.
1: हाँ, ये सही बात है. बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, ये उसको ध्यान में रखकर सिनेरियोज होते हैं. हाँ, सही.
4: ये लास्ट टाइम लास्ट ईयर था, मेरे को याद है. मेरा साथ एक बंदा काम कर रहा था, वो एक इक्विपमेंट को डैमेज किया. फिर मैं आई रिपोर्ट टू माय मैनेजर, देन एज अ वार्निंग एंड पनिशमेंट रेज आल्सो. वो आदमी मेरे को पूछा आप क्यों मैनेजर को बोला. मैं बोला ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है. अगर आप तोड़ेगा तो नो प्रॉब्लम, आप तोड़ो, मुश्किल नहीं, क्योंकि एसेट डैमेज हो गया फिर क्वेश्चन मेरा ऊपर आएगा. तो मैं किसी का ऊपर रखना पड़ेगा ना. वो तो फिर मैनेजर पूछेगा कौन तोड़ा. तो बोला नहीं तोड़ेगा, मैं बोल सकता नहीं.
2: बिल्कुल. और इन मामलों में वाकई केयरफुल भी होना चाहिए. मतलब अगर ये किसी ने इस तरह की गलती की है तो वाकई मतलब एक सीरियस गलती है. इसको मतलब ऐसे नहीं ले सकते आपके जाने दो.
4: एक्सीडेंट तो यूजुअली आता है, लेकिन आपका कंट्रोल होना चाहिए ये चीज का मामले में.
2: एग्जैक्टली.
1: सही,
2: बिल्कुल.
4: तो
2: सही.
4: पता है आपको मालूम नहीं है तो क्यों आप लोगों को काम के लिए आ रहा है. वो बहुत चीज अंदर का बात बहुत है, लेकिन सोच के आप फॉरगिव करने का.
2: बिल्कुल सही.
1: और कुछ लोग ना आपकी फॉरगिवनेस को ना फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, और वो फॉर ग्रांटेडनेस ना फिर उनसे और मिस्टेक्स करवाती है.
4: I remember last time the same topic, सुबह नाजिया ने बात किया था.
2: अच्छा.
4: तो एक आदमी ने बात किया, ये मेरा कंपनी में एक आदमी ऐसे किया, मैं फॉरगिव किया, ऐसे नहीं चलेगा. दैट इज नॉट गुड वे टू द प्रोफेशनल.
2: बिल्कुल सही.
4: प्रोफेशनल तरीके बात करेगा तो सीधा आपको, आप कुछ कर रहा था उसका रिजल्ट आपको देना ही पड़ेगा.
1: स्पेशली जब आप सुपरवाइजर या हायर पोस्ट पे होते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का.
4: Yeah, exactly. They are giving the authorization to work for our trust only. So same, आपको कुछ करेगा तो you will break the trust also.
2: बिल्कुल सही.
4: So that's why forgive, it depends on the place and depends on the person and what they did.
2: बिल्कुल सही. चलें जू, thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ही अच्छे points. Thank you जी. Thank you. لوگوں کو خود بھی اتنا کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ دیکھو بہت ساری جگہیں ہیں, بہت ساری چیزیں, ہم اب بڑا مطلب اس بات کا نا دکھڑا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب دیکھو دنیا میں سب چیزیں کتنی بہترین ہیں, اور مطلب اگر ہم کمپیئر کریں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں نا وہ والی چیزیں, وہ فیسلٹیز اور سب کچھ نہیں ملتی. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں کہیں پہ ملتی ہیں, میں نے خود آئی وٹنس کیا اس چیز کو کہ جہاں کہیں پہ بھی کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, ہمارا اتنا کیئر لیس بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو, جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اکوپمنٹ ٹوٹ گیا تو اس چیز کو آپ ایسے نہیں جانے دو. تو میرے حساب سے واقعی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی پبلک پراپرٹی ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, وہ اس پہ آپ کو نا اتنا مطلب ایزی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹس اوکے بھائی ہمارے مطلب کوئی
5: اگلے کے دل میں تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے,
2: ڈر ہونا چاہیے آپ کو, مطلب سمجھنا چاہیے چیزوں کو کہ کس طرح سے کیئرفلی دیکھنا ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں کالر, ہیلو السلام علیکم.
6: ہیلو السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
2: وعلیکم السلام.
6: الحمدللہ.
2: جی جی جی کیا حال چال ہے؟
6: بس الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر, اب تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی ہے.
2: میرا بھی ابھی تک چل رہا ہے, مطلب گھر پہ نا میں مسلسل کھانسی رہتی ہوں کھانسی رہتی ہوں, یہاں پہ کنٹرول کرنی پڑتی ہے.
6: جوشاندہ اور وارم واٹر اور اچھی طریقے سے سوئیں, آپ کم باتیں کریں صفا کو زیادہ موقع.
2: سونے کی تو آپ بات ہی نہ کریں, مطلب سونے کا تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
5: دیکھیں آپ نے پھر سونا دلا دیا, ابھی ہم دونوں اپنی جیبوں سے تکیہ نکال لیں گے.
2: میں کل جا کے سو گئی, پھر اس کے بعد رات میں جلدی سو گئی, پھر اس کے بعد دیر سے اٹھی, مطلب یہ والا سین چل رہا ہے. مجھے تو اتنی نیند آ رہی ہے, اتنی نیند آ رہی ہے.
5: مجھے ایک بات بتائیے, کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ بیچ رات میں دو سے تین دفعہ آپ کی آنکھ کھل جائے فضول میں؟
2: نہیں میرے ساتھ نہیں ہو رہا الحمدللہ.
5: ٹکڑے ٹکڑوں میں چل رہی ہو. میری نیند ٹھیک تین بجے ڈھائی بجے کھل جا رہی ہے.
2: تم تہجد پڑھا کرو, تمہیں اٹھایا جا رہا ہے, تم سمجھ نہیں رہی اس بات.
5: میں یہی سوچ رہی تھی آج سچ میں یہی سوچ رہی تھی, کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ ایگزیکٹ پن پوائنٹ یا ڈھائی بجے یا تین بجے آنکھ کھل جاتی ہے.
2: بالکل
5: ابھی منجولی کا گھومتی ہوئی آئے گی میرے پاس.
2: نہیں نہیں آپ کو تہجد کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. جی ذوالقرنین صاحب,
6: سب سے اچھی بات آپ کو یہ بتاؤں, ویسے تو ظاہر میں اس وقت آفس میں ہوتا ہوں لیکن آپ کی, آج کل میں گھر میں ہوں تو آپ کی جو باتیں ہیں میری مسز بھی سن کے مسکراتی رہتی ہیں, باتیں کال نہیں کرتی لیکن انجوائے بہت کرتی.
5: چلیں ہمارے لیے ذہن نصیب.
6: اور اب یہ جو تہجد والی بات ہے نا, اس پہ تو بہت ہی خوش دکھائی دی,
5: مطلب مجھے میرے اوپر سارے پوائنٹر مارے جا رہے ہیں, میں اکیلی کھڑی ہوں, مجھے بھی کوئی پارٹنر چاہیے ریبٹل کے لیے.
6: تو باقی میں نے آپ کی لاسٹ دو کال سنی ہے لیکن ایسا مکس افیکٹ تھا, میں سمجھ نہیں پایا آپ کا مدعا کیا.
2: اچھا بیسکلی ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا معاف کر سکتے ہیں زندگی میں دوبارہ لائے بغیر, مطلب کسی کو
6: زندگی میں لائے بغیر؟
5: ہاں دیکھیں چلیں اس کو اور نیرو کرتے ہیں, اگر ہم کہہ لیں, اجو بھائی نے تو پروفیشنلزم کی بات کر دی, پروفیشنلزم میں تو کوئی مجھے پتا نہیں گیو اپ نہیں کرتا, فارگیو ایسی چیزوں کو, کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ان میں سے چلیں ان کو لے کر بات کرتے ہیں,
2: یہ دوست ہوتے ہیں.
6: نہیں ویسے تو اگر آپ اس کو پروفیشنلزم میں بھی ڈال لیں تو کئی ایسی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی سچویشن میں اتنی اسپیس بھی نکل آتی ہے. فار ایگزامپل اس میں تو ایک سمپل مثال ہے کہ جو آدمی کچھ نہیں کرتا وہ غلطی بھی نہیں کرتا, جو کام کرتا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک انٹینشنلی اور کیئر لیس, دس از ڈفرنٹ تھنگس. یعنی میں جہاں کام کرتا ہوں, ہم لوگ سم ٹائم لائیو انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ہماری انٹینشن نہیں ہے نا, آپ کی انٹینشن نہیں ہے سم ٹائم. اچھا بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کوئی دوسرا بندہ لاپرواہی کر گیا ہے, یعنی دیر از تھاؤزینڈ آف کیبلز, وہ اس نے پراپر سے کنیکٹ کی, اوپر سے ہاتھ رکھ دیا, اب وہی بات ہے جس نے ٹچ کیا اس کا نام آ گیا, جس نے اس کو ہاتھ لگائے ہیں اس کے پاس سے گزرا. تو اس کا مطلب سچویشن, ہاں آپ کا باس اچھا ہے اور آپ کا ایک ریپوٹیشن ہے تو وہ آپ اس کو ایکسپلین کرنا آسان ہوتا ہے, بھائی خطرے میں جو کود رہا ہے آدمی پہلے تو وہ بھی اٹ سیلف ہے کہ وہ اس جگہ گیا ہے. چلے یہ ایک شارٹ بات کرتے ہیں تاکہ نا. اور آگے رشتے داروں میں اچھا اگر آپ جیسے ہم لوگ باہر آ جاتے ہیں تو کافی رشتے داروں کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ یا ایون اپنے خونی رشتوں کے آپ کو بھول جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں رہتا اگر آپ شارٹ شارٹ پیریڈ میں جاتے ہیں نا, لیکن کسی وقت آپ کو بڑا سرپرائز بھی ملتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا, میں تو اس کو بچپن سے ہی اس میں ایسا جانتا تھا. تو یہ بھی آپ کو جج کرنے میں بڑا وہ دیتا ہے کہ कोई ऐसा केस हो जाए आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये इसने किया है या ये कर सकता है, सबसे पहले तो यही बड़ा धमाका लगता है ये। उसके बाद फिर बाज़ूकात बंदा ऐसी चीज़ें कोई आगे पीछे सामने आए तो फिर वो बड़ा एक तरह से अपसेट भी होने के अलावा उसको फिर कहते हैं दवा करो इसको, इससे तो इसकी तो मैंने शक्ल नहीं देखनी इसको 10-15-20 साल या फॉर एवर मैंने इसको किस तरह मैनेज किया है। तो फिर बाद में पता चलता है कि उसका उसके साथ सिर्फ एक मोहब्बत का नहीं एक लालच का ही रिश्ता था।
1: सही।
6: तो ऐसी चीजें नुकसान से ज्यादा सदमा देती है। तो माफ कर देना या वो करना आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, यानी हम लोग वो तो नहीं है कि कोई वो कानून की अथॉरिटी तो नहीं है जहाँ इंसान का इस तरह का। अच्छा अगर वो कोई रिग्रेट करे ना या वो करे गलत है तो वो कहते हैं नहीं तो तुम बेवकूफ थे तुम नहीं करता, और बंदे को हर्ट होता है बोलते चलो अभी हमें अक्ल आ गई और इससे बचे। भाई यार वो कहते हैं ना कि मोमिन एक सुराग से दो बार नहीं डसे जाता या 2-3 बार तक हो जाती है तो फिर यहाँ तो हम मोमिन भी नहीं है, ये भी बात है हम बार बार डसे जाते हैं।
2: सही बात है, मतलब इतना अकलमंद होना चाहिए इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि इतना कम से कम आप हो कि आप ना समझ तो जाओ अगले बंदे को फिर उसके हिसाब से काम करो।
6: असल में कुछ रिश्तों के लिए हम अकल इस्तेमाल करते नहीं है और सोचते नहीं है कि ऐसा हो, ये वन साइड होता है कि उनके लिए हम लोगों को चाहता है ये चीजें होनी नहीं चाहिए इनके लिए कि इतने रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा जैसे भी आप सास बहू या इनके भी एक फेज चल रही थी ना थोड़ा सा उसमें हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट आता है। आपने देखा सास की डोमिनेशन बहुत ज्यादा थी फिर ड्रामे कहानियां व्हाटसोएवर बहू अब इतना सेपरेट हर चीज बैलेंस होती है। सास एक माँ भी है, जब वो एक माँ के रूप में आए एक इतना उसका एक्सपीरियंस है गाइडलाइन के रूप में आए तो वो ब्लेसिंग है। यानी अगर मैं अपने बच्चों के ऊपर मेरा एक वही स्टेटस है कि मेरा मेरी एज इतनी मेरा एक्सपीरियंस और कई चीजें वो गलत करके नुकसान उठाएं मैं उनको गाइड करूँ और रियलाइज करें मोहब्बत बढ़नी चाहिए ना।
2: अच्छा मसला बदल साहब आपने वो देखा अभी आपकी इज्जत जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है
6: अनफॉर्चुनेटली मैंने सुना
2: 22 एपिसोड्स हैं जरूर देखे हैं। और उसकी जो खास तौर पे अभी अपने सास वाली बात बोली ना तो उसमें लास्ट एपिसोड में बड़ा ही ज़बरदस्त ना एक सास मतलब जो सानिया सईद का सानिया सईद वो किरदार निभा रही थी तो उन्होंने ना बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना जो एक सास के दिमाग में चल रही होती हैं और मैं और मेरी बहन इसी को डिस्कस कर रहे थे बाद में कि मतलब देखो हर इंसान ना होता इंसान ही है मतलब उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं और वो उन चीज़ों को आपको कहानियाँ या फिर आपको ड्रामे दिखाए इसलिए जाते हैं कि आप अपने आप को हमारे क्या होता है हम हमेशा जैसे मैं वो अगर सास देख रही हूँ ना तो मैं अपनी सास को वहाँ पे रख के सोचूंगी लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं भी तो मतलब सास टू बी होने वाली हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ पे रख के देखूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ भी ये चीज़ें आ सकती हैं और मैंने इस चीज़ को कैसे लेना है क्योंकि उसमें उन्होंने बताया आखिरी जो सीन था कि मैं ना तुम दोनों को देख के जब तुम लोग खुश होते थे तो मैं खुश भी होती थी अंदर से मुझे खुशी होती थी मेरा बेटा खुश है लेकिन फिर मुझे हसद भी होता था क्योंकि मैंने तो नहीं देखा मेरे शोहर तो मेरे साथ इस तरह से ताल्लुक ही नहीं देखा तो मुझे ये मतलब ना हसद होता था मुझे फिर ये होता था कि तुम मेरा बेटा मुझसे छीन लोगी और ये सब कुछ तो बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं लेकिन जब वो एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ कि वो गायब हो गई जिंदगी से तो उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये सब कुछ तो मेरी यही चल रही थी एक तरह से घर तो इसी की वजह से था और मैं अपने बेटे की खुशी पर खुश क्यों नहीं थी। तो ये ज़रूर देखिएगा वो ड्रामा ना मतलब आपको काफ़ी एक लेसन है उस ड्रामे के अंदर।
6: नाम फिर से बताइएगा।
2: आपकी इज्जत।
6: आपकी इज्जत। अच्छा अच्छा ते बाकी यही चीजें। अच्छा हर चीजों को समझने का भी ये जो आपने प्रोस्पेक्टिव बताया ये भी इंसान में अक्ल शऊर होना चाहिए कि उसको समझने का है। बाकी स्पेस जहाँ किसी के लिए निकले निकालनी चाहिए। रिश्तों को बचाना अच्छा वन साइडेड नहीं बचा सकता कोई भी बंदा। एक आदमी मल्टीपल आपको करता रहे आपने देखा था शायद पढ़ा हो मैट्रिक में ख्वाजा सरपरस्त स्टोरी थी मैट्रिक में जिसने अच्छा, एक इंसान ने अपने भाई को दो भाई होते हैं जिसने अपने एक भाई को पिंजरे में कैद रखा होता है और कुत्ते को उसने सोने की जंजीर और उसके लिए खादिम मुकर्रर किए होते हैं और मुख्तलिफ स्टोरियां बताते हैं कि इस भाई ने मुझे किस तरह मेरी जान लेने की कोशिश की और कुत्ते ने मेरी जान किस तरह बचाई। मैट्रिक की किताब जो हम लोग सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ते थे उसमें किस्सा था ख्वाजा सगपरस्त।
2: अच्छा नहीं मैंने नहीं पढ़ा।
6: कुत्ते
2: मैंने नहीं पढ़ा
6: वो कहते हैं तो उसमें यही स्टोरी थी कि वो उसका रियल भाई जो उसकी जान लेने की कोशिश करता है और वो कुत्ता उसका वफादार जो इसकी जान बचाता है कहता फिर ये लिमिट आ गई है कि इसको मुझे पिंजरे में रखना है और इसके लिए मुझे खादिम मुकर्रर करने हैं तो ये हार्श रियलिटीज हैं अल्लाह ताला करे कि जिनके लिए कोई बंदा करता है उनके अंदर भी अच्छा ये एहसास और शऊर ना एक माशरे के अंदर एज ए होल भी डेवलप करता है जैसे हम लोग कभी ये अभी आप बात कर रहे थे ना पब्लिक प्रॉपर्टियां इस तरह है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं ना बच्चे उसको कुछ चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं तो एक वर्ड बड़ा कॉमन था कि कोई भी काम ये कौन सा मेरे बाप क्या है ये रियलाइज दिस इज आवर
2: बाप एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली ऐसा मैं भी ये बोलने वाली थी कि मतलब वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना अपने बाप की नहीं होती तो उसको ये समझ के देखना चाहिए कि ये सब लोगों की एक ना मतलब मिली जुली चीज़ है अभी मैं देख रही थी एक और कोई

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। तमीन प्रोग्राम आज की दुआ में आज हम एक जामे और अजीम दुआ सुनाने जा रहे हैं। ये दुआ हर मुसलमान के लिए उम्मीद, सहारा और अल्लाह की रहमत का वसी दरवाजा है। वैसे आपने यह हदीस सुनी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ ले तो उसके लिए वो काफी हो जाएंगे। मुहद्दिसीन इकराम ने इसका मतलब ये बताया कि यह आयत कारी के लिए रात की इबादत के कायम मकाम हो जाएगी या फिर हर शर और नुकसान से हिफाजत के लिए काफी होगी। तो सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये दुआ सिखाई।

0: नजर आ रहा है तो इंसान अपने आप से कहता है कि चलो शायद ठीक ही होगा, फिर एक और दलील ढूंढता है, फिर एक और बहाना, फिर अपने जमीर को खामोश करता है। हदीस कहती है कि अगर वाकई मामला मुश्तबा है और तुम्हारे सामने वाजे और महफूज मुतबादिल मौजूद है तो मुश्तबा को छोड़कर वाजे की तरफ आ जाओ। फ़ैन्नस्सदक़तुमअनीना, सच इत्मीनान बख्श है, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, यहाँ अपनी मालूमात अभी दर्ज करें। तो यहाँ क्या करना चाहिए? घबराहट? अरे नहीं, लिंक मशकूक है तो मत खोलिए, भेजने वाला वाजे नहीं तो तस्दीक कीजिए, बैंक या किसी इदारे के नाम से पैगाम आया है, इस पैगाम में दिए गए मशकूक रास्ते के बजाय इदारे के मोतबर जराए से आप राबता करें। ओवरऑल सामिन किराम, हदीस का मतलब ये नहीं कि हर ज़हनी वसवसा हराम और हलाल का फैसला बन जाए। अगर किसी चीज़ का हुक्म कुरान और सुन्नत से वाज़ह है तो महज ज़ाती एहसास उसे हलाल या हराम नहीं बना सकता, और अगर शरी मसला वाकई मालूम ना हो तो अहले इल्म से पूछा जाए। हदीस का मकसद ये है कि एक मुत्तकी, साफ और तरबियत याफ्ता ज़मीर मुश्तबह मामले में बेहतियात न बने। अल्लाह ताला में हक को हक समझने, बातिल को बातिल पहचानने, मुश्तबह उमूर में बसीरत और एहतियात इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum rahmatullah. Listeners, aaj ka mauzu bahut hi simple hai aur wo hai pani. हम सब जानते हैं कि पानी ज़रूरी है लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है और हम अक्सर मुनासिब जो हाइड्रेशन है

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं, जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो, तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https.// होने चाहिए और उनकी

0: रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेत्राश ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
2: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए वरना बेचैनी रहेगी ना।
1: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
3: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर्ट हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM RJ नाजिया और RJ सरवर मिर्जा के साथ Only on FM 107, Dil Se Desi.
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
5: FM 107, Dil Se Desi.
6: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main duha wala kabeer FM 107 pe and welcome to another Tech Update. देखिए, वेबसाइट से मैं आपको बताता रहूंगा और आपको मैं खबरें भी देता रहूंगा। हो सकता है बीच बीच में कुछ अलग आपको चीट कोड्स भी दे दूं टू रन ऑन डिफरेंट AIs, फॉर एग्जांपल चैट GPT बहुत कुछ करता है, इसके ऊपर बहुत सारे कोड्स काम करते हैं, बट आई विल लेट यू नो बाद में। फिलहाल जो है आपकी भी सजेशन बड़े जरूरी है। जुबानी स्लिप हो गई वेबसाइट्स पे तो आइएगा, लेकिन हमारे जो मेन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी रहिए, FM 107 Qatar, FM 107 Qatar। तो शुरू करते हैं आज की कुछ वेबसाइट्स से। बड़ी काम की भाई आज की वेबसाइट, कुछ मजेदार है टाइम पास के लिए और मजेदार होने के साथ साथ कुछ काम की भी है। सबसे पहले मजेदार वेबसाइट से शुरू करते हैं। टाइप करना है आपको windows93.net, windows93.net। होगा क्या कि आपके सामने एक बहुत ही प्राचीन युग की विंडो लोड होगी और उसके बाद आपको जो डेस्कटॉप पे नजर आएगा आप नॉस्टैल्जिया में, यादों में खो जाएंगे। मजा आ जाएगा आपको, स्पेशली 90s और 80s से पैदा हुए बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा भाई, कोता ही एकदम। तो उसमें क्या है कि आपके सामने बहुत सारे गेम्स नजर आएंगे आपको जो रेट्रो गेम्स हैं, आप जो है उन्हें लोड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आपको नजर आएंगी जो बैक इन द डे बहुत चलती थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। यू विल लव इट, ये इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक डाइव एंड मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। तो अगर आप यूज करना चाहते यूज कर सकते हैं windows93.net। कोई स्पेशल साइन अप वाइन अप कुछ नहीं है, कोई अलग से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट यू ओपन द वेबसाइट एंड इट इज देयर। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। क्योंकि मेरे खुद की हिस्ट्री में बहुत बढ़िया नंबर आते थे भाई, बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं, कोई सब्जेक्ट बढ़िया हो ना हो बट आई लव हिस्ट्री। और एक एक बहुत कमाल की वेबसाइट है, ये है www.cronus.org। मैं स्पेल आउट कर

0: Dedão. CHRONAS CHRONAS.org ये वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं और आपको एक आपको वर्ल्ड मैप नजर आएगा। वो वर्ल्ड मैप एयर के हिसाब से देख सकते हैं कैसे बदला, क्या हुआ, पूरी की पूरी हिस्ट्री इतने इंटरैक्टिव वे में सामने आएगी ना, आपको मजा आ जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ। सो इफ यू हैव किड्स एट होम, जो हिस्ट्री को थोड़ा ऑफ कोर्स बोरिंग लगती है लोगों ने, अंडरस्टैंड इससे समझाएंगे ना आपको, इससे समझाएंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको खुद बड़ा मजा आएगा भाई। बैठे बैठे मैं देखता रहता हूँ उसको टाइम पास के लिए, और मेरी हिस्ट्री ना सिर्फ रवा होती है, मुझे और अच्छा लगता है कि क्या बढ़िया चीज बनाई यार, किसने सोचा होगा ये आइडिया, अपने आप में बहुत कमाल का है। सो CHRONAS.org ये दूसरी वेबसाइट है। अब तीसरी की तरफ बढ़ते हैं जो कतर में बहुत काम आई। तीसरी वेबसाइट का नाम है simulator.electude.com। एक सेकंड मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सिम्युलेटर पता है आपको, सिम्युलेटर लिख लीजिएगा, उसके बाद डॉट लगा के इलेक्ट्यूड, ELECTUDE, ठीक है। तो simulator.electude.com, इसमें जब आप जाएंगे तो आपके सामने गाड़ी आ जाएगी और उस गाड़ी को आप बाकायदा कैसे सही करते हैं सीख सकते हैं। ये वेबसाइट आपको सब सिखाएगी, जंप स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन सा वायर कहाँ लगता है, स्पार्क प्लग कहाँ होता है, बैटरी कहाँ होती है, कहाँ कौन सा पार्ट होता है, ये इंजन की बेल्ट क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, और जो जो डायग्नोसिस होता है इंजन का वो कैसे होता है, आप खुद कर सकते हैं उसे। एंड यू कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आधी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी भाई, मैं बिल्कुल इसमें अंगूठा छाप मामला है मेरा गाड़ी को ठीक करने के समझने के मामले में, बट दिस वेबसाइट एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अच्छा ये भाई हाँ ऐसे करते हैं। सो यू माइट गेट अ वेरी वेरी गुड आइडिया और बहुत हेल्पफुल लगी मुझे, एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के काम आने वाली। यू नेवर नो भाई कब जरूरत पड़ जाए इस चीज़ों की, तो मैं तो ये बता के रखता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ वेबसाइट आज की, आखिरी वेबसाइट का नाम है लर्न, और उसके बाद जो है लर्न के बाद आपको हाइफन लगाना है, डैश लगाना है, anything.xyz। ये बहुत ही आलसी आदमी ने वेबसाइट बनाई होगी, पर काम की बनाई है। लर्न यानी सीखने वाला, लर्न और हाइफन anything.xyz। इस वेबसाइट का जैसा नाम है वैसे इसका काम है, आप कुछ भी सीख सकते, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, एंडलेस, इतनी भर भर के स्किल्स है ना इस पे सीखने के लिए, और जो स्किल्स आपकी मौजूदा है उनको आप अपस्किल कर सकते हैं। सो ट्राई ऑल दीज वेबसाइट्स एंड लेट मी नो कौन सी आपके काम आई या किस वेबसाइट ने आपके बोर्डम को किल किया। लेट मी नो 666-22107 ये शो में बता देना आप, और दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी है। मस्सलाम।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: Absolute Cinema,
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
6: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको इत्तला करता हूं कि कैसे इन स्कैम से आप बच सकते हैं। वेल, आज का है स्कैम जो वो है सेकेंड हैंड ओवर पेमेंट स्कैम। इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्कैमर्स आपकी अपनी चीज बेचते वक्त ही आपको झूठे पेमेंट्स के लालच में या जाल में फंसाकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। दोस्तों, ये है ओवर पेमेंट ऑन योर सेकेंड हैंड आइटम। कैसे काम करता है इस पर अगर हम बात करें, तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोई यूज्ड चीज जैसे कि मोबाइल, फर्नीचर या लैपटॉप बेचने की पोस्ट डालते हैं, तो स्कैमर्स फेक बायर्स बनकर आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। वो आइटम खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे कल वेकेशन पे जाना है, आज मुझे ये चाहिए, या फिर मेरे जो ऑफिस में काम है वो इसी लैपटॉप से निकलेगा, मेरा अपना काम भी ऐसे ही इसी लैपटॉप से होता है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपको जल्दी जल्दी बताएंगे। वो आपको एक डिजिटल चेक या मोबाइल पेमेंट भेजते हैं जो आपकी मांगी गई कीमत से थोड़ा सा ज्यादा की होती है। इसके बाद वो बहाना बनाते हैं कि गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें तुरंत वापस कर दें। कुछ दिनों बाद बैंक को पता चलता है कि उनका जो ओरिजिनल चेक या पेमेंट है वो फेक था, या जो चेक है वो फेक था। बैंक वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट से काट लेता है, जिससे आपका अपना भेजा हुआ रियल पैसा भी चला जाता है और आप एम्प्टी हैंडेड रह जाते हैं। वेल, इस तरह के स्कैम को लेकर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी इस स्कैम के बारे में बात करी गई है कि किसी सामान को खरीदना है और बायर जो है वो आपको पेमेंट करता है, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है कि अरे वो 30,000 की बजाय 40,000 पेमेंट हो गया है, वो कहता है वो 10,000 जो है वो वापस कर दें, फिर आप 10,000 वापस भी कर देते हैं। वैसे ये नए जमाने के नए लड़कों के साथ नहीं होता है, लेकिन पुराने जमाने के लोगों के साथ अक्सर हो जाता है कि उनके पास जो मैसेज आता है वो बजाय बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है, जो अपडेट है वो चेक करें, मैसेज पर, जो मैसेज डायरेक्ट मोबाइल पर आता है उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद वो बाकी के जो 10,000 है वो पेमेंट वापस उस बायर को जो दिखाता है कि मुझे चाहिए सामान उसको दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट दे भी देते हैं, फिर जो आपसे प्रोडक्ट लिया है वो सामने खड़ा होता है, वो आप प्रोडक्ट भी उसे दे देते हैं और वो नदारद हो जाता है। अब फिर जब आपको पता चलता है कि पेमेंट तो आया ही नहीं, आप उसे कॉन्टेक्ट करते हैं, आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपका जो सामान था वो भी जा चुका है, आपने 10,000 रुपए जो दिए थे वो भी जा चुका है, तो यानी कि आपका डबल ट्रिपल नुकसान हुआ है। आप वापस उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमेशा उसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड की डिटेल्स भी रखें कि आप किसको आइटम बेच रहे हैं। इवन अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं, आप लैपटॉप बेच रहे हैं, वो किस तरह का शख्स है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि उनका शिनाख्त जरूर करें, उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर या फिर कोई आईडी अगर उनकी है तो वो भी जरूर रखें, कि हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़े कि उन्होंने मोबाइल से अगर कुछ गलत काम कर दिया हो तो आपको पता हो कि

0: है या फिर इवन आपके मोबाइल पे सच में पैसे आ गए हैं, तो आप तब तक ट्रांसफर ना करें जब तक बैंक आपको ना बता दे कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बैंक के क्लियरेंस का वेट करें। ओवर पेमेंट रिजेक्शन रूल, अगर कोई बायर ट्रांजेक्शन से पहले या बाद में ओवर पेमेंट का बहाना बनाए तो डील को फौरन कैंसिल कर दें, ये 100% स्कैम की निशानी है। सेफ पेमेंट मेथड का यूज करना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, और उम्मीद है कि आज के स्कैम के बारे में भी आपको काफी कुछ पता चला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको इत्तला करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107 दिल से देसी।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस, वेरिएशंस और जबरदस्त कंसिस्टेंसी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया था। आप सुन रहे हैं FM 107 और

स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का ये प्रोग्राम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और जी हां दोस्तों, बात हो रही है रविचंद्रन अश्विन। 17 सितंबर 1986 को चेन्नई शहर में पैदा होने वाले अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू 2010 में किया। ओडीआई में उनका डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने नवंबर 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। शुरू से ही एक बॉलर नहीं थे अश्विन, वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर थे। राइट हैंड बैटिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग के साथ अश्विन ने इंडिया को बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन का रिकॉर्ड उनकी ग्रेटनेस को समझने के लिए काफ़ी है। उन्होंने इंडिया के लिए 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज तकरीबन 24 रन्स पर विकेट रहा है, जबकि उनके नाम 37 5 विकेट हॉल्स और 8 10 विकेट मैच हॉल्स भी हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 7 विकेट्स फॉर 59 रन्स है। लेकिन अश्विन की कहानी सिर्फ विकेट्स तक महदूद नहीं है दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3503 रन्स बनाए, जिनमें 6 सेंचुरीज और 14 फिफ्टीज शामिल हैं। आईसीसी के मुताबिक अश्विन टेस्ट हिस्ट्री में वो यूनिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेट्स और 6 सेंचुरीज दोनों अचीव किए। देखिए, कपिल देव का जमाना कुछ और था। कपिल देव वॉज द यूनिक ऑलराउंडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और कपिल देव के बाद यू नो फास्ट बॉलर बैटिंग भी कर रहा हो और यू नो सब कुछ कर रहा हो, तो ये ऑलराउंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिर्फ फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर्स के ही यू नो चंद लोगों में हमें दिखता था। लेकिन स्पिन बॉलर और वो भी ऑफ स्पिनर, बैटिंग भी कर रहा हो और सेंचुरीज भी यू नो स्कोरिंग एक फॉर इंडिया और फॉर हिज टीम, वो बहुत रेयर हमें देखने को मिला। और रविचंद्रन अश्विन जब ये यू नो इंडियन क्रिकेट टीम में जब ये इन्होंने एंट्री मारी थी और उस टाइम ये लग रहा था कि ये सिर्फ बॉलर ही हैं, लेकिन आगे जाकर जिस तरह की पारी यू नो इम्पोर्टेंट इनिंग्स उन्होंने खेली, तो उससे साफ साफ ये साबित हुआ कि इस खिलाड़ी के अंदर में बैटिंग का भी टैलेंट मौजूद था। नो अनिल कुंबले, एक ज़माना पहले अनिल कुंबले वॉज अ लीडिंग स्पिन बॉलर ऑफ इंडिया, तो अनिल कुंबले के नाम पे भी एक सेंचुरी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं थी। रविचंद्रन अश्विन लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर, वहाँ पर भी वो बैट करके इंडिया को कई ऐसे मुश्किलात यू नो मौके पर ही हेल्प्ड इंडिया टू विन गेम्स और यू नो टू डिफेंड इंडिया अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। और यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आपने सुना होगा कि 500 से ज़्यादा विकेट्स और 6 सेंचुरीज, ये यूनिक रिकॉर्ड है फॉर एनी क्रिकेटर। अश्विन ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। 116 ओडीआईज में उनके नाम 156 विकेट्स हैं, जबकि बैटिंग में उन्होंने 707 रन स्कोर किए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन ने 65 मैचेस में 72 विकेट्स हासिल किए और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 4 विकेट्स फॉर द 8 रन्स, जस्ट 8 रन्स। उनकी बॉलिंग का सबसे खास एस्पेक्ट था उनका वेरिएशन, ऑफ स्पिन के साथ कैरम बॉल दूसरा और फ्लाइट में तब्दीली ने बैट्समैन के लिए उनको रीड करना मुश्किल बनाया। अश्विन सिर्फ कंडीशंस का अगर मैं बात करूं कि इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि बैट्समैन के टेक्निक और सिचुएशन को समझकर अपनी बॉलिंग में चेंजेस लाते थे। इंटेलिजेंट बॉलर, जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कि आप सिर्फ तिरकी गेंद जो है आप डालते जा रहे हैं, जिस स्पिन ट्रैक नहीं हो वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन स्पिन ट्रैक के बावजूद नॉन स्पिन ट्रैक में भी अश्विन को बहुत सा ऐसे, मैं कहूँगा कि उनको जो सक्सेस है has come from those kind of wickets जहाँ पे ball turn ही नहीं कर, and वहाँ पर अश्विन was lethal। That's because कि अश्विन intelligent bowler रहा है। 2016 में अश्विन के करियर का एक खास साल रहा है और उन्होंने ICC Men's Cricketer of the Year और ICC Men's Test Cricketer of the Year दोनों award जीते। उनके कुछ यादगार परफॉर्मेंसेज में 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर टेस्ट शामिल है, जहां अश्विन ने मैच में 13 विकेट्स हासिल किए दोस्तों। सन 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट्स और सेंचुरी दोनों स्कोर किए और इंडिया की विक्ट्री में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका इंटरनेशनल करियर 200

83 मैचेस और 765 विकेट्स के साथ खत्म हुआ। सन 2026 में अश्विन ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेशनल क्रिकेट का एक नया चैप्टर शुरू किया। वो मेजर लीग क्रिकेट में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ शामिल हुए और एमएलसी में खेलने वाले पहले इंडियन कैप्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। रविचंद्रन अश्विन का करियर हमें बताता है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, रिसर्च, प्रिपरेशन, इंटेलिजेंस और सिचुएशन को समझने की सलाहियत भी एक खिलाड़ी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। 537 टेस्ट विकेट्स, 156 ओडीआई विकेट्स, 72 टी20 विकेट्स और टोटल 765 इंटरनेशनल विकेट, ये नंबर्स अश्विन के 14 साल के इंटरनेशनल करियर की कहानी खुद बयां करते हैं। तो दोस्तों, ये था रविचंद्रन अश्विन, इंडिया का स्पिन विजर्ड, जादूगर, ब्रिलियंट ऑलराउंडर और मॉडर्न क्रिकेट के सबसे इंटेलिजेंट स्पिनर्स में से एक। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत का गहरा रिश्ता समंदर से रहा है। समंदर ने यहाँ के लोगों को सफर, मछली पकड़ने और तिजारत के मौके दिए। इस समंदरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत निशानियों में से एक धाव यानी रिवायती कश्ती है। धाव लकड़ी से बनने वाली एक कश्ती है जो कतर के बहरी वर्से की अहम हिस्सा रही है। पुराने वक्त में इन कश्तियों को मछली पकड़ने, समंदरी सफर और तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कश्तियाँ लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाने, समंदर की वसत से फायदा उठाने में मदद करती थी। धाव बनाने के लिए हुनरमंदी और तजुर्बे की जरूरत होती थी। लकड़ी का इंतखाब, कश्ती का नक्शा, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ना और

की मजबूती को कायम रखना सब बहुत तवज्जो का काम था। कश्ती साज अपना हुनर अक्सर तजुर्बे और मश्क के जरिए हासिल करते थे। कश्ती साजी में सबर और सफाई का बहुत ज्यादा किरदार होता है। एक छोटी सी गलती भी कश्ती के काम और मजबूती पर असर डाल सकती है, इसीलिए हर हिस्सा एहतियात से तैयार किया जाता था। हुनरमंद जब कश्ती बनाता था तो वो अपनी मेहनत के साथ अपनी पहचान भी इसमें शामिल कर देता था। धाव का सफर टीम वर्क का दर्स देता है। कश्ती पर काम करने वाले तमाम अफराद अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। कोई कश्ती के रोक और सफर पर तवज्जो देता, कोई सामान संभालता और कोई मछली पकड़ने या तिजारती काम में मसरूफ होता। सबका मिलजुल कर काम करना कामयाब सफर के लिए जरूरी था। समुद्री सफर कुदरत को समझने का नाम भी था। लहरों और मौसम के अंदाज का ख्याल रखना जरूरी होता था। पुराने लोग तजुर्बे की बुनियाद पर समंदर के हालात को समझते और सफर की तैयारी करते थे। ये इल्म अक्सर बुजुर्ग नई नस्ल को सिखाते थे। कतर का बहरी वर्षा मोती हासिल करने की रिवायत से भी जुड़ा हुआ है। धाओ इन कुश्तियों में शामिल थी जिन्हें समंदर की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोती की तलाश में जाने वालों के लिए सबर, हिम्मत और एक दूसरे पर एतमाद जरूरी होता था। समंदर के करीब रहने वाले लोगों की जिंदगी में धाव सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये रोजगार, खुराक और तिजारत से जुड़ी होती थी। कश्ती पर गुजारा गया वक्त और घर वापस आने की ख्वाहिश दोनों समंदरी जिंदगी की यादों का हिस्सा थे। कतरी लोक गीत और कहानियां भी अक्सर समंदरी जिंदगी की याद दिलाती हैं। कश्ती पर काम करने वाले लोग सफर को आसान और पुरजोश बनाने के लिए मिलकर गीत गा सकते थे। ये गीत टीम वर्क और हौसले को मजबूत करते थे। आज के कतर में धाव अब ज्यादातर वर्से और सकाफती पहचान की अलामत के तौर पे देखी जाती है। समंदरी प्रोग्रामों, म्यूजियम और वर्से की नुमाइशों में रिवायती कश्तियां पेश की जाती हैं। लोग उन्हें देखकर पुराने वक्त की जिंदगी, हुनर और समंदरी सफर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ताऊ फेस्टिवल जैसे प्रोग्रामों का मकसद लोगों को बहरी वर्से से जोड़ना होता है। यहाँ पुरानी कश्तियों के साथ कश्ती साजी, समंदरी सफर और रिवायती हुनरों को भी पेश किया जाता है। ऐसे प्रोग्राम बच्चों और नौजवानों के लिए खास दिलचस्पी का सबब बनते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने सफर के तरीके बहुत हद तक बदल दिए हैं, लेकिन रिवायती धो की अहमियत कम नहीं हुई। यह हमें याद दिलाती है कि तरक्की के साथ माजी को भी याद रखना चाहिए। पुराने हुनर और तजुर्बात किसी कौम की पहचान का कीमती हिस्सा होते हैं। ताऊ देखकर हम सिर्फ लकड़ी से बनी कश्ती नहीं देखते, बल्कि इसमें हुनरमंदों की मेहनत, समंदरी सफर करने वालों की हिम्मत और खानदानों की उम्मीदें भी देख सकते हैं। ये कश्ती माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान एक खूबसूरत राबता है। कतर की धाव रिवायत हमें टीम वर्क, सबर और कुदरत के एहतराम का पैगाम देती है। समंदर ने लोगों को ये सिखाया कि सफर तन्हा नहीं बल्कि मिलजुल कर तय किया जाता है। इसलिए धाव सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और अपनायत की निशानी है। आज का कल्चर मोमेंट इसी पैगाम के साथ मुकम्मल करते हैं कि कतरी धाव अपने अंदर सफरों और खूबसूरत कहानियों की यादें समेटे हुए है। जब हम इस विरसे को समझते और महफूज रखते हैं, तो हम उन लोगों की मेहनत को भी इज्जत देते हैं जिन्होंने समंदर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट। अब मैं वैसे तो बात करनी चाहता हूँ वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट बच्चों, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चे नहीं है, हर बच्चे के अंदर एक साइंटिस्ट है भाई साहब। दुनिया भर में वो जहाँ पूरे जाम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये खास करके शो है जूनियर साइंटिस्ट के लिए ही, पर हम बड़ों के लिए भी, क्योंकि हमें ही उनके साथ रहकर एक्सपेरिमेंट करना है एक सेफ एनवायरनमेंट में। एंड ये शो का मकसद ही है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहकर उन्हें ये बता सकें कि साइंस हर जगह है हमारे इर्द गिर्द, और हो सकता है कि आपके घर में उस जूनियर में एक साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी पैदा हो और वो आगे जाके साइंस में कुछ करना चाहे। यू नेवर नो, ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो हम हर रोज इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं शो में, हर हफ्ते इनफैक्ट, एंड उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि इससे कुछ नया सीखने को मिल जाए। ज्ञान व्यान कुछ नहीं, ईजी एक्सपेरिमेंट है, और मैं आपको समझाऊंगा भी, ऐसे आपको लगेगा हाँ भाई अपना कोई समझा रहा है, मेरा बड़ा भाई है। तो वैसे ही कोशिश है हमारी। तो आज हम जानेंगे कि जो आइस क्यूब है ये हमारे जैसे क्यों है। मैं बताता हूँ क्या कहने का मतलब है। आइस क्यूब बिल्कुल हमारी जैसी, हमें एक बढ़िया कंपनी चाहिए होती है तभी हम पिघलते हैं भाई। हर किसी के सामने हमारे हम नहीं पिघल सकते। एक एक अच्छा दोस्त हो तो आप उसके साथ बैठ के घंटों पर बातें कर सकते हैं, और बात ना भी करें तो चाय पी के आपके दिल को आराम आ जाता है, उसे पिघलना कहते हैं। आइस के साथ भी ऐसा ही है, आइस हर किसी के साथ ऐसा मेल्ट नहीं होती, और आज का एक्सपेरिमेंट यही बताएगा कि सबसे ज्यादा तेजी से आइस को क्या मेल्ट कर सकता है। क्या सॉल्ट में वो बात है कि आइस को पूरी तरह से मेल्ट कर सके, या वो बात शुगर में है, या गर्म गुनगुने पानी में है? कौन ज्यादा आइस को पसंद करता है, या आइस उसको पसंद करती है? दैट इज द क्वेश्चन। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो आइस क्या है बेसिकली? सबसे पहला फंडा तो ये, आइस इज नथिंग बट फ्रोजन वाटर, सॉलिड और बहुत ठंडा। अब आइस को मेल्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, जैसे आपकी दोस्ती। अगर आपके अंदर थोड़ी जान डालनी है, आपका लेजीनेस तोड़ना है, तो कोई एक मैसेज चाहिए कि भाई मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, खेलने चले क्या, चाय पीने चले क्या, एंड दैट एड्स एन एनर्जी। बस आइस को वही एनर्जी चाहिए टू मेल्ट, और ये एनर्जी आती है हीट से और फ्रॉम सब्सटेंसेस जो कि आइस के मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करते हैं। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स के डिफरेंट मटेरियल इफेक्ट्स करते हैं उस रफ्तार को जो आइस को मेल्ट करता है। इस बारे में बात शुरू करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जूनियर साइंटिस्ट शो का नाम है, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। आइस क्यूब के साथ अगर आप भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। पर जाने से पहले ना, एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा बता दूं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। इसमें हमें एक आइस क्यूब चाहिए, फ्रोजन वाटर बेसिकली। जैसे अब आइस क्यूब शेप क्या बताऊँ मैं आपके सामने, क्यूब देख लो यार बढ़िया से। आजकल तो बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जिसमें अलग अलग साइजेस होते हैं, गोल गोल भी आती है। सॉल्ट चाहिए आपको ताकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर किया जा सके। शुगर चाहिए, एक स्वीट सब्सटेंस ताकि कंपेरिजन हो सके कि सॉल्ट के मुकाबले क्या हिम्मत है, हिमाकत कर सकता है कि शुगर। और गर्म पानी चाहिए, एक वार्म एनर्जी फॉर मेल्टिंग। और 3 प्लेट या कंटेनर सेपरेट अलग अलग टेस्टिंग के लिए। ये सब तैयारी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट आपके जहन में, या आप बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया करते हैं तो बताइएगा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। लौट के आता हूं।

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड दिस इज जूनियर साइंटिस्ट और मैं जी दुहा वाला कबीर जूनियर। तो आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज के शो में कि आइस क्यूब कैसे मेल्ट हो सकते हैं, उसकी रफ्तार को कौन कौन से मटेरियल से कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सीधा सीधा एग्जांपल दिया कि आइस की क्यूब को यूँ समझिए कि वो आप हैं और बाकी सब्सटेंसेस वो एक किस्म की दोस्ती है। किसी से दोस्ती गहरी होती है, किसी से बहुत कम होती है, लेकिन बस होती है, और किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है। आइस के साथ भी ऐसे ही है, जैसे आपके साथ है ना, आपको हर कोई पिघला नहीं सकता भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड ही पिघला सके है, वैसी आइस के साथ है कि आइस को पिघलाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, लेकिन आज हम उन्हीं का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको आइस क्यूब चाहिए, सॉल्ट चाहिए टू लोअर द आइस मेल्टिंग पॉइंट, उसके अलावा शुगर चाहिए, एक स्वीट सब्सटेंस ताकि कंपेरिजन हो सके, हॉट वाटर चाहिए ताकि एक वार्म एनर्जी पैदा हो सके, एंड तीन प्लेट या कंटेनर चाहिए आपको सेपरेट सेपरेट टेस्टिंग के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम तीन कॉमन चीजें यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर, सॉल्ट, शुगर। हर कोई अलग अलग रिश्ता रखता है आइस से, इस आइस के क्यूब से। सॉल्ट की खासियत यह है कि वो आइस को मेल्ट कर सकता है बहुत तेजी से, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट वो गिरा सकता है। हा? तो सॉल्ट जो है आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड हो गया भाई साहब, आपका बेस्ट फ्रेंड है आइस। और शुगर की बात करें तो शुगर भी इंटरेक्ट करता है आइस से। शुगर वैसा है जैसे ऑफिस के कुछ होते हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, मगर वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं कर पाते। शुगर वैसे ही है, ये इंटरेक्ट करता है आइस के साथ मगर डिफरेंटली। पर जैसी हॉट वाटर ऐड कर दी जाए, हीट एनर्जी पैदा होती है, तो वो इसको मेल्ट कर सकती है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं, इजी है। सो आइस जो है मेल्ट कैसे हो रही है फास्टर, क्यों ऐसा हो रहा है? आइस इसलिए फास्ट मेल्ट होती है क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसको, उतनी ज्यादा वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। अब गर्म पानी जो है वो यही कर रहा है, वो डायरेक्टली एनर्जी दे रहा है थ्रू हीट। सॉल्ट जो है वो जब मिलता है आइस से तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल में हलचल पैदा करता है। यानी ये समझ लीजिए कि आपकी दोस्ती जो है अगर बहुत गहरी है तो आपके दिल में घुड़क होती है, भाई चलो भाई चाय पीने चलते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ हम निकल जाते हैं या खेलने निकल जाते हैं जूनियर्स के लिए। और इसलिए आइस का मॉलिक्यूल जब सॉल्ट से मिलता है तो उसमें उथल

हो जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है। इसके बाद बहुत अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। शुगर ऑन दी अदर हैंड, शुगर के साथ कहानी अलग है, ये लोअर पॉइंट पे नहीं ले जाता मेल्टिंग पॉइंट को, सॉल्ट के मुकाबले थोड़ा सा हल्का हाथ रखता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत ज़्यादा आसान है, मगर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जूनियर्स के साथ, और जूनियर्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछिएगा कि कौन सी चीज़ है जो आइस को जल्दी से मेल्ट कर सकती है, तो आप उसके हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंट करें और बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें। इट इज एवरीवेयर, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, कंपेयर कीजिए कौन सा क्या, और उसके बाद डिस्कशन जारी रखें कि कौन सी चीज जल्दी से मेल्ट कर पाती है। साइंस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग, आपने प्रेडिक्ट किया, उसके बाद आपने देखा, ऑब्जर्वेशन आया आपका, और फिर आपने कंपेयर करना शुरू किया, फिर आपकी थ्योरी आई और साथ साथ प्रैक्टिकल तो चल ही रहा है। तो अलग अलग चीजों की बात हो गई, एनालॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं। एनालॉजी बड़ी सिंपल है, आइस को आप एक तरीके से ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आइस जो है वो कैसे बताऊं, हाँ, ग्रुप ऑफ डांसर समझ लीजिए, एक डांसिंग ग्रुप है पूरा का पूरा, और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और बढ़िया डांस चल रहा है, लेकिन हॉट वाटर जैसे उसके टच में आएगा, एनर्जी जब आएगी तो वो उन सबको अलग कर देगा, उसकी जो वार्मथ है विल मेक देम रिलीज द होल्ड, और वो होल्ड जैसे ही कमजोर पड़ेगा वैसे की वैसी हाइट, वो वैसी वैसी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गिर जाएगा। सॉल्ट जो है इज लाइक विस्पर्स टू द डांसर्स, जैसे वो कानों में कह रही हो इट्स ओके टू लेट गो, लोअर द टेम्परेचर, कोई नहीं है, चिल एकदम, डोंट डू, जस्ट चिल, वही सॉल्ट करता है आइस क्यूब के साथ, एज इफ लाइक कान में बोल रहा हो। दैट्स व्हाई कुछ आइस जो होती है वो मेल्ट ज्यादा करती है बाकियों के मुकाबले, ये भी एक चीज है। सॉल्ट लोअर कर देता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट को, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी कहा जाता है, और हॉट वाटर सीधा सीधा डायरेक्टली, उसने कोई बातचीत नहीं करनी, उसने सीधा एनर्जी ऐड कर देनी है। और शुगर का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है आइस की मेल्टिंग में, क्योंकि वो इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है सॉल्ट की आइस। सो दैट्स हाउ इट इज, कहानी के जरिए बता रहा हूं आपको, आई होप इट हेल्प्स। सो सॉल्ट ने टच किया आइस, सॉल्यूशन पैदा हुआ, उसने मेल्ट किया नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर्स को, जैसे प्रोसेस मैंने बताया आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हॉट वाटर आइस पे जब गिरा हीट निकली, एनर्जी बनी, और हो गया जी काम, आइस को टाटा बाय बाय हो गया। शुगर जो है वो थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, मगर वो मेल्टिंग पॉइंट में वैसा वाला असर नहीं लेके आता जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। आप सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कुछ देर में, लेकिन जूनियर साइंटिस्ट को सुनते रहिए। और मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, जाने का नहीं, स्टे ट्यून्ड।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आज जूनियर साइंटिस्ट से हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आइस क्यूब्स वो अलग अलग सब्सटेंस के साथ मिलकर अलग अलग रिएक्शन देता है। तो मकसद ये जानना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, कौन जल्दी पिघला सकता है इसको। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, जितने भी जूनियर्स मुझे सुन रहे हैं, कौन सा वो आपका दोस्त है जो आपकी मिजाज को पूरी तरह से बदल सकता है। बस वैसे ही आइस क्यूब है, उसके मिजाज को बदलने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हम आज तीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।

0: नहीं मतलब शुगर, और तीसरे पे आपको सीधा डाल देना जी गर्म पानी। अब आप देखिए टाइमर सेट कर दीजिए कि कौन सी वाली आइस क्यूब सबसे पहले मेल्ट होती है दूसरे या तीसरे के मुकाबले। जब आप उसे बहुत गौर से देखेंगे डिफरेंस सीधा आपके सामने होगा। आइस क्यूब मेल्ट करती है जब वो सॉल्ट से मिलती है, शुगर से मिलती है, हॉट वाटर से, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग है। अलग अलग स्पीड के साथ हमने जाना कि आइस किस तरीके से मेल्ट होती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किससे मिलवा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे ही फन एक्सपेरिमेंट्स के साथ अगले बार मिलेंगे। लेकिन ये जो एनालॉजी मैंने खींची कि आप वाइस क्यूब हैं तो ऐसे से याद करना मुश्किल है। और अगर एक्सपेरिमेंट घर पे करें तो प्लीज बताइएगा। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। डू लेट मी नो इफ यू आर अबाउट टू ट्राई दिस। एंड ऑल्दो इतना कुछ सेफ एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, बट प्लीज बी सेफ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो एक्सपेरिमेंट्स हैं एंड ये बोलने में भी फैंसी लगता है। प्लीज डू इट इन अ सेफ एनवायरनमेंट। जूनियर साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। साइंस इज एवरीवेयर और आजकल तो कबीर भी इज एवरीवेयर। बस अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्टर
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की,
4: स्पोर्ट्स की। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे और हम यानी सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं, पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। और आज हम जो है ना बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। है तो हल्का फुल्का लेकिन हर कोई रिलेट करेगा, हर किसी के पास कुछ ना कुछ होगा। और हम ये कह सकते हैं कि टूवर्ड्स द एंड लास्ट में जब हम इस शो से ना अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, सर्वर भाई भी खुदा हाफिज़ कहेंगे, उस वक्त बहुत कुछ हम यहाँ से जो है बेस्ट टेक अवे के फॉर्म में लेकर जाने वाले हैं। तो बस आज की
2: अब यही तो आपकी आदतें हैं जो आप बदल नहीं रही हैं, और आदतें ऐसी जो आपके पीछे लग गई हैं नाजिया जी।
4: ये आदतें जो है मेरी, तो चलिए आदतें आप अपने आदतों से पहले बुरी लगा दें, आपकी बुरी आदतें आपका पीछा ही नहीं छोड़ती।
2: नहीं ऐसी बात नहीं है नाजिया जी, आदतें मेरी सारी अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा।
4: आप झूठ बोलने को तो कभी तस्लीम ही नहीं करते कि बुरा है, आप तेरे पना क्यों है?
2: किसी इंसान की जिंदगी में एक चीज रोजमर्रा के तौर पे हो रही है और इतना ज्यादा दखल हो चुका है उसका, तो फिर वो चीज कहाँ बुरी लगती है? अब आदत है हमें तो है, वो तो अच्छी लगेगी ना, खुद को तो अच्छी लगेगी।
4: तो वही तो मैं कह रही हूँ, किसी ने आपको सही तरीके से टोका नहीं आदतों पे।
2: अब देखिए अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया है और कहीं ना कहीं आदतों को सुधारने के लिए आप मौजूद हैं।
4: अल्हम्दुलिल्लाह, टोका टाके तो मैं करती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ कि नहीं इसको आप बेहतर कीजिए, इसे और बेहतर कीजिए, ये वर्स्ट की तरफ जा रहा है। आपका तो लिटरली टच होके लौटता है, टक एकदम हो के वापस आता है वर्स्ट से, तो वही वाली हालत है। तो बस आज आदतों की तो बात होने वाली है,
2: आदतों की बात होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी चलिए बता देते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 666-22-107। और वहीं अगर आप कॉल करना चाहते हैं हमें तो हमारा नंबर है 4434377443-4377। और वहीं आपको बता दूं कि हमारी जो वेब एड्रेस है उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी में ही हों और हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहें और किसी मजबूरी के तहत आप नहीं रह पा रहे, तो आप मोबाइल ऐप के ज़रिए या फिर वेब एड्रेस के ज़रिए, मतलब मोबाइल के थ्रू ही हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वो बहुत आसान है, www.urduradio.qa, या इसके बजाय आप लिख सकते हैं जाकर FM 107 उर्दू रेडियो कतर, FM 107 कुछ भी अगर आप इस तरीके से टाइप करेंगे ऑनलाइन जाकर तो आप हमारे साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो हमारा वेब एड्रेस है उसके ज़रिए आप सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, आप स्टेशन के बारे में सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाजिया जी कौन सा प्रोग्राम कौन से वक्त कर रही हैं, कौन से वक्त नहीं कर रही हैं, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर जाकर आसानी से जान सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो हम हर जगह मेरे खिदमत हैं ही भाई, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, टिकटॉक हो, हर जगह हम आपके लिए हाजिर खिदमत
4: हैं। मैं चाहती हूँ आप जी पे भी आएं, जेड तक,
2: ए से लेके जेड तक।
4: यस, और आप बाय कट।
2: यार ये तो आपने बड़ी अच्छी दुआ दे दी है इस तरीके से, मैं जो समझ रहा हूँ मैं तो अपने लिए अच्छा ही समझूंगा, अब बाकी आप जो भी सोच रहे
4: हो चैनल पे तो नहीं सोच
2: रहे। मैं असल में यही सोच रहा था। तो भाई अब इसी सिलसिले से आइए बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देते हैं।
4: और आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सवाल है, हम आज आपसे जानना ये चाहेंगे कि वो कौन सी आदत है आपकी जो बचपन से आज तक चाह कर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। जैसे सरवर भाई की आज भी आदत है खाना, ये जब भी खाते छुप के खाते,
2: एक आदत से हो, अब ये तो आपके जितनी
4: सरवर
2: भी
4: भाई आपने मुझे खुद बैठ के बताया, जैसे कोई खाने की चीज हो ये टर्न हो जाते, अरे सरवर भाई हम लोग तो इधर बैठे आपके देने में छुप के खाते।
2: देखिए लिहाज भी जरूरी ना, पीट करके खाना चाहिए दूसरे के मुँह पे, ताकि तभी तहजीब कुछ तो सीखी है मैंने, ऐसी मत थोड़ी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम। अरे इतना जल्दी बात खत्म करके सलाम वालेकुम, मेरा मुश्किल नहीं बट सुन रहा हूँ।
4: अरे ये तो रईस जी है, बहुत समाने बाद
5: भैया मौका मिला था, हम बोले यार सरवर भाई से चुप छुपा के थोड़ा सा मिल लेते हैं, हम भी खाना खा के थोड़ा सा बॉडी माडी बना लेते हैं।
4: खाना खा के बॉडी बना रहे हैं आप? ये तो कहते हैं कि मैं जिम जाके बॉडी बना रहा हूँ।
5: अरे भाई खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? पहले खाओ पहले फिर बॉडी बनाओ भाई, बॉडी में ताकत होना चाहिए ना, ताकत रहेगा नहीं तो फिर फायदा नहीं है ना।
4: कितना खाओ और कितना बनाओ ये भी तो एक सवाल है बड़ा।
5: अरे सरवर भाई बोल नहीं रहे, कहीं उठ के भाग गए होगा,
4: कह रहे मैं कुछ खा लूं इस बीच।
2: हाँ वो जरा सा सैंडविच खा रहा था तो वो जरा सा निपटा रहा था, पूरा कर रहा था उसको। रईस भाई किधर रईस भाई किधर?
5: अरे भैया हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सारे टीम मिले थे रेडियो रेडियो के सुनने वाले जितने थे।
2: अच्छा आप भी थे?
5: आपको मिस कर रहे थे उस दिन की, यार सरवर भाई नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा है।
2: मुझे मिस मत करिए, आप मुझे मिस्टर करते तो मैं आ जाता, हाजिर हो जाता। आप कर ही गलत रहे थे, मिस करने से कैसे आ जाता मैं? मिस्टर करते आप तो मैं जरूर आते हो जाता। अरे भाई
5: नहीं, हम सोचे कि ला यार कॉल लगा लेते हैं, लेकिन आपका पर्सनल नंबर नहीं था मेरे पास, मैं बोला चलो ठीक है।
2: वो मेरे पास खुद नहीं है, वो किसी के दिए से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भाई, यहाँ आपको क्या बताऊँ मैं। रईस भाई
5: सैफ साहब से तो मिल लिए थे, हाला
2: जी हमें पता चला, मगर उस वीडियो में आप कौन से वाले थे मुझे ये नहीं याद रहा।
4: हमें सबसे लास्ट में जो खड़े हैं,
2: पीछे जो खड़े थे
4: जो लंबे से हैं थोड़े से, आप थोड़े से आपकी हाइट है ना।
2: नहीं तो वीडियो में क्यों नहीं खड़े थे, पीछे जाके क्यों खड़े हो गए?
5: मैं पता नहीं किस मतलब उसने, मैं ख्याल नहीं किया किसने तस्वीर खींची कि इतना बुरा, मुझे अफ्रीकियों से भी काला बना दिया, सारे लोगों को तस्वीर अच्छा और मुझे तो आई। मैं बोला यार ये किस कैसे मतलब इसको ये किया जाए भाई, तो मैं बोला यार अब हसैब साहब के साथ में एक तस्वीर मैंने लिया था, वो
4: भेजिए हम लोग,
2: वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम अपने प्यारे प्यारे रईस भाई को देख तो पाए भाई, कितने माशाल्लाह खूबसूरत, इतना बड़ा दिल रखने वाले।
5: खूबसूरत का बात नहीं है भाई।
2: अरे नहीं नहीं रईस भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप हैं।
4: अच्छा रईस जी एक बात बताइए, वो आपकी कौन सी आदत है जो बचपन से आपकी आज तक चल रही है और आप चाहते हैं कि आदत मेरी छूट जाए लेकिन छूट नहीं पा रही है?
5: भाई छूटेगी भाई, खाना खाने की आदत कैसे
4: छूट गई? ये मत कहिए खाना खाने की, ज्यादा खाना खाने की आदत आपकी नहीं छूट रही तो ज्यादा लगाना पड़ेगा।
5: अगर छुटकारा मिल जाता ना तो ये प्रदेश में भटकना नहीं पड़ता इतना जगह जगह लोगों के।
2: हाय सुनिए रईस भाई, याद आ गया आपकी, इसी बात पे आपको रोकूंगा मैं, आपका ये इरशाद जबरदस्ती सुनिए।
4: अच्छा
2: ओके, तो अर्ज किया है कि साहब उफ ये सफर तवील और ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील और ये छालों का सिलसिला, उस पे मिजाज पूछने वालों का सिलसिला, इशारा आप समझ रहे हैं मेरा नादिया की तरफ है। तो उफ ये सफर तवील और ये छालों का सिलसिला, उस पे मिजाज पूछने वालों का सिलसिला, और तमाम उम्र फिराता है दर बदर दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला।
5: क्या कहने आपने सारे उसको सबमिट कर दिया आपने उसमें भाई।
2: हाँ बस 5 साल हो गए थे मेरी थीसिस को, मैंने कहा कि आज सबमिट करके डॉक्टरेट जो है वो हासिल कर लूं किसी तरीके से। हाँ
4: नहीं तो ये तो रईस जी ये वाली आदत नहीं हुई खाना खाने की, कोई ऐसी आदत छोड़ना, आप इसको कैसे छोड़ सकते बताइए आदत
2: नहीं। और हम कैसे माने आप खा रहे हैं, आप खाना खाते हैं हमें क्या पता भाई, हमें बुलाइए दिखाइए जो खा रहे हैं वो हम टेस्ट करेंगे, पहले टेस्ट भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे कि आप क्या खा रहे हैं कैसा, उसके बाद डिसाइड
4: करेंगे ज्यादा खा रहे हैं कम खा रहे हैं,
2: आदत कौन सी है और कितनी पहुंच चुकी है, कितनी बढ़ गई है।
5: बात को थोड़ा लंबा खींचना था इसके लिए हमने ऐसे पॉइंट को रखा कि थोड़ा
2: नहीं मगर फिर भी मतलब
4: ये हमारा शो ही टोटल 1 घंटे का है।
2: इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पा रहे, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं?
4: जैसे सर्वर भाई की तो नेल बाइटिंग की भी आदत है,
2: बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप बता नहीं पाएंगे या बताना नहीं चाहते होंगे, जाहिर बताइएगा भी मत
4: बताइएगा।
5: बहुत सी ऐसी चीज थी जो कि मैंने छोड़ दिया, बहुत से मतलब तकरीबन गुस्सा बहुत जल्दी आता था लोगों पर, मतलब कोई चीज का अगर अपने हिसाब से
2: वाह वाह इसको छोड़ दिया आपने,
4: बहुत बड़ी बात है।
5: मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को ये कंट्रोल करके, और मैं अपने मन मर्जी से भाई नहीं हर काम होता
2: है, बहुत गलत किया,
5: बहुत अलग अलग होता है, तो मतलब इस चीज पे मैंने बहुत ज्यादा रियाज करके मैंने छोड़ दिया कि नहीं यार, ये हर बंदे को अपने हिसाब से नहीं ढाल के सकते हो ना उसे चलवा सकते हो, तो बल्कि उसको बस थोड़े से हिसाब से ये करके उसको अपने हिसाब से छोड़ दो, वो खुद बहुत अगर समझ पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें बहस मुबहसा करके और बात को ये करके

0: एक मजेदार बात बताता हूँ, अभी वाइफ ने बिरयानी बनाई थी तो अब उसने दोनों, अब मुझे लेग पीस पसंद है तो दोनों के दोनों उसने मुझे ही दे दिए, फिर भी मेरी नजर उसकी प्लेट पर है।
1: नहीं नहीं इसमें कुछ इसके और
2: लिए इसका कुछ और भी कहा जा सकता है, हाँ, कह नहीं पा रहे लेग पीस में।
1: नहीं वो दोनों टूट भी सकते थे ना, जो लेग पीस थे वो मुर्गी के
2: लेग पीस से छोड़ी हैंड पीस ना निकल
0: बस अल्लाह खैर करे, आज सुंदर रहियो,
1: अल्लाह ताला खैर करे भाई, और आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
2: आदत पे काम कीजिए थोड़ा सा,
1: इस पे काम ये करें कि इसमें और ज्यादा आप थोड़े
2: काम करें, हाँ, काम मतलब, बढ़ा दें,
1: हाँ, काम बढ़ा दें, हाँ, हाँ,
2: काम ज्यादा करें।
1: चलिए भाई शुभ भाई, बहुत
2: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज,
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो भाई
2: और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर सर्वर भाई जुड़ रहे हैं,
1: कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आज आपको मैसेज पढ़ने थे, कल काफी लोगों ने कहा था कि नादिया जी मैसेज पढ़ा करें,
2: सर्वर भाई आपको पढ़ने होते हैं,
1: नहीं नहीं मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मगर कल गुजारिश करी गई थी भाई कि नादिया जी मैसेजेस,
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू,
3: क्या हाल है शबाब, कलम से
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, एक आदत नहीं है बस सर्वर भाई की तरह, और कुछ भी हो रहा है।
2: अच्छा एक आदत सर्वर भाई की तरह, कौन सी? तौफीक जी हमारे साथ,
1: अल्लाह तौफीक दे,
3: आमीन आमीन, वो तो सबको मैं सबके पास जाता हूँ ना,
1: हाँ नहीं सभी के लिए दुआ है जी अभी अभी फिर उठे,
3: खाना की आदत यार,
1: दीवार से टकराया, आंखें खोली एकदम,
3: जो कोई भी कहाँ कबूर है आप खुश हो रहे, खाना खाना क्या है, खाना
2: खाना
3: नहीं है, खाना हमें छोड़ दिया हुआ है
2: खाना छोड़ दिया है, छोड़ के गया,
1: तो इसलिए वो जल्दी जल्दी राशन जो घर का वो सब बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो आज जिस जिसको पहुंचना है तौफीक भाई के यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि इन्होंने खाना छोड़ दिया है, तो इनका जो रिस्क है वो उठा लें,
3: जो मेरे पास पहुंचेगा उसको मैं वर्जिश खिलाऊंगा, जिम करूंगा,
2: जो रिस्क है वो रिस्क पे अपने उठा लें,
1: वर्जिश करके भाई कह रहा हड्डी बनाऊंगा, मसल्स नहीं कह रहे हड्डी बनाऊंगा,
3: सबसे पहले आपकी आप आ जाओ मेरे साथ, दो महीना देखो क्या करूंगा आपका,
1: तो आप गद बनाना चाह रहे हैं मेरी, फिर आप हड्डी और इधर उधर क्यों जा रहे हैं, अभी तो वही गद बनाऊंगा,
2: नहीं ये कह रहे हैं कि वो भेजा कटाकट बनाऊंगा,
1: होगा तो बनेगा क्या बात है, नहीं फिर भी तौफीक भाई कोई तो ऐसी चीज होगी जो आज आप हमारे सामने एतराफ करना चाहते होंगे और सबके सामने आप ये कबूल करना चाहते होंगे।
3: मैं अपने घर बच्चों को सबको तंग करता हूँ हर वक्त, सबको गुस्सा करता हूँ, ये आदत नहीं कर,
2: ये तो सर्वे भाई की आदत नहीं, बच्चों की टॉफियां खा रहे हैं,
1: हाँ नहीं तंग करना दो तरीके से होता है, मैं भी बहुत ज्यादा तंग करता हूँ,
2: बहुत ये करते हैं, टॉफियां खा जाते हैं,
1: उससे अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का खून बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे तंग करने से, एक वो तंग होता है जिससे
2: बच्चों से पूछिए उनका खून जो जलता है,
1: खून खुश्क होता है या जलता है, आप कौन सा वाला तंग कर रहे हैं?
2: जलने वाला
3: नहीं, ऐसे ही तंग कुछ भी, बस छोटे उसको वो लोग साथ खेलता हूँ, फिर मैं उसके थोड़े दूर करके गुस्सा हो जाता,
1: शरारत करते हैं,
3: मुझे शरारत, हाँ शरारत,
2: इनका तो बचपना गया ही नहीं है,
1: शरारत में शराफत लाइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बच्चों के साथ,
3: अच्छा लग रहा है,
1: बहुत अच्छी बात है यार, ये आदत तो छोड़िएगा भी मत और इसको आप कायम रखिएगा, और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों के साथ,
3: तो सब मिल के मुझे घर से निकाले,
2: आप बेफिक्र रहिए, मैं एड्रेस सर्वर भाई का दे के रखूंगी,
1: अरे मेरा भाई कैसा, मैं भी आऊंगा यार, अरे आप मेरा नाम ले लिएगा, कहिएगा किसी ने कुछ कहा तो अभी बुला रहा हूँ सर्वर को, अब ये बात अलग है, आने के बाद मैं भी उनके साथ मिल जाऊँ, ताकि आप थोड़ा जल्दी निकल जाए घर से, घूमने फिरने के लिए
3: आपको नहीं बुलाऊंगा, चावल की बोरी भी खत्म हो जाएगी,
2: चावल की बोरी भी
1: नहीं, तो हम भाग क्यों खत्म करेंगे, हम साथ में ला सकते हैं अपने, आप दे दीजिएगा खाना, तो आप वैसे ही नहीं खा रहे हैं आजकल,
2: ये बहुत अच्छा है,
1: चलिए अच्छी आदत, अच्छी आदत है भाई की,
2: और एक थोड़ी डिफरेंट आपने बताया,
1: कुछ बच्चे बने हुए हैं, कुछ खाने के पीछे लगे हुए हैं, अभी तक तो यही साबित हुआ, बाकी देखेंगे क्या होता है, तौफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
3: तुमको मालूम है एक टाइम
1: नहीं मालूम है,
2: अच्छा एक ही टाइम खाते हैं वो, जो मॉर्निंग पे खाते
3: हैं, हाँ बस एक टाइम एक बार खा लिया तो खा लिया, बाकी अगर थोड़ा ही सी दूध मूध या कुछ मिल्क बस खा ला, इतना नहीं,
2: सर भाई सीख लीजिए आप,
3: सीख लो,
2: आदतों से आदतें बनाइए अपनी,
1: अल्लाह ताला आपको तौफीक दे भाई, और इसी तरह आप इंशाल्लाह अच्छे अच्छे काम जो है
2: अंजाम
1: देते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई,
2: अल्लाह हाफिज़,
1: तो भाई अब हम जरा मैसेजेस की जानिब चलेंगे, और थोड़ी सी देर के लिए कॉल अभी उठाते हैं, बस कहते हैं सरोर भाई जंगल में मोर नाचा उसको किसने देखा, क्या मतलब है कहने का,
2: मतलब आप कितना खाते हैं किसी को क्या पता चला?
1: मोहम्मद हुसैन है यहाँ
2: पर मतलब बकायदा देख
1: और कितना पता चलेगा भाई और कितना पता चलेगा सरूर भाई है जंगल में मोर नाचा किसने देखा दो दो मोबाइल से मैसेज सेम ये नहीं कहीं नंबर लग रहा है मुझे भाई दोनों नंबर आपके हैं दो अलग अलग या एक से मैसेज दो आदमियों ने करे कमाल यार
2: नहीं यार सर भाई आज ऐसा तो नहीं हुआ है कि कबीर भाई ने जंगल में मोर नचाया हो
1: मोहम्मद हुसैन
2: और शायद आप ही ने देखा
1: मोहम्मद हुसैन और इधर कौन है मोहम्मद अशफाक यार अशफाक एंड हुसैन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैसेज है हाउ कम पॉसिबल
2: फिर तो जंगल में ना चाहिए आज मोर
1: अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई क्या हाल है आप दोनों का सरूर भाई क्या खा के आए हो आज फुल एनर्जी से प्रोग्राम चल रहा है भाई मुझे एनर्जी का राज बताओ असल में वो जिस दिन नाजिया उमर फारूक है हमारे साथ और बड़ा हैंडसम आदमी है उमर भाई तो अपना
2: देखिए जब ये डांट खा के आते हैं ना घर से उस दिन बहुत ज्यादा
1: घर की क्या जरूरत है जब आप मौजूद हैं नाजिया जी साथ में अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई नाजिया बाजी कैसे हैं इंशाल्लाह खैरियत से होंगे वाह वाह गालिब सरवर मिर्जा साहब शेर अच्छा लगा इनको ओ जासीम भाई किधर तौफीक भाई का मैसेज यहाँ पर बात ये तो ऑलरेडी हो गई है कहते हैं सलाम वालेकुम सरवर भाई कबीर भाई ने बोला आप जंगल में मोर ओ
2: आपको अगर अब आप इजाजत दें
1: अब समझा कि ये नाचा जो है मोर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: अकल आपको खुदा कभी तो दे थोड़ी सी
1: बोल भी नहीं
2: अब बोलेंगे आप बोलने देंगे तो बोलेंगे
1: आइए साइड में
2: आप तो बिल्कुल ही हट कुर्सी खाली कीजिए
1: इनको बैठा लिए बैठिए साहब बैठिए
2: आपने सर्वर भाई तीन
1: हाँ बैठ गए
4: सर्वर भाई हाँ? आपका साइड में हटाना भी ना यार उसे टिप्पर के जैसा है जो ओवरलोड होता है रिश्ते बजरी के साथ बंदे के पास से गुजर जाए बंदा ऑटोमेटिक
1: झोंक उसको कहते हैं झोंक
2: वो झोंक की वजह से आदमी खुद हट जाए
1: भाई कैसे हैं
4: बंदा बिल्कुल एक एम्बुलेंस है और उससे ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है सर्वर भाई
1: यार ऐसे ही होना चाहिए देखिए अपना दबदबा ऐसा ही है हमेशा से इतना ही होना चाहिए हार्ड आदमी को समझना कैसे हैं वैसे गाबा भाई आप
4: हाँ ऑल गुड सर्वर भाई
1: कहाँ थे आप इतने दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे हम दिखे नहीं आप
4: कौन से चौक पे
1: FM 107 107 चौक नंबर 107 में कैसे हैं खैरियत से हैं गाबा भाई
4: ऑल गुड सर्वर भाई
1: तो क्या कहते हैं गाबा भाई ऐसी कौन सी आदत है हम ठीक है यार हम ठीक है बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र है और तो क्या कहते हैं
2: कौन सी ऐसी आदत है जो बचपन से आज तक नहीं छूट रही आपकी
4: नाजिया जी मेरे को एक बहुत बुरी आदत है वो है मेरे को खाना खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए
1: वाह वाह वाह पब्लिक सिर्फ खा रही है अल्लाह तेरा शुक्र है भाई मैं अपने लिसनर से क्यों इतना प्यार करता हूँ ये आज जग जाहिर है यार भाई
2: आप खा रहे हैं लिसनर
1: का अल्लाह का शुक्र है खाया पिया और अपने बस
2: बोलिएगा बता के क्या किया
1: अच्छा ठीक है तो मीठा जो है खाने के बाद भाई जो है जरूर खाता है ये आदत तो
4: सरवर भाई अपनी जो पहली चॉइस है वो होती है गुड़
1: ओके
2: अच्छा अच्छी है
1: वो तो, तो आजकल वो तो हजम भी कर रहा है हमारी तरफ की चल रही लैंग्वेज
2: वही ना मैंने कहा ये समझा रहे बहुत हजम करके खा गए सभी
4: नहीं नाजिया जी मेरा ध्यान ना आंख वाला जो डेला होता है ना उसकी तरफ गया सच में
1: समझना मुश्किल होता है ना सर पाक गए डेला एक्चुअली जो सॉलिड फॉर्म हाँ सॉलिड फॉर्म ऑफ समथिंग जैसे नमक का डेला होता है गुड़ का डेला होता है तो वो उसको हम लोग डेला कहते हैं अपनी देसी भाषा में
4: स्पेशली सेंधा नमक का
1: लाहौरी नमक का बिल्कुल सही
2: लेकिन ये आदत तो आपकी अच्छी है बचपन में भी आप गुड़ खाते थे
4: नाजिया जी उस टाइम तो मेरे को याद नहीं है मगर मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ गुड़ तो चलो ज्यादा टाइम नहीं होता अवेलेबल यहाँ पे तो उसके बाद में मैडम घर पे चॉकलेट्स पड़ी हैं जो टॉफियां पड़ी हैं वो विद इन फ्यू डेज वो खत्म हो जाएंगी जी
2: सब खा गए आप
1: अब बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं अब्बा खुद ही खा गए
2: अरे आप ही की तरह
4: चाहे 10 पीस हो चाहे 50 पीस हो वो खलास होने ही होने हैं
2: ये तो बिल्कुल,
1: तो चलिए आज ही बात पता चली हमें कि चॉकलेट पसंद है गाबो भाई।
2: गाबा जी की वही बात है जो सर्वर भाई करते हैं, अपने घर बच्चों को टॉफी देते कहते लो चक के बताओ अच्छी की बुरी, सब निकल गए चक चक के, सब खा गए
1: लाइफ हमारी।
4: दादिया जी एक दो बार तो ऐसी ही सिचुएशन हुई ना, यकीन मानिए घर पे पूरा मीठा खत्म था और मेरे को ऐसी तलब लगी ना, ऐसी क्रेविंग लगी, चीनी के चम्मच खाने पड़े जी दो।
2: बट आपको हमने देखा आप तो काफी फिट है माशाल्लाह गाबा जी।
1: यही है वो शख्स जिसको पब्लिक ढूंढती फिर रही है, पूरा माशाल्लाह से खा खू के फिट। यहाँ के पानी भी पी रहे हैं, 2 किलो बढ़ गया एक गिलास पानी में।
4: जी नाजी जी पता क्या है, दिक्कत परेशानी नहीं है कोई, वैसे ही अंदर से क्रेविंग होती है खाने की। एक चाय तो चाय चाहिए मैडम दो टाइम, मगर चाहिए ही चाहिए 100% सुबह और शाम को, चाहिए दो बार मगर चाहिए 100% और खाने के बाद मीठा।
2: ये आदत आपकी दोनों नहीं जा रही। चलिए खैर ये मुझे नहीं लगता इतनी बुरी है ना, इतनी हार्मफुल है ना आपके लिए ना घर वालों
1: के लिए, तो आप भी नहीं है मतलब कहने का ये है मेरे आदत तो कोई
2: नहीं। तो सच बोलने की आदत डाली।
1: तो चलिए साहब गावा भाई बड़ी अच्छी बात आपकी और अच्छा लगा मुझे कि लोग कम से कम खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं,
2: खाने पीने के आसपास।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह नादिया से बहुत दूर है आदतों से गावा भाई,
2: चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
4: नादिया जी के क्या कहने, नादिया जी ने अभी जिम भी ज्वाइन करना है ना सर्वर भाई,
2: और क्या
1: करना है
4: करना है,
1: गाना ना चलाना होता तो मैं और हंसता। बहुत बहुत शुक्रिया गावा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू।
1: एंड फॉर नाउ अभी बता रहे हैं कि कौन है, एंजॉय कीजिए ट्रैक एनर्जी आर पे इस वक्त सर्वर नादिया आपके साथ है 107.7।

0: हम तो कर लो यार, इतने
1: वो अच्छे लोगों का इंतखाब करके।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये हुई ना बात आजमगढ़ वालों की, यार क्या बात
1: है, आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई हुई है।
0: कैसे हैं दला भाई, खैरियत से हैं?
2: बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आप लोग कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आपसे पहली बार बात हो रही है, सुनते हैं आप हमें?
2: डेली सुनता हूँ भाई के साथ।
0: अच्छा, डेली सुनते हैं,
1: मजबूरी है।
0: चलिए तो फिर चलिए, अब इंशाल्लाह आगे आप खुद अपने नंबर से, जैसे आज आपने कॉल किया है, इस तरीके से फोन करके जरूर हमारे साथ जुड़िए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, बहुत अच्छा हूँ।
2: सर भाई, मेरे कहने पे एक सवाल आप इससे पूछे।
0: हाँ पूछवाइए।
2: इसने लास्ट टाइम उरद चावल कब खाए थे?
0: उरद चावल आजमगढ़ कब खा रहे हैं यार, वो तो बिजनौरी खा रहे हैं।
2: अरे
0: पूरा मिली जुली भगत चल रही है यूपी में, क्या बात है, पूरा गेम चल रहा है यूपी के अंदर, पता ही नहीं है।
1: सर यही आप सोच रहे हैं कि उरद गोश्त क्यों नहीं मिल रहा है
0: यार, ये कौन सा जो तार जोड़ा है। तो चलिए अच्छी बात है, मिलावट भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है। तला भाई को हमारी तरफ से बहुत सलाम और आदाब, और हम वाकई बहुत शरीफ लोग हैं, मैं और नाजिया, हम ना मारते हैं ना काटते हैं, तो आगे हमारे साथ जुड़ते रहिए, यही हमारा कहना। सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बस जी जी
2: सर भाई, नाजिया जी एक सवाल सबसे पूछ रही थी, मैं उसी का जवाब देने का इंतजार कर रहा था।
0: जी जी प्लीज।
2: और वो तमाम लिस्टर्स के लिए आप पूछ रही थी क्या चीज है जो इरिटेट करती है या पसंद नहीं है, ऐसा ही है ना?
0: नहीं, वो ऐसी
1: बचपन की आदत,
0: ऐसी कौन सी आदत है जो छूट नहीं पा रही
1: बचपन से, आज तक आप नहीं छूट पा रही आपसे?
2: वो आदत ये है सर भाई कि हम लोग जितना फूडी थे, अभी तो जाहिर अभी न्यूट्रिशन पर आ गए, जिम विम चल रहा है, लेकिन महफिल के खाने के आदाब जो है ना वो किसी किसी को आते हैं। और मेरी ये इतनी बुरी आदत है कि अगर मैं किसी महफिल में खा रहा हूँ और बराबर वाले ने वो आउट ऑफ एटिकेट चला गया, मैं अपनी प्लेट छोड़कर वहां से चला जाऊंगा। क्यों? वो आपको पता है ना, खाने के भी एक आदाब होते हैं, खाने को इज्जत देकर खाना चाहिए कि
1: सरल भाई आदाब।
0: नहीं, फिर से मैं समझने की कोशिश करूं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं जब तक आप खाते रहें दूसरा भी आपके साथ खाता रहे। मैं हूं ऐसा शख्स मौजूद।
1: नहीं, उल्टा समझे। अच्छा,
2: नहीं, नहीं,
1: जब
2: नहीं,
1: दूसरा खा नहीं, चुके आप भी खा चुके हैं ये समझिए,
0: दूसरा खाना छोड़ दे हम भी छोड़ दे।
2: नाजिया जी समझ गई है, नाजिया जी समझ गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
0: एक बार और समझाइए।
1: आप नहीं समझ पाएंगे, ऊपर से जाइए।
0: नहीं नहीं, मैं समझने की कोशिश, मैं इनकी आज इनकी आदत चेंज करवा दूंगा ना, पांच मिनट में आदत चेंज करवा दूंगा फ्री में बिना किसी परेशानी।
2: मैं बताता हूँ,
0: ये भी इलाज करता हूँ।
2: मैं बताता हूँ, वो खास एक कम्युनिटी या खास किसी फर्द का या किसी तबके का या किसी स्टेट का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो लोग हर जगह पे मिलेंगे, हर सोसाइटी के अंदर मिलेंगे, जो महफिल के आदाब को नहीं समझते कि तीन लोगों चार लोगों में खाना खाना कैसे। मतलब ऐसा ना हो कि आपको किसी की वजह से खाना छोड़ के उठ के जाना पड़े कि बस यार मेरा हो गया, अब इससे ज्यादा
1: नहीं समझ।
0: अच्छा, ये कहना चाहते हैं
1: आप पे भी उस
0: मेरे साथ तो खाना कभी नहीं खाया उन्होंने, तो मैं वरना नाम अपना ही लेता पहले। ऐसा,
1: अरे ऐसे ही हुआ है, सब लोग इनके आसपास से उठ के जाना शुरू।
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे, और हम सबके अंदर आदाब जो है अल्लाह ताला
1: सर भाई इस बात के बाद आप आदाब कीजिए,
0: कमाने की कोशिश में हम लगे रहे, ये तौफीक हमें दे।
1: सैयद भाई
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहब्बत नवाजिश, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
1: बहुत मजा आया आपसे बात करके।
2: नादिया जी आप भी और सर भाई आप भी दुआओं में याद रखिए।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच।
0: तो भाई अब आते हैं मैसेजेस की जानिब, और फिर हम कॉल भी लेंगे। मुबीन भाई आ गए यहाँ पर, बहुत ही अजीब सा स्टिकर भेजा है मुझे, सो रहे हैं, उदास से हैं, थके हुए, नींद आ रही है, बोझल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नादिया जी, सरवर जी, आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून कतर कहते हैं।
1: गुड आफ्टरनून
0: एमबीबी। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, अब मैं फूडी नहीं रहा, सैयद जमील अहमद।
1: लोग आ रहे हैं वो सब आपको सिर्फ खाने से
0: ही। ये तो AI फोटो लग रही है मुझे जमील भाई। ना
1: दिखाई, मुझे दिखाई
0: ना, ना मैं नहीं पहचान, मैं मतलब मैं मानूंगा नहीं, ये AI फोटो है।
1: नहीं, आप शर्म खाइए, मानिए मत, मानिए शर्म
0: है नहीं, असली तो खाएगी,
1: असली है वो,
0: लिख रहे बेचारे जल्दी जल्दी। मेरा भाई कैसा, जमील भाई कैसा,
1: जमील भाई मुझे दिखाई एक बार।
0: कौन से वाले जमील भाई?
1: वो जो हमारे साथ जुड़ते हैं जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है।
0: नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते,
1: वो वाले हैं कि कोई दूसरे वाले हैं,
0: वो नहीं हो सकते,
1: वो नहीं लग रहे।
0: उर्दू बोलने वालों की बिरयानी अच्छी होती
1: है, जमाल है,
0: कोरमे अच्छे होते हैं। उर्दू जो बोलते हैं वो बिरयानी कोरमे में रहते हैं, वो जिम में नहीं रहते भाई। अच्छा, यहाँ पर कौन है, रईस भाई ने कुछ लिख के मिटा दिया मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मिटा दिया जी आपने?

0: मुमताज भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर भाई,
1: उन्होंने फोटो भेजी होगी।
0: नाजिया मैम कैसे हैं आप दोनों? गुड आफ्टरनून।
1: वेरी गुड आफ्टरनून।
0: मैं तो पड़ोसी के बच्चों की चॉकलेट छीन कर खा लेता हूँ। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। वक्त से पहले ही वो हमेशा रूठ गए हैं। बचपन की मासूमियत ना जाने कहाँ छूट गई है। मुमताज अहमद साहब हमारे प्यारे प्यारे मुमताज भाई स्मार्ट।
1: अब सरवर भाई, अगर आप मुझे कहें कि हाँ मैं कॉल पिक कर लूँ तो मैं जल्दी से पिक कर लूँ।
0: क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्राफ्ट आ गया है मुझे, क्या है
1: उसको आपको डिकोड करना टाइम लगेगा। एंड बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हेलो हेलो,
2: सलाम वालेकुम।
0: वाम सलाम। मुझे ऐसा लगा कि मोबाइल जो है कुकर में गिर गया, आवाजें ऐसी आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप
1: मैं समझ गई दाल में
2: कार में तो नहीं लेकिन फ्रिज में गिर गया।
0: क्या गिरा है? अहलन और सहलन। बहुत गिरा हुआ मोबाइल था भाई, जो भी था। नसीम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या बात है।
2: मेरा जी क्या चाह रहा
0: है
2: मालूम है?
1: बताइए।
0: मेरा जी क्या चाह रहा है ये कह रहे हैं? हमें क्या क्या चाह रहा है बताना पड़ेगा।
2: आपका बारबेक्यू बनाने का।
0: अच्छा, मेरा बारबेक्यू? मैंने कहा शायद कुछ खट्टा मीठा खाने का दिल कर रहा भाई का। मेरा बारबेक्यू बना के खाएंगे? ये आदमी गलत है भाई।
1: बहुत मुश्किल भी है ये काम इनके।
0: नहीं मैं चलिए बन भी जाए
1: तो अंजाम देने जाएंगे।
0: नहीं बन भी जाए, हाँ तीन चार आदमी तो लगेंगे।
1: इसमें शक है किसका बनेगा।
0: ये मैं इसी पे आ रहा था। वैसे नसीम भाई हमारे नाजुक से है,
1: वही मैं कह रही हूँ।
0: खांसी भी हो रही है इस वक्त बेचारों को। तबीयत ठीक है नसीम भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो आज क्या
2: तो ठीक होगा?
0: कुछ आज कुछ लाएं शेर वगैरह हमारे लिए। चीता भालू बिल्ली सुना दी। नादिया को बहुत पसंद है आपकी शायरी, और एक दिन आप इनके ऊपर एक नज्म या गजल लिख भी दीजिएगा, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बताने दिए ना क्या हो गया जी? जी इंशा अर्ज है। मीटर में है या किस में? थान में?
2: थान में।
0: अच्छा
1: थान में है।
0: इरशाद।
2: सुना था फरिश्ते जान लेते।
1: सही
2: सुना
1: है।
2: था
1: फरिश्ते जान लेते। सर भाई
0: टोपी दी मेरी।
2: फरिश्ते जान लेते हैं।
1: तस्बीह भी लीजिए आप।
2: खैर छोड़ो, खैर छोड़ो, अब इंसान लेते।
0: अरे नसीम भाई यार क्या बात है यार,
1: क्या बात है।
0: बहुत आला यार, बहुत आला। मजाक से हटके भाई, मजाक से हटके। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: और भी है जी।
2: मैं इस शहर मुनाफिकत से तंग आ गया हूँ।
0: किससे आ गया हूँ?
1: मुनाफिकत से।
0: इश्क से?
2: शहर की मुनाफिकत।
0: अच्छा शायर है, शेर है। यहाँ का नहीं है ये, इंडिया से आया था शेर।
2: आओ किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: कोशिश तेरे इख्तियार में है खुदाया। कोशिश तेरे इख्तियार में है खुदाया, फिर लोग क्यों इतने इम्तिहान लेते।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही आला, बहुत ही आला। आज तो आपने वाकई यार बिल्कुल मुख्तलिफ शायरी जो है वो कर दी, और बड़ा ही मजा आया यार, बड़ा ही मजा आया था। तो ऐसी कौन सी आदत है नसीम भाई जो छूट नहीं रही, छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप परेशान भी हैं?
2: परेशान तो कोई खैर ऐसी आदत नहीं।
0: अल्लाह तेरा शुक्र है।
2: अल्लाह शुक्र है। हाँ लेकिन एक बात, मेरे गुस्सा आता है जब कोई तंग करता है तब।
0: अच्छा नादिया सुन रही है, बात का ख्याल रखिए। उनको बहुत गुस्सा आता है जब उनको कोई तंग करता है।
1: सरवर भाई
0: मेरा ख्याल करें आप।
1: मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी।
0: इनडायरेक्टली कह रहे हैं।
1: मैं मुलाकात करवाना चाहूंगी। जरूर चाहूंगी आपकी।
0: नहीं मैं तो
1: वन टू वन मुलाकात।
0: अरे मुझसे तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं नसीम साहब। मोहब्बत ये सारे शेर मेरे ऊपर लिखते हैं।
1: ये बचपन की आदत पलटी मारने की।
0: सारे शेर मेरे ऊपर ही लिखते हैं वो, तो मसला
1: शेर आपके ऊपर नहीं लिखते, शेर ऊपर से निकलते।
0: नहीं नहीं तो आप कुछ भी कही है नसीम भाई, ऐसे ही है।
2: शुक्रिया।
1: देखा
0: शुक्रिया किस बात का? तारीफ मैं अभी नहीं कर रहा था कि शुक्रिया आपकी कब करी मैंने। भाई वाह वाह वाह नफीम भाई,
1: आपकी झूठी तारीफ का शुक्रिया,
0: बात करके बड़ा मजा आता है,
1: बहुत ही
0: बहुत शुक्रिया नफीम भाई। और आज बहुत ही यार मतलब समा बन दिया भाई, बहुत ही अच्छे शेर या आपने दो चार शेर ऐसे दिए, मैं कबीर को सुनाऊंगा उसको ऊपर रखते हुए, मतलब नेगेटिव साइड उसकी तरफ करूंगा और फिर सुनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू
1: जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सरदार भाई अगली महफिल में आप वाह भाई इसी शेर से लूटने वाले,
0: कुछ मैसेज
1: मैं भी फट से पढ़ दूंगी।
0: यहाँ पर कुछ हमें अवार्ड दे दिए हैं नाजिया लोगों ने,
1: और दीजिएगा मत बाहर।
0: अच्छा ठीक है, तो ये कौन है, हमें मजा आया हुसैन भाई जो आपने हमें नवाजा है बातों से। यार ये क्या हो रहा है यार, आज तो तेल का अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सरवर जी मोहतरम, यार ये हो क्या रहा है यार, यार सिर्फ हमें कबीर से ही सेंड नहीं किया, नसीम जी का कॉल सारा मूड खराब कर गया। नहीं यार ऐसा नहीं है, बड़ी अच्छी शायरी सुनाई उन्होंने और ये चल रहा है देखिए मार्केट में,
1: ये आज आप ढूंढते घूम रहे हैं। हां एक हमारे साथ कॉलर है,
0: इंडिया नहीं पहुंचा ये फोटो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: आइए आइए आइए आइए आइए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई, आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: बस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई। आपको जो है ना दुश्मनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दुश्मन आप अपने साथ ही रखते हो।
0: ये बिल्कुल यार,
1: अरे आ गए अपनी बात कर रहे थे, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जासिम जी, क्या बात, लाइन क्या लाइन
0: यार,
1: ये सच्चाई आपकी बहुत मुझे पसंद आई।
0: देखो यार
1: देखा कितना एकदम सही,
0: कितने लोग मुझसे मोहब्बत कर करके खाना खा रहे हैं, खाने पे
1: ज्यादा खा रहे हैं, खाने पे खाना ला रहे हैं, मगर जासिम भाई की बात ही अलग है।
3: टॉपिक कौन सा शुरू हुआ और नाजियाबादी ने कहाँ लाके पटकती है,
0: देख जान बूझ के मुझे परेशान करने के लिए फिर मेरे ऊपर सारे तीर।
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको जरूरत नहीं है, आप जैसे अगर दोस्त हो तो फिर दुश्मनों क्या जरूरत। वाह क्या क्या बात बोली, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल छा गया माशाल्लाह।
0: वाह क्या बैतबाजी चल रही है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। और कुछ 7 मिनट रह गए।
1: अच्छा बताइए बचपन से आपकी यही आदत है या कुछ उसमें चेंज हुआ?
3: सरवर भाई मैं मेन बात पूछ लेता हूँ, टॉपिक को छोड़ो जाने दो।
1: नहीं नहीं टॉपिक पे बताइए।
3: अरे रुको एक मिनट, सरवर भाई से बात करनी है।
0: जी
3: सरवर भाई, आपने मोर को नाचते हुए क्यों देखा जंगल में?
0: यार ये मोर बताएगा, मैंने तो बहुत कोशिश करी ना देखूं,
1: मगर मोर बोला कि नहीं देखो भाई,
3: मैं
0: इसी मारे के डांस अच्छा था मोर का, और मुझे मैं तो नहीं देखना चाह रहा था, मोर ने जबरदस्ती करी मेरे साथ।
1: देखो देखो
0: देखो
3: देख लियो भाई, देख लियो जवाब मिल गया।
0: हमारे पास वक्त कम रह गया वरना आपसे बात लंबी करते, तो कौन सी ऐसी आदत है जो छूट नहीं पा रही जासिम भाई?
1: वैसे तो कई आदतें हैं,
0: हाँ मतलब
1: लेकिन एक जो आप हाईलाइट करना चाहें।
3: नहीं मेरी कोई आदत नहीं है जो मैं छोड़ू अपनी आदत।
0: वाह
1: वाह भाई वाह
0: वाह वाह
1: माशाल्लाह, इसे कहते हैं देखो असली खुशफहमी में जीना।
0: वाह
1: वाह जियो तो ऐसे जियो,
0: ये आप बात है यार, आदमी को बने अंदर कुछ बुरा ही नहीं लग रहा,
1: यही तो कमाल है।
0: ढूंढ रहे थे हम
1: भी, ढूंढ रहे थे
0: ऐसा होना चाहिए, मैं भी अब ऐसे ही बनूंगा बड़ा होके।
3: हां पहले बड़े हो जाओ, सुन लिया भाई ने, सुन लिया देख लिया।
0: जासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल मैसेजेस अभी और भी लेनी, थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाजत दी, जरा मैसेजेस शामिल कर दूं मैं वरना नाराजगी ना हो जाए। तौफीक भाई ने यहाँ पे बना, खूब सारे लोगों ने फोटो भेजा एक्चुअली, तौफीक भाई ने भी भेजा है और यहाँ रईस भाई ने भी भेजा है, दूसरे रईस भाई है और रईस खान साहब है उन्होंने भी भेजा है और अपने अपने फोटोज भेजना है, कह रहे हैं हमें देखिए हम माशाल्लाह खूबसूरत
1: हैं। हम आदत पूछ रहे हैं मतलब फोटो
0: भेजना, बस यही आदत कहने यही आदत है फोटो भेजने की, तो वो भेज रहे हैं, कह रहे नहीं सर भाई मेरी है अभी जिससे बात हुई जो वो हूँ और वो उर्दू वाला जमील हूँ। अरे वो हूँ उर्दू वाला जमील हूँ,
1: जमाल है जमाल जी थे
0: ये, तो जमील लिख रहे हैं यार,
1: तो फिर ये अलग है, वो जिनकी बहुत अच्छी वाली उर्दू है ना वो तो शायद जमाल है
0: भाई, सिर्फ
1: वो ऐसे तो नहीं दिखते जैसे आपने फोटो दिखाई क्योंकि मैंने उन्हें देखा है
0: भाई, सिर्फ आप पर नहीं कबीर भाई पर भी लिखते हैं। अच्छा मतलब नसीम भाई की शायरी की गालबन बात हो रही होगी मुझे ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से,
0: मोहम्मद राना है हमारे साथ, हम लोग बिल्कुल ठीक है राना भाई। बॉस बात करने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए? तलहा आजमी, ना जी आपसे पूछते हैं इतनी सलावातें सुनने के बाद भी आप कैसे बर्दाश्त करनी, कैसे आप
1: आपको ये आपने सही सवाल
0: एक
1: किया,
0: हीट कंडक्टर बनी हुई हैं
1: सेमी कंडक्टर।
0: अच्छा क्या बात है सरवर भाई की, यूसुफ भाई मेरी तारीफ कर रहे हैं, अरे यूसुफ भाई की मैसेज रहेगा ये, अगर आप पढ़ दीजिए,
1: ये आप पूरा पढ़िए।
0: नहीं उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि आपसे गुजारिश करके पढ़वाने के लिए, जरा पढ़ दीजिए यूसुफ भाई। देखिए आपकी बात पर अमल करते हुए नाजिया जी आज आपका मैसेज जो है,
1: तो बिल्कुल आज हम पढ़ते हैं। तो यूसुफ हमारे साथ, यूसुफ जी

0: मैसेज है, सलाम कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, नाजिया जी एंड सरवर भाई कैसे आप दोनों?
1: मैं बहुत अच्छा हूं अल्हम्दुलिल्लाह.
0: एंड वेलकम टू एनर्जी आर दिल से देसी और हैप्पी वाले मंडे आफ्टरनून. और सरवर भाई मोबाइल नाजिया जी को दे दीजिए प्लीज.
1: मैं तो मुझे पता है आपकी आदत क्या है.
0: आप कॉलर से बात कीजिए, नाजिया जी को मैसेज पढ़ने दीजिए प्लीज.
1: नाजिया आप देखिए
0: क्या बात है सरवर भाई की, ये भी लिखा उन्होंने, वाह क्या बात है.
1: मतलब ये अमल किया ना उनकी बात पे. तो अब ये मोबाइल आप सारे मैसेज अदा करने हैं आपको और सारे पढ़ने हैं यूसुफ भाई के मैसेज के अलावा भी. इतना ही था यूसुफ भाई के मैसेज में आज?
0: अभी तो इतना ही.
1: अच्छा चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है
0: जी, उन्होंने कहा भी जी.
1: और भी मैसेजेस हैं जल्दी से हम पढ़ दें, वक्त बहुत कम
0: है हमारी भी. देखो अरे ये फोटो हमें सारे लोग क्यों भेज रहे, कामरान जी ने भेजी है
1: भाई. माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत लिसनर्स अच्छा। हैं हमारे एक से एक माशाल्लाह.
0: तो चलिए आई थिंक एक कॉलर के साथ यहाँ जुड़ जाते हैं हम. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कौन है हमारे साथ?
2: मुदस्सिर बात कर रहा हूँ.
0: मुदस्सिर जी कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह. भाई हम लोग दोनों खैरियत से हैं. आज हमारा जो टॉपिक है प्लीज उस पर कुछ तो बात कीजिएगा, है ना? हम चाहेंगे
2: जी जी.
0: हम पूछ ही रहे हैं कि वो कौन सी आदत है जो बचपन से आज तक आपकी नहीं छूट रही. आप परेशान भी हैं, बचपन से आज तक चल रही है, हो सकता है परेशान ना भी हो, बट है एक ऐसी आदत जो बचपन से आज तक आपके साथ चल रही है.
2: सही सही, चलो टॉपिक है तो कुछ ना कुछ तो बताएगा. आप लोग इतना टॉपिक लाते हैं तो अगर
1: इसरार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई आदत बना लो आज हमसे बात करते हुए ही बना लो.
2: और साथ में सरवर भाई बैठा तो लाजम कुछ बोलना पड़ता है.
1: इरशाद
0: कुछ बोलो
2: जी. सरवर भाई मेरा एक आदत है बचपन की, या मतलब मैं जब छोटा था, या मतलब जब से मैं ये वगैरह मतलब सोचता रहता हूँ, तो एक आदत है वो मैं आज तक मैं नहीं छूटता रहता हूँ. मतलब वो ये है कि मतलब मैंने एक काम किया ना हो या मैंने एक गलती की ना हो और लोग जबरदस्ती वो मेरे ऊपर डालता है.
1: मतलब ये तो दूसरे की आदत हुई या आपकी कहाँ हुई?
2: नहीं नहीं सर भाई, मैं मेरी बात सुनो,
0: सुनिए समझिए पहले.
2: कि फर्ज करे अगर मैंने एक गलती ना की हो, मैंने एक चीज ना टूटा हो, मतलब एक गिलास की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक गिलास मैंने टूटा ना हो और मेरे जो दोस्त है, मेरे जो लोग है, रूममेट वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि ये गलती, ये गिलास आपने टूटा है और मैंने ये गलती ना की हो और वो जबरदस्ती मेरे ऊपर डालते हैं कि नहीं ये आपने टूटा है, ये आपने गलती की है, और वो गलती जो मैंने ना की हो वो बार बार मुझे ये कहते हैं, मेरे ऊपर इशार करते हैं, मेरे ऊपर डालते हैं कि ये गलती आपकी है और ये गलती आपने की हो, और मैं खबर भी ना हो, मुझे पता तक भी ना हो.
0: तो मतमानी कह रहे हैं बहुत, कितना भी कहें मतमानी आप.
1: तो इसमें इनकी आदत कहाँ हुई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा. ये तो दूसरे की आदत
0: कैसी है ये लोग इन पर डाल रहे हैं?
1: आगे और है मेरे ख्याल में इसमें
2: आदत ये हो गई कि जो गलत बात है कहने का, चलो मैं आसान कर देता हूँ कि मतलब जो गलत बात मैं नहीं करता हूँ, जो गलत मैं सोचता नहीं हूँ, जो गलत काम मैं दूसरों को नहीं करता हूँ और वो सामने वाला मेरे साथ वो रवैया रखते हैं, तो मुझे वो रवैया वो सोच वो बर्दाश्त नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो दोस्त है, मेरे जो रूममेट वगैरह है, मैं उनके साथ अच्छा रहता हूँ, मैं उनके साथ अच्छा करता हूँ, मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ और वो मेरे बारे में नेगेटिव करता है, मैं नेगेटिव सोचता है, मेरे साथ गलत करता है, मेरे साथ वो मतलब अपोजिट करता है, गलत करता है. जो उनका रवैया है, जो उनका सोच है, जो उनका माइंड सेट है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करता,
1: वो बर्दाश्त नहीं कर पाते. ये आदत अब इनकी निकल गई
0: है, उनकी तो आदत थी. काफी फेयर है, कोई इतने इल्जाम लगाएगा आपको, परेशान करेगा, तो आपको जाहिर है कुछ ना कुछ आपका रिएक्शन तो आएगा ही
1: जी.
2: और एक और बात
1: जी
2: सरवर भाई, वो ये आदत है कि जो गलती मैं की हो, जो गलती मैंने की हो और वो एक सेकंड में मानता हूँ, अगर फर्ज करें मैंने की गलती की हो और लोग मेरे बारे में कहते हैं या मेरे जो दोस्त है वो कहते हैं कि आपने ये गलती की हो, मैं उनको ना कसम खाता हूँ, मैं उनको ना ये कहते हो कि नहीं वो ये है वो है, मैं उनको बोलते कि I'm sorry, मैंने ये गलती की है, मैं मान
1: कर लेते हैं गलत चीज का भी
2: जी.
0: आपकी तो बहुत
1: अच्छी, ये तो आप माशाल्लाह से अच्छा अच्छी शख्सियत होने का सबूत दे रहे हैं मुदस्सिर भाई. और आप हैं भी प्यारे, कतर में सारे लोग प्यारे हैं, मगर ये मंसूरा और इस तरफ वाले और भी ज्यादा.
2: सरवर भाई सॉरी मैंने आपकी बात काटी. 3 सालों से एक और आदत पड़ गई है हम लोगों को, वो ये है कि 3 साल से तकरीबन मैं जब से कतर में तकरीबन 3-4 साल से मैं एक रेडियो चैनल को सुनता हूँ गाड़ी में, रूम में वगैरह, वो उसको सुनना, मुझे बात करना, वो आदत नहीं छूटते, मतलब हम लोग अगर जबरदस्त कोशिश कर

0: है, मतलब हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनको, उन लोगों को नहीं सुने, इन लोगों को नहीं सुने, वो बहन को नहीं सुने, भाई को नहीं सुने, एफएम मंजिल से उनको नहीं सुने, तो ये नहीं होती है
1: यार। ये तो आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। और बात और भी करते हैं मदसर भाई, वक्त बहुत तंग हो गया, इजाजत भी लेनी है। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह कल जल्दी तशरीफ लाइएगा तो लंबी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, दिल को सुकून है ना रूह को करार है, मेरी सैलरी आई सारे पैसे फरार हैं। कौन है ये कौन है, मेरे जैसा आदमी कौन है ये? जाफर मेहंदी है हमारे साथ। जाफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है आप खाली नाम ले लें क्योंकि वक्त हो गया चलने का। रईस भाई, शहजादा सलीम साहब, महमूद अहमद साहब हैं, महमूद सर तो नहीं, अरबाज खान साहब हमारे साथ, बड़े प्यारे प्यारे फोटो और मैसेजेस हैं। यूसुफ भाई का भी कुछ और मैसेज आया हुआ है, वक्त नहीं है कि मैं पढ़ के अदा करूँ। MBB का मैसेज आया हुआ है, फोटो भी भेजा है अपना, और शहजाद हैं हमारे साथ, बड़े ही स्मार्ट लग रहे हैं। बहरहाल
2: बस अब जाने का वक्त है, और बस जाते जाते हम दोनों आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए असल में आदतें जो हैं वो उन्हें पहचानना हमारे और आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। कोई आदत पूरी तरह से बुरी नहीं होती और कोई आदत पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर कोई ऐसी आदत है जो आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ, आपके रिश्तों पर असर डाल रही है, तो ज़रूर उस पर आप जो है वो गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उस पर ऐसे काम करें कि वो आदत आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। फिलहाल हम दोनों आपसे अब इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल वापस मुलाकात होगी 1:30 पर इसी शो में जिसका नाम है एनर्जी आर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और सुनते रहिएगा FM 107।
1: अरे हमारे साथ आरजे कबीर भी जुड़ गए भाई, जाते जाते मैंने कहा देख के इनको सलाम कर लें, तो दिल से दीदी तो हम हैं ही। आप अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। जिंदगी में बहुत से नुकसान ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं आते, इनसे पहले कुछ इशारे मौजूद होते हैं, कुछ सवाल उठते हैं, कुछ बातें वाजे नहीं होती। इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक वाजे दूसरा मुश्तबा, एक महफूज दूसरे के बारे में दिल में सवाल है कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं। यही इंसान की

समझदारी का इम्तिहान शुरू होता है। क्या हम सिर्फ ये देखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, या ये भी सोचते हैं मुझे ये करना चाहिए या नहीं। हसन इब्न अली रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दामा युरीबुक इला मा ला युरीबुक फइन الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة, जो चीज तुम्हें शक में डाले उसे छोड़कर वो इख्तियार करो जो तुम्हें शक में न डाले, क्योंकि सच इत्मीनान का बायस है और झूठ शक और बेचैनी पैदा करता है। सामने कराम, कितना ही मुख्तसर और अहम जुमला है, दामा युरीबुक, जो मुश्तबा है उसे छोड़ दो, इला माला युरीबुक, और उस तरफ आ जाओ जो वाज़ह और इत्मीनान बख्श है। अब हम तो कभी एहतियात को कमजोरी समझ लेते हैं, कोई शख्स हर बात की तस्दीक करे तो कहते हैं इतना सोचने की क्या जरूरत है, कोई मशकूक मामले से पीछे हटे तो कहते हैं मौका जाया कर दिया, कोई गैर वाज़ह कमाई से बचे तो कहते हैं अरे दुनिया ऐसी नहीं चलती। अब नबवी तालीम क्या है ये भी सुन लीजिए। नबवी तालीम हमें ये कहती है कि एहतियात बुजदिली नहीं बसीरत है। बुजदिली ये है कि वाज़े और जायज़ काम भी महज खौफ की वजह से छोड़ दिया जाए, लेकिन एहतियात ये है कि इंसान खतरे को पहचाने, मामला समझे, फिर कदम उठाए। तो समझने के नाम, नुकसान से पहले हमें सोचना चाहिए। हादसे के बाद कहना कि मुझे पहले ही अंदाजा था, ये तो नाकामी है। अगर वाकई अंदाजा था तो पहले एहतियात क्यों नहीं की। समझदार इंसान खतरे को सिर्फ वाक़े होने के बाद नहीं पहचानता, वो पहले निशानियां देखता है। इसीलिए सुन्नत हमें ये बेदारी सिखाती है, कोई माली मामला गैर वाज़े है पहले मालूम कीजिए, कोई पैगाम मशकूक है पहले तस्दीक कीजिए, कोई शख्स गैर मामूली फायदे का वादा कर रहा है पहले तहकीक कीजिए। चले हदीस के अल्फाज पर एक मरतबा फिर गौर करें, जो तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो, दामा युरीबुक। बाज़ औक़ात इंसान किसी मामले के बारे में बार बार खुद को मुतमईन करने की कोशिश करता है, दिल में सवाल मौजूद है, मामला वाज़े नहीं लेकिन फायदा सामने नजर आ रहा है, तो इंसान अपने आप से कहता है कि चलो शायद ठीक ही होगा, फिर एक और दलील ढूंढता है, फिर एक और बहाना, फिर अपने जमीर को खामोश करता है। हदीस कहती है कि अगर वाकई मामला मुश्तबा है और तुम्हारे सामने वाज़े और महफूज मुतबादिल मौजूद है तो मुश्तबा को छोड़कर वाज़े की तरफ आ जाओ, सच इत्मीनान बख्श है, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, यहाँ अपनी मालूमात अभी दर्ज करें। तो यहाँ क्या करना चाहिए, घबराहट, अरे नहीं, लिंक मशकूक है तो मत खोलिए, भेजने वाला वाज़े नहीं तो तस्दीक कीजिए, बैंक या किसी इदारे के नाम से पैगाम आया है, इस पैगाम में दिए गए मशकूक रास्ते के बजाय इदारे के मोतबर ज़राए से आप राब्ता करें। ओवरऑल सामिन किराम, हदीस का मतलब ये नहीं कि हर ज़हनी वसवसा हराम व हलाल का फैसला बन जाए, अगर किसी चीज़ का हुक्म कुरान और सुन्नत से वाज़े है तो महज़ ज़ाती एहसास उसे हलाल या हराम नहीं बना सकता, और अगर शरी मसला वाकई मालूम ना हो तो अहले इल्म से पूछा जाए। हदीस का मकसद ये है कि एक मुत्तकी, साफ और तरबियत याफ्ता ज़मीर मुश्तबह मामले में बेहतियात न बने। अल्लाह ताला में हक को हक समझने, बातिल को बातिल पहचानने, मुश्तबह उमूर में बसीरत और एहतियात इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम कम है, इसीलिए सेविंग्स नहीं हो पाते.

ट्रेन कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे खर्चे छोटे लगते हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि इतने मामूली लगते हैं कि हमारी और आपकी तवज्जो इन पर जाती ही नहीं, लेकिन महीने के आखिर में ये एक्सपेंसेस आपके बजट को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी सेविंग्स को हिला के रख देते हैं। आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हिडन एक्सपेंसेस की, जो आपके इनकम को चुपके चुपके धीरे धीरे कम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा की हमारी जो आदतें हैं उनको लेकर। रोज ऑफिस जाते वक्त कॉफी लेना या छोटे मोटे स्नैक्स

20 रिया और रोज अगर ली जाए तो महीने के आखिर में ये अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। अगर आप रोज 20 भी नहीं चलो 15 रियाल की कॉफी लेते हैं तो महीने में लगभग 450 रियाल खर्च हो जाते हैं, जो हमें आइडिया भी नहीं होता। इसी तरह कितने ऐसे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस हैं जो हमने ले रखे हैं। कुछ लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फिटनेस ऐप, म्यूजिक सर्विसेज और ना जाने कितने ऑनलाइन मेंबरशिप्स ले लेते हैं। मसला नहीं है लेना, मसला तब है जब हमें उन्हें यूज करना ही नहीं आता या हम उन्हें यूज ही नहीं करते, मगर बस ऑटोमेटिकली महीने से हमारे पैसे डिडक्ट होते रहते हैं। आप एक फिटनेस ऐप डाउनलोड की थी आपने और सोचा था कि मैं इसे यूज करूंगा। अब हर महीने फ्री चार्ज आप बस यूं ही यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर महीने फी चार्ज कर रही है, जबकि वो ऐप आपके इस्तेमाल में ही नहीं है। तो इस तरह से ये पैसे आपके यूं ही जाया हो रहे हैं। वहीं कई बार हम और आप जो हैं सोशल मीडिया पर एड, ऑनलाइन डील्स देखते हैं और हमें लगता है कि अरे अरे हम भी खरीद लें, देखो सब खरीद रहे हैं, देखो सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और हमारा नुकसान ना हो जाए कहीं। और शायद ये हमारी आदत हमें इंपल्सिव बाइंग की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ डिस्काउंट देखकर एक गैजेट खरीद लेना जो बाद में ड्रॉअर में सिंपली यूं ही पड़ा रहे, डिस्काउंट के बावजूद ये आपके अननेसेसरी एक्सपेंस है। यूं ही हम वेस्ट कर रहे हैं, एसी चला के छोड़ चुके हैं कमरे में, ये सारे हिडन एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। खाली रूम में एसी चलता रहे, ये ना सिर्फ पैसे का वेस्टेज है, एनर्जी का भी वेस्ट है और मंथली बिल हमारा बढ़ता है जिससे हमारा बजट भी बिगड़ सकता है। वहीं कई बार छोटी छोटी हमारी डिजिटल परचेजेस, मोबाइल गेम्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, स्टिकर्स हैं, इन ऐप परचेजेस छोटी लगती हैं, लेकिन जब ये फ्रीक्वेंटली की जाए तो अमाउंट काफी बढ़ जाता है। यानी हर हफ्ते सिर्फ 10 रियाल की परचेज भी साल भर में हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स बन सकती है। अब मसला है कि इन्हें कंट्रोल कैसा किया जाए। देखिए, हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट और एक्सपेंसेस रिव्यू करें, बजट बनाएं और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करें, अनयूज सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें, ऑनलाइन शॉपिंग से पहले डू आई रियली नीड दिस ये सवाल पूछिए, सेविंग्स को लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए, कैश या स्पेंडिंग्स जो है उन्हें लिमिट करें। हिडन एक्सपेंसेस बिल्कुल पानी के उस लीक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे पूरा टैंक खाली कर देते हैं। अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बड़ी परचेजेस की वजह से नहीं बल्कि छोटी और यूजलेस परचेजेस या खर्चों की वजह से पैदा होती हैं। जब हम उन हिडन एक्सपेंसेस को पहचान लेते हैं और उन पर कंट्रोल करते हैं तो ना सिर्फ सेविंग्स बढ़ती हैं बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड भी हासिल होता है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज करता है। तो क्या आप कर पाते हैं? इसी सवाल के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो संतरे FM 107।

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala kabeera FM 107 pe and welcome to another tech update. देखिए वेबसाइट से मैं आपको बताता रहूंगा और आपको मैं खबरें भी देता रहूंगा. हो सकता है बीच बीच में कुछ अलग आपको चीट कोड्स भी दे दूं टू रन ऑन डिफरेंट AIs. फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी बहुत कुछ करता है, इसके ऊपर बहुत सारे कोड्स काम करते हैं. बट आई विल लेट यू नो बाद में. फिलहाल जो है आपकी भी सजेशन बड़े जरूरी है. जुबानी स्लिप हो गई वेबसाइट्स पे तो आइएगा, लेकिन हमारे जो मेन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी रहिए. FM 107 Qatar. तो शुरू करते हैं आज की कुछ वेबसाइट से. बड़ी काम की है भाई आज की वेबसाइट, कुछ मजेदार है टाइम पास के लिए और मजेदार होने के साथ साथ कुछ काम की भी है. सबसे पहले मजेदार वेबसाइट से शुरू करते हैं. टाइप करना है आपको windows93.net. windows93.net होगा क्या कि आपके सामने एक बहुत ही प्राचीन युग की विंडो लोड होगी और उसके बाद आपको जो डेस्कटॉप पे नजर आएगा आप नॉस्टैल्जिया में यादों में खो जाएंगे. मजा आ जाएगा आपको, स्पेशली 90s और 80s से पैदा हुए बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा भाई, कोता ही एकदम. तो उसमें क्या है कि आपके सामने बहुत सारे गेम्स नजर आएंगे आपको जो रेट्रो गेम्स हैं, आप जो है उन्हें लोड कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आपको नजर आएंगी जो बैक इन द डे बहुत चलती थी, बहुत ज्यादा फेमस थी. यू विल लव इट. ये इट्स इट्स इट्स

0: CHRONAS Kronas.org ये वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं और आपको एक आपको वर्ल्ड मैप नजर आएगा। वो वर्ल्ड मैप एयर के हिसाब से देख सकते हैं कैसे बदला, क्या हुआ, पूरी की पूरी हिस्ट्री इतने इंटरैक्टिव वे में सामने आएगी ना, आपको मजा आ जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ। सो इफ यू हैव किड्स एट होम जो हिस्ट्री को थोड़ा ऑफकोर्स बोरिंग लगती है लोगों ने अंडरस्टैंड, इससे समझाएंगे ना आपको, इससे समझाएंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको खुद बड़ा मजा आएगा भाई। बैठे बैठे मैं देखता रहता हूँ उसको टाइम पास के लिए, और मेरी हिस्ट्री ना सिर्फ रवा होती है, मुझे और अच्छा लगता है कि क्या बढ़िया चीज बनाई यार, किसी ने सोचा होगा, ये आइडिया अपने आप में बहुत कमाल का है। सो Kronas.org ये दूसरी वेबसाइट है। अब तीसरी की तरफ बढ़ते हैं जो कतर में बहुत काम आई। तीसरी वेबसाइट का नाम है simulator.electude.com। एक सेकंड मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सिम्यूलेटर पता है आपको, सिम्यूलेटर लिख लीजिएगा, उसके बाद डॉट लगा के इलेक्ट्यूड, ELECTUDE, ठीक है। तो simulator.electude.com इस पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने गाड़ी आ जाएगी और उस गाड़ी को आप बाकायदा कैसे सही करते हैं सीख सकते हैं। ये वेबसाइट आपको सब सिखाएगी, जंप स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन सा वायर कहाँ लगता है, स्पार्क प्लग कहाँ होता है, बैटरी कहाँ होती है, कहाँ कौन सा पार्ट होता है, ये इंजन की बेल्ट क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, और जो जो डायग्नोसिस होता है इंजन का वो कैसे होता है, आप खुद कर सकते हैं उसे। एंड यू कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आधी चीजें जो मुझे नहीं बताती भाई, मैं बिल्कुल इसमें अंगूठा छाप मामला है मेरा गाड़ी को ठीक करने के समझने के मामले में, बट दिस वेबसाइट एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अच्छा ये भाई हाँ ऐसे करते हैं। सो यू माइट गेट अ वेरी वेरी गुड आइडिया और बहुत हेल्पफुल लगी मुझे, एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के काम आने वाली। यू नेवर नो भाई कब जरूरत पड़ जाए इस चीजों की, तो मैं तो ये बता के रखता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ वेबसाइट आज की, आखिरी वेबसाइट का नाम है लर्न, और उसके बाद जो है लर्न के बाद आपको हाइफन लगाना है, डैश लगाना है, anything.xyz। ये बहुत ही आलसी आदमी ने वेबसाइट बनाई होगी पर काम की बनाई है। लर्न यानी सीखने वाला, लर्न और हाइफन anything.xyz। इस वेबसाइट का जैसा नाम है वैसे इसका काम है, आप कुछ भी सीख सकते, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, एंडलेस, इतनी भर भर के स्किल्स है ना इस पे सीखने के लिए, और जो स्किल्स आपकी मौजूदा है उनको आप अपस्किल कर सकते हैं। सो ट्राई ऑल दीज वेबसाइट्स एंड लेट मी नो कौन सी आपके काम आई या किस वेबसाइट से आपके बोर्डम को किल किया, लेट मी नो 666-22107 ये शो में बता देना। और दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको इत्तला करता हूं कि कैसे इन स्कैम से आप बच सकते हैं। वेल, आज का है स्कैम जो वो है सेकेंड हैंड ओवर पेमेंट स्कैम। इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि स्कैमर्स आपकी अपनी चीज बेचते वक्त ही आपको झूठे पेमेंट्स के लालच में या जाल में फंसाकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। दोस्तों ये है ओवर पेमेंट ऑन योर सेकेंड हैंड आइटम। कैसे काम करता है इस पर अगर हम बात करें, तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोई यूज्ड चीज जैसे कि मोबाइल, फर्नीचर या लैपटॉप बेचने की पोस्ट डालते हैं, तो स्कैमर्स फेक बायर्स बनकर आपसे कांटेक्ट करते हैं। वो आइटम खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे यू नो कल वेकेशन पे आना है, आज मुझे ये चाहिए, या फिर मेरे जो ऑफिस में काम है वो इसी यू नो लैपटॉप से निकलेगा, मेरा अपना काम भी ऐसे ही इसी लैपटॉप से होता है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपको जल्दी जल्दी बताएंगे। वो आपको एक डिजिटल चेक या मोबाइल पेमेंट भेजते हैं जो आपकी मांगी गई कीमत से थोड़ा सा ज्यादा की होती है। इसके बाद वो बहाना बनाते हैं कि गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें तुरंत वापस कर दें। कुछ दिनों बाद बैंक को पता चलता है कि उनका जो ओरिजिनल चेक या पेमेंट है वो फेक था, या जो चेक है वो फेक था। बैंक वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट से काट लेता है, जिससे आपका अपना भेजा हुआ रियल पैसा भी चला जाता है और आप एम्प्टी हैंडेड रह जाते हैं। वेल, इस तरह के स्कैम को लेकर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी इस स्कैम के बारे में बात करी गई।

यही है कि किसी सामान को खरीदना है और बायर जो है वो आपको पेमेंट करता है, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है कि अरे वो 30,000 की बजाय 40,000 पेमेंट हो गया है, वो कहता है वो 10,000 जो है वो वापस कर दें, फिर आप 10,000 वापस भी कर देते हैं। वैसे ये नए जमाने के नए लड़कों के साथ नहीं होता है, लेकिन पुराने जमाने के लोगों के साथ अक्सर हो जाता है कि उनके पास जो मैसेज आता है वो बजाय बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है, जो अपडेट है वो चेक करें, मैसेज पर, जो मैसेज डायरेक्ट मोबाइल पर आता है उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद वो बाकी के जो 10,000 है वो पेमेंट वापस उस बायर को जो दिखाता है कि मुझे चाहिए सामान उसको दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट दे भी देते हैं, फिर जो आपसे प्रोडक्ट लिया है वो सामने खड़ा होता है, वो आप प्रोडक्ट भी उसे दे देते हैं और वो नदारद हो जाता है। अब फिर जब आपको पता चलता है कि पेमेंट तो आया ही नहीं, आप उसे कांटेक्ट करते हैं, आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपका जो सामान था वो भी जा चुका है, आपने 10,000 रुपए जो दिए थे वो भी जा चुका है, तो यानी कि आपका डबल ट्रिपल नुकसान हुआ है। आप वापस उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हमेशा उसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड की डिटेल्स भी रखें कि यू नो आप किसको आइटम बेच रहे हैं, इवन अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं, आप लैपटॉप बेच रहे हैं, वो किस तरह का शख्स है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि उनका शिनाख्त जरूर करें, उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर या फिर कोई आईडी अगर उनकी है तो वो भी जरूर रखें कि हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़े कि उन्होंने मोबाइल से अगर कुछ गलत काम कर दिया हो तो आपको पता हो कि भाई ये मोबाइल तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आपको पता है कि भाई नहीं वो फला बंदे ने मुझसे खरीदा था और क्यू आईडी जो है या फिर आईडी जो है मेरे पास उनकी है और ये देखिए ये आईडी है, तो ऐसे में आप बच सकते हैं। अलग तरह के स्कैम भी होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपके साथ पैसों का स्कैम हुआ हो सकता है आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट को लेकर स्कैम हुआ हो सकता है आपका मोबाइल जो बंदा लेकर गया है वो कोई और शख्स हो, चोरी वगैरह के लिए इस्तेमाल करे, किसी और क्राइम के लिए इस्तेमाल करे, इस तरह से भी आपके साथ स्कैम होता है। तो उन सब तरीकों से बचने के लिए जरूरी है कि आईडी वगैरह भी उसकी साथ में रखें। लेकिन इन स्कैम से बचने का कुछ तरीका है जो काफी लंबे वक्त से मैं आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा अमाउंट वापस ना करें। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज आया है या फिर इवन आपके मोबाइल पे सच में पैसे आ गए हैं तो आप तब तक ट्रांसफर ना करें जब तक बैंक आपको ना बता दे कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक के क्लियरेंस का वेट करें। ओवर पेमेंट रिजेक्शन रूल, अगर कोई बायर ट्रांजेक्शन से पहले या बाद में ओवर पेमेंट का बहाना बनाए तो डील को फौरन कैंसिल कर दें, ये 100% स्कैम की निशानी है। सेफ पेमेंट मेथड का यूज करना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत और उम्मीद है कि आज के स्कैम के बारे में भी आपको काफी कुछ पता चला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको इत्तला करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस, वेरिएशंस और जबरदस्त कंसिस्टेंसी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया था। आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का ये प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है रविचंद्रन अश्विन। 17 सितंबर 1986 को चेन्नई शहर में पैदा होने वाले अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू 2010 में किया। ओडीआई में उनका डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने नवंबर 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। शुरू से ही एक बॉलर नहीं थे अश्विन, वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर थे। राइट हैंड बैटिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग के साथ अश्विन ने इंडिया को बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन का रिकॉर्ड उनकी ग्रेटनेस को समझने के लिए काफ़ी है। उन्होंने इंडिया के लिए 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज तकरीबन 24 रन्स पर विकेट रहा है, जबकि उनके नाम 37 5 विकेट हॉल्स और 8-10 विकेट मैच हॉल्स भी हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 7 विकेट्स फॉर 59 रन्स है। लेकिन अश्विन की कहानी सिर्फ विकेट्स तक महदूद नहीं है दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3503 रन्स बनाए, जिनमें 6 सेंचुरीज और 1450 शामिल हैं। आईसीसी के मुताबिक अश्विन टेस्ट हिस्ट्री में वो यूनिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेट्स और 6 सेंचुरीज दोनों अचीव किए। देखिए, कपिल देव का जमाना कुछ और था। कपिल देव वॉज द यूनिक ऑलराउंडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और कपिल देव के बाद यू नो फास्ट बॉलर बैटिंग भी कर रहा हो और यू नो सब कुछ कर रहा हो, तो ये ऑलराउंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिर्फ फास्ट बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर्स के ही यू नो चंद लोगों में हमें दिखता था। लेकिन स्पिन बॉलर और वो भी ऑफ स्पिनर, बैटिंग भी कर रहा हो और सेंचुरीज भी यू नो स्कोरिंग एक फॉर इंडिया और फॉर हिज टीम, वो बहुत रेयर हमें देखने को मिला। और रविचंद्रन अश्विन जब ये यू नो इंडियन क्रिकेट टीम में जब ये इन्होंने एंट्री मारी थी और उस टाइम ये लग रहा था कि ये सिर्फ बॉलर ही हैं, लेकिन आगे जाकर जिस तरह की पारी यू नो इम्पॉर्टेंट इनिंग्स उन्होंने खेली, तो उससे साफ साफ ये साबित हुआ कि इस खिलाड़ी के अंदर में बैटिंग का भी टैलेंट मौजूद था। नो अनिल कुंबले, एक ज़माना पहले अनिल कुंबले वॉज अ लीडिंग स्पिन बॉलर ऑफ इंडिया, तो अनिल कुंबले के नाम पे भी एक सेंचुरी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं थी। रविचंद्रन अश्विन लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर, वहाँ पर भी वो बैट करके इंडिया को कई ऐसे मुश्किल यू नो मौके पर ही हेल्प्ड इंडिया टू विन गेम्स और यू नो टू डिफेंड इंडिया अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। और यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आपने सुना होगा कि 500 से ज़्यादा विकेट्स और 6 सेंचुरीज, ये यूनिक रिकॉर्ड है फॉर एनी क्रिकेटर। अश्विन ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। 116 ODIs में उनके नाम 156 विकेट्स हैं, जबकि बैटिंग में उन्होंने 707 रन स्कोर किए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन ने 65 मैचेस में 72 विकेट्स हासिल किए और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है 4 विकेट्स फॉर द 8 रन्स, जस्ट 8 रन्स। उनकी बॉलिंग का सबसे खास एस्पेक्ट था उनका वेरिएशन, ऑफ स्पिन के साथ कैरम बॉल दूसरा और फ्लाइट में तब्दीली ने बैट्समैन के लिए उनको रीड करना मुश्किल बनाया। अश्विन सिर्फ कंडीशंस का अगर मैं बात करूं कि इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि बैट्समैन के टेक्निक और सिचुएशन को समझकर अपनी बॉलिंग में चेंजेस लाते थे। इंटेलिजेंट बॉलर, जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कि आप सिर्फ फिर की गेंद जो है आप डालते जा रहे हैं, जिस स्पिन ट्रैक नहीं हो वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन स्पिन ट्रैक के बावजूद नॉन स्पिन ट्रैक में भी अश्विन को बहुत सा ऐसे मैं कहूँगा कि उनको जो सक्सेस है has come from those kind of wickets जहाँ पे ball turn ही नहीं कर, and वहाँ पर अश्विन was lethal। That's because कि अश्विन intelligent bowler रहा है। 2016 में अश्विन के करियर का एक खास साल रहा है और उन्होंने ICC Men's Cricketer of the Year और ICC Men's Test Cricketer of the Year दोनों अवार्ड जीते। उनके कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस में 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर टेस्ट शामिल है, जहां अश्विन ने मैच में 13 विकेट्स हासिल किए दोस्तों। सन 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट्स और सेंचुरी दोनों स्कोर किए और इंडिया की विक्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया।
दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका इंटरनेशनल करियर 287 मैचेस और 765 विकेट्स के साथ खत्म हुआ। सन 2026 में अश्विन ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेशनल क्रिकेट का एक नया चैप्टर शुरू किया। वो मेजर लीग क्रिकेट में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ शामिल हुए और एमएलसी में खेलने वाले पहले इंडियन कैप्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। रविचंद्रन अश्विन का करियर हमें बताता है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, रिसर्च, प्रिपरेशन, इंटेलिजेंस और सिचुएशन को समझने की सलाहियत भी एक खिलाड़ी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। 537 टेस्ट विकेट्स, 156 ओडीआई विकेट्स, 72 टी20 विकेट्स और टोटल 765 इंटरनेशनल विकेट्स, ये नंबर्स अश्विन के 14 साल के इंटरनेशनल करियर की कहानी खुद बयां करते हैं। तो दोस्तों, ये था रविचंद्रन अश्विन, इंडिया का स्पिन विजर्ड, जादूगर, ब्रिलियंट ऑलराउंडर और मॉडर्न क्रिकेट के सबसे इंटेलिजेंट स्पिनर्स में से एक। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: का नुकसान उसी को होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और हम दुरूद व सलाम भेजते हैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहो हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: सामीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम आपको घर के माहौल की तरफ लेके जाएंगे। घर का एक ये नज़ारा है। बच्चा अम्मी से कह रहा है, अरे मेरा होमवर्क बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पा रहा अम्मी जान। अब अम्मी कहती है, ओ मेरे बच्चे इधर आओ और एक बात याद करो, कुरान हमें क्या कहता है। बच्चा, कुरान तो हमें ये कहता है कि अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देते। अब मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मैं तो ये नहीं कर पा रहा, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही बोझ नहीं आ गए मुझ पर। तो अब अम्मी मुस्करा कर कहती है, अरे इसका मतलब ये है कि अरे तुम कर सकते हो, ये तो तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए है, बस आहिस्ता आहिस्ता लगे रहो, हो जाएगा। तो सामीन इकराम, ये बच्चों के साथ मुरब्बी और जो उनके माँ बाप हैं उनकी जो है ना आपस की बातें इस तरह की होनी चाहिए। अगर बच्चा थक जाए तो उसको धमकाना और फिर ये कहना क्यों थक जाते हो, तुम्हें ये क्यों करना नहीं करना आता, ये वो। अगर हम बच्चों को अपने बच्चों को इस तरह डांटते हैं तो उसका एक गलत असर उन पर जो है ना तारी होता है और अच्छे नतायज नहीं लेके आते। इस वजह से हमें जो है ना अपने बच्चों को सही तरीके से जो है ना रहनुमाई करनी है। तो इस सिलसिले में ये जो तरीका है, हम इसको कुरान के साथ जोड़ के उन्हें इस तरह समझा बुझा कर हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सामीन किराम और हमारे प्यारे बच्चों, आप अगर ये कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो ज़रूर ये बात भी जहन में रखना, कुरान हमें क्या कहता है कि अल्लाह ने तो यानी हमें ये ताकत दी है, इसी वजह से हमें इसकी ज़िम्मेदारी मिली है। अगर जो है ना अगर कोई काम वाकई मुश्किल हो तो अल्लाह ने ज़रूर उसमें जो है ना रुख्सत भी दी है हमें और कहा है कि हाँ, जो बीमार है, सफ़र में है, उसकी मशक्क़त है, कुछ है, तो उसके लिए आसानी है, उसके लिए कुछ ख़ास कॉम्प्रोमाइज़ है। हाँ, जो सेहतमंद हैं, जो कर सकता है, सिर्फ कोताही और गफलत और सुस्ती की वजह से ये कोई काबिल कबूल और काबिल उज़्र यानी इस उज़्र को कभी भी कोई कबूल नहीं करे। कोई कहे कि हाँ भाई, ये मैं सुस्ती की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, गफलत की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। हालांकि अल्लाह सुबहान व तआला तो हर वक्त कह रहा है कि बंदा, अगर तुम पर कोई ज़िम्मेदारी है तो मैंने तुम्हें इसी वजह से दिया है कि तुम इसे सही से निभा सकते हो। हाँ जी, तो हमें इस तरह अपने जो है ना सोचने का जो तरीक़ा ये बदलना है, कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिम्मत को बढ़ाएं, कोशिश दुगनी कर दें, अल्लाह से मदद मांगें तो हमें पता चलेगा। तो उस तरह हम अपने ज़ुबान में भी ये कह पाएंगे कि नहीं, हम ज़रूर कर पाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। बच्चों, सबक मुश्किल हो, दिल उदास हो, नमाज में सुस्ती हो, तो क्या करना है? ख़ुद को बुरा नहीं कहना, नहीं हिम्मत भी नहीं हारनी, कहना है कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, और फिर आप छोटे छोटे कदम लें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको मदद मिलेगी। हाँ, और ये चीज़ ज़रूर याद रखो कि ये आयत हमें सुस्त बनाने नहीं आई, बल्कि हमें मजबूत बनाने आई है। ये हमें कहती है कि कोशिश करो, मेहनत करो और भरोसा रखो, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है इसलिए तुमसे कोशिश मांगी है। ये आयत हमें कहती है कि काम पूरा करो, भागो नहीं, वादा पूरा करो, छोड़ो नहीं, नेकी करो, सुस्ती ना करो। जब तुम कोशिश करते हो, अल्लाह तुम्हारी कोशिश देखते हैं और तुम्हें मज़ीद ताकत देते हैं। तो ये बात दिल में बिठा लो, मैं कमज़ोर नहीं, अल्लाह मेरे साथ हैं और मैं कर सकता हूँ। कभी कभी कोई इंसान ये कह देता है कि मुझे ये दीनी हुक्म बहुत मुश्किल लगता है, نماز کے حوالے سے ہر وقت جو ہے نا باجماعت میں سے میں جانا ہی بہت مشکل لگتا ہے, میں اس پر عمل نہیں کر سکتا.

0: उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
1: हाँ जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम के अख्तितामी मरहले में हम पहुंच चुके हैं और कुरान की ये कुछ आयतें जो अहम अहम हैं हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते रहे। तो आज जो हिस्सा हमने आपके साथ शेयर किया है ये कुरानी आयात के उन कुरानी आयात का हिस्सा है जिन कुरानी आयात के हवाले से काफ़ी सारी फजीलत की अहादीस भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद एक ख़ास ख़जाने से दी गई हैं। तो हमने इस आयत का मतलब तो समझा, साथ साथ इस आयत पर हम अमल भी करेंगे और हम इसको याद भी करेंगे ताकि जो है ना रात को हम सोते वक्त ये पढ़ें या फिर रात के किसी भी हिस्से में, ज़रूरी नहीं कि सोते वक्त, हदीस में आया कि रात के वक्त आपको पढ़ना है, तो अल्लाह हमें सुनेंगे ज़रूर, अल्लाह कबूल करेंगे और अल्लाह हमारे दिल को मजबूत बना देंगे। चूँकि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, तो फिर अगर हम साथ साथ इस्तग़फ़ार करें और इस तरह जो है ना इस आयत का अहतमाम करें, चूँकि सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयात हैं इनमें इस्तग़फ़ार भी है, इनमें इनाबा भी है, इनमें रुजू इलल्लाह भी है, इसमें सब कुछ है। तो हाँ जी, अल्लाह सुभान व तआला का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है, वो कहता है कि आओ माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो हम दिन के आखिर में कोशिश करें कि कुरान पढ़ें और बिलखसूस सूरतुल बकरा की ये दो आयतें, आखिरी दो आयतें अल्लाह से बात करें, चूँकि इससे हमारा दिल भी साफ़ होगा, ईमान भी नया होगा। चूँकि ये जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है ना एक अहद है, इसमें इस्तग़फ़ार है, इसमें अपने ईमान की जो है ना तौहीद की एक बयान है, इसमें तौहीद और वहदानियत का इकरार है। तो दिन में अगर हमसे गलतियां हो गई हों तो यही आयत जो है ना इस तरह जब हम पढ़ेंगे तो बिदिल्लाहि ताला हम अपने दिल अल्लाह से लगाएंगे, अल्लाह की तरफ लौट आएंगे और अल्लाह का प्यारा बन जाएंगे, अल्लाह हमें अपनी ख़ास हिफाजत में ले लेंगे। तो बच्चों, जाते जाते वही बात एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि यकीन रखो, अल्लाह पर भरोसा करो और मुस्कराते रहो, कोशिश जारी रखो। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स के आज के इस हलके से तलहा अशरफुल ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. क्या कहना द रिक्वेस्ट शो पर हमारे लिसनर्स के ऐसे कमाल कमाल की चॉइसेस आए ना रणबीर कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन की कि भाई ऐसे ऐसे गाने ओहो बस प्ले कर दो अमिता ये तो हमें पसंद है. वेल सबसे पहली रिक्वेस्ट आई शुड टेल यू जितना ये गाना हमारे लिसनर्स को पसंद है उससे कहीं ज्यादा ये गाना रणबीर कपूर का फेवरेट है और वो कहते हैं कि ये उनके फिल्मी करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है. ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया और इसकी रिक्वेस्ट की है रमेश अनवर ने. सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक पूरा पूरा थोड़ी देर में. और उसके बाद एक धूम धड़ाके वाले गाने की रिक्वेस्ट आई है अब्दुल वहाब ने रिक्वेस्ट कर दी है ये जवानी है दीवानी फिल्म से. मतलब अरिजीत सिंह जो कि बड़े ही मेलोडियस गानों के लिए सॉफ्ट सोलफुल सॉन्ग्स के लिए फेमस है इस गाने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे रूल्स ही ब्रेक कर दिए. क्या कमाल की आवाज़ है एंड सुनिधि चौहान उनके साथ. तो चन्ना मेरिया एंड दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड दोनों ही ये गाने आपकी राहों में आने वाले हैं और आप कौन सा गाना एंजॉय करेंगे जरूर बताएं क्योंकि आज रणबीर कपूर का हम 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड यू कहे तो आज की थीम उन्हीं की फिल्मों के हिट हिट गाने हैं. तो आप कहीं ना जाएं बस हमें मैसेज करें 666-22-107 पर और सुनते रहें FM 107 अपनी ए फॉर अमिता के साथ.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है. तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं. सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107. अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए.
4: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी, देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. और अभी हम अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. वैसे जिन्होंने अभी हमें सुनना शुरू किया, आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो थीम है दैट्स बेस्ड ऑन अ वेरी टैलेंटेड एक्टर रणबीर कपूर, क्योंकि आज वो 44 इयर्स के हो चुके हैं. इट्स हिज बर्थडे. तो जाहिर सी बात है कि उनकी फिल्मों को सेलिब्रेट करने का वक्त है, उनके गानों को सेलिब्रेट करने का वक्त है. हाँ, तो मुझे अभी रिक्वेस्ट आई है रहमान की, इनफैक्ट फैजल की, जो अपने फ्रेंड्स अर्पित, मनीष और थक्कर के नाम ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. एंड आई शुड टेल यू कि ये गाना बहुत ही यूनिक कोलैबोरेशन है आतिफ असलम एंड अलीशा चिनॉय का. अजब प्रेम की गजब कहानी, बेहतरीन सा गाना. चलिए ये आएगा आपकी राहों में पूरा पूरा. और उसके बाद इस पर्टिकुलर गाने की रिक्वेस्ट 3 शख्सियत ने की है, यानी कि हमारे लिसनर्स ने. पहले हैं मोहम्मद, दूसरे हैं सोहेल और तीसरे हैं प्रिंसन. और गाना कौन सा है? मतलब ये गाना सुनो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वही मिलकर घर बनाती है कि नहीं. तो चलिए इस गाने को भी हम पूरा पूरा एंजॉय करने वाले हैं. और आपकी लिस्ट का कौन सा गाना है रणबीर कपूर की फिल्म का जो आप चाहते हैं कि आज द रिक्वेस्ट शो पर प्ले हो? सोचिए नहीं, जल्दी जल्दी सोचिए. मतलब सिर्फ नहीं सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए. एंड अपनी मैसेजेस भेजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने डेडिकेशंस के साथ. और अभी लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर। आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
3: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर। आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
4: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम।

0: जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। Only on FM 107. Only on FM.
1: आप सुन रहे हैं The Request Show, A for Amita के साथ। Only on FM 107. दिल से देसी।
2: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for अमिता। डर रिक्वेस्ट शो पर बड़ी कमाल कमाल की रिक्वेस्ट आई हुई है और अगली रिक्वेस्ट मेरी फेवरेट है, उसके बाद वाली रिक्वेस्ट मेरी सुपर फेवरेट है। मतलब क्या चॉइसेस हैं आप सबकी। हाँ तो चलिए अभी रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो मोहम्मद फारूक एंड मिस्टर MK, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है अपने नाम का, भाई पूरा नाम भी बता देते तो। इन्होंने रिक्वेस्ट किया, अच्छा मोहम्मद फारूक ने सलमान खान को ये गाना डेडिकेट किया है। ये फिल्मी स्टार है या आपके अपने दोस्त हैं, भाई बताया करो थोड़ा ताकि मैं भी बता सकूं सबको। हाँ तो ये जो गाना है, इस गाने को प्ले करने से पहले इसकी खासियत बताती हूँ कि इस पर्टिकुलर सॉन्ग को लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य ने फेमस कंपोजर प्रीतम की कार की बैक सीट में मुंबई ट्रैवल करते हुए लिख डाला था। एंड द सॉन्ग इज
3: बिना गुजारा दिल है मुश्किल।
2: क्या बात है, क्या बात है। मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो इसी तरह की क्रिएटिविटी लाते हैं और जगह कोई मायने नहीं रखती, कहीं पर भी गाना लिखा जा सकता है। उसके बाद अगली जो रिक्वेस्ट है ये हमारे सोशल मीडिया से आई है और काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो हिना, राया, शोहेब और इनका एंटायर ग्रुप कहते हैं कि अमिता कुछ भी कर लें ये गाना प्ले होना चाहिए। ठीक है, इस गाने के लिरिक्स के बारे में तो हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका गिटार का पीस सोचिए कौन सा गाना है। Wow, this electric guitar riffs. Oh, I so love it. और इसे प्ले किया है किसी आम इंसान ने नहीं, हाँ, ऑस्ट्रेलियन ग्रैमी विनिंग गिटारिस्ट ओरियंथी, जो कि माइकल जैक्सन के साथ काम किया करते थे। तो चलें ये गाना भी पूरा पूरा आप इंजॉय करने वाले हैं। तो पहले हम सुनेंगे ऐ दिल है मुश्किल, उसके बाद साडा हक। और आपका फेवरेट गाना कौन सा है रणबीर कपूर की फिल्म का, डू शेयर विद अस, क्योंकि आज थीम उन्हीं के नाम है, क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। तो शेयर करें 6666221107 पर और बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्या बात है जनाब, मतलब इतने जोशीले गानों को सुनने के बाद द रिक्वेस्ट शो की एकदम लगता है कि वाइब ही बदल गई है। वेलकम है आप सभी का FM 107 पर, मैं हूँ आपके फॉर अमिता एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणबीर कपूर का 44th बर्थडे और थीम वही है कि उन्हीं की फिल्मों के हिटेड गाने हमें एंजॉय करने हैं। क्यों पसंद है आप बता सकते हैं, किसी खास को डेडिकेट करने हैं वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 666-22-107 पर। और अभी हम आगे रिक्वेस्ट लें उसके पहले अब हम आपका फिल्मी नॉलेज चेक करने वाले हैं।
0: क्विज टाइम।
1: तो क्विज टाइम पर आपको रणबीर कपूर का ये पर्टिकुलर सॉन्ग पहचानना है जिसे मैं बीच से प्ले कर रही हूँ। गैस कीजिए। आई एम वेरी सर्टेन कि आप गेस कर लेंगे, तो इस गाने का नाम अपने नाम के साथ लिखकर भेजिए 666-22-107 666-22-107 पर। और अभी आगे बढ़ते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। तो अहमद की रिक्वेस्ट आई है और वो सुनना चाहते हैं ये वाला गाना।
2: खुली सड़क में तकड़ी तड़क।
1: मोहित चौहान की आवाज है और बड़ा ही कैफ्री सॉन्ग है। इनफैक्ट इसमें रणबीर कपूर बड़े प्यारे से लगे हैं, एकदम कूदते फांदते परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर गाने में एक सीन आता है जहां पर वो ट्रिब्यूट देते हैं लेजेंडरी एक्टर देवानंद साहब को, उन्हीं के स्टाइल में मिमिक्री करते हैं, उन्हीं के स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि आप सुनने वाले हैं पूरा पूरा। और उसके बाद रूहान की रिक्वेस्ट है और कहते हैं कि अमिता मैं रणबीर कपूर को भी बहुत पसंद करता हूँ, माधुरी दीक्षित को भी बहुत पसंद करता हूँ और ये मेरे लिए फैन मोमेंट है कि ये पर्टिकुलर गाने में दोनों है। अच्छा तो गाना कौन सा है? क्या बात है रूहान, आपको मैं भी बता दूं कि जिस तरह से आपको माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, रणबीर कपूर को बचपन से वो बहुत पसंद है और उनके लिए चाइल्डहुड फैन मोमेंट था जब वो इस पर्टिकुलर गाने के वीडियो में उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे। सो डेफिनेटली मटर गश्ती एंड घाघरा ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं। और भूलिएगा नहीं क्विज टाइम पर मैंने एक सवाल पूछा है, एक गाना आपको बीच से सुनाया है और कहा है कि गाना पहचानो, कहीं मत जाओ, बने रहो FM 107 पर दिल से देसी।

0: इस गाने को सुनकर जितने मजेदार तरीके से इसमें परफॉर्मेंस हुआ है, चाहे रणबीर कपूर हो या माधुरी दीक्षित हो, दोनों का ही कॉम्बिनेशन कमाल का. इसे सुनकर अपने आप ही पैर थिरकते हैं कि नहीं. वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप
1: सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन एफएम 107. दिल से देसी.
0: हां जी, तो माई देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? देखो, अभी द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है और हमने क्विज टाइम पर आपको एक गाना बीच से सुनाया, कहा कि भाई देखो आज रणबीर कपूर का 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनका इस फेमस गाने को सुनना तो बनता है. गैस करो ये गाना कौन सा है. तो गैस किया आपने. वैसे हमारे लिसनर्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, स्पेशली इस गाने को लेकर, कि ये गाना मतलब कौन सा हो सकता है. इस गाने के बोल कहीं साडा हक गाने के बीच में तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं, साडा हक तो अभी हमने सुनाया. तो ये गाना कौन सा हो सकता है? दिस सॉन्ग इज नादान परिंदे. कम ऑन, हाउ कैन यू मिस दिस सॉन्ग. भाई देखो, इस गाने को कंपोज किया ए आर रहमान साहब ने, लिखा इरशाद कामिल ने, गाया मोहित चौहान ने. और पता है इसकी खासियत क्या है, कि इस फिल्म के डायरेक्टर यानी रॉकस्टार फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली मतलब कुछ शूट कर रहे थे, एंड ही वांटेड कि इस गाने के बोल और हैवी ड्रम बीट साथ में शूट हो. बट वो कहते हैं ना, एक क्रिएटिव ब्लॉक हो गया. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और लिरिक्स सही बैठ नहीं रहे थे. तो सडनली उनके एक NRI फ्रेंड ने उनको मैसेज किया कि द हंटिंग फाल्कन फियर्स द साउंड ऑफ द ड्रम्स, कम होम कम होम. और इस लाइन का इस्तेमाल बिल्कुल इसे हिंदी उर्दू वर्जन में कह सकते हैं, इस गाने में इस्तेमाल हुआ है. तो दिस इज़ हाउ, वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स कभी कभी किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं. एंड सो द सॉन्ग इज़ नादान परिंदे, जो कि आपकी राहों में आ रहा है. और कौन कौन है जिन्होंने सही गेस किया? उनका नाम है फलक, जीशान, एंड यहाँ पर रूहान है, रिजवान है, हिशाम ने भी बिल्कुल सही गैस किया. तो ये गाना आपके नाम होता है. इसी के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, आपकी मेरी मुलाकात अब कल होगी. और जाने से पहले कह दूँ, हम हिराही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देश.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस RJ नाजिया के साथ, सिर्फ FM107 पर। दिल से देसी।
2: राइट दोस्तों, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमन, आपको वापस से एक बार फिर वेलकम कहेंगे।
3: थैंक यू।
2: आज डॉक्टर, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है गट हेल्थ, ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतनी सारी चीज़ें आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। अब मैं आपसे डॉक्टर ये जानना चाहूँगी कि कॉन्स्टिपेशन जो है उसे कई बार बहुत से लोग छोटी सी प्रॉब्लम समझते हैं, तो क्या वुमेन की ओवरऑल हेल्थ को कॉन्स्टिपेशन सीरियसली अफेक्ट करती है?
3: जी बिल्कुल, ऐसा है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो ओवरऑल हेल्थ पर अफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि ऑलरेडी अगर किसी को स्टूल ठीक से पास ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो और ऑन एंड ऑफ कभी किसी को बाउल हैबिट्स रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह से, तो ये भी लाइक एक अच्छा खासा चैलेंज है, क्योंकि हर टाइम पर कोई भी इंसान जो है वो ये इसी के ऊपर फिक्रमंद रहता है और सोचता है कि लाइक व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी। तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो क्रॉनिकली जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम हर अगले दिन रहती है 2-4 दिन के लिए या समथिंग, तो उस सूरत में उन लोगों को ज़ाहिर है स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है वॉशरूम के अंदर। तो क्रॉनिकली अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा पेल्विक एरिया में या पेल्विक मसल्स पे, पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेन करेगा और उसके स्ट्रेस की वजह से पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक होने के चांसेस हैं। ऑलरेडी वुमेन की जो बॉडी है, लाइक हमारी जो खवातीन है उन सबकी बॉडी इस तरीके से नेचुरली अल्लाह की तरफ से डिज़ाइंड होती है टू वी ऑल नो कि बेयर द बेबी और टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ यू नो चाइल्ड बर्थ। तो उसके अंदर भी कुछ लोगों की गट हेल्थ काफ़ी अफेक्ट

0: हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली कि उनका पेल्विक फ्लोर बहुत वीक हो जाता है तो उसके वेरियस उनको साइड इफेक्ट्स बाद में भी देखने पड़ते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए. उसके लिए खैर इसकी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिससे आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं पेल्विक फ्लोर की. तो वो वेरियस एक्सरसाइज होती हैं अगर किसी को है तो फिर वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है. लेकिन कॉन्स्टिपेशन की अगर बात की जाए क्रॉनिकली अगर कोई बंदा स्ट्रेनिंग के अंदर है यानी उसको रोज़ाना इशू आ रहा है और वॉशरूम में उसको स्ट्रेन करना पड़ रहा है तो उसके मसल्स जो है ना पेल्विक फ्लोर के वो बहुत ज़्यादा वीकन होंगे. और अगर बहुत अरसे तक लंबे अरसे तक ये प्रॉब्लम रहता है तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होने का चांस है यानी कि जो आते हैं या जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो कुछ लोगों में बाहर आते हुए भी देखे गए हैं यानी उनकी फिर सर्जिकल मैनेजमेंट होती है अगर बहुत अरसे से रह रहे हैं और उनके मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं तो उस सूरत में. दूसरा ये कि अगर एक तरीके से ये वेस्ट होता है राइट तो वेस्ट जो है वो अगर बॉडी में एक नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा ड्यूरेशन तक रह रहा है तो होता ये है कि हमारा जो लार्ज गट है वो डिज़ाइंड इस तरीके से है कि उसमें मिनरल्स और उस पर जो सॉल्ट्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होती है एट द एंड मतलब बिल्कुल लास्ट जो पार्ट ऑफ द गट है. नॉर्मली ये चीज़ है जो नॉर्मली एवरीडे जो लोग बाउल हैबिट जिनकी नॉर्मल है जिनको कोई इश्यूज़ नहीं है कॉन्स्टिपेशन के तो उनके लिए कोई इशू नहीं होता. दे आर पासिंग स्टूल एवरीडे तो उनको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती. लेकिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या रिटेन रहता है ये टॉक्सिन्स बॉडी में उस सूरत में उन लोगों को यानी ये एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस यू नो वेस्ट प्रोडक्ट ही उसमें से एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है बॉडी के अंदर तो वो एक तरीके से टॉक्सिन है वो अच्छा नहीं है कि आपकी. और उस तरह स्टूल भी बहुत हार्ड हो जाता है और जो मरीज़ है वो बताता है कि उसको बहुत अजीब सा अच्छा नहीं फील होता. स्लगिशनेस होती है उनका फोकस जो है वो अच्छा नहीं रहता चीज़ों को लेकर उनका मूड भी अच्छा नहीं रहता और वो जो है बहुत सारे स्किन इशूज़ भी फेस करते हैं कुछ लोग स्किन इशूज़ लाइक एक्ने लाइक एक्जिमा. तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को क्रॉनिकली ये मसला रहता है तो वो सूरत में उनको ये वाले इश्यूज़ भी डेवलप हो जाते हैं अगर ये मसला सॉल्व ना हो और इसको एड्रेस ना किया जाए टाइम पर.
1: सही. तो यानी आप कह रही हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो इतना नॉर्मल नहीं है.
0: जी जी.
1: अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से
0: अवॉइड करना चाहिए कि इस सिचुएशन पे कोई आए ही ना या तो अपनी लाइफ स्टाइल या डाइट को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं या अगर कोई एक्चुअल डिजीज है इसके पीछे तो उसको जाके दिखाना चाहिए.
1: सही. अच्छा डॉक्टर, अक्सर हम जो हैं वो IBS का नाम सुनते हैं
0: जी.
1: तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप समझाएं कि IBS है क्या और किस तरह से इसे डायग्नोज किया जा सकता है.
0: जी बिल्कुल. IBS का जो फुल फॉर्म है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको बहुत ही यानी इसका एग्जैक्ट उर्दू तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इसमें बेसिकली होता है कि अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती हैं यानी जो शख्स जिसको एक्सपीरियंस हो रहा होगा उसका कंप्लेन ये होगी. बेसिकली ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स में से आता है. फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो एनाटॉमी है बॉडी की उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई टेस्ट भी होंगे इसके तो उस शख्स को प्रॉब्लम नज़र यानी डॉक्टर नहीं जज कर सकता क्योंकि टेस्ट सारे क्लियर आते हैं हर चीज़ ठीक होती है बट उसका प्रॉब्लम वहीं परसिस्ट करता है. यानी जो गट है कोलोन है एब्डोमेन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपेरेंटली लेकिन क्योंकि पेशेंट अपने सिम्टम्स बता रहा है और उसको वो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसमें होता यह है कि कुछ दिन कुछ मरीजों को कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ दिन लाइक उतने ही दिन डायरिया होता है फिर कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और इस तरह से ये ऑल्टरेशन चलती है इन दोनों चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल गैसेस जो है ना वो डेवलप होती हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग के सिम्टम्स आते हैं और बहुत अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन रहती है. और कुछ सर्टेन फूड्स हैं जिससे भी कुछ लोगों को हो जाता है ज़्यादा लेकिन ये इसका कोई कॉज एक्चुअल कॉज हम नहीं बता सकते लेकिन रैंडमली ये किसी में कभी भी डेवलप हो सकता है. और इसमें और एलर्जीज़ में फ़र्क है यानी कुछ होती हैं जो लाइक स्मॉल गट की एलर्जी के इश्यूज़ हैं वो एक अलग चीज़ है. लेकिन IBS में मेनली कुछ लोगों को कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन रहता है कुछ लोगों को कंटिन्यूस डायरिया रहता है और अक्सर वो बेशतर लोगों में ऑल्टर्ड रहता है यानी कुछ दिन डायरिया कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन. और एक्चुअल में उस पर कोई पैथोलॉजी या कोई प्रॉब्लम नहीं यानी हम जज कर सकते थ्रू द टेस्ट या कुछ लेकिन जब मरीज जो बता रहा है उसके हिसाब से हम उसको फिर जो है ना दवा देकर ट्रीट करते हैं.
1: बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान वर्ड्स में आपने डॉक्टर समझाया. आई एम श्योर हमारी लिसनर्स जो है उन्हें अच्छे से समझ में भी आया. अच्छा डॉक्टर, आजकल जो है वो प्रोबायोटिक्स जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये सिर्फ ट्रेंड है या वाकई फ़ायदेमंद है.
0: देखिए प्रोबायोटिक्स बहुत फ़ायदेमंद है उसमें कोई नुकसान नहीं है लेने में लेकिन हमें ये देखना है कि हमें लेना कब है. तो उसमें ये सिचुएशन होती है कि कुछ लोग किसी भी पर्टिकुलर इलनेस की वजह से सिकनेस की वजह से उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे

0: गट का हो या कोई भी बॉडी का इन्फेक्शन हो, तो कुछ लोगों में ना उस एंटीबायोटिक्स के इनटेक की वजह से, जो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं, तो जाहिर है वो पूरा पैसेज को क्रॉस करके गट में से ही गुजर रही है, वहीं से एब्जॉर्प्शन हो रही है. तो कुछ लोगों की गट इतना सेंसिटिव होती है कि वो उसको इतना सही से, यानी उसका जो आप कह सकते हो कि जो गट के जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा हम कहते हैं नॉर्मल गट बैक्टीरिया जो कि हर इंसान में होने चाहिए. हमारे स्किन में भी होता है नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि स्किन की रिक्वायरमेंट है उसको हेल्दी रखने के लिए. इसी तरीके से गट में होता है, हर यानी ऑर्गन के अंदर ज़रूरी है. उस तरीके से गट का जो बैक्टीरिया है ना, वो एंटीबायोटिक्स के असर से वो भी किल हो जाता है. क्योंकि एंटीबायोटिक्स का पर्पज़ ये है टू किल द बैक्टीरिया. तो अगर या तो उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी ली है या उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ली है, तो फिर कुछ लोगों का गट बैक्टीरिया जो गुड फ्लोरा है, जो अच्छा फ्लोरा है, वो भी जो है ना ख़त्म हो जाता है. उसकी वजह से वो उन लोगों को गट इश्यूज सेम लाइक डायरिया हो सकता है और ब्लोटिंग हो सकती है और गैसेस फील हो सकती है बहुत ज़्यादा. और उनको फील हो सकता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं सही से हमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हमें तकलीफ कर रहा है, यानी हर चीज़ें हमें सूट नहीं कर रही है अभी. पहले ऐसा नहीं था. तो उस सूरत में जो है उनको प्रोबायोटिक थेरेपी दी जा सकती है. इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोम रीसेट. क्योंकि देखिए, अब अगर इसके बाद वो लेते हैं इस तरह से प्रोबायोटिक एज अ थेरेपी, तो इट वुड वर्क फॉर देम इंशाल्लाह. क्योंकि उसी सिनेरियो में होता ये है कि वो हम उसी गट बैक्टीरिया को उस तरीके से रीबिल्ड कर रहे हैं थ्रू द कैप्सूल्स या सीरप्स जो भी प्रोबायोटिक के अवेलेबल हैं. कुछ में पाउडर्स भी अवेलेबल हैं. तो अगर हम उसको रीबिल्ड कर रहे हैं तो आफ्टर अ सर्टन टाइम लिमिट वो गट बैक्टीरिया वापस से ग्रो हो जाता है और उनका गट वापस हेल्दी हो जाता है और वो बहुत ओवरऑल अच्छा और हेल्दी फील करते हैं.
1: सही.
0: तो ये उस सूरत में ठीक है. लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई लाइक अपना लाइफस्टाइल नहीं मॉडिफाई करना चाहता और वो टोटली लाइक हाईली प्रोसेस्ड या जंक फूड पर है या अनमैनेज्ड स्ट्रेस है किसी का, तो उस सूरत में अगर हम सिर्फ प्रोबायोटिक्स का इनटेक करके ये समझते हैं कि हमें गट को फ़ायदा होगा और सारे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है. हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने लाइफस्टाइल पर काम करना पड़ेगा. लाइफस्टाइल को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मेडिसिन या प्रोबायोटिक भी अच्छा काम कर सकती है.
1: बिल्कुल. तो पहले तो सबसे पहले आपने कहा लाइफस्टाइल पे काम करना होगा. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात डॉक्टर. यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ सुनते हुए शो वुमेन वेलनेस. मिलते हैं ब्रेक के उस पार.
2: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें. पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं. हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें. अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें. ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है. जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें. कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें. ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें.
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है.
4: अल्लाहु अकबर.

0: कमजोर औलाद। सामिन किराम, आज की कहावत हमें ये याद दिलाती है कि सिर्फ नसब काफी नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की खूबियों को अमल से जिंदा रखना जरूरी है, वरना अंजाम वही होगा। आग के बुझने के बाद सिर्फ राख ही रह जाती है।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस। मैं हूं नाजिया आपके साथ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमन, और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है गट हेल्थ। तो डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, वो है डाइट। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि हमारी जो डेली डाइट है वो हमारे गट को किस तरह से अफेक्ट करती है, और अच्छे गट के लिए कौन सी डाइट है, किस तरह की डाइट हमें जो है वो फॉलो करनी चाहिए।
5: जी बिल्कुल, डायरेक्टली अफेक्ट करती है डाइट किसी भी इंडिविजुअल को, क्योंकि टोटली हमारी जो डाइट है ना उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा गट का जो मतलब माइक्रोबायोम है या बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो कैसा रहेगा और हमारी गट कैसे रिस्पॉन्स करेगी, या हमारी ओवरऑल हेल्थ भी हमारी गट पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ही माइंडफुली कुछ भी अगर खा रहे हैं तो बहुत माइंडफुली रहकर खाएं। इनफैक्ट अगर हम किसी क्रैश डाइट्स पे जाते हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा हाइड्रेशन का ख्याल रखना, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है। बहुत सारे लोग डाइट अच्छी कर लेते हैं लेकिन हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं करते। उनको लगता है कि अगर प्यास नहीं लग रही है तो पानी नहीं पीना है, हालांकि इट्स नॉट ट्रू। आपको अपनी बॉडी के फंक्शंस को अच्छा करने के लिए और नॉर्मल क्योंकि बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। एटलीस्ट जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है 2 to 3 liters, और एज़ पर आपका जो काम है अगर आप आउटडोर हो तो उसके अकॉर्डिंग, तो वो पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा यानी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दियर यू नो एग्जर्शन या फिजिकल एक्टिविटी या जिस तरह का उनका नेचर ऑफ जॉब है, लेकिन स्टिल अपने लाइक अपने हिसाब से पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कि गट बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं ना वो फाइबर पर फीड करते हैं एक तरीके से, यानी उनकी जो खुराक है हम कह सकते हैं कि वो फाइबर है। अगर हम रिच फाइबर लेंगे अपनी डाइट में या हाई फाइबर डाइट का इंटेक करेंगे, वेदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स अच्छे हैं, तो गट बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी रहेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, और हमें खुद से अपने अंदर एक डिफरेंस फील होगा कि गट जो हेल्थ है ना उसका डिफरेंस हमें खुद से फील होगा अपनी ओवरऑल तबीयत में, और जैसे हम बिहेव करेंगे हमारी फंक्शन जो डेली रूटीन और फंक्शंस है ना हमारी एक्टिविटीज़ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, सोचने की सलाहियत तक पे फ़र्क पड़ेगा, लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना ज़्यादा इससे अफेक्ट पड़ता है।
4: यानी आप कह रही हैं कि हेल्दी चॉइसेस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर, क्या पुअर गट हेल्थ जो है वो स्किन, एनर्जी और मूड को भी अफेक्ट करती है? इफ़ सो हाउ?
5: دیکھیں پور گٹ ہیلتھ ٹوٹلی افیکٹ کرے گی, اس لیے اس کا ریزن یہ رہتا ہے کہ موسٹلی جو لوگ ہیں نا, اگر فار ایگزامپل کسی کا انٹیک آف شوگر کنزمپشن یعنی بہت زیادہ ہے, ایکسیسو ہے, ایک نارمل شوگر کنزمپشن از اوکے اگر آپ

0: डायबिटिक नहीं हो तो ओके है बट कुछ लोग इतना ज्यादा एक्सेसिवली शुगर पे ही मतलब अपना पूरा पूरा दिन गुजार देते क्योंकि उनको क्रेविंग होती है अदर लाइक मे बी कोई रीजन होता होगा या उनको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो फील होती है लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और शुगर ये एक मेजर चीज़ है कि जो लोग दिन भर में वही कंज्यूम कर रहे हैं तो उस सूरत में ना गट बैक्टीरिया जो है वो अच्छा नहीं रहता यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ख़त्म होता रहता है या उसका फंक्शन अच्छा नहीं रहता और ये वो चीज़ें ये दोनों शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ये दो इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं कि ठीक है कभी कभार आप ले सकते हो उसमें कोई हार्म नहीं है लेकिन अगर डेली बेसिस पे कोई शख्स उसी पर ही मुस्तकिल है और फाइबर्स नहीं ले रहा प्रोटीन्स नहीं ले रहा अपना हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रख रहा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स यानी ये चीज़ होती है इन द सेंस ये कि अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ में बोलूँ तो जो आते हैं ना उनकी सोजिश और वर्म का बाइस बनता है तो जब सोजिश होगी आँतों में तो डेफिनेटली वो अपना काम नॉर्मली नहीं कर पाएंगी हमारे हाथ पर भी कोई वूंड होता है उसमें कोई सूजन वर्म होती है वो रेड हो जाता है फूल जाता है तो हमें उस वक्त उस जगह से फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है हाथ या अपनी फिंगर को मूव करने में प्रॉब्लम होती है सेम इसी तरीके से आँतों का हिसाब है कि अगर वो सोजिश और वर्म का शिकार होंगी या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाएंगी बाउल में तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगी और इन द एंड रिजल्ट वही होगा कि पुअर गट हेल्थ होगी और अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं होगी तो स्लगिशनेस आएगी बिहेवियर में और आपको हर वक्त फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी और आपको लगेगा आपने कितना ही कुछ खा लिया है लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा आप एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं क्योंकि आप जो फूड इनटेक कर रहे हो वो अल्ट्रा यानी रिच है इन प्रोसेस्ड फूड सही है उसकी वजह से और हाई शुगर इनटेक की वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली गट जो है ना वो अपना काम यानी स्लो कर देती है उसका रीज़न यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में
1: बहुत ही अच्छे बहुत ज़रूरी मालूमात आपने शेयर की डॉक्टर अच्छा डॉक्टर क्या पुअर स्लीप का भी असर पड़ता है डाइजेशन पर
0: जी स्लीपिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स को चाहिए कि वो ऑलमोस्ट 7 to 8 hours अपना स्लीप साइकिल रोज़ाना कंप्लीट करें स्पेसिफिकली अगर रात में ही सोकर कोई शख्स नींद पूरी करता है तो वो सबसे बेस्ट है उससे अच्छा तो कोई टाइम ही नहीं है लेकिन कुछ लोगों का ड्यूटी रूटीन्स और आवर्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं तो ओके दे कैन डू इट इन द डे टाइम लेकिन अपना स्लीप कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है फीमेल्स को हॉर्मोन्स की ही वजह से ये जो रीज़न हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था क्योंकि फीमेल्स की हॉर्मोन एक्टिविटी अच्छी चले बॉडी में साइकिल अच्छे से मेंटेन हो और सब चीज़ें नॉर्मलाइज रहें उसके लिए फीमेल को स्लीप भी एज़ कम्पेयर टू मेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है यानी 8 to 9 hours एक अच्छा टाइम है किसी भी खातून के लिए कि वो अपना यानी स्लीपिंग टाइम 8 to 9 hours अगर रखती है तो उसके ओवरऑल बॉडी फंक्शन उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका साइकिल उसका मूड स्विंग्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना देखने को मिलता है लेकिन प्रोवाइडेड कि वो इतने आवर्स कंप्लीट कर रही हो
1: सही
0: अगर हम कम आवर्स सोएंगे तो हमारी गट हेल्थ पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो एक फील गुड हार्मोन होता है ना सेरोटोनिन उसका रिसेप्टर्स भी गट के अंदर मौजूद होता है तो सेरोटोनिन ही है जो हमें अच्छा फील कराता है जो हमें बहुत एक्साइटेड और खुश फील कराता है तो ये हम सोच सकते हैं कि अगर हम सही से सोएंगे नहीं तो वो हार्मोन ब्रेन से निकलता है और वो जाकर गट पर भी अफेक्ट कहीं ना कहीं करता है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ लिंक होता है
1: सही बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर अच्छा डॉक्टर आजकल देखा गया है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं वेट लॉस डाइट फॉलो कर रही होती हैं तो क्या आपके हिसाब से डाइटिंग करना या मील्स को स्किप करना गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है
0: देखिए प्रोलॉन्ग अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि क्रैश डाइट्स पे जा रहे हैं या मील्स को स्किप करना तो बिल्कुल भी मतलब आइडियल नहीं है कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा लेकिन अक्सर पेशेंट्स भी हमारे पास आए हैं वो कहते हैं हम 1 meal a day ले रहे हैं लेकिन स्टिल हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि उसका रीज़न ये होता है बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उसमें से एक ये भी रीज़न होता है कि या तो उनका स्लीप प्रॉपर नहीं होता या तो जो वो 1 meal ले रहे हैं ना उसमें वो एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं पूरे दिन में से वो सोचते हैं कि हम 24 आवर्स में एक ही बार मील ले रहे हैं तो बस वो उसी में ही सारी कैलोरीज ऐड कर देते हैं यानी आइडियली उनको कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए लेकिन वो कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो नहीं करते वो उसमें अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करो और थोड़ा लाइक एक सर्टेन टाइम पर 2 or 3 times दिन में मील लेते हो तो इट्स फार मोर बेटर देन 1 meal a day लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि 1 meal a day उनके लिए बेहतर है इन दैट केस भी उनको चाहिए कि वो उसमें डेफिसिट में रहें तो ही उनको इफेक्ट पड़ेगा और अगर वो लंबे लंबे ब्रेक्स करेंगे ना खाने के बीच में तो उसमें भी ये होता है कि कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आते हैं स्टमक जो है वो एसिडिटी ब्लोटिंग और इस सब के तो टू अवॉइड दिस थिंग उनको चाहिए अगर वो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तो वो इंटरवल के हिसाब से मील लें एवरी 4 hours 6 hours कुछ थोड़ा बहुत यानी एक कम क्वान्टिटी में मील लें तो उससे ये है कि

उनका जो है ना गट भी बिल्कुल एम्प्टी नहीं रहेगा लॉन्ग आवर्स के लिए और उनके गट में ये ब्लोटिंग वाले सिम्टम एसिडिटी के और खासकर गैस्ट्राइटिस यानी वो इतने कभी-कभी सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट भी करते हैं इमरजेंसी के अंदर कि

0: light yellow and clear is good. लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि वो बहुत dark हो रहा है तो ये this is something concerning. आपको उस वक्त आके या तो अपनी hydration अच्छी करनी चाहिए या अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप आकर मिल सकते हैं doctor से और उसको assess कर सकते हैं हम further. और उसके अलावा वो लोग जो बाहर outdoor काम करते हैं जैसे यहाँ दोहा में तो आपको अंदाजा है कि किस कदर की ज़्यादा गर्मी होती है, humidity होती है, उस सूरत में उन लोगों को यानी मुस्तकिल पसीना आता है, ज़ाहिर है वो अंडर द सन है तो उस सूरत में उन लोगों की वाटर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, यानी वो उनको बढ़ानी पड़ती है. और अगर वो ज़्यादा नहीं पियेंगे तो अक्सर पेशेंट ना बिल्कुल बेहोशी के साथ प्रेजेंट करते हैं या इतने लेथार्जिक हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड और लेथार्जिक स्टेज होती है. जब वो आते हैं ना हमारे पास तो कभी उनका सोडियम लेवल बहुत कम हुआ होता है और हाइड्रेशन कम हुई होती है या शुगर लेवल कम हुआ होता है जब उनका असेस किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी हाइड्रेशन और चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है. तो अगर वो खुद ही यानी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी हाइड्रेशन अच्छी करें या अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो कभी ORS भी यूज़ किया जा सकता है पानी में डालकर, ताकि वो जो इलेक्ट्रोलाइट धूप की वजह से ज़ाया हो रहे हैं बॉडी में, पसीना निकलता है और सब कुछ एक्टिविटी की वजह से, तो वो चीज़ को अवॉइड किया जा सके. तो कभी कभार उसका यूज़ करना भी ओके है, यानी अगर कोई उनको और इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो वो धूप में काम करते हैं तो पानी के साथ साथ कभी कभार ORS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो ज़रूरी हैं ना बॉडी के लिए वो मौजूद होते हैं.
1: अच्छा डॉक्टर, कोई एक फ़ीमेल है और बहुत लंबे अरसे से एसिडिटी है या फिर गैस है या फिर और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट उन्हें हो रहा है, तो वो किन वार्निंग साइंस को सीरियसली लें और कब उन्हें डॉक्टर को फौरन कंसल्ट कर लेना चाहिए?
0: अगर उनको ऐसा फील होता है कि उनका यानी जो ये ड्यूरेशन है इलनेस का या जो तकलीफ़ है उनको वो बहुत ज़्यादा यानी लंबा चला गया, यानी मोर देन अ मंथ, मोर देन 6 weeks, 8 weeks, यानी वो कंटिन्यूस है, इंटरप्टेड भी नहीं है और वो बिल्कुल ठीक फील कर ही नहीं रही है इस दौरान. डेढ़ महीना दो महीना के अराउंड उनको सेम ही फील हो रहा है रोज़ाना, कोई उनके सिम्टम्स में चेंज ना हो और रोज़ाना वो उसी तकलीफ का सामना कर रही हैं. और नो मैटर शी डज लाइक गुड लाइफस्टाइल, सारी की सारी मेजर्स लेकर भी उनको सेम फील हो रहा है, तो ऑलवेज शी कैन कम टू सी अ क्लिनिशियन. उसके अलावा अगर उसके साथ में उनको वेट लॉस फील हो रहा है कि वेट लॉस के सिम्टम्स हैं या कुछ लोगों में वेट गेन के भी सिम्टम्स होते हैं उनको, क्योंकि एडिमा हो जाता है बॉडी में, जैसे जिक्र किया था कि हार्मोन्स की वजह से, वाटर और सोडियम रिटेंशन की वजह से एडिमा भी हो जाता है, तो वेट गेन यानी वो बेसिकली वो हार्मोनल एक्शन की वजह से वेट गेन हो रहा है, तो ऐसा भी होता है. लेकिन अगर वेट लॉस के सिम्टम्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है. प्लस ये कि अगर उनको गट में से गट मूवमेंट करते वक्त या जब वो वॉशरूम यूज़ करती हैं तो उनको कोई ब्लड नज़र आता है और या स्टूल का कलर डार्क हो रहा है, डार्क यानी ब्लैकिश में जा रहा है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग. तो उनको आकर अपना पूरा प्रॉपर असेसमेंट कराना चाहिए, मिलना चाहिए डॉक्टर से आकर और अपनी सारी चीज़ डिस्कस करके, जो भी लाइक डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करता है या क्लिनिशियन उनके बारे में सजेस्ट करता है, कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें डिफरेंट मुआयना करने होते हैं, पहले वो खुद मुआयना करके देखते हैं, उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट रेफर करते हैं, यानी करना पड़ता है. यानी स्टूल एग्जामिनेशन भी होता है कुछ केसेस में, कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी भी की जा सकती है अगर सिवियर यानी वेट लॉस की हिस्ट्री हो, क्योंकि वेट लॉस जो सिम्टम है ना ये वाहिद है जो कि बहुत सीरियस डिजीज़ के साथ लिंक किया जाता है लाइक कैंसर, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर नहीं करते. पहली लाइक ये कंसर्न होती है कि वेट लॉस हुआ क्यों है और कितना हुआ है, कितने अरसे में.
1: बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर. अच्छा डॉक्टर, गट हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कॉमन मिथ्स हैं जिन पर लोग यकीन कर लेते हैं लेकिन रियलिटी देखा जाए तो कुछ और ही होती है?
0: यानी आप क्या
1: कोई कॉमन मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं गट हेल्थ से रिलेटेड? सच नहीं,
0: आई डोंट थिंक सो.
1: नहीं, अच्छा अच्छा, अब हम बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को टॉप 3 गट हेल्थ जो आप देना चाहें और वो जो वुमेन आज के दौर में फॉलो कर सकती हैं वो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए?
0: टॉप 3 गट हेल्थ टिप्स, देखें सबसे पहले तो जैसे हमने अभी जिक्र किया, वेरी गुड डाइट. ठीक है, डाइट का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि आपको डेली बेसिस पर ही बड़ा कोई हेल्दी खाना खाना है. कभी कभार कुछ चीज़ें जो हर इंसान को पसंद होती है वो खाई जा सकती हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है. लेकिन मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि आप जो प्रोसेस्ड फूड है उससे और एक्सेस ऑफ शुगर्स से दूर रहें. अगर आप ले रहे भी हैं तो उसका एक सर्टन क्वांटिटी होना चाहिए, एक पोर्शन साइज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप लाइक उसको एक्सेसिवली कंज्यूम करें और पूरा दिन ही वही कंज्यूम करें. और प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं अगर आप लाइक एक कुछ अरसे तक उसको कुछ सालों तक कम्प्लीटली प्रोसेस फूड पर ही ना, तो बिल्कुल ही यानी जो गट माइक्रोबायोम है वो ख़त्म हो जाता है, उसका अपना फंक्शन

0: लगता ही नहीं. और ऐसे ही लोगों को ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस भी देखे गए हैं, जो भी मैंने जिक्र किया था कि सूजन वरम हो जाती है पूरी बाउल के लूप्स में, और उसकी वजह से बहुत सारे और भी दीगर यानी इम्यूनिटी पूरी डाउन हो जाती है उसके बाद ना, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे आना पड़ता है, यानी वो इतना ज़्यादा सीवियरिटी उस चीज़ की बढ़ जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ साथ हाइड्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना, और सिर्फ पानी से. कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो जूसेस लेंगे, वो ड्रिंक्स लेंगे जो एनर्जी ड्रिंक्स और ये सारा जंक होता है, तो उनको लगता है कि उससे भी हाइड्रेशन मिल रही है उनको. और कुछ लोग समझते हैं चाय कॉफ़ी से भी उनको हाइड्रेशन मिल रही है. ऑल्दो वो लिक्विड्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपकी बॉडी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली वो अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहा अगर आप ज़्यादा एक्सेस में उसको यूज़ कर रहे हो.
1: सही.
0: पानी की जो हाइड्रेशन है वो पानी ही पूरी करेगा बॉडी के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको मेंटेन करना, अच्छी हाइड्रेशन रखना, अपने आप को लाइक देखना, उससे आप बहुत अलर्ट और अच्छा भी फील करते हो जब आप अच्छी हाइड्रेशन रखते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी रहती है, मूवमेंट चलती रहती है आपकी, लाइक डेली बेसिस पे आप जो है ना वॉशरूम भी जा रहे हैं और कोई कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं हो रहा, तो एक्नी से बच सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्जिमा से बच सकते हैं. तो ये बहुत एक अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो डाइट्स मैंने डिस्कस करी, प्रोसेस्ड फूड प्लस शुगरी डाइट्स, ये इनसे इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स आएंगे एक तरीके से ना गट के लिए. तो जब इन्फ्लेमेशन गट में होगी, सूजन वरम होगी, तो सारे प्रॉब्लम्स वहीं से अराइज होंगे. तो इसीलिए इसको लेना है तो लिमिट में लेना है, और कभी कभार लेना है, हर टाइम पर इसके ऊपर नहीं डिपेंड करना. नंबर टू पर ये आ जाता है कि हमें अपनी मूवमेंट का ख्याल रखना है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग ज़्यादातर जैसे ऑफिस में सिटिंग का काम करते हैं या कुछ इस तरह से, कि उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती. कुछ लोग घर पर भी हैं तो वो इतना नहीं, यानी वॉक एक्सरसाइज को तरजीह नहीं देते. तो उस सूरत में हमें करना ये चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने स्टेप्स काउंट करें. आजकल तो मोबाइल के अंदर आप आराम से अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर आप स्टेप्स काउंट कर रहे हैं,
1: और मुझे लगता है बहुत सही कहा आपने कि हमारी जो हेल्दी चॉइसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्दी गट से रिलेटेड है, और हमें ये सारी चॉइसेस जो अब जो लाइफस्टाइल की बात हो रही है, जो डाइट की बात हो रही है, जो अपना ख्याल रखना और जो कॉन्शियस रहना डाइट को लेकर, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करती है, और इस पर हमें सीरियस होने की सख्त ज़रूरत है.
0: जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो अगर हम इतना भी कर लेते हैं कि हम हर खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक सिर्फ अपने घर में ही वॉक कर लें, अगर हमें बाहर का वेदर नहीं पसंद आ रहा, ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उससे भी बहुत लोग ना उनको यानी अलका सा आता है कि नहीं हम नहीं जा रहे, हम वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे. तो अपने घर की हदूद में रहते हुए या आपके घर के कोई एरिया इस तरह का बनाओ, कोई पार्क हो, कुछ भी, तो 15 to 20 minutes वॉक अगर आप एवरी डे हर मील के बाद, यानी पोस्ट मील जो वॉक है ना, उसके बड़े कोई प्रॉमिसिंग इफेक्ट्स देखे गए हैं, और बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा गया है. डायबिटीज़ का भी कंट्रोल होते हुए देखा गया है उसके साथ, और प्लस आपका जब शुगर लेवल अच्छा मेंटेन रहेगा तो वो आपको बड़ा अच्छा और हेल्दी फील होगा, और प्लस उससे वेट मैनेजमेंट भी देखी गई है. लेकिन थोड़ा मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरीके से नेचुरली डिजाइंड है, तो अगर हम वी ऑल नो कि ग्रेविटी की तरफ हर चीज़ जाती है, तो अगर हम जितना मूव करेंगे उतना हम अपनी गट को एक तरीके से वो नीचे की तरफ सारा जाएगा, यानी गट की भी ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होगी, गट कॉन्टेंट्स की. तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं अवॉइड हो सकता है उससे, यानी मूवमेंट विल हेल्प श्योरली, क्योंकि जो लोग मूवमेंट नहीं करते ना उनमें ही ज़्यादा ये एब्डोमेन के जो ये जो इश्यूज हैं, ब्लोटिंग, गैसेस और कॉन्स्टिपेशन, ये देखे जाते हैं.
1: सही.
0: प्लस ये कि जो जैसे मैंने कहा कि फूड का जो जिक्र किया, उसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सबसे पहले पता होनी चाहिए, उसमें ये कि च्यूइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम प्रॉपर च्यूइंग करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है ना, वो माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ में ओरल कैविटी में हमारे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वहीं से हमारा फूड की एब्जॉर्प्शन और एंजाइम्स निकलना, उसकी एब्जॉर्प्शन होना, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, और फिर वो स्टमक तक जाना थ्रू द फूड पाइप. ये प्रोसेस हमारा जस्ट वाइल वी आर ईटिंग ओनली, तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है. तो जितना अच्छा च्यू होगा फूड, उतना ज़्यादा आसानी होगी डाइजेशन में, और हम यानी जो एयर ट्रैप होती है ना, उसकी वजह से भी गैसेस होते हैं कभी कभार. जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं या ज़्यादा अच्छे से च्यू नहीं करते, तो एयर ट्रैप हो जाती है. तो वो एयर ट्रैप जो खाने के दौरान जाती है, वो आपके गट में जाता है, और जाकर आपको ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम मजीद करता है.
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आपने वक्त निकाला और इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की. थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया कि आपसे इजाज़त ली जाए, बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि याद रखिए, सेहतमंद गट सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है. सो अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखिए, और बाकी सभी अपडेट्स के लिए देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से दीजिए.

और ट्राई तो इन्होंने भी किया है, और इंतखाब भाई के ट्राई करने के बाद भी इनको लाइसेंस मिला नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि इनको बताना चाहिए था कि यार कल का शो सुनो। और साथ ही साथ मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास बहुत से रीजंस जो हैं वो इकट्ठा हो गए कि क्यों लाइसेंस आपको नहीं मिला होगा। उनको ये सारी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने करी या वो प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, जिसका रीज़न हो सकता है कि आपको लाइसेंस नहीं मिला, वो सब इनको बताना चाहिए था। और बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ उनको देखने के बाद कि हमारे दोस्त को भी नहीं मिला है अभी और उनको भी नहीं मिला। प्लस पॉइंट ये है मेरे दोस्त के लिए कि उसका एक वाला तो अभी बाकी है, एक जो टेस्ट है ना वो उसका बाकी है, लेकिन इंतखाब में दोनों जा चुके हैं इनका। लेकिन इनका बढ़िया है भाई, इनको पार्किंग का झंझट नहीं, इनको दुनियादारी से टेंशन फ्री, टेंशन मुक्त हैं, और ऑफिस की कार मिल गई भाई इनको। अलग से ये जाते हैं, वो अलग से एक आदमी आता है वो इनको लोकेशन पे ले लेके जाता है। मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया फिर तो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ना जो चाह रहे हो वो, देखो वही वाली बात है कि ऊपर वाला जो भी करता है वो आपके भले के लिए करता है, और कितनी भली वाली बात हो गई इनके लिए कि लाइसेंस नहीं मिला लेकिन अलग से ड्राइवर आ रहा है, बाकायदा इनको लेकर जा रहा है और जहां जाना है वहां पर लेकर जा रहा है, फिर छोड़ रहा है वापस ऑफिस। क्या बात है यार, ये वाला तो ऑप्शन अपने को भी चाहिए था लेकिन नहीं था अवेलेबल। खैर प्लस पॉइंट एक और इनके लिए ये भी है हमारे इंदु भाई के लिए कि ये ज्यादा घूमते नहीं है तो इनको कार की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ले रहे थे कार, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कार तो मिली गई है, बेस्ट है भाई साहब। इंतखाब भाई अगर सुन रहे हो कहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइसेंस नहीं मिला आपको। अब आ जाते हैं आज के अपने सवाल पे, और आज का सवाल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सवाल जो है इंसान के हैबिट को लेकर है। चलो तो शुरू करते हैं आज का सवाल, और बड़े गौर से सुनना, इसका जवाब आपको लाजमी देना पड़ेगा। मेरे सवाल अच्छा, जवाब इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि आप भी इस सवाल से कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से रिलेट करेगा। सवाल यह है कि झूठ बोलना लोगों की मजबूरी है या फिर आदत। तो कई बार हर शख्स अलग अलग होता है ना, लेकिन कई बार ना लोग इतना ज्यादा झूठ बोल जाते हैं मजबूरी में कि फिर वो धीरे से आदत बन जाती है और फिर वो पता ही नहीं लगता। तो बहुत ही ज्यादा आम बातों पर भी लोग झूठ बोलने लगते हैं, और कई बार मैंने ये भी लोगों को कहते हुए सुना, अरे यार वो मजबूरी थी ना, जब पकड़ जाते हैं ना तो वो कहते हैं अरे वो मजबूरी थी, वो फला ऐसा था, वो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मुझे बोलना पड़ा और ऐसा और वैसा। या फिर अगर दोस्त के सामने, वो खुद अपने दोस्त के सामने, आप किसी अपने दोस्त के सामने और आपके दोस्त ने किसी को चिपका दिया तो आपको भी शक होने लगता है, यार कहीं मुझसे भी कई बार इसने जो बात कही है वो झूठ तो नहीं कही है। तो इस शक में आप उस पर भरोसा यकीन करना बंद कर देते हैं, है ना। और कई बार वो झूठ बोलते हुए दूसरों से फोन पर, कॉल पर बात करते हुए, या अपने घर वालों पे, अपनी फैमिली के साथ जब रहता है, रिलेटिव के साथ रहता है, तो वो झूठ बोल देता है और फिर वो बाद में आपको एक्सप्लेन भी करता है। और ये लिटरली बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि इंसान मजबूरी में बोलता है, बिल्कुल, मतलब बचपन से कोई झूठ बोलता है नहीं है, लेकिन शुरुआत वो मजबूरी में करता है, हल्लू से वो हैबिट बन जाती है। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत इंटरेस्टिंगली कह लें, या कहें बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कमाल का अपने अंदर एक बदलाव लेकर आते हैं, और वो समझते हैं कि यार मजबूरी कहाँ है और ये कहीं मजबूरी हैबिट ना बन जाए, तो वो कई बार सच भी बोलते हैं और वो ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। तो ये मुझे जानना है, क्या ये झूठ बोलना, लगातार लोग झूठ बोलते हैं, तो ये मजबूरी है या फिर हैबिट है, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है 666-22107 पे, 666-22107 पे, कि क्या झूठ बोलना, मक्कारी करना लोगों की हैबिट है या मजबूरी, इसका जवाब देना। और दोनों में से जो भी वजह है वो क्यों ऐसा है ये भी आप जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और कॉल कर रहे हैं 918 वाले भैया। अब देखो मैं कर भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, आमतौर पर अपन कॉल क्या व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, लेकिन ठीक है कभी कभार ऐसा टॉपिक होता है कि हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं। नंबर है 4434377, 666-22107, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। और ये जो व्हाट्सएप का नंबर है ये सिस्टम

0: से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए माजरत मेरा भाई। कोशिश करें कि आप डायरेक्ट हमें कॉल करें, अगर तो वो करें 443-443-77 पे, ठीक है। सो एक बार फिर से सवाल, बड़ा ही सिंपल सा, कि लोग जब झूठ बोलते हैं तो क्या ये झूठ बोलना उनकी आदत है, हैबिट है, या फिर मजबूरी है? आपको क्या लगता है ये आप बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे। और 918 वाला भैया लाइन पर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो साहब शुक्रिया ये बताने का कि वो नंबर वो सिस्टम पे कनेक्टेड नहीं है।
0: हाँ,
1: फौरन मैंने बोला चलो लैंडलाइन पे लगाते हैं।
0: नहीं, बिल्कुल सही करा जी। आपका नाम भाई?
1: मेरा नाम फजल है।
0: अरे वाह फजल साहब, तो फजल भाई आपने सवाल सुना?
1: जी
0: जी, बताएं, जवाब बताएं।
1: जी देखिए, मजबूरी में झूठ बोलना तो फिर भी हम उसको एक्सेप्शनल में ले सकते हैं, मजबूरी की हालत ठीक है। हाँ। लेकिन आदतन झूठ बोलना इसका मतलब है कि आप फ्रॉड
0: आदमी। हाँ, ये सबसे सही लफ्ज है किसी इंसान को जो लगातार जिसकी आदत बन जाए ना, सबसे सही लफ्ज यही है, फ्रॉड आदमी हो तुम। फिर किसी भी तरह से उन पर काम नहीं कर सकते ना, आप उनके साथ दोस्ती भी नहीं रख सकते।
1: अब देखिए, इसलिए मैं फ्रॉड बोल रहा हूँ।
0: हाँ।
1: आप एक झूठ बोलने वाले पे एतबार कैसे करें?
0: एग्जैक्टली, यकीन कैसे करें? और कई बार आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, आप अपने यू नो यारों के साथ जब बैठते हैं और जब पता लग जाए कि यार ये आदमी कभी कभी झूठ भी बोलता है, तो उसके साथ काम करने पर भी, उससे किसी तरह की मदद लेने पर भी बड़ा वो यू नो अंदर से खीज आती है, यार पता नहीं इससे काम करवाएंगे या इससे जो काम कहने वाले कहीं झूठ ना बोल दे, है ना। तो कोई जो बिजनेस भी अगर कर रहे हैं और दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो यकीन कैसे करें क्योंकि झूठ बोलते हैं।
1: देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगा।
0: हाँ।
1: बट अब जैसा कस्टमर है।
0: हाँ।
1: वो मुझे बड़ा, मैं उसका बड़ा इनवॉइस बना सकता हूँ।
0: हाँ।
1: लेकिन मैं उसको साफ बोलता हूँ, भैया तू बड़ा इनवॉइस मत बना, छोटा इनवॉइस बना।
0: हाँ।
1: वो सवाल करता है, यार ये अजीब बिजनेसमैन है, ये बोलता है छोटा बना। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, तुम इसलिए छोटा बोल रहा हूँ क्योंकि तुम एक स्टार्टअप हो।
0: हाँ।
1: तुमको अभी बिजनेस की ABCD नहीं मालूम है।
0: करेक्ट।
1: छोटा अमाउंट लगाओ, अगर लॉस हुआ तो मसला नहीं होगा।
0: हाँ।
1: ठीक है, अगर बड़ा लगा दिया ना तो खुदा ना खास्ता तुम्हारे रोड पे आने की नौबत ना आ जाए।
0: हाँ, ये भी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर महंगा, और मैं भी यही करता हूँ भाई, तो मैंने अभी तक जितनी भी जगह कार दिखाया है तो एक जगह मुझे समझ में आया है जहां पर मुझे लगता है कि वो ना जबरदस्ती का अननेसेसरी चार्ज नहीं करता है, तो मैं अब उसी के पास जाता हूँ। मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे यकीन है कि यार वो बंदा जो है काम पूरा करता है और फिर जबरदस्ती का चार्ज नहीं लेता। 500-700 रियाल में, इवन बड़ा काम है तो वो 1000-1200 रियाल में खत्म कर देता है और मेरी गाड़ी टिप टाप कर देता है।
1: मुझे इसका फायदा ये होता है।
0: हाँ।
1: कि कस्टमर को मेरे पे ट्रस्ट करना बड़ा आसान होता है।
0: Exactly.
1: आप देखिए, हाँ। यानी कोई बोल रहा है कि भाई मैं 1000 देता हूँ, मैं बोलता हूँ 1000 नहीं 100 दे।
0: हाँ।
1: 100 दे।
0: हाँ।
1: काम तो 100 के हिसाब से ही होगा।
0: हाँ।
1: काम 1000 के हिसाब से नहीं होगा, काम 100 के हिसाब से होगा। मगर मैं ये बोलता हूँ, देख भाई तूने 100 अगर 100 रियाल तूने लूज किया तो कितनी तकलीफ होगी, और 1000 रियाल तूने लूज किया तो कितनी तकलीफ होगी। तकलीफ से पहले सोच।
0: हाँ, मतलब उसको कंफर्टेबल लगे, उसको ये ना लगे कि यार हम इतना खर्चा कर रहे हैं और फिर पता नहीं चीजें सही होंगी कि नहीं होंगी। होगा उतने का ही काम, 100 दोगे 100 का काम होगा, लेकिन पूरा यकीन के साथ।
1: हाँ, और एक बात मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ।
0: हाँ।
1: जो बिजनेस में नए हो या पुराने, लोग क्या समझते हैं ना, बिजनेस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं भैया साथ में लॉस भी होता है।
0: आई वाह आई वाह। और शुरुआत के 2 साल तो टेस्ट है एक तरह से, जब भी बिजनेस आप करें शुरुआत के 2 साल टेस्ट है और लॉस है।
1: जी जी, मैं स्टार्टअप्स को खासतौर पर आपके लिसनर्स में जो 1 साल या उससे कम वाले स्टार्टअप से एक मशवरा देना चाहूंगा।
0: हाँ।
1: वो ये कि भैया इसको आप 4 स्टेप्स में आपको देता हूँ, इसको हाँ। आप पकड़ लेना, अपनी अपने माथे में गुत्ती बांध के डाल लेना।
0: हाँ।
1: पहला स्टेप है लर्निंग।
0: हाँ हाँ।
1: दूसरा स्टेप है लर्निंग। तीसरा स्टेप है लर्निंग। आप मुझे एक बात बताओ साहब। हाँ। चौथे स्टेप पे आप पहुंचने के बाद अगर एल गिर गया तो क्या बचा?
0: अरे ओए होए होए होए भाई साहब, ये तो मतलब ये इस पे क्या बात है, क्या बात है। एल गिर गया तो अर्निंग। ओफ वो भाई साहब, आपने बहुत ही ज्यादा सोच के ये लाइन बोली या फिर ये वाला सीखा हुआ था? फजल साहब बताओ यार आप।
1: मैं स्टार्टअप कंसल्टेंट हूँ।
0: अरे क्या बात है, मैं पूछने ही वाला था कि आपका असल काम क्या है। अगर आप बिजनेस के बारे में अपने नहीं बताना चाहते तो बताइए कि आपकी लाइन क्या है, लेकिन आपने बताई दिया। खैर, बहुत ही जबरदस्त बताई है बात आपने, जितने भी

0: नया काम शुरू करने वाले लोग हैं, जितने भी मेहनत करने वाले बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लर्निंग लर्निंग लर्निंग.
1: जी जी, फर्स्ट थ्री इयर्स में एक चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ. पहले साल में अपने कारोबार को जेब से चलाने की हिम्मत रखो. दूसरे साल में कुछ खर्चा मिलेगा. तीसरे साल में आपको आधा मिलेगा. और अगर मेरे भाई तीन साल तुमने बिजनेस को सस्टेन कर लिया, चौथे साल में अगर तुमने मलाई नहीं खाई ना, फसल भाई अपना नाम बदल दे.
0: क्या बात है, ये एक बिजनेस कंसल्टेंट बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को. फसल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, रेगुलर कॉल करते रहिएगा. बहुत शुक्रिया मेरा. थैंक यू सर, थैंक यू. क्या बात है, ये देखो इससे ये होता है सवाल पूछने से और कॉल अटेंड करने से कि हमें कई बार बहुत ही अच्छी राय मिल जाती है. सो अब आते हैं एक बार फिर से सवाल पर और आपके जवाब पर. सवाल बड़ा सिंपल सा है कि झूठ बोलना लोगों की आदत है, हैबिट है या फिर मजबूरी, इसका जवाब आपको देना है. सलाम आया है श्याम साहब का, वालेकुम अस्सलाम. फिर एक और ये मैसेज है, ये है किस भाई का, फराज साहब का है. और फराज साहब कहते हैं कि हैबिट है, पहली बार इंसान अगर मजबूरी में झूठ बोल दे तो फिर उसको आदत हो जाती है. इट्स अ हैबिट नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स. ये बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी 50-50 वाला चांस है. शुरुआत में क्या, कई बार इंसान इवन 10 में से 5 बार या 4 बार अगर ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता बच जाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी मेरे झूठ बोलने, एक तो झूठ बोलने से तकलीफ हो रही तो मत बोलो, लेकिन अगर झूठ बोलने से ऐसा हो रहा है कि सच बोलने से तकलीफ हो जाए और झूठ बोलने से उसको एक रास्ता मिल जाए तो ठीक है, या एक रिश्ता जो है वो पनप जाए या बना रहे झूठ बोलने से, तो वहाँ तक तो ठीक है. लेकिन क्या है कि कई बार अक्सर इंसान बहुत नॉर्मल बातों में भी, जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें भी, वो बहुत आसानी से झूठ बोल लेता है. वहाँ पर नुकसान होता है और वहाँ पर इंसान जो है धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, वो मजबूरी हट के फिर आदत बन जाती है और वो आदत पे ही काम करता है. फिलहाल एक और मैसेज है, सलाम मुबीन साहब का, वालेकुम अस्सलाम तमाम लिसनर्स को सलाम. फिर एक और मैसेज है, किस भाई का है, सलाम मेरा भाई, नाम है इनका आतिफ और कहते हैं कि आम तौर पे इंसान मजबूरी से शुरू करता है फिर आदत बनाता है, आदत बना लेता है. ठीक है, मुझे लगता है कि झूठ की टेंडेंसी यही है कि एक बार आपने शुरू किया फिर वो आदत बन जाती है ना, क्योंकि आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके झूठ बोलने से कई बार हर मैटर आपकी तरफ बहुत आसान हो जाता है ना. अगर आपके झूठ बोलने से आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आसान हो जाती है. इवन ऑफिसर्स में भी झूठ बोलना लोग यहीं से शुरू करते हैं ना, अरे वो फलाने की तबीयत खराब है, छुट्टी चाहिए, मिल जाती है छुट्टी, है ना. फिर उसके बाद आप एनुअल वेकेशन पे, कई बार अरे वो सर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, फिर आप ऑफिस लेट पहुंचे, अरे वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, आपने झूठ बोला, आप बच गया, हालांकि आप घर पे ही थे. लेकिन यहाँ पर एक ये भी है ना कि अगर आपने सच बताया ऑफिस में कि अरे हाँ वो मैं देर से उठा, फिर उसके बाद मैं जानबूझ के बैठा भी रहा और उसके बाद मैं ऑफिस लेट से आया, तो ये वाला एक्सक्यूज तो बॉस सुनेंगे नहीं लेकिन ट्रैफिक वाला एक्सक्यूज बॉस सुन लेगा. तो यहाँ पर गलती किसकी है, ये भी एक पॉइंट है ना. एक तरह से देखा जाए तो उसी की गलती है जो लेट से उठा और लेट ऑफिस आया, लेकिन सच बताएंगे तो सूते जाएंगे, झूठ बताएंगे तो बच जाएंगे. तो जाएं तो जाएं कहां, बोले तो बोले क्या, वाह मेरे दोस्त वाह. फिलहाल 6:17 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके बाकी मैसेज की तरफ हम बढ़ेंगे. लेकिन फराज भाई ने एक और बात लिख दी है, झूठ बोलने से टेम्परेरी और इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, बस उस झूठ को प्रूफ करने के लिए 100 ऑफ झूठ बोलने पड़ते हैं. हाँ, जब झूठ बोलने के बाद आपका रेगुलर बेसिस पे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बोल दिया कि अरे ऑफिस में बोला बॉस को कि मैं सलवा रोड से आ रहा था और मुझे लेट हो गया है, बॉस कहेगा अरे मैं भी तो सलवा रोड से आया हूँ और कोई ट्रैफिक नहीं था वहाँ पर, कितने बजे आए तुम, भाई 9:45 बज रहे थे, 9:45, मैं भी तो 9:45 बजे अभी अभी बस आ रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ पर ट्रैफिक था बताओ, अरे वो मैं घर से निकला तो अरे वही रूट तो मेरा है, अरे वो हाँ मेरी गाड़ी भी थोड़ी खराब हो गई थी, आप बेटा आप फंस गए तो ये हो जाता भाई साहब, आप बहुत ज्यादा नेक बनते ना, जो वो होता है सियाना कौवा जो होता है ना हमारी तरफ कोई और है, वो कोड़े वाला आदमी बैठा, वो मुझे सूद देगा, तो वही वाली बात है कि सियाना कौवा कच्चा आलू खाता है यासर दसाई की आवाज में ये बेहतरीन सा गाना सुनते हैं अपन, वापिस आएंगे कुछ ही देर में और फिर आपके जवाब की तरफ, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी.

0: क्या बात है शाह घोषाल, जुबिन नौटियाल की आवाज में ट्रैक सुना आपने हबीबी के नाम, और कितना परफेक्ट सवाल पे ये गाना एडजस्ट हुआ है। हमारा दोस्त हबीबी, जो हमारा दोस्त है, झूठ बोलता है, फरेब आदमी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: अपने दोस्त से पूछो, कहाँ हो भाई, कब तक आ रहे हो? बस अभी आ रहा हूँ, दो मिनट लगेगा। अरे बेड से उठा नहीं होता आदमी, कह रहा बस दो मिनट लगेगा। अरे तुम्हारी बात का आचार। 6:28 हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे। जो नए लोग हैं, आज का सवाल उनके लिए, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या झूठ बोलना लोगों की आदत है या मजबूरी? झूठ बोलना, मकारी करना, गलत बात कहना लोगों की आदत है, हैबिट है, या फिर मजबूरी है कि मजबूरी में लोग झूठ बोलते हैं? ये आपको बताना है। नंबर है 666-22-107, क्योंकि कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, 443-443-77। फिलहाल 443-443-77 वाला जो नंबर है, ये लैंडलाइन का सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं कहा ये वाली बात भी जरूरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। नसीम भाई का मैसेज आया, दादी अम्मा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम चचा, क्या हाल है? हमें इधर चीचा चलता है। नसीम साहब कहते हैं कि फजुमिया अच्छा आइडिया दे रहे हो। मैं आइडिया कोई नहीं दे रहा भाई, मैं बस बात कर रहा हूँ। अभी एक कॉल आई है, उसको उठाते हैं। और 082 वाले जो भी भैया हैं, प्लीज 443-443-77 ये है नंबर। कौन है कॉल पर? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
3: क्या हाल है भाई?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, नूर बात कर रहा हूँ।
0: जी नूर साहब, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत।
0: नूर भाई, कल के टॉपिक के बाद आज भी आपके टॉपिक, इस टॉपिक पर आपके दिए हुए, आपकी पहुंचाई हुई रोशनी जो है वो पहुंचनी चाहिए लोगों तक, पहुंचाइए रोशनी।
3: हमारी रोशनी तो यही है इस मामले में कि 99.99999% जो है ना, हरू भरू झूठ बोलते हैं।
0: हर इंसान झूठ बोलता है। तो ये मजबूरी में कर, ये मजबूरी में कर रहा होता है या फिर उसकी आदत हो चुकी है?
3: बहुत कम, यानी कोई करोड़ों में एक होगा मजबूरी वाला, नहीं तो ज्यादातर लोग आजकल, यानी फैशन बन गया है,
0: आम बात हो गई है झूठ बोलना है।
3: हाँ, झूठ के बगैर होता ही नहीं, गुजारा ही नहीं होता है। सिस्टम वक्त हालात ऐसे बन गए हैं कि मजबूरन झूठ बोलना ही पड़ता है ना। आप कहाँ गए थे? अगर किसी को बोलोगे भाई मैं दुआ गया था, यहाँ गया था, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं ले गए।
0: हाँ अच्छा, लोगों की तोहमत जो है ना, बड़ा तोहमत भी डालते हैं, इसके वजह से भी आम तौर पे इंसान झूठ बोलने लगा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पर घूमने गया हूं और दोस्त ने पूछा कि कहाँ पर हो, तो मैं उसे ये बोलूंगा हाँ घर पे ही है, बस आसपास ही है। उसको घूमने के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं, फिर वो ये कहेगा अच्छा मुझे नहीं लगे। अरे यार, कभी कभार अकेले भी मन करता है भाई, सच बोलेंगे तो तुम मुझको सवाल कर दोगे। तो ये सवाल से बचने के लिए या तोहमत से बचने के लिए अपन थोड़ा झूठ बोल देते हैं, ऐसा ना?
3: बिल्कुल, आजकल इसके बगैर गुजारा ही नहीं है ना।
0: आए, आए, किता, किता, सही बात भी और बुरी बात भी है यार, ये कि इसके बगैर गुजारा नहीं है।
3: उन्हें गुजारा नहीं है ना, वक्त हालात हर चीज की जरूरत होती है ना।
0: हाँ, तो नूर भाई, आप जब कभी झूठ बोलते हैं तो वो मजबूरी में कह रहे होते हैं या फिर अब आपकी भी आदत बन गई है? डेंजर सवाल,
3: आदत है ना भाई, क्या करें, नहीं होता ना, उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा है ना। जिसलिए खाना कैसे जरूरी है, सांस लेना कैसे जरूरी है, आजकल के वक्त हालात में झूठ बोलना बिल्कुल उतना ही जरूरी है।
0: आए आए, ये अरे कितने सीना चौड़ा करके, जरूरी है भाई साहब,
3: तो भाई खाना नहीं पचता है। हकीकत है ना, बाकी मुनाफकत करे नहीं। मैं तो भाई सीधा साधा बंदा हूँ, मैंने जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं है। ये जो बोल रहा है सबसे बड़ा झूठ वही है।
0: ये लाइन जो भी बोलता है सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं सीधा साधा बंदा हूँ भैया, गलत बात नहीं बताऊंगा आपको। और ये बात बता के ही वो गलत कर रहा होता है।
3: हाँ ना, हमारी जुबान में, सिंधी में कहावत है, सच तो झूठो नच।
0: क्या

0: सच ते जूठो नज।
1: क्या है मतलब इसका?
0: मतलब जो सच बोलता है ना वो सीना छोड़ा करके घूमता है।
1: अरे भाई क्या बात है, ये तो
0: ये कहावत भी 90 के बाद खत्म हो गई है, ये बस कहावत ही रह गई।
1: अच्छा एक और चीज मैंने देखी है, जो आदमी सच बोलता है ना वो बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हो जाता है, फिर वो मतलब वो ऐसा होता है कि ठेंगा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो करना है करो। सच बोलने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, झूठ बोलने वाला आदमी ना थोड़ा सा मीठी जबान का इस्तेमाल करता है। तो हम इसलिए
0: 1970 में जो पैदा हुए थे वो है, जो 1990 के जो बाद हमारे जैसे जो पैदा हुए ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है।
1: आया है, मैं कहां पर अपना मुंह छुपाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, और पीछे से कॉल आ रही है, मैं वो भी कॉल रिसीव करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई आपकी आपकी जवाब के लिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: इलियास बोल रहा हूँ।
1: इलियास साहब कैसे हैं?
2: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे?
1: बढ़िया इलियास भाई, झूठ मत बताइएगा, सच सच बताइएगा, कहाँ रहते हैं आप? इस वाले पे झूठ नहीं चल सकता।
2: आजकल
1: दोहा में ही है आप? ऐसा मतलब मुलाकात ही नहीं हो रही है यार आपसे, व्हाट्सएप वगैरह पे आ नहीं रहे?
2: नहीं नहीं यार, वो दिन थोड़ा छुट्टी गया था, फिर उसके बाद थोड़ा काम में बिजी था,
1: आई तो
2: इसलिए आज लगा था।
1: झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है।
2: पहली बार मैं कैप्शन से ही शुरू कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या करें, जैसे अभी बताया। अब एग्जाम्पल मैं एक घंटा पहले ही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त को मैं एक महीने से ट्रेस कर, मीन्स उसको बता रहा था कि भाई मेरे को जो लिया था वो दे दे दे दे बोल के, तो वो सुन नहीं रहा था। जब मैं उसको बोला कि भाई मेरे को थोड़ा अर्जेंट में आगे से काम है, मेरे को एक डेडलाइन है उस पे पेमेंट करना है, तो जब जाके वो माना के हाँ मैं ये नहीं ये डेट को दूंगा, लेकिन जब तक वो मान ही नहीं रहा था।
1: हाँ तो देखो ये कितनी गलत बात है।
2: अपोजिट वाले को भी ना, जब तक हमारी जरूरत नहीं बताएंगे, अगर हमें देकर हमें ही झूठ बोलना पड़ रहा है।
1: अरे यार ये देखो ये तो मैं कह सकता हूँ इलियास भाई की तो मजबूरी थी कि हम पैसे मांग रहे नहीं दे रहा अगला आदमी, तो हमें बनानी पड़ी बात कि यार अगले को पेमेंट करना है ना। ये एक और मसला है जहां पर हमें मतलब हमारे माशरे को भी काम करने की और लोगों को काम करने की जरूरत है कि यार जो चीज हमारी है उसको मांगते हुए भी अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो ये फिर हम ही आदत बना रहे हैं ना, सामने वाला भी तो कुछ ना कुछ।
2: लेकिन लास्ट दो महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लाइट चल रहा था मसला के, ओके ओके दे देंगे नो प्रॉब्लम है। अभी इस बार में मतलब कि मेरे को थोड़ा इस डेट पे मेरे को देना है आगे, कुछ ना कुछ प्लान करो, तो ये डेट नहीं वो डेट में हो जाएगा
1: कुछ,
2: ये फाइनल पॉइंट आया।
1: कुछ तो भाई मुझे लगता है कानून ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मन करता है कि कानून ही हाथ में ले ले। हमारी तरफ डायलॉग है ना, कानून हाथ
2: में मतलब लेंगे तो भी आप उसको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद एक डेट मिलेगा, कानून भी हाथ में नहीं आता, तारीख पे तारीख के बाद ही कानून आता है।
1: हमारे मूवियों में डायलॉग चलता है ना, जब हीरो एकदम लास्ट में पहुंच जाता है और विलन को मारने वाला होता है, एक पुलिस पीछे से पहुंचती है, रुक जाओ राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अरे मन तो करता है जब तक दूसरा
2: एंड तक अरेस्ट नहीं कर पाती, जब मूवी एंड हो जाए उसको अरेस्ट करने के बाद मूवी एंड होता है, लेकिन एक दो महीने से ट्राई कर रहे थे कुछ नहीं हुआ, अभी ये पॉइंट लगाने के बाद हाँ चलो कुछ ना कुछ मिल गया।
1: नहीं देखिए मैं तो यहाँ पर ये कहूंगा कि आपने रिश्ता बचा लिया, और यही वाली बात है कि अगर आप झूठ बोलकर रिश्ता बचा रहे तो बढ़िया है। आपने झूठ इसलिए बोला होगा कि अपने वाइफ को गोल्ड दिलाना है, अगर नहीं दिलाया तो वो जो है लड़ाई झगड़े करेगी, तो वो रिश्ता बचाना है, तो उस चक्कर में एक झूठ बोला अपने दोस्त से। लेकिन क्या करें, तो ये दूर का विजन है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
2: और एक रहता है काम पे, रहता है काम पे थोड़ा, जैसे कि अभी बॉस ये बोल रहा है ये पूछ रहा है, तो टारगेट अचीव करने के लिए ये नहीं तो ये तो चाहिए, जब तक उन लोगों को वो नहीं बोलेंगे वो भी नहीं करेंगे।
1: भाई मुझे लगता है ऐसे दोस्तों से तो भाई किनारा कर लेना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, उन दोस्तों के बगैर काम भी तो नहीं चलता,
2: काम भी नहीं चलता। पहली बात हम यहाँ वो वहाँ और कंपलसरी चाहिए, थोड़े बहुत काम ही निकलते हैं,
1: काम भी निकलते हैं,
2: इसलिए हम भी एडजस्ट हो जाते हैं, वो भी एडजस्ट हो जाते हैं,
1: वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, ओके। तो ये देखो इलियास भाई ने कई सही बात काफी कही है कि मजबूरी है यार, नहीं बताते तो वो नहीं देता था, और जब नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे। फिलहाल 636 हमारे स्टूडियो की घड़ी पे, बाकी लोगों के मैसेज ले लेते हैं। 082 वाले भैया हमारे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल ना करो मेरा भाई, क्योंकि हम उठा नहीं पाएंगे। गुड एग्जांपल।

0: फराज साहब ने कहा है, यूसुफ भाई कहते हैं, फजील ये क्वेश्चन दोनों लोगों पे अप्लाई होता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में बोलते हैं और कुछ तो बस ऐसे ही आदत होती है, खामखा के होशियारी झाड़ते रहते हैं झूठ बोल के। मैं भी ऑफिस में बोलता हूँ लेकिन मजबूरी में बॉस के कहने पे कुछ लोग कॉल करके पूछते हैं पेमेंट के लिए। बीइंग एन अकाउंट्स पर्सनल तो हमें कहना पड़ता है द चेक इज़ अंडर सिग्नेचर वेयर एज वी डिडंट प्रिपेयर द चेक एट ऑल, ऐसे हमारा बॉस कहता है झूठ कहने के लिए। अल्लाह से माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि ये झूठ का अजाब जो है वो बॉस को जाए, मुझे नहीं। हाँ यार, मतलब क्या कर सकते, कुछ तो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर तो आप तैयारी नहीं कर सकते कि हम कहें तो कहें क्या, तो मजबूरी है कि फिर वो तो ऑप्शन सिर्फ झूठ के पास ही आके रखता। 082 वाले भैया 443-443-77 इस पर कॉल कर लो मेरा भाई, 443-77-443-77 क्योंकि ये व्हाट्सएप वाले पे आप कॉल कर रहे हैं। इस्माइल साहब कहते हैं सलाम फजू, वालेकुम अस्सलाम, लोग बोलते हैं झूठ क्या, शुरुआत में क्या लिखा है, खरिया लोग झूठ बोलते हैं और अपने भी तो लाए दो गेम में हमें सिखाया। अरे मेरा भाई, मैंने सिखाया झूठ नहीं सिखाया, मैंने सवाल का गलत जवाब बोलने सिखाया, मैंने लफ्ज झूठ इस्तेमाल ही नहीं किया भाई, मैं भी चिलाक बंदा हूँ भाई। मुझे पता था एक दिन ये बैक फायर करेगी, तो मैंने कभी नहीं कहा कि लाई दो मैं झूठ बोलूं, मैंने हमेशा कहा कि गलत जवाब है आना। अब गलत जवाब में गलत जवाब ही आएगा, झूठ तो लफ्ज़ है ही नहीं। इस्माइल साहब मुझे पता था एक दिन ये बैक फायर करेगा। मुबीन कहते हैं सलाम, और उसके अलावा एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी हर दूसरी बात झूठ होती है। अरे यार अरबाज भाई, बहुत दिनों बाद आपने ये बात सच बोली होगी, अगर आपकी हर दूसरी बात झूठ है तो ये बात तो सच है जो आपने अभी लिखी है अरबाज भाई। आगे है अस्सलाम वालेकुम, झूठ बोलना आदत ही मजबूरी नहीं, सच्चा वाला अच्छा है झूठ सॉफ्ट वाला से, सच्चा एरोगेंस वाला अच्छा है झूठ सॉफ्ट वाले से। हाँ मतलब ये वो वाली बात है कि जो झूठ बोलता है और जबान मीठी रखता है वो बेकार आदमी है, सच्चा आदमी जबान पे कड़वाहट लेकर घूमे वो बेहतर है। ये बात भी भाई साहब देखो 100% की है। इस्माइल साहब कहते हैं अच्छा प्राउडली फख्र से, अरे यार फखरिया लिखा है, फखरिया पे मैं अरे यार क्या लैंग्वेज है, प्राउडली ही लिख देते मेरा भाई लिखा है बाद में। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन बात कर रहा है?
1: समीर हमजा बात कर रहा
0: हूं। समीर,
1: अमीर, अमीर, AMEER।
0: अरे वाह अमीर साहब, कैसे हैं मेरा भाई, आपके नाम में ही अमीरी है
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं भाई कैसे हैं, ठीक है?
0: मैं बहुत बढ़िया, आपकी दुआ है। आज का सवाल हमने किया, आपने क्या कहना है इस पे?
1: देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही चाहता हूँ कि झूठ बोले ही मत, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि झूठ बोलना पड़ जाता है।
0: हाँ तो जो आपने पहली बात कही ना, झूठ बोले ही ना, वो सब यही सोच रहे होते, लेकिन सिचुएशन हर बार ऐसी होती है कि मजबूरी में इंसान बोल जाता है।
1: क्या कर सकते हैं, यही है बस, लेकिन ये है कि झूठ मत बोले। हाँ। सच बोलेंगे तो एक ही दफा बोल दें। हाँ। और खलास, आप आजाद हैं, आपको कोई नहीं टच कर सकता है भाई, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा,
0: देखा जाएगा। लेकिन भाई सवाल ये है कि आदत है झूठ बोलना है या लोगों की मजबूरी है? आपने मजबूरी पे तो बात कह दी, शुरुआत कहाँ से होती है?
1: आदत है, आदत है लोगों,
0: आदत है, अब झूठ बोलना आदत है, शुरुआत मजबूरी से होती है,
1: मजबूरी, लेकिन आदत बन गई है। बातों बातों में हम मतलब 100 वर्ड बोलते हैं उसमें 50 वर्ड तो झूठ के ही आते
0: हैं। हाँ ये भी काफी हद तक सही है कि शुरुआत जो है वो मजबूरी में करते हैं और फिर उसके बाद आदत चस्का लग जाता है, लोगों को मजा आने लगता है, लोगों को पता चल जाता है ना कि झूठ बोलना मोस्टली आपके फेवर में जा रहा है, तो आप हमेशा झूठ बोलना ही शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके फेवर में जाता है। और फिर ना झूठ बोलना एक तो ऐसी वाली बात भी है ना कि झूठ बोलना ऐसा नहीं है कि हर कोई बोलेगा, इसमें दिमाग भी लगता है, तो दिमाग बहुत लगाने लग गए हैं और फिर उनको बहुत प्लेजर मिलता है झूठ बोलने में, मजा आने लगता है और वहीं पर चीजें गलत होने लगती हैं।
1: वही तो बात है ना, एक झूठ बोलते हैं उसके बाद उसको छुपाने के लिए और झूठ बोल देते हैं, उसको छुपाने के लिए फिर और झूठ बोल देते हैं।
0: सही, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं दोस्तों जहां पर आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहां पर झूठ बोला तो फिर आप बड़ी मुसीबतों में भी फंस सकते हैं, जैसे कि कोई केस वगैरह है, कोई किसी बात पे आप गवाही वगैरह दे रहे हैं, वहां पर अगर आपने अपने प्लेजर का काम लिया तो वहां पर फंस जाओगे आप। तो ये केस जो है बड़ा नुकसान। कई बार एक दो सिचुएशन मेरे साथ अपने इंडिया में हुई है, तो जहाँ पर अब्बा जो है सवाल करते थे और मुझे पता था कि अगर, क्योंकि अब्बा बहुत चालाक थे मेरे, वो सवाल के ऊपर एक सवाल दाग देते थे, तो मुझे पता था अगर झूठ बोलूंगा तो सूद दिया जाऊंगा, अगर पकड़ में आए तो, नहीं पकड़ में आए तो ठीक है, तो मैं जानबूझ के सच बोल दिया करता था। और मैं कहता था कि हाँ ये मेरी गलती, जैसे घर के किसी मामले में बहन से लड़ाई हो गई, कुछ बात हो गई, मुझे पता था कि अगर पकड़ में आ गए तो ज्यादा सूते जाएंगे, सच बोल दो तो दो चार हाथ में काम हो जाएगा, क्योंकि अब्बा को झूठ से ज्यादा नफरत थी।
1: ऐसा ही।
0: तो मैं कहता था कि मेरी गलती है, मैंने मैंने मैंने लड़ाई की शुरुआत करी, बहन को दो लाफे जो मारे वो मैंने एक्स्ट्रा मारे, तो अब्बू तीन देते थे लेकिन दस से बच जाता था मैं।
1: वो फिर वो बहन पे गुस्सा सारा निकलता था, जब उसे मार पड़ती तो हाँ तेरी गलती है, हालांकि झूठ हमने बोला।
0: हाँ तो ये भी है, और मेरे तो अम्मा अब्बा दोनों बहुत चालाक थे यार, दोनों झूठ पकड़ लेते थे और फिर ज्यादा कुटाई होती थी। चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खैर इंशाल्लाह फिर बात होगी फिर किसी टॉपिक पर।
1: जी पूरे दो साल से सुन रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल की है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच मेरा भाई, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू।
0: दो साल बाद कॉल करी, दो साल से भाई आपने बैलेंस नहीं डलवाया था क्या? ठीक है, मतलब मौका नहीं मिल पाया, कहीं ये बात भी झूठ तो नहीं बोल रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मजीद बातचीत करेंगे FM 107 पे।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
5: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं Unplugged Evening with RJ Fazil.
2: Only on FM 107, दिल से देसी.
3: FM 107 दिल से देसी और 6:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में. और फहद जमाल भाई का मैसेज आया है मुद्दे पर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फजील है. आप ए के बाद आर लगा के मेरे नाम को फर्जी बना दे रहे हैं. मेरा भाई फजील लिखा फजील FAZEELIL जो आपको लगाना है. बाकी आगे लिखा है कि भाई वो झूठ जो दो लोगों के बीच सुलह करा दे वो ठीक है, बाकी आजकल लोग अपना असल चेहरा छुपाने के लिए हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं. सलामत रहें आप फहद जमाल. भाई साहब ये तो भिगो भिगो के मारा है उन लोगों को जो झूठे हैं, जो मकार हैं. फिर अरबाज कहते हैं और कुछ लोग सर बहुत ज्यादा पहनते हैं, वो क्या होता है? वो भी झूठ में होता है. ये वाली लाइन किस मुद्दे पर लिखी है मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन सही लिखा होगा जो लिखा होगा भाई साहब ने, है ना. अब आगे बढ़ते हैं. अब लिखने का वक्त आ गया. अब एक टॉपिक जिस पर हमने बात करी उस पर खत लिखने का वक्त आ गया. और डियर लायर्स लिखने के बाद एक खत लिखिए और क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी क्या है. एक लेटर में अगर आपको लिखना हो, एक खत में आपको लिखना हो कि क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए लायर्स को, झूठे लोगों को, मक्कार लोगों को, ये आप बताएं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107. तो खत जब लिखिएगा लिखिएगा डियर लायर्स, फला फला बातें हैं जिसकी वजह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. और फिर उसे भेज दीजिए 6662-2107 पे, 666-22-107 पे, ठीक है. आपके खत का इंतजार कर रहे हैं, आपकी बात का इंतजार कर रहे हैं. और फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपके खत और आपके मैसेज जो बाकी हैं वो भी पढ़े जाएंगे. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं.

0: ये खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना राहत सुनिधि और सुजैन की आवाज में FM 107 पे ये खूबसूरत सा ट्रैक दिल सदाई से
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: तो भाई 6:53 हमारे स्टूडियो की घड़ी में जल्दी से आपके मैसेज पढ़ लेते हैं और सबसे पहला खत आया है और ये पता नहीं सही है बात क्या लिखी है सलमान भाई ने मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्होंने दो बातें कही हैं, एक तो जो लाइन लिखी है वो अलग है और फिर जो ऑडियो भेजी है वो अलग है। ऑडियो तो सुना नहीं सकते लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें चीजें भर रहे हैं अगर आप हैदराबाद से हैं। सलमान भाई ने लिखा है डियर सच्चा सच बोले तो झूठे की पता नहीं क्या है अगली लैंग्वेज इसमें कोड़े वाले कोड़े बरसा सकते हैं इसलिए मैंने बोला नहीं है, बाकी हैदराबाद वालों को पता है क्योंकि ये वहां पर बहुत आम कहावत है सच्चा सच बोले तो झूठे की --। और मतलब बुरा वाला नहीं है, नॉर्मल है, जैसे जूते फट जाते हैं ना वो वाली लैंग्वेज है कि जूता फटा ऐसा। इन्होंने फिर बाद में सच की जगह झूठ वर्ड डाल दिया है, झूठा झूठ बोले तो --। बाकी नहीं बोलना चाहिए, इनने ये बात लिखी है और लिखा ये कहावत है हमारे इंडिया हैदराबाद में सोशल लीडर सलमान हामिद आए हाय क्या बात है। फिर उसके बाद फहद जमाल लिखते हैं डियर रिश्तेदारों अपने नंबर बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा मत लो क्योंकि आपका अपना आपके अपने नंबर बढ़ाने के लिए बोला गया एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमेशा मुखलिस रहें जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। और क्या बात है, और एक भाई ने भी बहुत ही गजब की बात लिखी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। इनका नाम है नाम कहाँ गया भाई, ऊपर सर्च करना पड़ेगा। अमी

0: आमिर इनका नाम है, आमिर नहीं, आमिर दूसरे वाले थे जो कॉल कर रहे थे, आमिर इनका नाम है, कहते हैं डियर लायर्स तुम्हारा झूठ, डियर लायर्स तुम्हारा झूठ, सच बोलो, हाँ सच बोलो ताकि चेहरे पे नूर आए। ठीक है, तो ये मुझे बड़ा बेस्ट लगा है कि सच बोलो ताकि चेहरे पर नूर रहे, और ये बात बहुत सही है, जो सच बोलते हैं और जो ईमानदार रहते हैं ना उनके चेहरे पे एक अलग सी शिकन जो है वो नहीं दिखती है, झूठे लोगों के चेहरे पे शिकन, टेंशन, अजीब से लगते हैं, वो चीज दिखती है। फिलहाल आगे एक और मैसेज है, ये नाम है अबरार का, डियर लायर सुधर जाओ, झूठ से किसी का, झूठ से किसी का फायदा नहीं हुआ है। ओके, फिर एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम, अस्सलाम डियर लायर, सब अपनों से बोला झूठ अगर पकड़ा जाए तो दिल दुखता है, नाम क्या भाई, ये वाली लाइन तो बहुत ही कर रही है। इनका नाम है मोहसिन, ओके मोहसिन भाई, फिर तौफीक भाई ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, इस्लाम साहब लिखते हैं डियर झूठो झूठ ना बोलो क्योंकि कौवा काटेगा, अरे वाह ये कोई बात है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मैसेज है, डियर लायर्स झूठ से रिश्ते खराब हो, कितने छोटी छोटी बात पे कितनी बड़ी बड़ी बात लिख दी है। इनका नाम क्या है, नाम है, अब यार नाम लिख दिया करो भाई, कुछ लोगों का नाम तो सामने रहता है लेकिन कुछ लोगों का नाम मिस हो जाता है। फिलहाल 6:56 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, इजाजत लेने का वक्त आ गया है क्योंकि इस वक्त ये वक्त है अजान का, और कुछ ही देर में अजान के बाद आप लाइव न्यूज बुलेटिन सुनेंगे FM 107 पे, सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: इस दुनिया में रहते हुए इंसान को हर हालत में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदे की आजिजी बहुत पसंद है और वो चुपके चुपके उसे पुकारने वालों और आजिजी से उससे दुआ मांगने वालों को अपनी रहमत से ढांप लेता है। याद रखिए कि अल्लाह के खौफ और उससे उम्मीद के दरमियान जिंदगी बसर करना मोमिन की निशानी है। अल्लाह ताला हर बुराई और शर से और नागहानी आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107
2: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोहा कतर में शाम के 7 बजे हैं। समाज के लिए फरकान शाही से ताज़ा तरीन खबरें इब्तदा में पेश खिदमत हैं। अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन और बैंक के सदर के साथ से मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा तआवुन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वजारत तालीम और आला तालीम ने तालीम और तरबियती क़्यादत में मेयार और उम्दगी के अरब मॉडल प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। और फिलिस्तीनी सदारत ने मस्जिद अक्सा अल-क़ुद्स और उसके मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ नई सूरत हाल मुसल्लत करने की कोशिशों से खबरदार किया। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। समाज की उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया।

0: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
1: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
0: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझ कर उठाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड खुश आमदेद फ्यूचर करियर में, वो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं उन करियर्स की जो हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे फ्यूचर वर्कफोर्स को शेप कर रही हैं। मैं हूं आपकी आरजे महावश। लिसनर्स, जरा सोचिए, अगर सुबह आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, घर में लाइट्स ऑन करते हैं, स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, एनर्जी। हमारी मॉडर्न लाइफ एनर्जी के बगैर इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल कर रहे हैं। कई डेकेड से दुनिया ने इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ऑयल, नेचुरल गैस और कोल जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया। इन एनर्जी सोर्सेज ने दुनिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन वक्त के साथ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस भी सामने आए। इसीलिए दुनिया के बहुत से कंट्रीज अब एनर्जी के नए और क्लीनर सोर्सेज की तरफ भी मूव कर रहे हैं, और यहाँ से शुरू होती है हमारी आज की डिस्कशन। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी हासिल करना जो नेचुरली रिप्लेनिश होते रहते हैं। इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज शामिल हैं। आपने सोलर पैनल्स अपने आसपास जरूर देखे होंगे, शायद आपने विंड टर्बाइंस की पिक्चर्स देखी हों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टेक्नोलॉजीज के पीछे कितने डिफरेंट प्रोफेशनल्स काम करते हैं? एक सोलर प्रोजेक्ट सिर्फ सोलर पैनल से नहीं बनता, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो सिस्टम डिजाइन करें, टेक्नीशियन चाहिए होते हैं जो इक्विपमेंट इंस्टॉल और मेंटेन करें, एनर्जी एनालिस्ट डेटा को स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स पूरी टीम और प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को एवोल्यूट करते हैं, और रिसर्चर्स फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर काम करते हैं। यानी रिन्यूएबल एनर्जी एक सिंगल करियर नहीं है, ये करियर्स का एक पूरा इकोसिस्टम है, और इसीलिए आज का एपिसोड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पसंद है तो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। अगर आप एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के इश्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस या सस्टेनेबिलिटी आपको एक डिफरेंट पाथवे दे सकती है। अगर आपको डेटा और टेक्नोलॉजी पसंद है तो एनर्जी एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं। और अगर आप लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके लिए सूटेबल करियर हो सकता है। तो लिसनर्स, आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, हम एक्सप्लोर करेंगे

इस फील्ड में फ्यूचर के कौन सी जॉब्स डेवलप हो रही हैं, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना चाहिए, कौन सी स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनर्जी इंडस्ट्री को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है और कतर में यंग पीपल के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं। और अब वक्त है आज की वर्कफोर्स हेडलाइन का। दुनिया के एनर्जी सिस्टम्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जब कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस पर फोकस करती हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, रिसर्चर्स और सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स सब फ्यूचर एनर्जी वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं, ये जॉब्स और स्किल्स का भी चेंज है। और जो स्टूडेंट्स आज अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं, वो फ्यूचर के इस चेंजिंग वर्कफोर्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है आप सबके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का। क्या आप ऐसे करियर में काम करना पसंद करेंगे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करे और साथ ही फ्यूचर को पावर करने में भी अपना रोल अदा करे? जरा सोचिए, क्या आप फ्यूचर में सोलर एनर्जी सिस्टम डिजाइन करना चाहेंगे? क्या आप विंड टर्बाइन्स के साथ काम करना पसंद करेंगे? क्या आप एनर्जी डेटा को एनालाइज करके कंपनीज को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करना चाहेंगे? या फिर आप फ्यूचर की ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च करना चाहेंगे? आपका जवाब जो भी हो, एक बात क्लियर है, एनर्जी का फ्यूचर बदल रहा है और इसके साथ फ्यूचर करियर्स भी बदल रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, फ्यूचर करियर की आज के एपिसोड में हम रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया को और करीब से एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कल की एनर्जी इंडस्ट्री में आपके लिए कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। मैं हूं आवश, आप सुन रहे हैं फ्यूचर करियर। लिस्टनर्स, अब वक्त है हमारे शो के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जॉब्स फॉर टुमारो। आज हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी करियर्स की। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स या ग्रीन टेक्नोलॉजी का तस्वीर आता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ मशीन्स और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, इसके पीछे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और बहुत से दूसरे प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें ऐसे नेचुरल सोर्सेस से एनर्जी हासिल की जाती है जो दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में कंटिन्यूसली अवेलेबल होते रहते हैं। इनमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज शामिल हैं। और जैसे जैसे दुनिया क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, इन फील्ड्स में नए करियर्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में कौन कौन से करियर्स फ्यूचर में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी इंजीनियर की। सोलर एनर्जी इंजीनियर्स सोलर पावर सिस्टम्स को डिजाइन और डेवलप करते हैं। उनका काम सिर्फ सोलर पैनल्स लगवाना नहीं होता, वो ये भी देखते हैं कि किसी लोकेशन पर सोलर सिस्टम्स किस तरह सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। वो सोलर इंस्टॉलेशन का डिजाइन तैयार करते हैं, लोकेशन एवल्यूट करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करते हैं। बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में वो इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को भी मैनेज करते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स,

0: फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, तो सोलर इंजीनियरिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग करियर हो सकती है। अगला करियर है विंड एनर्जी स्पेशलिस्ट। दुनिया के कई कंट्रीज में विंड टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुकी हैं। विंड एनर्जी स्पेशलिस्ट विंड प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल लोकेशन असेस करते हैं। वो विंड रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं, टर्बाइंस की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। इस करियर में इंजीनियरिंग के साथ एनवायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी यूजफुल होती है। अब एक ऐसा करियर जो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन भी डिमांड करता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजर। सोचिए, एक बहुत बड़ा सोलर या विंड प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सप्लायर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। इन सब को कोऑर्डिनेट करना, डेडलाइंस मैनेज करना, बजट पर नजर रखना और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करना प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अगर आप नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और लीडरशिप स्किल्स रखते हैं, तो ये करियर आपके लिए सूटेबल हो सकता है। चौथा करियर है एनर्जी एनालिस्ट के। आज की दुनिया में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। एनर्जी कंपनीज को ये समझना होता है कि एनर्जी कहाँ और कितनी यूज हो रही है। एनर्जी एनालिस्ट डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, वो एनर्जी परफॉर्मेंस एवल्यूट करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और फ्यूचर एनर्जी डिमांड का फोरकास्ट करने में मदद करते हैं। उनके एनालिसिस कंपनीज को कॉस्ट कम करने, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। अगर आपको नंबर्स, डेटा और एनालिटिक थिंकिंग पसंद है तो एनर्जी एनालिस्ट एक स्ट्रॉन्ग करियर हो सकता है। एक और ग्रोइंग करियर है सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। आज बिजनेसेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट नहीं रहा, कंपनीज ये भी देख रही हैं कि वो एनवायरनमेंट पर अपने इम्पैक्ट को किस तरह कम कर सकती हैं। सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एनर्जी मैनेजमेंट, कार्बन रिडक्शन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के हवाले से एडवाइस देते हैं। ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिन्हें एनवायरमेंट के साथ बिजनेस और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में भी इंटरेस्ट हो। और अब बात एक इमर्जिंग फील्ड की, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजीज में एक प्रॉमिसिंग एरिया माना जाता है। इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हाइड्रोजन प्रोडक्शन सिस्टम्स, एनर्जी स्टोरेज, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पर काम कर सकते हैं। यह भी डेवलपिंग फील्ड है और इसीलिए स्टूडेंट के लिए रिसर्च और इनोवेशन की नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं। लिस्टनर्स, रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर सिर्फ सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स तक लिमिटेड नहीं। इस फील्ड में इंजीनियरिंग से लेकर डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस और रिसर्च तक बहुत से करियर पाथ्स मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स दोनों की जरूरत होगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसा करियर चाहते हैं जहां आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और सस्टेनेबल फ्यूचर का हिस्सा बने, तो रिन्यूएबल एनर्जी को अपनी करियर लिस्ट में ज्यादा कंसिडर करें। फ्यूचर करियर में हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि इन करियर्स के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहिए और अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। तो सुनते रहें FM 107।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं,

0: देखे फ्यूचर की डायरेक्शन है, तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: लिस्टनर्स, किसी भी सक्सेसफुल करियर का सफर सिर्फ जॉब से शुरू नहीं होता। इस सफर की बुनियाद एजुकेशन, स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तैयार होती है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही एजुकेशनल पाथवे नहीं है। इस सेक्टर की खूबसूरती यह है कि डिफरेंट इंटरेस्ट एबिलिटीज रखने वाले स्टूडेंट इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज में इंटरेस्ट है, किसी को डेटा और टेक्नोलॉजी पसंद है, जबकि कोई लीडरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग की। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंजीनियरिंग एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल पाथवे है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सोलर पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स विंड टर्बाइंस और दूसरे एनर्जी सिस्टम्स के डिज़ाइन और मेंटेनेंस में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन रिडक्शन और सस्टेनेबल सिस्टम से रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको फिजिक्स, मैथ्स और टेक्नोलॉजी पसंद है, तो इंजीनियरिंग आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मशीन से ज़्यादा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी में है, तो एक और ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे टॉपिक्स समझने में मदद देती है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को किस तरह अफेक्ट करती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से किस तरह मैनेज किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को समझना ज़रूरी होता है। आप इन्वायरमेंटल स्टडीज के बाद सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, रिसर्च और पॉलिसी जैसे एरियाज में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत लार्ज स्केल पर हो सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल टीम्स, बजट्स, डेडलाइंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना होता है, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज भी वैल्यूएबल है। अगर आप इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करते हैं, तो आप फ्यूचर में टेक्निकल नॉलेज को लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लिसनर्स, मॉडर्न एनर्जी सेक्टर में सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन काफ़ी नहीं। आज एनर्जी इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली डेटा ड्राइवन हो रही है, इसलिए स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के साथ डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट्स, डिजिटल टूल्स और रेलेवेंट सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी चाहिए। अगर आप डेटा को समझ सकते हैं, उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूजफुल डिसीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप एनर्जी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन करियर सक्सेस सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नाम नहीं। एक सक्सेसफुल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल को कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी की भी जरूरत होती है। सोचिए, एक इंजीनियर के पास बहुत

स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन वो अपनी टीम को अपना आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर सकता। या एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग में अच्छा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आने पर डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसे प्रोफेशनल के लिए करियर ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी काम करना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी में बुक्स और लेक्चर्स आपको थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप आपको इंडस्ट्री का रियल एक्सपीरियंस दे सकती है। स्टूडेंट्स एनर्जी कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च सेंटर्स और रेलेवेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप इमीडिएटली अवेलेबल ना हो तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, साइंस कॉम्पिटिशंस, इंजीनियरिंग सोसाइटीज या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि क्लासरूम में सीखी हुई नॉलेज रियल वर्ल्ड में किस तरह यूजफुल होती है। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको अपने करियर का फैसला यूनिवर्सिटी के फाइनल तक नहीं पोस्टपोन करने की जरूरत है। आज से छोटी छोटी चीजें शुरू करें। साइंस और मैथ्स को सीरियसली लें। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में रीड करें। सोलर पावर, विंड एनर्जी, बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें। साइंस और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना सीखें। करियर वो ही स्टूडेंट बिल्ड करते हैं जो सिर्फ ये नहीं पूछते कि मुझे क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी पूछते हैं कि मैं इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज कर सकता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी एक रैपिडली चेंजिंग फील्ड है, इसलिए इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग जरूरी होगी। आज का स्टूडेंट कल का इंजीनियर, रिसर्चर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट लीडर हो सकता है, और हो सकता है कि आप में से कोई फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे जो एनर्जी के इस्तेमाल का तरीका ही बदल दे। इसीलिए अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें, अपनी स्किल्स डेवलप करें और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि फ्यूचर के करियर्स सिर्फ आज की जॉब्स को फॉलो करने से नहीं, बल्कि कल की जरूरतों को समझने से बनते हैं। लिसनर्स, टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को रैपिडली चेंज कर रही है और एनर्जी सेक्टर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से अलग नहीं। हमने अपने पिछले सेगमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंट जो करियर्स और एजुकेशनल पाथवेज के बारे में बात की थी, और अब वक्त है हमारे सेगमेंट AI एंड वर्क का। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट हर फील्ड में सुनते हैं, लेकिन जब बात एनर्जी की हो तो AI का रोल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। सूरज की रोशनी हर वक्त एक जैसी नहीं होती और हवा की स्पीड भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो एनर्जी कंपनीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि वो पहले से कैसे एस्टिमेट करे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कंज्यूमर्स को कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी को देखते हैं। AI सिस्टम्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं
इस डेटा में वेदर इंफॉर्मेशन, सनलाइट लेवल्स, टेम्परेचर और प्रीवियस एनर्जी प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स शामिल हो

0: हो सकते हैं। AI की मदद से ऑपरेटर्स एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर सोलर पैनल्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वेदर डेटा इंडिकेट करे कि कल बादल ज्यादा होंगे तो एनर्जी ऑपरेटर्स प्रोटेक्शन में पॉसिबल रिडक्शन के लिए पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। AI सोलर इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करने में हेल्प कर सकती है। अगर किसी सोलर पैनल या सिस्टम में अनयूजुअल परफॉर्मेंस नजर आए तो टेक्नोलॉजी पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में टेक्नीशियंस की मदद कर सकती है। इस तरह मेंटेनेंस ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है और अननेसेसरी डाउन टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड टर्बाइंस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करती हैं। AI टर्बाइन परफॉर्मेंस का डेटा एनालाइज कर सकती है और आइडेंटिफाई कर सकती है कि इक्विपमेंट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इसे हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में कभी कभी इक्विपमेंट खराब होने के बाद रिपेयर किया जाता है, लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मकसद ये है कि डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल प्रॉब्लम को फेलियर से पहले आइडेंटिफाई किया जाए। तो अगर आप कतर में रहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अभी से अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। फ्यूचर की एनर्जी इंडस्ट्री उन प्रोफेशनल्स को वेलकम करेगी जो टेक्नोलॉजी को समझते हों, एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हों और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जज्बा रखते हों। और अब वक्त है हमारे आज के एपिसोड के फाइनल सेगमेंट का। लिस्टनर्स, आज की एपिसोड का सफर यहीं आके खत्म होने वाला है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर याद करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या आप ऐसे करियर में काम करना पसंद करेंगे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करे और साथ ही फ्यूचर को पावर करने में भी अपना रोल अदा करे? आज हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइंस का नाम नहीं, ये एक रैपिडली डेवलपिंग इंडस्ट्री है जहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट स्किल्स रखने वाले लोग अपना करियर बना सकते हैं। हमने सोलर एनर्जी इंजीनियर्स के बारे में बात की जो सोलर सिस्टम को डिजाइन और इम्प्रूव करते हैं। हमने विंड एनर्जी स्पेशलिस्ट के बारे में बात की जो विंड प्रोजेक्ट और टर्बाइन परफॉर्मेंस पर काम करते हैं। हमने एनर्जी एनालिस्ट का रोल देखा जो डेटा को स्टडी करके एनर्जी एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। साथ ही हमने सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट के बारे में जाना जो ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में गाइड करता है। और हमने ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इमर्जिंग एरियाज का भी जिक्र किया जो फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इन करियर्स के लिए स्टूडेंट्स किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं और इन सब के साथ कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी जरूरी हैं। लेकिन आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि फ्यूचर करियर चूज करते वक्त सिर्फ ये ना देखें कि आज कौन सी जॉब पॉपुलर है, बल्कि ये देखें कि कल दुनिया को किस चीज की जरूरत होगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। जाते जाते बस ये कहूंगी कि याद रखिए, करियर सिर्फ एक डिग्री का नाम नहीं है, करियर में नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्यूचर की वर्कफोर्स में वो प्रोफेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो कॉन्टिन्यूसली सीखने के लिए रेडी हो। तो बस यही याद रखना है, चाहे आप अभी स्कूल में हो या फिर यूनिवर्सिटी में, आपने करना ये है कि सीखते रहना है, नए नए करियर्स को एक्सप्लोर करते रहना है, नई स्किल्स और नई अपॉर्चुनिटीज को भी देखते रहना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज का फ्यूचर करियर सुना। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम एक और फैसिनेटिंग फील्ड एक्सप्लोर करेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी करियर के हवाले से। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द करियर्स ऑफ टुमारो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

अर्निंग नहीं होती ना, तो इस वजह से पेशगी इत्तला देकर नहीं आता। कभी सामने वाली गाड़ी अचानक रुक सकती है, जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा, कोई गाड़ी लेन तब्दील कर सकती है, कोई शख्स सड़क अचानक से वो आ जाता है दरमियान में, यानी उसने आपको देखा नहीं तो आप वो अचानक वो रास्ता क्रॉस करने लगा है, या कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है जो जिसमें फौरी तौर पर गाड़ी पर काबू पाना ज़रूरी हो जाए। तो यहाँ रफ्तार के हवाले से मौजू काफ़ी अहम है। रफ्तार बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी, ख़तरे को समझने, फ़ैसला करने और गाड़ी को काबू करने के लिए वक्त उतना ही कम होगा। यानी इस तरफ ज़्यादा है तो उधर कम है, अगर रफ़्तार कम है तो यानी आप गाड़ी को बआसानी काबू में ले सकते हैं। इसलिए ओवरऑल ख़ुलासा जो है ना इस पैगाम का वाज़े है कि हर सड़क के लिए जो मुकर्रर रफ़्तार है, स्पीड लिमिट है, उसकी पाबंदी करें। इंतज़ाम बिसुरहा अलमुहद्ददा। अब बाज़ ये सोचते हैं कि मुझे इतने वक्त ही में घर पहुंचना है जैसे भी हो, तो या फिर इस तरह सोचते हैं मैं कितनी तेज़ पहुंच जाऊं अपनी घर में, और इस सोच से वो गाड़ी जल्दी ड्राइव कर रहा होता है। तो हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कितनी हिफाजत के साथ, ठीक है, तो यहाँ आपने सोच का तरीक़ा ही बदल दिया, क्योंकि आप सलामती के

0: आपको ये पता लगेगा कि यानी जल्द पहुंच जाना ये कोई कामयाबी नहीं, बल्कि कामयाबी इसमें है कि आप महफूज और सही सालम रहें और इसकी फ़िक्र करें कि आपके साथ कितने लोगों के रिज़्क वाबस्ता हैं, कितने लोग यानी आप के पर सहारा पर एतमाद है उनका। तो इन बातों को आप ज़रा अपनी सोच में या फिर अपने ख्याल में रखते हुए जब आप ड्राइविंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ड्राइविंग वो सही होगी भी इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, अब हम मज़ीद अगले महवर की तरफ बढ़ेंगे। अगला यानी टॉप नुक्ता है हमारा या टॉपिक है जो मुख्तलिफ रास्तों में कुचलने के हादसात पेश आते हैं, ठीक है, गाड़ी के नीचे आ जाना। तो इसका ताल्लुक ख़ास तौर पर कम्युनिटीज़ के हवाले से ये एक काफ़ी अहम टॉपिक है। अब इसका ताल्लुक कम्युनिटीज़ से क्या है वो हमारे मेहमान बताएंगे कि ख़ास तौर पर हमारे जो सामीन हैं उनके लिए इसमें एक खुसूसी पैगाम है। तो चलें हम हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट मिशेल आली अल-गदीद अल-मर्री से ही इस सिलसिले में पूछते हैं। سيادة الملازم أول ننتقل إلى الفقرة التالية حوادث الدهس ولا سيما بين أفراد الجاليات فيعني حبذا لو توضح لنا هذه النقطة.
1: طبعا بخصوص أسباب حوادث الدهس بين الجاليات والطريقة من الوقاية والطريقة الوقاية منها طبعا تعد أسباب حوادث الدهس وتشمل أخطاء السائقين مثل القيادة مشتتة أو تجاوز السرعة الزائدة أو عدم الانتباه كما تساهم أخطاء المشاة يعني يمكن عدم انتباه كغاية مركبة، هذا شرط، ويمكن المشاة بعد هم بعد غلطان، بعد لازم تكون غاية مركبة مركز
0: صحيح.
1: المشاة كعبور الطريق بشكل خاطئ أو قلة الوعي المروري وطرق الوقاية بضرورة الانتباه أثناء عبور الشارع. بخصوص سائق المركبة يركز أثناء قيادة الخاصة أثناء تواجد المشاة في الشارع، خاصة بعد الحياة السكنية أو المناطق اللي ما فيها إضاءات خفيفة فلازم يركز المشاة فيها،
0: وأيضا المناطق اللي فيها المدارس والشيء
1: مدارس المشاة كان بصدع عند قيادة المركبة شفت مكان مشاة تحاسب تكون مركز أكثر
0: صحيح
1: ومغلل السرعة
0: صحيح. وخصوصا ذكر الجاليات بعد هذا يعني موضوع مهم لأن كل واحد جاء من ثقافة معينة ممكن يسوقون في بلادهم بسرعة شيء كذا فلازم نلتزم بهذه القوانين في الدولة.
1: تكلمنا قل الوعي بعد
0: صح
1: عند الجاليات
0: صحيح. سامين كلام جسكي أحمد مهمان فاس لفتن ميشال علي الغضيض المري هنا हमें ये जो हादसात जो पेश आते हैं कुचलने के हवाले से या कोई गाड़ी के नीचे आ गया तो ये दरअसल ये उन्वान जो है ना सुनने में काफ़ी खौफनाक है और मौजू भी खौफनाक है क्योंकि गाड़ी के नीचे आ जाना कोई आम मसला तो नहीं। तो यहाँ दरअसल मसला ये है कि पैदल चलने वालों के हादसात जो होते हैं इसकी इस पर अगर फोकस करें तो ये मौजू काफ़ी अहम है और यानी यहाँ दरअसल दोनों ये जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर इसी तरह जो पेडेस्ट्रियन है पैदल चलने वाले गलती दोनों जानिब से हो सकती है इस वजह से दोनों तरफ़ेन को इस सिलसिले में क्या रहना मोहतात रहना है ठीक है। तो ड्राइवर की तरफ से अगर बेतवज्जुही हो या तेज़ रफ्तारी हो ड्राइविंग के दौरान तवज्जो का मुंतशर हो जाना ये भी मज़ीद यानी इस तरह के हादसात का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ यानी पैदल चलने वाले की जानिब से भी गलत अंदाज में सड़क अबूर करना या ट्रैफिक कवानीन और सड़क के इस्तेमाल से मुतालिक जो आगही उन्होंने जो कहा किल्लत अल-वाई अल-मुरूरी के मुनासिब आगही ना होना ये ख़तरा बढ़ा सकता है। तो ओवरऑल कम्युनिटीज़ की सतह पर यह बात काफ़ी अहम है चूँकि सड़क को अबूर करना और फिर इस तरह के मसाइल इस तरह की ज़रूरत हमें हर वक्त पेश आती रहती है। तो इस वजह से हम कोशिश करें कि हमें इस बात का ख्याल रखें कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर वो कोई गाड़ी वाला ड्राइविंग करने वाला वो कोई गलती कर रहा है तो हमें उनकी गलतियों से मोहतात रहना है ठीक है। यूँ नहीं कि सड़क के इस्तेमाल चूँकि पेडेस्ट्रियन की अपनी अहमियत है तो

0: बस हम अपनी तरह चलेंगे, नहीं आप अपनी जान की सलामती का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह ड्राइवर हजरात के लिए भी एक ही बात है कि आप जो जो खसूसी ऐसे इलाके हैं ठीक है जो जहाँ पर कुछ ज़्यादा अहिया इस सकें नहीं है, उन्होंने कहा एकोमोडेशन जो एरियाज़ हैं, इसी तरह स्कूल्स के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा आना जाना रहता है, पाईचारी होती है ज़्यादा, लोग पैदल चलते हैं वहाँ, तो इस तरह के इलाक़ों में आप ड्राइविंग करते वक्त अपना ख़ास ख्याल रखें, अपना तो रखना ही है साथ साथ जो बाहर यानी दूसरों का भी ख्याल रखना है। और कमेटीज़ के हवाले से ये काफ़ी एक अहम नुक्ता है कि जब कोई शख्स यानी किसी दूसरे मुल्क से आ रहा है तो शायद वहाँ अपने ड्राइविंग का एक तरीक़ा है, लेकिन सड़क के निज़ाम और आपको जिस कानून यहाँ जिस कानून की बात बताई जा रही है और यहाँ के अपने जो हर स्पीड लिमिट है और अंदाज़ है ड्राइविंग का, वो रवैया है ड्राइविंग का भी अपना एक रवैया रहता है, चूँकि ये आपकी जो है ना वो नुमाइंदगी करती है आपकी ड्राइविंग के, आपके अपना जो आपका अंदाज़ क्या है, आपकी शख्सियत क्या है। तो इस वजह से कतर में रहते हुए तो यहाँ आपको पता है कि ट्रैफिक के निज़ाम और सड़क के इस्तेमाल के उसूल की काफ़ी पाबंदी यहाँ इस पर यानी बार बार अवेयरनेस को आम किया जाता है, और पैदल चलने वाले को भी चाहिए जो पैदल चलते हैं, पैदल तो कोई ख़ास बंदा ख़ास किसी बंदे के लिए नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमें कभी भी किसी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है पैदल चलने की, तो पैदल जब हम चलते हैं तो सड़क उबूर करते वक्त हम पूरी तवज्जो रखें, महफूज मकाम का इंतखाब करें और गाड़ियों की हरकत को भी ट्रैफिक को भी सही से देखें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ड्राइवर को भी ख़ास इस तरह तवज्जो रखना चाहिए कि वो यानी ऐसे मकामात पर जहाँ पर लोगों की हरकत है तो वहाँ वो ज़रा आहिस्ता चलाए, स्पीड लिमिट में रखे, काबू में रखे गाड़ी को, ताकि आगे जाके कोई मसला ना हो और इस तरह के लाकदरल्ला इस तरह के जो हादसा जो पेश आते हैं गाड़ी के नीचे आ जाने के, ये सुनने में बहुत ही भयानक है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, एहतियात से कदम उठाएं, एहतियात से गाड़ी चलाएं। समय करम मज़ीद अब हम अगले महवर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल रहेगा हमारे मेहमान से कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ड्राइविंग के दौरान इसकी क्या यानी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसके जो गलत नताइज आ सकते हैं वो किस तरह की किस तरह का ये ख़तरनाक अमल है, इस पर वो इंशाल्लाह हमें यानी बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। سيادة الملازم أول مشعل علي الغضيض المري من أرض الدرعية المرورية تابع الوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادتكم نبي حبت لو توضح لنا خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة.
1: طبعا تكلم خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة. طبعا خطورة استخدام أثناء خطورة الجوال أثناء القيادة من مسببات الحوادث الرئيسية في الطرق. كذلك بما أنك أنت مستخدم جوال مخالف أثناء القيادة عاد ترتكب أكثر من مخالفة ولي قطع إشارة حمراء أو تعدى على حقوق المشاة وتتعملك أحد أو تتعزى أحد
0: صحيح.
1: فهذه من خطورة استخدام الجوال، كذلك هو السبب الرئيسي في الحوادث الرئيسية أو الحوادث الخشنة. فيعني لازم انتبه أثناء القيادة ما مضطر الأمر ما استخدم الجوال.
0: تماما تماما. سامعین کرام جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغضید البری جن کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ موبائل فون یوز کرنے کی جو یہ جو خطرناک رویہ ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گاڑی چلاتے وقت سب سے اہم توجہ جس چیز پر ہونی چاہیے وہ ہے ڈرائیونگ پر۔ فون کی طرف دیکھنے کے لیے وقت کم لگ سکتا ہے، لیکن یہ جو بہت اتنے کم مختصر مدت ہی میں کافی بڑے بڑے مسائل اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یعنی اوورال اگر ہم اس کو سادہ زبان میں اس طرح کہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ نے فون پر نظر ڈالی اور اسی لمحے سامنے والی گاڑی نے بریک لگا دی اور کوئی پیدل شخص آگے آ گیا اچانک سے، تو آپ کی توجہ تو فون پر ہے، یا فون سے آپ نے نظر اٹھائی بھی لیکن آپ کو تو وقت نہیں ملا نا آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول میں لے لیں،

Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम कम है इसीलिए सेविंग्स नहीं हो पाते. लेकिन कई मर्तबा असल मसला इनकम नहीं होता. असल मसला होता है आपके हिडन एक्सपेंसेस जो धीरे धीरे हमारी अर्निंग्स को ड्रेन कर रहे होते हैं. ये छोटे छोटे खर्चे छोटे लगते हैं लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. या ये कह सकते हैं कि इतने मामूली लगते हैं कि हमारी और आपकी तवज्जो इन पर जाती ही नहीं. लेकिन महीने के आखिर में ये एक्सपेंसेस आपके बजट को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी सेविंग्स को हिला के रख देते हैं. आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हिडन एक्सपेंसेस की जो आपके इनकम को चुपके चुपके धीरे धीरे कम कर रहे हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा की हमारी जो आदतें हैं उनको लेकर. रोज ऑफिस जाते वक्त कॉफी लेना या छोटे मोटे स्नैक्स खरीदना बड़ी आम बात है ना. एक कॉफी कितना, 15 या 20 रिया. और रोज अगर ले जाए तो महीने के आखिर में ये अमाउंट कैलकुलेट कीजिए. अगर आप रोज 20 भी नहीं चलो 15 रियाल की कॉफी लेते हैं तो महीने में लगभग 450 रियाल खर्च हो जाते हैं जो हमें आइडिया भी नहीं होता. इसी तरह कितने ऐसे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस हैं जो हमने ले रखे हैं. कुछ लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फिटनेस ऐप, म्यूजिक सर्विसेज और ना जाने कितने ऑनलाइन मेंबरशिप्स ले लेते हैं. मसला नहीं है लेना, मसला तब है जब हमें उन्हें यूज करना ही नहीं आता या हम उन्हें यूज ही नहीं करते. मगर बस

ऑटोमेटिकली महीने से हमारे पैसे डिडक्ट होते रहते हैं। आप एक फिटनेस ऐप डाउनलोड की थी आपने और सोचा था कि मैं इसे यूज करूंगा। अब हर महीने फ्री चार्ज आप बस यूं ही यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर महीने फी चार्ज कर रही है, जबकि वो ऐप आपके इस्तेमाल में ही नहीं है। तो इस तरह से ये पैसे आपके यूं ही जाया हो रहे हैं। वहीं कई बार हम और आप जो हैं सोशल मीडिया पर एड ऑनलाइन डील्स देखते हैं और हमें लगता है कि अरे अरे हम भी खरीद लें, देखो सब खरीद रहे हैं, देखो सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और हमारा नुकसान ना हो जाए कहीं। और शायद ये हमारी आदत हमें इंपल्सिव बाइंग की तरफ लेकर जाती है। सिर्फ डिस्काउंट देखकर एक गैजेट खरीद लेना जो बाद में ड्रॉअर में सिंपली यूं ही पड़ा रहे, डिस्काउंट के बावजूद ये आपकी अननेसेसरी एक्सपेंस है। यूं ही हम वेस्ट कर रहे हैं, एसी चला के छोड़ चुके हैं कमरे में, ये सारे हिडन एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। खाली रूम में एसी चलता रहे, ये ना सिर्फ पैसे का वेस्टेज है, एनर्जी का भी वेस्ट है और मंथली बिल हमारा बढ़ता है जिससे हमारा बजट भी बिगड़ सकता है। वहीं कई बार छोटी छोटी हमारी डिजिटल परचेजेस, मोबाइल गेम्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, स्टिकर्स हैं, इन ऐप परचेजेस छोटी लगती हैं, लेकिन जब ये फ्रीक्वेंटली की जाए तो अमाउंट काफी बढ़ जाता है। यानी हर हफ्ते सिर्फ 10 रियाल की परचेज भी साल भर में हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स बन सकती है। अब मसला है कि इन्हें कंट्रोल कैसा किया जाए। देखिए, हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट और एक्सपेंसेस रिव्यू करें, बजट बनाएं और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करें, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करें, ऑनलाइन शॉपिंग से पहले डू आई रियली नीड दिस ये सवाल पूछिए, सेविंग्स को लाइफ में प्रायोरिटी दीजिए, कैश या स्पेंडिंग्स जो है उन्हें लिमिट करें। हिडन एक्सपेंसेस बिल्कुल पानी के उस लीक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे पूरा टैंक खाली कर देते हैं। अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बड़ी परचेजेस की वजह से नहीं बल्कि छोटी और यूजलेस परचेजेस या खर्चों की वजह से पैदा होती हैं। जब हम उन हिडन एक्सपेंसेस को पहचान लेते हैं और उन पर कंट्रोल करते हैं तो ना सिर्फ सेविंग्स बढ़ती हैं बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड भी हासिल होता है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी इनकम को समझदारी से मैनेज करता है। तो क्या आप कर पाते हैं? इसी सवाल के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 106।

7 presents Tech Update. Tech Update. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main duha wala kabeer FM 107 pe and welcome to another tech update. देखिए वेबसाइट से मैं आपको बताता रहूंगा और आपको मैं खबरें भी देता रहूंगा, हो सकता है बीच बीच में कुछ अलग आपको चीट कोड्स भी दे दूं टू रन ऑन डिफरेंट AIs. फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी बहुत कुछ करता है, इसके ऊपर बहुत सारे कोड्स काम करते हैं, बट आई विल लेट यू नो बाद में. फिलहाल जो है आपकी भी सजेशन बड़े जरूरी है. जुबानी स्लिप हो गई वेबसाइट्स पे तो आइएगा, लेकिन हमारे जो मेन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी रहिए. FM 107 Qatar. तो शुरू करते हैं आज की कुछ वेबसाइट्स से. बड़ी काम की भाई आज की वेबसाइट, कुछ मजेदार है टाइम पास के लिए और मजेदार होने के साथ साथ कुछ काम की भी है. सबसे पहले मजेदार वेबसाइट से शुरू करते हैं.

0: टाइप करना है आपको windows93.net windows93.net होगा क्या कि आपके सामने एक बहुत ही प्राचीन युग की विंडो लोड होगी और उसके बाद आपको जो डेस्कटॉप पे नजर आएगा आप नॉस्टैल्जिया में यादों में खो जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। स्पेशली 90s और 80s से पैदा हुए बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा भाई, कोता ही एकदम। तो उसमें क्या है कि आपके सामने बहुत सारे गेम्स नजर आएंगे आपको जो रेट्रो गेम्स हैं, आप जो है उन्हें लोड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आपको नजर आएंगी जो बैक इन द डे बहुत चलती थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। यू विल लव इट, इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक डाइव एंड मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं windows93.net। कोई स्पेशल साइन अप वाइन अप कुछ नहीं है, कोई अलग से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट यू ओपन द वेबसाइट एंड इट इज देयर। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अपडेट। क्योंकि मेरे खुद की हिस्ट्री में बहुत बड़े नंबर आते थे भाई, बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं, कोई सब्जेक्ट बढ़िया हो ना हो, बट आई लव हिस्ट्री। और एक एक बहुत कमाल की वेबसाइट है, ये है www.cronus या cronus.org, मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, CHRONAS cronus.org। ये वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं और आपको एक आपको वर्ल्ड मैप नजर आएगा। वो वर्ल्ड मैप एयर के हिसाब से देख सकते हैं कैसे बदला, क्या हुआ, पूरी की पूरी हिस्ट्री इतने इंटरैक्टिव वे में सामने आएगी ना, आपको मजा आ जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ। सो इफ यू हैव किड्स एट होम जो हिस्ट्री को थोड़ा ऑफकोर्स बोरिंग लगती है लोगों का, आई अंडरस्टैंड, इससे समझाएंगे ना आपको, इससे समझाएंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको खुद बड़ा मजा आएगा भाई। बैठे बैठे मैं देखता रहता हूँ उसको टाइम पास के लिए, और मेरी हिस्ट्री ना सिर्फ रवा होती है, मुझे और अच्छा लगता है कि क्या बढ़िया चीज बनाई यार, किसने सोचा होगा, ये आइडिया अपने आप में बहुत कमाल का है। सो cronus.org ये दूसरी वेबसाइट है। अब तीसरी की तरफ बढ़ते हैं जो कतर में बहुत काम आई। तीसरी वेबसाइट का नाम है simulator.electude.com। एक सेकंड मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सिम्यूलेटर पता है आपको, सिम्यूलेटर लिख लीजिएगा, उसके बाद डॉट लगा के इलेक्ट्यूड, ELECTUDE, ठीक है। तो simulator.electude.com, इस पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने गाड़ी आ जाएगी और उस गाड़ी को आप बाकायदा कैसे सही करते हैं सीख सकते हैं। ये वेबसाइट आपको सब सिखाएगी, जंप स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन सा वायर कहाँ लगता है, स्पार्क प्लग कहाँ होता है, बैटरी कहाँ होती है, कहाँ कौन सा पार्ट होता है, ये इंजन की बेल्ट क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, और जो जो डायग्नोसिस होता है इंजन का वो कैसे होता है, आप खुद कर सकते हैं उसे एंड यू कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, आधी चीजें जो मुझे नहीं बताती भाई, मैं बिल्कुल इसमें अंगूठा छाप मामला है मेरा गाड़ी को ठीक करने के समझने के मामले में, बट दिस वेबसाइट एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अच्छा ये भाई हाँ ऐसे करते हैं। सो यू माइट गेट अ वेरी वेरी गुड आइडिया और बहुत हेल्पफुल लगी मुझे एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के काम आने वाली। यू नेवर नो भाई कब जरूरत पड़ जाए इस चीजों की, तो मैं तो ये बता के रखता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ वेबसाइट आज की, आखिरी वेबसाइट का नाम है लर्न, और उसके बाद जो है लर्न के बाद आपको हाइफन लगाना है, डैश लगाना है, anything.xyz। ये बहुत ही आलसी आदमी ने वेबसाइट बनाई होगी पर काम की बनाई है। लर्न यानी सीखने वाला, लर्न और हाइफन anything.xyz। इस वेबसाइट का जैसा नाम है वैसे इसका काम है, आप कुछ भी सीख सकते, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, एंडलेस, इतनी भर भर के स्किल्स है ना इस पे सीखने के लिए, और जो स्किल्स आपकी मौजूदा है उनको आप अपस्किल कर सकते हैं। सो ट्राई ऑल दीज वेबसाइट्स एंड लेट मी नो कौन सी आपके काम आई या किस वेबसाइट ने आपके बोर्डम को किल किया। लेट मी नो 666-22107 ये शो में बता देना। और दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको इत्तला करता हूं कि कैसे इन स्कैम से आप बच सकते हैं। वेल, आज का है स्कैम जो वो है सेकेंड हैंड ओवर पेमेंट स्कैम। इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि स्कैमर्स आपकी अपनी चीज बेचते वक्त ही आपको झूठे पेमेंट्स के लालच में या जाल में फंसाकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। दोस्तों, ये है ओवर पेमेंट ऑन योर सेकेंड हैंड आइटम। कैसे काम करता है इस पर अगर हम बात करें तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कोई यूज्ड चीज जैसे कि मोबाइल, फर्नीचर या लैपटॉप बेचने की पोस्ट डालते हैं तो स्कैमर्स फेक बायर्स बनकर आपसे कांटेक्ट करते हैं। वो आइटम खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे यू नो कल वेकेशन पे आना है, आज मुझे ये चाहिए, या फिर मेरे जो ऑफिस में काम है वो इसी यू नो लैपटॉप से निकलेगा, मेरा अपना काम भी ऐसे ही इसी लैपटॉप से होता है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपको जल्दी जल्दी बताएंगे। वो आपको एक डिजिटल चेक या मोबाइल पेमेंट भेजते हैं जो आपकी मांगी गई कीमत से थोड़ा सा ज्यादा की होती है। इसके बाद वो बहाना बनाते हैं कि गलती से ज्यादा पैसे चले गए हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें तुरंत वापस कर दें। कुछ दिनों बाद बैंक को पता चलता है कि उनका जो ओरिजिनल चेक या पेमेंट है वो फेक था, या जो चेक है वो फेक था। बैंक वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट से काट लेता है जिससे आपका अपना भेजा हुआ रियल पैसा भी चला जाता है और आप एम्प्टी हैंडेड रह जाते हैं। वेल, इस तरह के स्कैम को लेकर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी इस स्कैम के बारे में बात करी गई है कि किसी सामान को खरीदना है और बायर जो है वो आपको पेमेंट करता है, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है कि अरे वो 30,000 की बजाय 40,000 पेमेंट हो गया है, वो कहता है वो 10,000 जो है वो वापस कर दे, फिर आप 10,000 वापस भी कर देते हैं। वैसे ये नए जमाने के नए लड़कों के साथ नहीं होता है लेकिन पुराने जमाने के लोगों के साथ अक्सर हो जाता है कि उनके पास जो मैसेज आता है वो बजाय बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है, जो अपडेट है वो चेक करें, मैसेज पर जो मैसेज डायरेक्ट मोबाइल पर आता है उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद वो बाकी के जो

0: 10,000 है, वो पेमेंट वापस उस बायर को जो दिखाता है कि मुझे चाहिए सामान उसको दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट दे भी देते हैं, फिर जो आपसे प्रोडक्ट लिया है वो सामने खड़ा होता है, वो आप प्रोडक्ट भी उसे दे देते हैं और वो नदारद हो जाता है। अब फिर जब आपको पता चलता है कि पेमेंट तो आया ही नहीं, आप उसे कॉन्टेक्ट करते हैं, आप ब्लॉक हो चुके हैं, आपका जो सामान था वो भी जा चुका है, आपने 10,000 रुपए जो दिए थे वो भी जा चुका है, तो यानी कि आपका डबल ट्रिपल नुकसान हुआ है। आप वापस उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमेशा उसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड की डिटेल्स भी रखें कि यू नो आप किसको आइटम बेच रहे हैं। इवन अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं, आप लैपटॉप बेच रहे हैं, वो किस तरह का शख्स है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि उनका शिनाख्त ज़रूर करें, उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर या फिर कोई आईडी अगर उनकी है तो वो भी ज़रूर रखें कि हो सकता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़े कि उन्होंने मोबाइल से अगर कुछ गलत काम कर दिया हो तो आपको पता हो कि भाई ये मोबाइल तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आपको पता है कि भाई नहीं, वो फला बंदे ने मुझसे खरीदा था और क्यू आईडी जो है या फिर आईडी जो है मेरे पास उनकी है और ये देखिए ये आईडी है। तो ऐसे में आप बच सकते हैं। अलग तरह के स्कैम भी होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपके साथ पैसों का स्कैम हुआ हो सकता है आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट को लेकर स्कैम हुआ हो सकता है आपका मोबाइल जो बंदा लेकर गया है वो कोई और शख्स हो, चोरी वगैरह के लिए इस्तेमाल करे, किसी और क्राइम के लिए इस्तेमाल करे, इस तरह से भी आपके साथ स्कैम होता है। तो उन सब तरीकों से बचने के लिए जरूरी है कि आईडी वगैरह भी उसकी साथ में रखें। लेकिन इन स्कैम से बचने का कुछ तरीका है जो काफी लंबे वक्त से मैं आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा अमाउंट वापस ना करें। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज आया है या फिर इवन आपके मोबाइल पे सच में पैसे आ गए हैं तो आप तब तक ट्रांसफर ना करें जब तक बैंक आपको ना बता दे कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बैंक के क्लियरेंस का वेट करें। ओवर पेमेंट रिजेक्शन रूल। अगर कोई बायर ट्रांजेक्शन से पहले या बाद में ओवर पेमेंट का बहाना बनाए तो डील को फौरन कैंसिल कर दें। ये 100% स्कैम की निशानी है। सेफ पेमेंट मेथड का यूज करना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत और उम्मीद है कि आज के स्कैम के बारे में भी आपको काफी कुछ पता चला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको इत्तला करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत का गहरा रिश्ता समंदर से रहा है। समंदर ने यहाँ के लोगों को सफर, मछली पकड़ने और तिजारत के मौके दिए। इस समंदरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत निशानियों में से एक धाव यानी रिवायती कश्ती है। धाव लकड़ी से बनने वाली एक कश्ती है जो कतर के बहरी वर्से की अहम हिस्सा रही है। पुराने वक्त में इन कश्तियों को मछली पकड़ने, समंदरी सफर और तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कश्तियाँ लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाने, समंदर की वसत से फायदा उठाने में मदद करती थी। धाव बनाने के लिए हुनरमंदी और तजुर्बे की जरूरत होती थी। लकड़ी का इंतखाब, कश्ती का नक्शा, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ना और उसकी मजबूती को कायम रखना सब बहुत तवज्जो का काम था। कश्ती साज अपना हुनर अक्सर तजुर्बे और मश्क के जरिए हासिल करते थे। कश्ती साजी में सब्र और सफाई का बहुत ज्यादा किरदार होता है। एक छोटी सी गलती भी कश्ती के काम और मजबूती पर असर डाल सकती है, इसीलिए हर हिस्सा एहतियात से तैयार किया जाता था। हुनरमंद जब कश्ती बनाता था तो वो अपनी मेहनत के साथ अपनी पहचान भी इसमें शामिल कर देता था। धाव का सफर टीम वर्क का दर्स देता है। कश्ती पर काम करने वाले तमाम अफराद अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। कोई कश्ती के रोक और सफर पर तवज्जो देता, कोई सामान संभालता और कोई मछली पकड़ने या तिजारती काम में मसरूफ होता। सबका मिलजुल कर काम करना कामयाब सफर के लिए जरूरी था। समुद्री सफर कुदरत को समझने का नाम भी था। लहरों और मौसम के अंदाज का ख्याल रखना जरूरी होता था। पुराने लोग तजुर्बे की बुनियाद पर समंदर के हालात को समझते और सफर की तैयारी करते थे। ये इल्म अक्सर बुजुर्ग नई नस्ल को सिखाते थे। कतर का बहरी वर्षा मोती हासिल करने की रिवायत से भी जुड़ा हुआ है। धाव इन कुश्तियों में शामिल थी जिन्हें समंदर की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोती की तलाश में जाने वालों के लिए सब्र, हिम्मत और एक दूसरे पर एतमाद जरूरी होता था। समंदर के करीब रहने वाले लोगों की जिंदगी में धाव सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये रोजगार, खुराक और तिजारत से जुड़ी होती थी। कश्ती पर गुजारा गया वक्त और घर वापस आने की ख्वाहिश दोनों समंदरी जिंदगी की यादों का हिस्सा थे। कतरी लोक गीत और कहानियां भी अक्सर समंदरी जिंदगी की याद दिलाती हैं। कश्ती पर काम करने वाले लोग सफर को आसान और पुरजोश बनाने के लिए मिलकर गीत गा सकते थे। ये गीत टीम वर्क और हौसले को मजबूत करते थे। आज के कतर में धाव अब ज्यादातर वर्से और सकाफती पहचान की अलामत के तौर पे देखी जाती है। समंदरी प्रोग्रामों, म्यूजियम और वर्से की नुमाइशों में रिवायती कश्तियां पेश की जाती हैं। लोगों ने देखकर पुराने वक्त की जिंदगी, हुनर और समंदरी सफर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ताऊ फेस्टिवल जैसे प्रोग्रामों का मकसद लोगों को बहरी वर्से से जोड़ना होता है। यहाँ पुरानी कश्तियों के साथ कश्ती साजी, समंदरी सफर और रिवायती हुनरों को भी पेश किया जाता है। ऐसे प्रोग्राम बच्चों और नौजवानों के लिए खास दिलचस्पी का सबब बनते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने सफर के तरीके बहुत हद तक बदल दिए हैं, लेकिन रिवायती धो की अहमियत कम नहीं हुई। यह हमें याद दिलाती है कि तरक्की के साथ माजी को भी याद रखना चाहिए। पुराने हुनर और तजुर्बात किसी कौम की पहचान का कीमती हिस्सा होते हैं। ताऊ देखकर हम सिर्फ लकड़ी से बनी कश्ती नहीं देखते, बल्कि इसमें हुनरमंदों की मेहनत, समंदरी सफर करने वालों की हिम्मत और खानदानों की उम्मीदें भी देख सकते हैं। ये कश्ती माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान एक खूबसूरत राबता है। कतर की धाव रिवायत हमें टीम वर्क, सब्र और कुदरत के एहतराम का पैगाम देती है। समंदर ने लोगों को ये सिखाया कि सफर तन्हा नहीं बल्कि मिलजुल कर तय किया जाता है, इसलिए धाव सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। और एक दफा फिर से एक और खूबसूरत और सबक आमोज एपिसोड के साथ मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूं। पिछले एपिसोड में हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी बेमिसाल इस्तकामत के बारे में जाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बरसों पहले अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्होंने लोगों को समझाया, नसीहत की, उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया।

किया करते थे। वो मजबूत किले और महलात बनाते थे। उनकी तामीरात में शान और शौकत नुमाया थी। तामीर करना खुद के गुना नहीं, इस्लाम तरक्की और खूबसूरत तामीरात के खिलाफ नहीं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब इंसान तामीरात को अपनी अजबत का सबूत समझने लगे और अल्लाह की दी हुई नियमत को भूल जाए। कौमी आद की जहनियत में ये एहसास पैदा हो गया था कि उनकी ताकत और इमारतें उन्हें हमेशा कायम रखेंगी, लेकिन दुनिया में कोई चीज हमेशा बाकी नहीं रहती। महल रह नहीं जाते, दौलत रह नहीं जाती, ओहदे बाकी नहीं बचते, जिस्मानी ताकत भी एक दिन कम हो जाती है। सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही बाकी रहने वाली है। ये सबक आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। इंसान घर बनाता है और समझता है कि अब जिंदगी महफूज हो गई। वो दौलत जमा करता है और समझता है कि अब कोई मसला नहीं होगा। वो ओहदा हासिल करता है और समझता है कि अब उसे कोई नहीं हटा सकता। वो शोहरत हासिल करता है और समझता है कि अब लोग हमेशा उसे याद रखेंगे। लेकिन दुनिया की हकीकत क्या है? सब कुछ बदलता है। जो आज ताकतवर है कल कमजोर हो सकता है, जो आज अमीर है कल मोहताज हो सकता है, जो आज मशहूर है कल लोग उसे भूल भी सकते हैं, जो आज सेहतमंद है कल बीमारी का शिकार हो सकता है। इसीलिए मोमिन दुनिया की नेमतों से फायदा उठाता है मगर उन पे अपना दिल मुकम्मल तौर पर नहीं लगाता। कौमे आद की मुसलसल मुखालफत के बावजूद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत जारी रखी। यहां हमें एक बार फिर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सब्र की अजमत नजर आती है। एक इंसान के लिए ये आसान नहीं कि वो मुसलसल लोगों को समझाए और फिर इनकार, मजाक और मुखालफत बर्दाश्त करे, लेकिन नबी अल्लाह के हुक्म के सामने अपने जज्बात को तरजीह नहीं देते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही किया। उनकी कौम ने उन्हें छुटलाया लेकिन उन्होंने हक को नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए भी सबक है। कभी हम किसी को अच्छी बात बताते हैं और वो फौरन कबूल नहीं करता। कभी कोई हमारी नसीहत का मजाक उड़ा देता है। कभी लोग हमारे उसूलों को पुराना या मुश्किल करार दे देते हैं। ऐसे वक्त में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सबर याद रखना चाहिए। हक पर कायम रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हक की कदर उस वक्त भी बाकी रहती है जब लोग उसे पसंद ना करें। कौमे आद की सरकशी यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। ये बहुत खतरनाक बात थी। अल्लाह के अजाब को मजाक समझना, दरअसल अल्लाह की कुदरत के बारे में इंतहाई गुस्ताखाना रवैया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। वो जानते थे कि अजाब लाना उनके अख्तियार में नहीं। नबी का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। फैसला अल्लाह करता है, वक्त अल्लाह मुकर्रर करता है, अजाब अल्लाह के हुक्म से आता है, और जब अल्लाह का फैसला आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। फिर वो वक्त आया जिसे कौमे आद ने शायद अपनी कामयाबी समझा। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। कौमे आद ने उसे देखा तो खुश हो गई। उन्हें लगा कि बारिश होने वाली है, उनकी जमीनों को पानी मिलेगा, उनके खेत सैराब होंगे। लेकिन जिस चीज को वो रहमत समझ रहे थे वो दरअसल अजाब था। कुरान करीम के मुताबिक जब उन्होंने बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहा, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को बताया गया कि ये वही चीज है जिसके लिए वो जल्ली मचा रहे थे, यानी
وہ عذاب جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔

0: मैं उन नेमतों को किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम अक्सर कामयाबी को सिर्फ नताइज से नापते हैं। अच्छे नंबर आ गए, अच्छी नौकरी मिल गई, कारोबार कामयाब हो गया, घर बन गया, माल बढ़ गया, सोशल मीडिया पर शोहरत मिल गई। लेकिन हकीकी सवाल यह है कि क्या इन कामयाबियों ने हमें अल्लाह के करीब किया? अगर कामयाबी हमें शुक्रगुजार बनाती है तो ये हमारे लिए नेमत है। अगर कामयाबी हमें मुतकब्बिर कर देती है तो हमें रुक के अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, शुक्र ये भी है कि नेमत को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। लिसनर्स, आज हमने जाना हजरत हूद अलैहि सलाम और कौम आद के बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होती है स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स की नेक्स्ट स्टोरी में, और एक और नबी की अच्छी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Har nabi ki zindagi ek sabak hai, ek roshni jo hame raah dikhati hai. Unki qurbaniyan, sabr aur Allah par yaqeen hame sikhata hai ki mushkilein aati hain, magar iman hamesha jeetta hai. Stories of Prophets. Stories of Prophets. Jisme aap sunenge nabiyon ki dilchasp kahaniyan, unki mehnat, unke imtihan aur unke paighamat jo dil ko chhu lete hain. Aap bhi is safar mein shamil hon aur in paak kahaniyon se apne dil ko roshan kare.
1: Suniye show RJ Mehvish Khan ke saath har budh dopahar 1 baje se only on FM 107 Dil Se Desi.
2: दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं याद रखिए आपकी आगाही आपकी हिफाजत है फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें आमतौर पे कम कीमत पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं एफएम 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकॉनमिक

0: एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

तुम्हारे गिर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुबे इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खोए गए। और ये था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। और वो वाकया भी काबिले जिक्र है, जब हम जिनों के एक ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें आजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिच कर दे और न इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसको बचा ले, ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और उनको बनाते हुए वो न थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे उस वक्त इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? ये कहेंगे, हाँ हमारे रब की कसम वाकई ये हक है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे थे। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया है, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है तो इन्हें यूं मालूम होगा जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे। बात पहुंचा दी गई, अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा?

इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तक्वा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस कयामत ही के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामत तो आ चुकी है। जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं है और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी जबान पर है इताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बरपा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं? हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाजे हो जाने के बाद उससे फिर गए उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया है और झूठी तवक्कोआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। इसीलिए इन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे? ये इसीलिए तो होगा कि इन्होंने उस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है और उसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद ना आया, इसी बिना पर उसने इनके सब आमाल जाया कर दिए।

तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे न मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे और वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। देखो, तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं, हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे।